0: बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तसव्वुर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीरकर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को ये पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द एनसीएस स्टाफ बीसीसीआई स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: पहले सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood, Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
7: खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, देखिए राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस बार योग दिवस का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। कोलकाता से कश्मीर तक और प्रयागराज से पेंगोंग लेक के अलावा अमेरिका से नेपाल तक योग दिवस मनाने का उत्साह लोगों को चरम पर देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की शानदार झलकियां।
8: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशभर में योग अभ्यास का उत्साह चरम पर नजर आया। योग में दिखा पूरा देश, हर तरफ योग आसनों की अनूठी तस्वीरें देखने को मिली। इनमें लोगों के जोश और उत्साह और भारत की गौरवशाली योग परंपरा के प्रति बढ़ते विश्वास की झलक भी साफ देखी जा सकती है। जमी हो या जल, ऐतिहासिक जगह हो या खुले मैदान या फिर दुर्गम पहाड़ी चोटियां, हर जगह योग दिवस मनाने का जोश हाई दिखा। लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे की सेना और आईटीबीपी के जवानों ने लुकुंग पोस्ट पर योग दिवस मनाया, तो साथ ही साथ आम लोग भी इस समारोह में शरीक हुए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते हुए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में खास कार्यक्रम का आगाज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तड़के 5 बजे ही शुरू हो गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रियों ने योगा अभ्यास में भाग लिया, तो साथ ही साथ इस अवसर पर विजयवाड़ा के स्टेडियम में भव्य योग उत्सव की शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग किस्म की योग मुद्राओं का अनूठा प्रदर्शन किया। वहीं स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर मौजूद तमाम लोगों को अलग अलग योगासन का अभ्यास भी करवाया और इसके फायदे भी बताए। राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में रेड रोड पर हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में कोलकाता में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल खुद योग किया बल्कि घूम घूम कर मौजूद लोगों को अच्छी तरह से योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते भी नजर आए। पीएम ने इस अवसर पर देश और दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि योग किस तरह विश्व शांति के लिए जरूरी है।
9: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
8: देश के हर कोने में योग दिवस के उत्सव की धूम नजर आई। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं और मुख्यमंत्री तक तमाम राजनेता जगह जगह योग उत्सव में शामिल होकर योग के जरिए अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश देते दिखे। वहीं जाने माने अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी बड़े उत्साह के साथ इस बार भी योग उत्सव में शरीक दिखे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में इससे जुड़े समारोह में भाग लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया, तो एक्टर अक्षय कुमार भी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में योगासन करते नजर आए। तमाम सेलिब्रिटीज ने इस अवसर पर लोगों को योग से जुड़ने और इसके फायदे लेने का संदेश दिया। yeah. 2015 में शुरू हुआ योग का ये उत्सव दुनिया भर में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इससे विदेशों में भी योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और आकर्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर जर्मनी और चीन तक, सऊदी अरब से ओमान, नीदरलैंड्स और आर्मेनिया और डेनमार्क तक लोग बढ़ चढ़कर योग दिवस के उत्सव में भाग लेते दिखे। अलग अलग देशों में करीब 2500 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश दुनिया में हर उम्र और हर क्षेत्र के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए, इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए तत्पर दिखे। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी बड़ी संख्या में लोग योग करके इसके जरिए स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देते नजर आए। तो पश्चिम बंगाल के जलदापारा नेशनल पार्क में लोगों ने हाथियों के सामने योग की अनूठी तस्वीर पेश की। योग दिवस की तस्वीरें प्रयागराज में संगम तट से भी आई और हरिद्वार में हर की पौड़ी से भी। स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक संतुलन की दिशा में योग को एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। यही वजह है कि योग के महत्व और इसके लाभ को समझते हुए बड़ी संख्या में लोग इस वैश्विक अभियान से जुड़ रहे हैं और योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। विजयवाड़ा से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
10: No.
11: Oh no.
12: Welcome to Get Real.
11: I got something to say.
12: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
11: Oh my god.
13: It's gotta be deliciously desperate.
14: Why do these girls forgive him?
15: She has a soft spot for troubled men.
13: Boo bloody hoo.
12: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
14: Love runs deeper than we know.
12: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या। कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना कुंभकर्ण जैसे, ऐसा लगता है। हाँ बोले क्यों, बोले कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, जो भीतर पाप रहते उन्हें लगने लगता अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या, एक काम करो इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ सबसे ज्यादा बुरा ना मानना, इंदौर के पागलो तन से पूजा कर रहे आज के डेट में लोग,

से पूजा कर रहे, मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है। अबे कहते गुरु जी कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा है। भाई तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी, बोलो जय बजरंगबली की। उपाय क्या है, मन से पूजा कर...

0: अच्छा ये दशरथ क्या है? दशरथ, दस रथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, दस रथ हैं और दस रथों के ऊपर बैठा है मन, जो अपनी दसों इंद्रियों के ऊपर रूपी मन से बोलता है राम राम, उसी को एक बार के राम कहने में ही करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई। अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गई, तो जो तोते का बच्चा ऊपर बैठा था उसके कानों में अमर कथा गई तो चेतना आ गई, और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गई तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज, बढ़िया कह दई। ओ हो हो, हाँ जय हो। ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही। बोलो जय बजरंगबली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो। गए घर से पिट करके आए हो अपनी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ, तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में तीन घंटा कम से कम बच तो जाते। हमका मतलब है? बोले घर में रहो सो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरु जी। बताइए, बाद में पता लगा वो भी मूसा खेड़ी का था। बोलो सीताराम।
1: सीताराम।
0: तो भोले बाबा ने कथा सुनाई, वह सुख यानी तो तोता बीच बीच में

पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काव देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया? तो जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी, जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? हा हा हा, जब भोले बाबा ने धरी ध्यान, देखो भोले बाबा जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करन हेतु शिव दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे, तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी। इनका नाम ही है भोले बाबा, पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेदव व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी, धान। उसी समय उनको जमुहाई आई और जैसे ही जमुहाई आई वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेदव व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेदव व्यास जी से बोले, हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेदव व्यास जी बोले, महाराज आपका कौन शत्रु? भोले बाबा बोले, एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। तो वेदव व्यास जी बोले, महाराज जी कौन सी कथा? अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेदव व्यास जी बोले, बाबा अब उसका करोगे क्या? भोले बाबा बोले, त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेदव व्यास जी बोले, लो तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है? वो कभी मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा? तब भोले बाबा को याद आया, अरे राम राम राम राम राम राम राम राम, अब तो भैया हम जे चले, भोले बाबा चले गए। 12 वर्ष तक रहे माताजी की कोख में। 12 वर्ष बाद वेदव व्यास जी ने कहा, भैया जो भी हो सो बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे, तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पड़वा दोगे, हमें प्रपंच में पड़ना नहीं। वेदव व्यास जी बोले, चिंता मत करो।

अब भैया जैसे ही प्रकट भए तो वेद व्यास जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे आ

है माया नहीं सताएगी। जब 12 वर्ष बाद प्रकट भय तो जन्मते ही सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वन में आ गए। वेद व्यास जी कुछ देर तक तो दूर दूर तक पीछे पीछे गए,

0: सेवा बहुत दूर तक भागे। पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, वन में आकर बैठ गए। पर भैया, जो बालक घर छोड़कर चला गया था वही बालक भागवत भगवान की कृपा से पुनः घर आया। कैसे? जब 18,000 श्लोकों की संगता भागवत लिख दी तो।
1: क्या आप प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं? क्या बैंकिंग या कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या टेक्निकल क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू दिए जा रहे हैं? अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी मिलती कैसे है और अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के सरल उपाय क्या हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
3: No ticket, no line, just showtime. Qualo Concerts is the destination for music lovers, with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qualo Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज।

0: today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
1: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: बनाता है।
5: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ। 26 जून तक चलेगा मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। कश्मीर के गांधरबल में आज से शुरू हो रहा खीर भवानी मेला, सज धज कर मंदिर तैयार, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद, श्रद्धालुओं में उत्साह। कश्मीर की वादियों में कुदरत का श्वेत श्रृंगार, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा मानसून, कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश, गर्मी और उमस से राहत मिली, 23 जून से मानसून पकड़ेगा रफ्तार। श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, 8 महीने में पूरा होगा निर्माण, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। भारतीय सेना ने तुलेल गुरेज में 4 पर्यटकों का रेस्क्यू किया, पानी में फंस गई थी सैलानियों की गाड़ी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: विमेंस नेशंस कप में भारत की बादशाहत देखने को मिली, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कीवियों को 2-0 से रौंद कर रचा इतिहास। नवदीप ने मैच के चौथे ही मिनट में एक जबरदस्त और दमदार स्ट्राइक के साथ गोल कर भारत को दिलाई 1-0 की बढ़त। मैच के 15वें मिनट में सुनीलिता टोपो ने किया कमाल, सुनीलिता टोपो ने किया गोल, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा भारत। महिला हॉकी इंडिया टीम पर पैसों की बरसात, हर खिलाड़ी के लिए 3 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान। भारतीय महिला टीम की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी, लिखा FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीतने पर महिला टीम को बधाई। इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान, शुभमन गिल कप्तान, श्रेयस को उप कप्तानी का जिम्मा। इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम इंडिया में विराट और रोहित को मिली जगह, जसप्रीत बुमराह की वापसी। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाएंगे 5 T20 और 3 वनडे मैचेस, 1 जुलाई से शुरू होगी T20 मैच। वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 11 बॉल में बनाया अर्धशतक। इंडिया ए और श्रीलंका ए के ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉल पर बनाए 94 रन, वैभव ने श्रीलंका के कौशल, विराट ने का तोड़ा रिकॉर्ड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां हुई तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अनंतनाग में सेना जम्मू पुलिस ने स्टेशन पर मॉक ड्रिल की, इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, IED विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने को लेकर तैयारी, आपसी तालमेल को भी परखा। अट्ठाईस अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का जारी किया डिजाइन, 8 महीने में रेलवे स्टेशन का काम शुरू होगा। सुंदरपुर में स्टेशन बनने से खाटू श्याम की दूरी 11 किलोमीटर होगी कम, देश भर के लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंचे एक्टर अनुपम खेर, साईं बाबा के दर्शन किए। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने अनुपम खेर को साईं की प्रतिमा देकर किया सम्मानित। अनुपम खेर ने कहा, बाबा के चरणों में कुछ पल बिताकर मन को एक अद्भुत शांति मिली। पौड़ी शहर के आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन भंडारे का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ लोगों ने देव निशानों का स्वागत किया, भक्तों ने लगाए जयकारे। मुजफ्फरपुर में नीट परीक्षा से पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर की पहल परीक्षार्थियों का ठंडे पानी और गुड़ चना से स्वागत किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर से परीक्षार्थियों के लिए विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया, गर्मी को देखते हुए की गई खास व्यवस्था। समंदर में देश की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज, भारतीय नौसेना को मिले 3 नए स्वदेशी युद्धपोत। INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधक नौसेना में शामिल, पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किए 3 युद्धपोत। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, INS दूनागिरी बनेगी नेवी की नई स्टेल्थ ताकत, INS अग्रे से पनडुब्बी रोधी क्षमता हुई मजबूत। INS संशोधक करेगा समुद्री सर्वेक्षण और मैपिंग, भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाई देंगे 3 युद्धपोत। हिंद महासागर में भारत की पकड़ होगी और मजबूत, GRSE ने INS दूनागिरी अग्रे और संशोधक का निर्माण किया है। यूपी के महोबा में सीएम योगी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमीरपुर में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अल्मोड़ा में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए सीएम धामी, लोगों को किया सम्मानित। ले पहुंचे ALG विनय कुमार सक्सेना, कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, जयपुर से दरभंगा के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। मुजफ्फरपुर के प्रत्युष बने SDM, फादर्स डे पर पिता को दिया BPSC में सफलता का तोहफा। सहरसा की श्वेता और शिवम ने 70वीं BPSC की परीक्षा में कमाल किया, श्वेता ने 541 रैंक जबकि शिवम 965 रैंक हासिल कर चुके हैं। यूपी के प्रतापगढ़ की श्रद्धा पांडे ने BPSC परीक्षा में टॉप किया, परिवार में खुशी की लहर। हैदराबाद की सड़कों पर चढ़ा फीफा का खुमार, गची बोवली फ्लाईओवर बना ओपन एयर फुटबॉल गैलरी। खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण केंद्र बना फुटबॉल गैलरी, पिलर्स पर दिखे दिग्गज खिलाड़ी। यश की टॉक्सिक की नई रिलीज डेट का ऐलान, 4 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, श्रद्धा कपूर की ईथा से होगी महाटक्कर। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में बॉलीवुड का जमावड़ा, रणबीर अमिताभ समेत कई सितारे शामिल। 325 करोड़ की फीस के साथ भारतीय सिनेमा का सबसे महंगा सितारा बने रणवीर सिंह, शाहरुख खान रजनीकांत को पीछे छोड़ा। फिल्मी हस्तियों ने भी दिया सेहत का संदेश, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने के साथ योगासन करते हुए नजर आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिल्पा शेट्टी ने योग किया, छोटे बच्चों को सिखाया योग। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कॉकटेल 2 का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, फिल्म ने 2 दिन में कमाई 30 करोड़। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने किया कॉकटेल टू का रिव्यू। फिल्म से इंप्रेस दिखी मीरा राजपूत। फिल्म में पति शाहिद ने निभाई है मुख्य भूमिका। हॉरर फिल्म 1920 को नए अंदाज में लाएंगे विक्रम भट्ट। फिल्म निर्माता आनंद पंडित ने जारी किया 1920 कोल्ड विंटर का फर्स्ट लुक पोस्टर। एक बार फिर खतरनाक किरदार में दिखेंगे राघव जुयाल। नानी की फिल्म द पैराडाइज में सामने आया राघव जुयाल का पहला लुक।
3: वेलकम टू जेडल जमा।
4: पता है कौन?
2: साल 2026 की सबसे सफल तमिल फिल्मों में से एक फिल्म ब्लास्ट ओटीटी पे कर देगी दस्तक। तो वहीं सिनेमा घरों में 4 गुना कमाई कर चुकी है फिल्म। दुनिया भर में मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम ने कोलकाता में किया योग। 30,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। देश भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय की ओर से 100 प्रमुख जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन। दुनिया भर में करीब 2500 जगहों पर भारत ने योग कार्यक्रम आयोजित। तो वहीं हेल्दी एजिंग इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पंजाब में योग किया। जालंधर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन नबीन। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने योगासन किया। कहा बेहतर जीवन के लिए व्यायाम आवश्यक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने योग किया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पर लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ योग किया। कहा स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा योग से स्वस्थ उत्तम रहता है। दिल्ली कैंटोनमेंट करियप्पा परेड ग्राउंड में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ धीरज सेठ ने योग किया। भारतीय सेना के जवान हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीआईएसएफ के जवानों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में योग। तो वहीं लोगों से योग करने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 14,200 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने योग किया। पैंगोंग झील के किनारे योग किया। लेह से आया अद्भुत नजारा। जर्मनी में भी योग का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सऊदी अरेबिया की भारतीय दूतावास पर भी योग का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या आप प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं? क्या बैंकिंग या कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या टेक्निकल क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू दिए जा रहे हैं? अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी मिलती कैसे है और अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के सरल उपाय क्या हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
7: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explorer, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
8: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
9: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अलग अलग मेटल्स के बारे में, अलग अलग धातुओं के बारे में, और ये जानेंगे कि अलग अलग धातुओं के प्रयोग से किसको किस तरह का लाभ होता है। सबसे पहले जिस धातु की बात करेंगे उसे कहते हैं सोना, स्वर्ण यानी गोल्ड। दुनिया की सारी धातुओं में सबसे ज्यादा ऊर्जावान एनर्जी वाली धातु है सोना। इस धातु का सीधा संबंध होता है बृहस्पति से और कुछ मात्रा में सूर्य से भी संबंध होता है। जब आप सोना धारण करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध, आपके स्वभाव पर और आपके प्रशासन करने की क्षमता पर ये असर डालता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन, मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लिए सोना धारण करना बहुत शुभ होता है। सामान्यतः कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए सोना बहुत शुभ प्रभाव नहीं देता है। अगली धातु है तांबा। तांबे का जो गुण है वो जल और अग्नि से मिला जुला है। आम तौर पर औषधीय धातु है, दवाई की तरह काम करती है और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन पर और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए तांबा बहुत ज्यादा अनुकूल होता है, खास तौर से मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को तांबा ज्यादा सूट करता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा धातु अनुकूल नहीं होती। मिथुन, कन्या और तुला वालों को तांबा पहनने से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आगे कुछ और धातुओं की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जिस धातु के बारे में बात करने जा रहे हैं वो धातु है लोहा, आयरन। क्या खूबियां हैं इसकी? सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ये धातु शनि देव की धातु है। शनि से लोहे का सीधा संबंध है। जब आप अपने जीवन में लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये रक्त प्रवाह पर, हड्डियों पर, बालों पर और कोशिकाओं पर सीधा असर डालता है। लोहा पहनने से या प्रयोग करने से ब्लड सर्कुलेशन और आपकी बाल, आपकी स्किन पर असर तुरंत पड़ जाता है। लोहा जो है ये मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है और सिंह राशि वालों के लिए लोहा सबसे ज्यादा निगेटिव है। सिंह राशि वालों को लोहे का प्रयोग जीवन में कम करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टील की।
स्टील जो है ये कंपाउंड धातु है, दो धातुओं से मिलकर एक नई धातु बनती है जिसका नाम है स्टील। इसके जो गुण हैं ये लोहे से काफी मिलते जुलते हैं, इसकी शक्तियां, इसका प्रभाव लोहे से काफी मिलता जुलता है। लेकिन जो स्टील है ये धातु राहु और केतु की धातु है। जब आप स्टील का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी जीवन में दुर्घटनाओं को रोकता है, कम्युनिकेशन को ठीक करता है, जीवन में पावर को, शक्ति को बढ़ा देता है। जिन जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, कम्युनिकेशन की, कान नाक गले की समस्या है, या बार बार उतार चढ़ाव होता है जीवन में, ऐसे लोगों को स्टील जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि स्टील धारण करने से आप जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। कुछ और धातुओं पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी जो धातु है उसका महत्व क्या है और उसका प्रयोग क्या है? देखिए, चांदी जो धातु है ये अत्यंत शीतल मानी जाती है और औषधीय प्रभाव के साथ होती है, औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। ये धातु शरीर में कफ को और जल तत्व को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। जब आप चांदी पहनते हैं आपका मन बेहतर होना, आपका मन बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों के लिए चांदी बहुत सूटेबल होती है, इनको बहुत फायदा पहुंचाती है। मेष, सिंह, धनु और मकर, इन राशि वालों के लिए ये धातु आम तौर पर बहुत अच्छी नहीं होती है। जिन लोगों को मन की परेशानियां ज्यादा रहती हैं, जो लोग मन में चिंताएं ज्यादा करते हैं, उन्हें चांदी की चेन या चांदी का एक छल्ला पहनना चाहिए, इससे उन्हें लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं पीतल की, ब्रास की। पीतल जो है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है और इसमें कुछ मात्रा में जल भी पाया जाता है। इस धातु का संबंध होता है सामान्यतः बृहस्पति और चंद्रमा के साथ। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इस धातु का असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु और मीन राशि के लिए पीतल पहनना बहुत अच्छा होता है। जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते वो सोने के स्थान पर पीतल का प्रयोग करते हैं और लगभग पीतल भी वैसे ही रिजल्ट जीवन में देता है जैसे रिजल्ट सोने से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये तो रहा 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप।
अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिले, बहुत सारा सम्मान आपको मिलता रहे, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और खाने पीने की वस्तुओं का नियमित रूप से दान करते जाइए, आपको लाभ होगा। भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ। 26 जून तक चलेगा मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। कश्मीर की गांधरबल में आज से शुरू हो रहा खीर भवानी मेला, सज धज कर मंदिर तैयार, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद, श्रद्धालुओं में उत्साह। कश्मीर की वादियों में कुदरत का श्वेत श्रृंगार, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट।

0: राहत, 23 जून से मॉनसून पकड़ेगा रफ्तार। श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान। सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, 8 महीने में पूरा होगा निर्माण। रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। भारतीय सेना ने तुलेल गुरेज में 4 पर्यटकों का रेस्क्यू किया। नाला पार करते हुए पानी में फंस गई थी सैलानियों की गाड़ी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: तो देखिए, एक अच्छी नौकरी पाने की चाहत हर किसी की होती है, कोई आईटी के क्षेत्र में, कोई इंजीनियरिंग, कोई मीडिया के क्षेत्र में, तो कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के क्या है सरल उपाय, उसके बारे में आज के कार्यक्रम में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
3: जी, अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में लगातार समस्या रहती हो, अगर पिता की सेहत अच्छी न रहती हो, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान की उपासना करिए, सूर्य देव को जल अर्पित करिए और हर रविवार को गेहूं के आटे का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को। अगर आप निरंतर ये उपाय करें तो आपके पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा।
2: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं नौकरी के लिए मुख्य रूप से कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी, वो कौन से ग्रह हैं जिसके वजह से किसी को नौकरी मिलती है और कौन से क्षेत्र में मिलती है, क्या वो भी कुंडली देखकर पता किया जा सकता है।
3: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने की स्थितियां क्या होती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को नौकरी दिलवाते हैं, कौन से ग्रह मुख्य रूप से नौकरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली हो दुनिया की, उसमें नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, और शनि के बाद नौकरी दिलवाने में जो भूमिका आती है वो आती है सूर्य, बुध, राहु और केतु की। कुंडली का जो छठवां भाव होता है ये नौकरी का होता है, नौकरी से संबंध रखता है, और 11वां भाव, 12वां भाव ये भी नौकरी में भूमिका निभाता है, कभी कभी दूसरे भाव की भूमिका भी होती है। नौकरी पाने का रास्ता क्या होगा, किस तरह की नौकरी करेंगे, इसके लिए कुंडली के 11वें और दूसरे भाव को देखना जरूरी है। जो नौकरी के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, टेक्निकल क्षेत्र, एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इनके अलग अलग ग्रह होते हैं, तो जिस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है उस क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है पहले ये समझना होगा, और उस महत्वपूर्ण ग्रह को मजबूत करके आप उस क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं। यानी जिस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है उसके ग्रहों को प्रबल करके, उसके ग्रहों को मजबूत करके आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है।
2: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
3: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
2: तो पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं।
3: जी देखिए, बहुत सारे लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं। कौन सा उपाय किया जाए जिससे प्रशासनिक सेवा में जाने में सफलता मिले। देखिए, प्रशासनिक सेवा के दो सबसे बड़े ग्रह होते हैं सूर्य और मंगल। इन दोनों की भूमिका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ज्यादा होती है। कभी कभी इनके अंदर चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है, यानी आपको प्रशासनिक नौकरी सूर्य, चंद्र और मंगल दिला सकते हैं। अगर आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलने में अड़चन आ रही है तो इस तरह की नौकरी के लिए सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य की उपासना शुभ रहेगी। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय ही एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय करें, ईमानदारी से मेहनत करें तो प्रशासनिक सेवा प्राप्त करने में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
2: तो देखिए, एडुकेशन के सेक्टर में भी बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, टीचर्स होते हैं, एडुकेटर्स होते हैं, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करने के लिए क्या कुछ करें, आइए पंडित जी से जानते हैं।
3: जी देखिए, बहुत सारे लोग एजुकेशन फील्ड में शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शिक्षा क्षेत्र की जो नौकरियां होती हैं या शिक्षा क्षेत्र का जो करियर होता है, उसमें भूमिका होती है गुरु, शुक्र और बुध की। अगर आप एजुकेशन फील्ड में सफलता चाहते हैं तो आपको गुरु, शुक्र और बुध की जरूरत पड़ेगी। इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करिएगा। नित्य प्रातः 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। और शिक्षा क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज अगर आप धारण करिए तो आपके लिए बेहतर होगा।
2: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
3: कर्क राशि, बेवजह का मेंटल डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, मानसिक अवसाद का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, आने वाला समय बहुत अच्छा है इसलिए बेहतर समय का इंतजार करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान की उन्नति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, काम का दबाव कम होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
2: तो चलिए, कार्यक्रम यूं ही आगे चलता रहेगा लेकिन फिलहाल समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं।
3: जी आज का पहला प्रश्न रूपाली ने हमें लिखा है और रूपाली हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1981। जन्म का समय शाम के 7:45। जन्म स्थान है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, मेल लिखती हैं कोलकाता से। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत रहता है, मैं अभी एजुकेशन सेक्टर में काम करती हूँ और नौकरी में सफलता नहीं मिलती, कोई तरक्की नहीं होती, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। रूपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने का प्रयास करिए। अगर आप नौकरी बदलने की कोशिश करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और नौकरी में बदलाव के बाद आप ज्यादा तरक्की करेंगी। वैसे कुल मिलाकर मार्च 2027 के बाद आपका जीवन बेहतर दिख रहा है। एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर अपने सवाल लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं
3: जी। अगला प्रश्न हेमंत जी ने हमें लिखा है और हेमंत जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1980, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है रेवाड़ी हरियाणा। हेमंत जी कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से टेक्निकल फील्ड में नौकरी

0: आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तकनीकी क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: जी, बहुत सारे लोग टेक्निकल फील्ड में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में टेक्नोलॉजी में नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, टेक्निकल फील्ड की जो नौकरियां होती हैं उस पर ज्यादा असर होता है शनि, मंगल और राहु का। टेक्निकल फील्ड की नौकरियों में शनि, मंगल और राहु की भूमिका होती है, और मुख्यतः अगर आप शनि को प्रबल करें, मुख्यतः अगर आप शनि को बेहतर करें तो टेक्निकल फील्ड में नौकरी पा सकेंगे। टेक्निकल फील्ड में नौकरी पाने के लिए शनि मंत्र का जप करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को धारण करिए और इसे हमेशा पहने रखिए। अगर ये उपाय लगभग 3 महीने तक आप करें तो टेक्निकल फील्ड में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपका नौकरी पाना आसान होगा।
1: तो देखिए, आजकल अमूमन लोग कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे में इस क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जी देखिए, आज के जमाने में कॉरपोरेट वर्ल्ड है और इसमें लोग कॉरपोरेट के सेक्टर में नौकरी करते हैं, मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, ऐसी नौकरी बिजनेस ग्रुप्स में करते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र में करते हैं। तो अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कॉरपोरेट सेक्टर की कोई भी नौकरी हो, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इसमें सफलता पाने का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बुध यानी मरकरी। कॉरपोरेट सेक्टर का जो मुख्य ग्रह है वो बुध है और कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बुध की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब कॉरपोरेट में बैंकिंग आ जाती है, फाइनेंस आ जाता है, तो इसमें बृहस्पति की भूमिका भी आ जाती है। अगर आप कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो एक पन्ना या एक पीला पुखराज ये आपको धारण करना चाहिए और नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अगर आप निरंतर ऐसा करें, कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी आसानी से पाएंगे और नौकरी आसानी से चलती रहेगी।
1: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें

0: तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यात्रा में सावधानी रखें, परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी कमिटमेंट मत करिएगा, कोई वादा करने से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो पंडित जी, अब सबसे जरूरी सवाल, वो लोग जो कि मीडिया के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को दूर से बहुत ग्लैमरस लगता है, बहुत फ्लैम्बॉयंट लगता है, खैर अगर इस क्षेत्र में कोई नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए क्या अचूक उपाय किए जा सकते हैं?
0: जी, बहुत सारे लोग मीडिया में नौकरी करना चाहते हैं, फिल्म की कंपनियों में, ग्लैमर वर्ल्ड में, कॉस्मेटिक्स आदि के फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मीडिया, फिल्म और ग्लैमर का जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से बुध और शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुध और शुक्र की भूमिका होती है। कभी कभी मीडिया वर्ल्ड में या ग्लैमर वर्ल्ड में बृहस्पति की भूमिका भी हो जाती है। अगर आप मीडिया में, फिल्म में, ग्लैमर वर्ल्ड में नौकरी चाहते हैं या सफलता चाहते हैं तो आपको शुक्र और बुध को मजबूत करना होगा। इसके लिए सलाह लेकर एक ओपल और साथ में एक पन्ना, ये दोनों धारण करिए और जितना संभव हो यथाशक्ति भगवान शिव की उपासना करिए, आपको लाभ होगा। मीडिया वर्ल्ड में दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक, जो लोग स्क्रीन पर दिखते हैं वहां शुक्र की भूमिका जरूर होती है या राहु केतु की होती है, और जो लोग लिखते हैं, जिनका लिखना बहुत अच्छा होता है, राइटिंग वाले पार्ट पे होते हैं, वहां होती है बुध की भूमिका। और जो लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बढ़िया काम करते हैं वहां बुध और गुरु, इन दोनों की भूमिका पाई जाती है।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: जी, मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं इसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न मोहन कुमार जी ने हमें लिखा है और मोहन कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 मई 1973। जन्म का समय है सुबह के 8:40। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। मोहन जी लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली में काफी समय से सेटल हो गया हूं और जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन मैं वापस जयपुर जाना चाहता हूं, अपने नेटिव प्लेस पर जाना चाहता हूं। क्या ऐसा करने का निर्णय मेरे लिए ठीक रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मोहन जी, देखिए, जयपुर से संबंध बनाए रखिए, आपका नेटिव प्लेस है, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जयपुर में जा करके सेटल होना आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। ऐसा करने का प्रयास मत करिए। दिल्ली में अच्छा भला जीवन चल रहा है, बेवजह झंझट पैदा मत करिए। जयपुर आते जाते रहिए, लोगों के संपर्क में बने रहिए, लेकिन दिल्ली में रहना आपके लिए हर लिहाज से बेहतर है। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी। अगला प्रश्न हमें अंजलि ने लिखा है और अंजलि हमें मुंबई से मेल लिखती है। 3 अक्टूबर 1989 का जन्म है। जन्म का समय है 9:21। जन्म स्थान है मुंबई। अंजलि कह रही हैं कि मेरी एक शादी हुई थी पहले और वो शादी टूट चुकी है, क्या मेरा दूसरा विवाह हो सकेगा? और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, तो क्या मेरा बच्चा भी उस विवाह में शामिल रहेगा, उसको मेरी दूसरी शादी में अडॉप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और मेरा भविष्य कैसा है? अंजलि देखिए, मैं आपको दूसरी शादी करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दूसरा विवाह भी इसमें सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं दूसरी शादी की सलाह नहीं दे सकता आपको। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई मित्रता, कोई कंपेनियनशिप आपके जीवन में रह सकती है, कोई मित्र आपके बन सकते हैं जो लंबे समय तक आपके साथ बने रहें। तो जब दूसरी शादी नहीं होगी तो बेटी के एडॉप्टेबिलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सिर्फ अपने करियर पे फोकस करिए और आने वाले समय में आप अच्छा काम कर पाएंगी, स्वयं का, बेटी का जीवन बढ़िया बना पाएंगी, जीवन में ज़्यादा मुश्किलें नहीं दिख रही हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: आप सभी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी और इस साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: देखिए, आज की जिज्ञासा है कि अगर कुंडली में सूर्य गड़बड़ है और सूर्य की वजह से जीवन में समस्या आ रही है तो किसकी पूजा करें? सूर्य के लिए दो तरीके से उपासना की जा सकती है। या तो सूर्य देव की ही पूजा करिए नियमों के साथ, या फिर ऐसी स्थिति में सूर्य की समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान शिव की उपासना करना उत्तम रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं शुभ पहर आखिर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होगी।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: जी, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह का दान करें और किस ग्रह का दान ना करें। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको शुक्र और बुध ग्रह की वस्तुओं का दान करना चाहिए, लेकिन मीन राशि वालों को चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह से संबंधित चीजों का दान नहीं करना चाहिए।
1: तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप नृत्य संगीत के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, संभव हो तो सूर्य देव के सामने बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए या जल चढ़ाने के बाद पूजा स्थान पर बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा। सफेद रंग के नटराज की मूर्ति ले आइए या सफेद रंग के नटराज का चित्र लगाइए, रोज सुबह शाम उनकी पूजा करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Fifty states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown!
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
3: Hot Mics with Billy Bush, streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: इंडियन नेवी को 3 स्वदेशी युद्धपोत मिल गए। पीएम मोदी ने कोलकाता से भारत के नए धुरंधरों को नौसेना को समर्पित किया। आईएनएस अग्रे, दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को सौंपा, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अब सिर्फ रक्षा खरीदार के तौर पर नहीं रहना चाहते, बल्कि भारत की पहचान डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर हो रही है।

0: भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के सीने पर शौर्य की एक नई और अमर इबारत लिख दी है। समंदर में भारत की ये वो त्रिशक्ति है जिसकी गूंज से दुश्मन देश कांप उठेंगे। लहरों को चीर कर रास्ता बनाना और समंदर की छाती पर तिरंगा लहराना, ये शौर्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नौसेना के जाबाजों के हिस्से आता है। और भारत की इसी ताकत को तीन गुना करने के लिए समंदर में उतरे हैं स्वदेशी तकनीक से बने तीन नए धुरंधर, जो पानी के ऊपर से लेकर पानी के पाताल तक दुश्मन की हर साजिश को भस्म करने का दम रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन तीन जहाजों को देश को समर्पित किया तो ये सिर्फ तीन जहाजों की कमीशनिंग नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के नक्शे पर भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। ये तीनों प्लेटफॉर्म भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अब एक एक कर आपको इन तीनों धुरंधरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार होने वाला पांचवा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो दुश्मन के नजरों से बचकर हमला करने में माहिर है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। दुश्मन का रडार इसे चाह कर भी ढूंढ नहीं सकता, लेकिन ये रडार के नीचे से निकल कर दुश्मन का खात्मा कर सकता है। ये हवा से लेकर पानी तक मौत बांटने में माहिर है।
1: दूनागिरी इज द फिफ्थ शिप इन द सीक्वेंस। सो व्हाई डू वी कॉल इट अ स्टेल्थ फ्रिगेट? वी कॉल इट अ स्टेल्थ फ्रिगेट बिकॉज इट हैज गॉट रिड्यूस्ड RCS, रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड वी हैव फीचर्स दैट मेक्स इट वेरी वेरी साइलेंट। So, in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced state-of-the-art early warning radars in all three dimensions, capable of carrying all types of helicopters, and that provides us the advantage of operating and meeting all missions of the Navy.
0: हिंद महासागर और तटीय इलाकों में पाकिस्तान और चीन की पनडुब्बियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए INS अग्रय को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। ये अर्नाला क्लास का चौथा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जो कम गहरे पानी में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए साक्षात यमराज से कम नहीं है। इसे हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और एडवांस्ड सोलर सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे ये तटों पर तैनात दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकता है।
2: इस शिप की स्पेशलिटी ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडरवाटर सेंसर्स लगे हैं, एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडरवाटर, उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज डिजाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन।
0: भारत की स्त्री शक्ति में INS संशोधक भी शामिल है, जिसका मकसद युद्ध लड़ना नहीं बल्कि समुद्र का सर्वे करना है। इसे तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन और डिफेंस सिविल यूज के लिए बनाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 110 मीटर और वजन तकरीबन 3,300 टन है। ये विशाल पोत ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और समुद्र तल की सटीक मैपिंग करने वाले सेंसरों से लैस है। ये अपने रडार से ऐसे नक्शे बनाता है जिससे दूसरे युद्धपोत सुरक्षित रास्ता तय कर सकें। ये HAL ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट भी कर सकता है।
1: This is basically a survey ship. So, primary role is to conduct a hydrographic survey and collect maritime data. So, as a secondary role, this ship can be converted into a hospital ship. So, various onboard spaces that we will convert it into wards and the operation theater. So, we have modern telemedicine facility which help in
3: real-time consultation with the specialist and super specialist, as well as we are equipped with a lab facility for routine blood and urine investigation, and we are also having the ultrasound machine. So we can treat the patient, we will stabilize him here during any emergency.
0: लेकिन INS संशोधक की एक और खासियत है, वो ये कि जरूरत पड़ने पर इसे युद्धपोत को एक अस्पताल में बदला जा सकता है। इसमें अल्ट्रासाउंड से लेकर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की सुविधा तक मौजूद है।
4: अभी मैं जिस जगह पे हूँ INS संशोधक में, मैं आपको इसके पहले बोल रही थी कि लैब टेस्ट भी होता है। ये देखिए, यहाँ पे ECG मशीन भी है और एकदम ECG मशीन के पास ही है, उल्टा साइड में है, ये USG मशीन। अगर किसी का ECG करने की जरूरत होता है, अगर किसी का USG करने की जरूरत पड़ती है, तो इधर इसके लिए भी सब कुछ है, सब कुछ फैसिलिटीज पे मिलता है INS संशोधक में।
0: ये तीनों जाबाज जहाज इस बात का सबूत हैं कि अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और देश का मोहताज नहीं है। इनका लोहा, इनका डिजाइन और इनकी तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास इस समय लगभग 140 से 145 सक्रिय वॉरशिप हैं, लेकिन नौसेना का मुख्य लक्ष्य साल 2030 तक अपने जहाजों की कुल संख्या को 150 से 160 तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: जून में पड़ रही तेज गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग इन दिनों पहाड़ों की वादियों का रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में इन दिनों जम्मू कश्मीर का मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप भी सैलानियों का शानदार ठिकाना बना हुआ है। वहां की खूबसूरत आबो हवा और मनमोहक माहौल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
6: धूप खिली है लेकिन मौसम सुहावना है, तो सैर सपाटे के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मशहूर हिल रिजॉर्ट पत्नी टॉप की है। यहाँ पर कई लोग हरी भरी धूप पर बैठकर सुस्ताते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के खेलों में हिस्सा लेकर अपना समय गुजार रहे हैं। खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के खेलों और एक्टिविटीज का इंतजाम है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए माहौल बेहद माकूल है। इसीलिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, ताकि छुट्टियां मजे में गुजार सके।
7: मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें समर वेकेशन पड़ी हैं। हम यहाँ पत्नी टॉप में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने फोटोज क्लिक किए, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग की, फुटबॉल खेला यहाँ पे, हमने बैडमिंटन खेला, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। जैसे हम कश्मीर में आते हैं, इतना अच्छा लगता है, वैसे हमें लगा। यहाँ पे ग्रीन पेड़ है, इतना हवा चल रही है ठंडी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया।
8: मेरा नाम आरुही संब्याल है और मैं सांबा से आई हूँ, और मेरी समर वेकेशन चल रही है, इसीलिए मैं इधर पटनी टॉप आई थी। मैंने जॉर्बिंग बॉल में राइड की, ट्रैम्पलिन पे जंप किया, हॉर्स राइडिंग की, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सीनरी बहुत अच्छी है।
9: उधमपुर से आया, समर वेकेशन की स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है, तो हम यहाँ पटनी टॉप में आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, और हमने बहुत मजे किए यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग की, बहुत खुशी है, बहुत मजा आया।
10: यहाँ पे बहुत अच्छा कूल वेदर है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बोटिंग की, जंपिंग की, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे मतलब की व्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे, बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी है।
6: पटनी टॉप का इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, तो यहाँ टूरिज्म के कारोबारों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों की आवाजाही बढ़ने से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है, तो इनके चेहरे भी खिले हैं।
11: मैं यहाँ पे पटनी टॉप में एडवेंचर का काम करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो शूटिंग है, हमारे पास आर्चर है, इवन की गॉगल्स भी ले सकते हो आप। और आज यहाँ पे बहुत चहल पहल है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है, वीकेंड पे आ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल सर, जरूर काम थोड़ा बहुत हिला है बड़ी देर के बाद, थोड़ा सा हम भी खुश हैं, क्योंकि हमारा रोजगार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की ओर, और पर्यटकों के आने से हमें भी खुशी हो रही है और सिस्टम सही चल रहा है।
6: पटनी टॉप में इन दिनों बर्फबारी नहीं हो रही, लिहाजा ना बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी की तपिश का एहसास हो रहा है। लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से लेकर दूर दूर तक से सैलानी यहाँ मनमोहक माहौल का मजा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ की वादियों में हरियाली की रौनक खास तौर से लोगों को लुभा रही है। बहुत से लोग यहाँ अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवा कर अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।
12: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
13: कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
14: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
15: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
21: प्रेजेंटेड बाय
20: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ। 26 जून तक चलेगा मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। कश्मीर के गांधरबल में आज से शुरू हो रहा खीर भवानी मेला, सज धज कर मंदिर तैयार, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद, श्रद्धालुओं में उत्साह। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा मानसून। कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश, गर्मी और उमस से राहत। 23 जून से मानसून पकड़ेगा रफ्तार। श्रद्धालु का खाटू श्याम दरबार जाने होगा आसान। सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, 8 महीने में पूरा होगा निर्माण, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। भारतीय सेना ने तलेल गुरेज में 4 पर्यटकों का रेस्क्यू किया, नाला पार करते हुए पानी में फंस गई थी सैलानियों की गाड़ी। ऑल इंग्लैंड क्लब से आखिरी वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद विंबलडन सिंगल्स मुकाबले में शानदार वापसी करेंगे 44 साल की सेरेना। 29 जून से होगा मुकाबला, 7 बार की विंबलडन सिंगल्स चैंपियन से चैंपियंस है सेरेना।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
5: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज की मॉर्निंग डोज को लेकर तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
12: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: कश्मीर का गांधरबल इन दिनों धार्मिक उत्सव मना रहा है, वहां बेहद प्रसिद्ध और खीर भवानी का मेला शुरू हो चुका है। देवी रागन्या कश्मीरी पंडितों की कुल देवी मानी जाती हैं और ऐसे में श्रद्धालु बड़ी तादाद में मंदिर दर्शन के लिए तुलमुला पहुंच रहे हैं। कैसी है वहां की रौनक दिखाएंगे आपको।
22: साथ ही असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में भी मेला लगा हुआ है। यहां पर हर साल अंबुबाची मेला लगता है जिनमें 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मेले के दौरान कपाट बंद रहने की परंपरा बेहद ही अनूठी है। अंबुबाची मेले और वहां की परंपरा के बारे में आगे करेंगे बात।
5: तो चलो कौशला मानसरोवर। जी हां, इस साल के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो चुकी है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हो चुका है। कितने दिन में ये जत्था दर्शन कर लौटेगा और कैसा है यात्रियों में उत्साह, इसकी झलक भी जल्द होगी आपके सामने।
22: तो देश में एक बार फिर से बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई है क्योंकि फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है। जी हां, इसी के साथ मुंबई को जिस बारिश का कई हफ्तों से इंतजार था उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मुंबई के कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश हुई। आगे कैसी रहेगी मॉनसून की चाल, इस पर होगी आगे बात।
5: साउथ के सुपरस्टार यश के फैंस को फाइनली गुड न्यूज मिल गई है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है। टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। यश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। फिल्म का नाम टॉक्सिक काफी अलग है, नाम की कहानी भी हम जानेंगे, मगर थोड़ा कीजिए इंतजार क्योंकि अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
22: गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। आज से 26 जून तक चलने वाले पूर्वोत्तर के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव में 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पूर्व के महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया जाता है।
5: पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और आपात स्थिति से निपटने के लिए अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर और उधमपुर सहित कई स्थानों पर जवानों द्वारा व्यापक मॉक ड्रिल की गई है। यात्रियों की चेकिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
22: पौड़ी शहर के आराध्य देवश्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और भंडारे का शुभारंभ हो चुका है। इस तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिली।
5: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाटू श्याम जी आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। उन्होंने सुंदरपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू कराने की घोषणा की। सुंदरपुर में रेलवे स्टेशन बनने से बाबा श्याम के भक्तों को सीधे रेल संपर्क का लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और यात्रा ज्यादा आसान होगी।
22: वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने शिरडी के साई बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस पल को अनुपम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने शिरडी में अपने अनुभव को भी शेयर कर लिखा है कि बहुत साल बाद मुझे शिरडी जाकर साई बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। बाबा के चरणों में कुछ समय बिताकर मेरे मन को बहुत शांति मिली।
5: फीफा वर्ल्ड कप के चलते हैदराबाद के गची बोवली फ्लाईओवर को फुटबॉल थीम की म्यूरल आर्ट से सजाया गया है, जहां फ्लाईओवर के कंक्रीट खंभों पर दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों के जीवंत एक्शन पोज बनाए गए हैं। ये ओपन एयर आर्ट गैलरी आईटी हब में आने जाने वाले लोगों और खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। वीकेंड पर यह जगह लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन चुकी है।
22: वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ ऑकलैंड में खेले गए बेहद ही रोमांचक खिताबी मुकाबले में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से शिकस्त दी है। शानदार और ऐतिहासिक कामयाबी के तुरंत बाद हॉकी इंडिया ने पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए बंपर प्राइज मनी की घोषणा कर दी है।
5: डुआनवू फेस्टिवल पर चाइना के ल्हासा में खास आयोजन किया गया, जहां पर रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस आयोजित की गई, जहां 3600 मीटर ऊंचाई पर ड्रैगन बोट रेस का रोमांच नजर आया। इस प्रतियोगिता में 20 टीमों ने याक लेदर बोट रेस में हिस्सा लिया।
22: वहीं पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने ग्लोबल सफर में एक और अहम मुकाम हासिल किया है। जी हां, दिलजीत के नाम पर लॉस एंजलिस में पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया गया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने संगीत और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व पर उनके शानदार असर को देखते हुए 6 जनवरी 2027 को आधिकारिक तौर पर दिलजीत दोसांझ डे घोषित किया है। यह सम्मान पंजाबी संगीत को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए है।

0: शुभ समाचार में सबसे पहले पेश है लोक संस्कृति का महोत्सव। पूर्व से पश्चिम तक उत्सव उमंग की बहार है। आज कश्मीर के गांदरबल में माता खीर भवानी मेला शुरू हो रहा है। ये कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है और खास बात यह है कि धर्म आस्था के इस मेले में कश्मीर की साझा संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। वहीं गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेले का शुभारंभ हो गया है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं।
1: वहीं इस साल की कैलाश मानसरोवर की यात्रा का भी श्री गणेश हो गया है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हो चुका है। करीब 7 दिनों की यात्रा के बाद ये जत्था 27 जून को कैलाश मानसरोवर पहुंचेगा। साथ ही गुलमर्ग में चल रही 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा के रंग भी हम आगे आपको दिखाएंगे।
0: पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चल रहे लोक संस्कृति महोत्सव की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: कश्मीर के गांदरबल में रौनक है। माता खीर भवानी का दरबार सज गया है। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडित अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस करने और पुरानी यादें ताजा करने लौट रहे हैं। माँ का दरबार उनके लिए वो ठिकाना है जहाँ उनकी वापसी की उम्मीद बाकी है।
1: हम लगभग हर साल जाते रहते हैं खीर भवानी तुलमुला के मेले पर, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना, माता से प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा के लिए अपने घरों को वापस जाएं, ऐसा वातावरण बनना चाहिए।
2: हम माता से मांगेंगे कि हम अपने घर जाएं। मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि श्रीनगर क्या है, कश्मीर क्या है। अच्छा, वो गए ही नहीं है कभी।
3: तो मन में कितनी प्रसन्नता है कि माता के दर्शन करने जा रहे
2: हैं। खुशी है कि हम अपने घर जाएं और माता रानी हमें फिर ले जाए अपने घर।
0: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जब माँ के दरबार की छटा अलग ही होती है। मौका उत्सव का है, महापर्व का है। देवी के दरबार में हाजिरी लगानी है, मुरादें मांगनी है, सुचल पड़े हैं चेहरों पर एक अलग ही रौनक है। गांदरबल के तुलमुल्ला गांव में मौजूद ये शक्ति स्थल हमेशा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। दुनिया भर से भक्त, खासतौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुँचते हैं। बरसों बाद इस मेले में आकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का मौका मिलता है। अपनी आराध्य देवी के दर पर सिर झुकाने का अवसर मिलता है। इसलिए कश्मीर से पलायन कर चुके पंडित खीर भवानी मेले को मिलन का मेला भी कहते हैं।
4: माता कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है। देश भर के या विश्व भर से कश्मीरी पंडित आ रहे हैं, काफी भव्य तरीके से पूजा कर रहे हैं और अति उत्साह का माहौल है। और हमारी यही कृपा है कि माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। कुशल मंगल तरीके से सारा मेले का इंतजाम हो चुका है और आगे भी भव्य तैयारी होगी।
0: माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं और श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। इस बार भी जम्मू से करीब 8,500 तीर्थ यात्रियों को लेकर 214 बसें कश्मीर के अलग अलग तीर्थ स्थलों के लिए रवाना की गई। माता खीर भवानी का मुख्य मंदिर कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित है। हर साल जम्मू, दिल्ली, एनसीआर और दूसरी जगहों पर रहने वाले हजारों विस्थापित कश्मीरी पंडित ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी के मौके पर माता खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने कश्मीर घाटी आते हैं। इस दिन को माता रागन्या देवी, जिन्हें माँ खीर भवानी भी कहा जाता है, की प्रादुर्भाव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जम्मू से सुनील जे भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो देखिए, गुड न्यूज तो ये भी है कि इस साल की कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। शनिवार को तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हुआ। करीब 7 दिनों की यात्रा के बाद ये जत्था 27 जून को कैलाश मानसरोवर पहुंचेगा और इस दिन सभी तीर्थयात्री मानसरोवर झील की पवित्र परिक्रमा पूरी करेंगे। तो वहीं इस साल 1000 तीर्थयात्रियों का कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चयन किया गया है। उत्तराखंड के लिपु लेक से भी तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पहुंच रहे हैं।

0: हर हर महादेव के जय घोष के साथ शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। आस्था के सबसे मुश्किल मार्ग पर निकल पड़े शिव भक्त। समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर प्रस्थान कर गए। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं, साथ में अधिकारी हैं।
1: विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है। और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूँ।
0: तीर्थ यात्रियों ने 11 जून को नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की थी और 15 जून को गंगटोक पहुंचे थे। 16 जून से वे नाथुला के पास मौजूद हंगू झील एक्लिमेटाइजेशन सेंटर में ऊंचाई वाली इस यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। यात्रा के लिए प्रस्थान करने के दिन शनिवार की सुबह नाथुला दर्रे पर आस्था और भक्ति का अद्भुत माहौल छाया हुआ था। हर किसी के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही थी। वर्षों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर

0: हमारा काम यात्रियों को सिक्योरिटी प्रदान करना और साथ ही साथ मेडिकल कवर देना होता है। तो बाकी साल की तरह भी इस साल भी हम लोगों ने उसी ढंग का अरेंजमेंट किया है।
1: कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में सबसे अंतिम सर्वोच्च और महातीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव परिवार के साथ निवास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब आपको अयोध्या से आई खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ फूलों की छतरी से सजा अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर भक्तों को आकर्षित कर रहा है। बढ़ते तापमान के बीच यहाँ पंचमुखी मंदिर की शानदार फूलों से सजावट की गई है।
3: फूलों से सजा मंडप भक्तों को आस्था भक्ति की अद्भुत शीतलता का अनुभव करा रहा है और रामनगरी में श्रद्धालु श्री राम के आराध्य महादेव के दिव्य दर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही अयोध्या मंदिर में मौसमी उत्सव भी दिखाई दे रहा है।
2: यहाँ मंदिर को आम की थीम पर सजाया गया है। यहाँ दूल्हा सरकार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस विशेष श्रृंगार में भगवान राम को राजकुमार और दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। जाहिर है इस अनूठी सजावट ने अयोध्या में आस्था और भक्ति के उत्सव में उमंग और उत्साह भर दिया है।
3: अब आपको नॉर्थ ईस्ट में उत्सव के अद्भुत रंग दिखाते हैं। गुवाहाटी के विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ हो गया है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस वार्षिक मेले के दौरान मां कामाख्या अपने मासिक धर्म यानी कि रजस्वला से गुजरती है
2: और यही वजह है कि इस दौरान देवी मां को पूरा आराम दिया जाता है और मंदिर के मुख्य कपाट 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में मंदिर परिसर में किसी तरह की कोई पूजा अर्चना आरती या अन्य कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं। चौथे दिन खास शुद्धिकरण अनुष्ठान करने के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। आज से शुरू हुआ अंबुबाची मेला 26 जून तक चलेगा।

0: गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में आज से श्रद्धा का मेला। शक्ति की प्रतीक मां कामाख्या के मंदिर में आज से महोत्सव। आज से शुरू हो रहा है पूर्व का महाकुंभ अंबुबाची मेला। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और दिव्य शक्तिपीठ है जो रहस्यों का भंडार और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में आज से नारी शक्ति के उस उत्सव का आरंभ हो रहा है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। आज से कामाख्या धाम में अंबुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। अंबुवाची मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है जहां हजारों साधु नागा बाबा भक्त आते हैं और 3 से 5 दिनों तक नीलांचल की पहाड़ियों पर रहते हैं। सिर्फ साधु संत ही नहीं, यहाँ पर देश विदेश से भक्त भी माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं।
1: मैं मॉरिशस देश से यहाँ हर साल आता हूँ ये अंबुबाची मेला में, और उनके आशीर्वाद पाकर हम बहुत आगे बढ़े हुए। जय माँ कामाख्या।
0: मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून यानी आज की रात 9:08:42 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ माँ कामाख्या के वार्षिक राजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजा कर सकेंगे।
2: जून में रात में आपको

0: 9 बजकर 8 मिनट 42 सेकेंड इसमें आरंभ होगा, और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है, वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद हम मंदिर भक्त के लिए खोल लेंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुबासी महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ शरण जाने के बाद जो आद्र नक्षत्र का पहला शरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो शरण को महायोग बोलता है, अम्बुबासी महायोग, और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
1: असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्ति पीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्ति पीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी शती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यहीं छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भ द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहां देवी रजस्वला होती हैं। इस दौरान गर्भगृह में 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है। अम्बुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्व काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में मां को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अम्बुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी का पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। कामाख्या मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है कि मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे जल्द आ रही फिल्म टॉक्सिक की।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 26 जून तक चलेगा मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। कश्मीर के गांधरबल में आज से शुरू हो रहा खीर भवानी मेला, सज धज कर मंदिर तैयार, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद, श्रद्धालुओं में उत्साह। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा मॉनसून, कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश, गर्मी और उमस से राहत, 23 जून से मॉनसून पकड़ेगा रफ्तार। श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, 8 महीने में पूरा होगा निर्माण, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। भारतीय सेना ने तुलेल गुरेज में 4 पर्यटकों का किया रेस्क्यू, नाला पार करते हुए पानी में फंस गई थी सैलानियों की गाड़ी। ऑल इंग्लैंड क्लब से आखिरी वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद विंबलडन सिंगल्स मुकाबले में शानदार वापसी करेंगी 44 साल की सेरेना विलियम, 29 जून से होगा मुकाबला।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: ब्रेक बाद बहुत स्वागत है आपका शुभ समाचार में। सबसे पहले बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार यश के फैंस को फाइनली गुड न्यूज मिल गई है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो चुका है। दरअसल यश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी थी,
14: लेकिन अब लंबे वीकेंड के साथ अगस्त के महीने में इसे रिलीज करने का मास्टर स्ट्रोक मेकर्स ने चल दिया है।
15: तो फाइनली राया ने ऐलान कर दिया है टॉक्सिक की रिलीज डेट पर पड़ा सस्पेंस अब ओवर हो चुका है। अब से तकरीबन 2 महीने बाद साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है।
16: छोड़ दो,
15: यश ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर के साथ रिलीज डेट अनाउंस की है। पोस्टर में तारीख लिखी है 26 अगस्त 2026, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक 11 दिन बाद ये एक्शन थ्रिलर मूवी सिनेमा घरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। टॉक्सिक की रिलीज डेट को लेकर सस्पेंस की बात इसलिए की जा रही थी कि अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी है। पहले ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट की वजह से फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। बाद में रिलीज डेट 4 जून तय की गई, लेकिन तब भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, जिसके बाद इसकी रिलीज डेट पर सस्पेंस गहराने लगा। लेकिन अब मेकर्स ने टॉक्सिक की रिलीज डेट 26 अगस्त फाइनल कर दी है। 26 अगस्त को बुधवार है, यानी हफ्ते के बीच का दिन, जबकि ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। दरअसल मेकर्स ने इस तारीख का ऐलान काफी सोच समझ कर किया है। छब्बीस अगस्त को ओणम का त्योहार है, 28 अगस्त को वर महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाएगा और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का भी त्योहार है, मतलब बुधवार से लेकर रविवार तक छुट्टियां ही छुट्टियां। टॉक्सिक को एक लंबा वीकेंड मिल रहा है, जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे सकता है। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है, जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। इस एक्शन थ्रिलर में यश राया और रूमी के दमदार और इंटेंस अवतार में दिखाई देंगे। फिल्म में यश के साथ 5 हीरोइन हैं, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी, यानी बॉलीवुड और साउथ का पूरा संगम है। करीब 500 करोड़ के मेगा बजट में बनी टॉक्सिक को पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल अपील है। टॉक्सिक की शूटिंग एक साथ 2 मूल भाषाओं कन्नड़ और अंग्रेजी में की गई है, साथ ही इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान छू लिया है। जी हां, अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया है।
14: लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा की है और इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजल्स में पब्लिक हॉलीडे रखा जाएगा। लॉस एंजल्स द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया ये सबसे बड़ा सम्मान है।
17: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है, उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। सात समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
18: So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
19: My day?
18: Your own day in the city of Los Angeles.
19: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
17: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
19: Thank you so much. My day in LA. ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮੈਂ LA ਨੂੰ।
17: अब लॉस एंजलिस में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजलिस ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजलिस ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपनी ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
20: जिन्ना मर्जी सानू रोक लो, जिन्नियां मर्जी साडियां लत्तां खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे खिट्टियां नू चिंबड़ी चलो, पंजाबी आरा।
17: लॉस एंजलिस में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 के क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थीं। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजलिस में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय ऑरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात करते हैं बॉस बेबी वैभव सूर्यवंशी की, जिनके नाम पर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर ली है।
14: इसके साथ ही वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का ये सबसे तेज अर्धशतक है। हालांकि वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 रन बनाकर लौटे। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके लगाए। वैभव ने अपनी तूफानी पारी से 324.14 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी के इस नए कीर्तिमान के बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी उनके मुरीद हो गए हैं। दरअसल आनंद महिंद्रा ने वैभव की पारी को लेकर ट्विटर पर उनका एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 11 गेंदों पर अर्धशतक, ये अविश्वसनीय है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं। इससे पिछले मैच में मैदान पर हुई झड़प के बाद वैभव इस मैच में दबाव के साथ मैदान पर उतर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। प्रतिभा एक उपहार है, लेकिन टेम्परमेंट एक विकल्प या चुनाव। ये टेम्परमेंट ही है जो वैभव को एक स्टार बनाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी में आस्था भक्ति की महक बिखरी हुई है। दरअसल यहां पर श्री कंडोलिया ठाकुर के सालाना पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं।

0: पौड़ी गढ़वाल की सांस्कृतिक पहचान और आस्था के प्रतीक हैं भगवान श्री कंडोलिया ठाकुर। पौड़ी शहर के आराध्य देव कंडोलिया ठाकुर का सालाना उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। खास बात यह है कि पौड़ी के लोग जो देश के विभिन्न शहरों में रहते हैं, इस खास अवसर पर पौड़ी पहुंचकर कंडोलिया भगवान का आशीर्वाद लेने से नहीं चूकते। श्रद्धालुओं का मानना है कि कंडोलिया ठाकुर पौड़ी वासियों के सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, इसलिए इस वार्षिक पूजन में शामिल होना उनकी आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खास आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी जाती है। मंदिर परिसर की साफ सफाई से लेकर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और भंडारे की तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि इस खास अवसर पर 80,000 से 1,00,000 लोग पूरी श्रद्धा से यहां आते हैं, इसलिए खास व्यवस्था भी की जाती है।
1: मार्च के लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट में हम लोग इसके लिए मीटिंग शुरू करने लगते हैं। प्रॉपरली हम मई से एक हर हफ्ते संडे के दिन इसके लिए बैठते हैं, रूपरेखाएं तैयार होती हैं, समितियां बनाई जाती हैं, भाई आपने किसी को सिलेंडर की, किसी को राशन की, किसी को बाजार से व्यवस्था करनी है, मार्केट घूमना है, कलेक्शन करना है, इस टाइप की हम व्यवस्था तैयारी प्रॉपर शुरू से कर लेते हैं।
0: हालांकि शुक्रवार यानी 19 जून से श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और भंडारे का शुभारंभ हो गया है और आज इसका समापन होना है, लेकिन भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर साल यहां भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
2: ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसका आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि वन क्षेत्र है, यहाँ पर एक दिक्कत ये भी होती है कि सारी व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल होता है, सारी चीजें लेके आनी पड़ती है और फिर वापस भी देनी पड़ती है।
0: उत्तराखंड के पौड़ी शहर का कंडोलिया मंदिर आस्था और धार्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है और इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं।
3: काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी, तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहां पर स्थापित किया गया। तो ये डुंगरियाल नेगी की जो जाति के लोग हैं वो इसके पुजारी होते हैं, वो इसके उन्हीं के संरक्षण में ये यहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी, क्योंकि ये क्षेत्रपाल भूमिया देव के रूप में स्थापित है। तो जिस ढंग से वो गांव नगर की तरफ बढ़ा, गांव से नगर हुआ, नगर से आज इतना बड़ा बड़ी आबादी है, तो उसी हिसाब से श्रद्धालुओं की भक्तों की संख्या बढ़ी है। तो मूलतः इसे हम जो कहा मतलब कथा कही जाती है, जो कुमाऊं में गोलू हैं, गोलू देवता गोलजू कहते हैं, जैसे चितई में चंपावत में है, घोड़ाखाल में है, तो उन्हीं उसी में से ये उसी का रूप है, मतलब वही देवता है। तो यहाँ पर हमने कंडोलिया कहते हैं, वो कंडोलिया से नाम पड़ गया कि क्योंकि उन्हें उस समय कंडी में लाया गया।
0: श्रद्धा सेवा और सामुदायिक सहयोग का ये अनूठा संगम हर वर्ष पौड़ी की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है और पौड़ी गढ़वाल के लोगों की भगवान कंडोलिया ठाकुर के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। पूरी दुनिया में फुटबॉल की दीवानगी देखी जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फुटबॉल थीम पर बनी खास बेकरी की डिमांड है। यहां सुनहरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, सॉकर बॉल और टीम के मैस्कॉट के आकार की कोंचास यानी कि बेकरी का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। और लॉस एंजलिस में लाखों मैक्सिकन मूल के लोग रहते हैं, जाहिर है इस शहर में मैक्सिको टीम को जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कोंचास मेक्सिको की एक मीठी ब्रेड है जिसे अक्सर हॉट चॉकलेट या कॉफी के साथ खाया जाता है। ये इस इलाके में मेक्सिकन और आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि लोग अपनी पसंदीदा टीम के रंगों वाली ब्रेड खाकर अपना समर्थन जाहिर करते हैं। तो वहीं टाइम स्क्वायर पर नॉर्वे के फैंस का जबरदस्त सेलिब्रेशन सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यहां पर नॉर्वे के फैंस ने चमकीले लाल रंग की नॉर्वे की शर्ट पहने फैंस अपने खास अंदाज में वाइकिंग रो के साथ पूरे शहर में धूम मचाते नजर आए। यहां अंदाज तब वायरल हुआ था जब पिछले हफ्ते बोस्टन में नॉर्वे और इराक के बीच वर्ल्ड कप की शुरुआती मैच से पहले फैंस ने इसे किया था और फैंस इससे इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यहां तक कि स्टेडियम की एस्केलेटर पर भी करते हुए नजर आते हैं। भक्तों के इंस्टा स्टोरी का अब आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो कि अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने से पीछे नहीं है। देखिए रवीना टंडन की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: अगर कोई लड़का आपको लाइक कर रहा है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो, ये सबको लाइक करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है।
6: सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने, हमें क्या।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: कौन सी धातु का प्रयोग करने से त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है? किस धातु का प्रयोग करने से शरीर में ताकत और मजबूती आती है? और कौन सी धातु का प्रयोग करने से मानसिक और भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं? जानिए मेरे साथ अलग अलग धातुओं के लाभ और उनके चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: 50 states, 1 national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
10: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
11: How they looked after game one.
12: I mean, they were frustrated.
10: The Daily.
13: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
10: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
14: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
19: गांधरबल में धूमधाम से चल रहा है खीर भवानी मेला, मंदिर का किया गया विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 26 जून तक चलेगा मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। मुंबई में मॉनसून सीजन की पहली बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, कई इलाकों में भरा पानी, 23 जून से फिर से मॉनसून पकड़ेगा रफ्तार। श्रद्धालुओं को खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, 8 महीने में पूरा होगा निर्माण, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। आखिरी वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद विंबलडन सिंगल्स मुकाबले में शानदार वापसी करेंगी 44 साल की सेरेना विलियम, 29 जून से महामुकाबला, 7 बार की विंबलडन सिंगल्स चैंपियन है सेरेना।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अलग अलग मेटल्स के बारे में, अलग अलग धातुओं के बारे में, और ये जानेंगे कि अलग अलग धातुओं के प्रयोग से किसको किस तरह का लाभ होता है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस धातु की बात करेंगे उसे कहते हैं सोना, स्वर्ण यानी गोल्ड। दुनिया की सारी धातुओं में सबसे ज्यादा ऊर्जावान एनर्जी वाली धातु है सोना। इस धातु का सीधा संबंध होता है बृहस्पति से, और कुछ मात्रा में सूर्य से भी संबंध होता है। जब आप सोना धारण करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध, आपके स्वभाव पर और आपके प्रशासन करने की क्षमता पर ये असर डालता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन, मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लिए सोना धारण करना बहुत शुभ होता है। सामान्यतः कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए सोना बहुत शुभ प्रभाव नहीं देता है। अगली धातु है तांबा। तांबे का जो गुण है वो जल और अग्नि से मिला जुला है। आम तौर पर औषधीय धातु है, दवाई की तरह काम करती है, और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन पर और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए तांबा बहुत ज्यादा अनुकूल होता है, खास तौर से मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को तांबा ज्यादा सूट करता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा धातु अनुकूल नहीं होती। मिथुन, कन्या और तुला वालों को तांबा पहनने से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आगे कुछ और धातुओं की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं।
1: रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बेवजह का मेंटल डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, मानसिक अवसाद का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। आने वाला समय बहुत अच्छा है, इसलिए बेहतर समय का इंतजार करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जिस धातु के बारे में बात करने जा रहे हैं वो धातु है लोहा, आयरन। क्या खूबियां हैं इसकी? सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ये धातु शनि देव की धातु है। शनि से लोहे का सीधा संबंध है। जब आप अपने जीवन में लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये रक्त प्रवाह पर, हड्डियों पर, बालों पर और कोशिकाओं पर सीधा असर डालता है। लोहा पहनने से या प्रयोग करने से ब्लड सर्कुलेशन और आपकी बाल, आपकी स्किन पर असर तुरंत पड़ जाता है। लोहा जो है ये मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है, और सिंह राशि वालों के लिए लोहा सबसे ज्यादा निगेटिव है। सिंह राशि वालों को लोहे का प्रयोग जीवन में कम करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टील की। स्टील जो है ये कंपाउंड धातु है। दो धातुओं से मिलकर एक नई धातु बनती है जिसका नाम है स्टील। इसके जो गुण हैं ये लोहे से काफी मिलते जुलते हैं। इसकी शक्तियां, इसका प्रभाव लोहे से काफी मिलता जुलता है। लेकिन जो स्टील है ये धातु राहु और केतु की धातु है। जब आप स्टील का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी जीवन में दुर्घटनाओं को रोकता है, कम्युनिकेशन को ठीक करता है, जीवन में पावर को, शक्ति को बढ़ा देता है। जिन जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, कम्युनिकेशन की, कान नाक गले की समस्या है या बार बार उतार चढ़ाव होता है जीवन में, ऐसे लोगों को स्टील जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि स्टील धारण करने से आप जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। कुछ और धातुओं पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संतान की उन्नति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, काम का दबाव कम होगा, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, यात्रा में सावधानी रखें, परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी कमिटमेंट मत करिएगा, कोई वादा करने से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी जो धातु है उसका महत्व क्या है और उसका प्रयोग क्या है? देखिए, चांदी जो धातु है ये अत्यंत शीतल मानी जाती है और औषधीय प्रभाव के साथ होती है। औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। ये धातु शरीर में कफ को और जल तत्व को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। जब आप चांदी पहनते हैं, आपका मन बेहतर होना, आपका मन बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों के लिए चांदी बहुत सूटेबल होती है, इनको बहुत फायदा पहुंचाती है। मेष, सिंह, धनु और मकर, इन राशि वालों के लिए ये धातु आम तौर पर बहुत अच्छी नहीं होती है। जिन लोगों को मन की परेशानियां ज्यादा रहती हैं, जो लोग मन में चिंताएं ज्यादा करते हैं, उन्हें चांदी की चेन या चांदी का एक छल्ला पहनना चाहिए, इससे उन्हें लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं पीतल की, ब्रास की। पीतल जो है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है और इसमें कुछ मात्रा में जल भी पाया जाता है। इस धातु का संबंध होता है सामान्यतः बृहस्पति और चंद्रमा के साथ। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इस धातु का असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु और मीन राशि के लिए पीतल पहनना बहुत अच्छा होता है। जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सोने के स्थान पर पीतल का प्रयोग करते हैं और लगभग पीतल भी वैसे ही रिजल्ट जीवन में देता है जैसे रिजल्ट सोने से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
2: धनु राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है,
1: लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो ये तो रहा 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिले, बहुत सारा सम्मान आपको मिलता रहे, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और खाने पीने की वस्तुओं का नियमित रूप से दान करते जाइए, आपको लाभ होगा। भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

अद्भुत हैं हमारे महादेव, इनकी लीला का क्या कहना। इसलिए भैया महाकालेश्वर हम गए इसलिए ये कथा नहीं बताई। भागवत कथा में भी भोले बाबा का बड़ा महत्व है। हाँ, क्या महत्व है? भागवत कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज इन्हीं का ही रूप है। बोलो हर हर महादेव। जब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा, जाओ हम तुम्हारे घर पर संतति रूप में आवेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करेंगे। कल जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कल की कथा में रचना हो गई तो श्री व्यास जी के मन में विचार आया, अब इसका प्रचार कौन करेगा। देखो भैया, बनाना सरल है पर दुनिया तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, जरा और जोर से बोलो। भैया वेद व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। सुखदेव जी कौन है? आहा, एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, पार्वती जी सामने, पर भोले बाबा तो ध्यान में मगन। नारद जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? नारद जी। नारद जी पार्वती जी को उकसाते हुए बोले, मैया आप तो भोले बाबा को बहुत मानती हो, भोले बाबा भी आपको मानते हैं, पर तुम्हें भोले बाबा के सभी राजों का रहस्यों का पता नहीं होगा। पार्वती जी बोली, नारद जी हम तुम्हें जानते हैं, एक दूसरे में लड़ाई फंसा कर मजा लेने का तुम्हारा पुराना काम है, हम तुम्हें जानते हैं, हमें बातें मत बनाओ। नारद जी बोले, मैया हम बातें ना बना रहे, सच सच बतावे। भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं तुम्हें पता है वो किसकी है? पार्वती जी बोली, हमें पता नहीं है। नारद जी बोले, तुम्हें तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि भस्म किसकी रमाए। पार्वती जी बोली, ये भी हमें पता नहीं है। तो नारद जी बोले, महाराज मैया फिर तो एक और बात तुम्हें पता नहीं होगी। बोले क्या? बोले इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। पार्वती जी बोले, हाँ। नारद जी बोले, तो? पार्वती जी बोले, बता वो कहाँ रहती हमारी सौतन। नारद जी बोले, अब हमें उसका ठिकाना तो पता नहीं है, भोले ही बाबा से पूछो, अपन तो जय चले श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती जी के दिमाग में वही बात घूमे, और कोई भी भाई धर्म पत्नी कोई भी हो, सौतन की बात आ जाए आग लग जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, चाहे कोई मजाक में भी कह दे आग लग जावे। बोलो जय हनुमान जी की। पार्वती जी बैठी कि अब जागने दो भोले बाबा को, अभी मजा लेते हैं। अब भोले बाबा जागे समाधि से, राम राम राम राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। पार्वती जी बोली, हमारी सौतन से करो सीता राम, हमसे मत करो। भोले बाबा बोले, क्या बात है देवी जी, आज तो उठते ही ना प्रणाम ना आरती ना वंदन, सीधा सा उल्टा सीधा प्रवचन मंगलाचरण हो रहा है, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हमें बात ही नहीं करनी, जब तुम पहले ही शादी कर चुके तो हमें बताया क्यों नहीं आज तक। भोले बाबा ने कहा, ये कौन सी खाज फंस गई। भोले बाबा बोले, देवी जी एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे? पार्वती जी धीरे से हिला के बोली, हाँ आए तो थे। शंकर जी बोले, तब तो कुशल है, बातों से काम चल रहा, ये जहां भी जाते हैं सीधा लट्ठी उठवा देते हैं। बोलो जय हनुमान जी की। क्या हो गया, आप क्यों नाराज बैठी हो? पार्वती जी बोली, महाराज हमने सुना आपकी पहले शादी हो चुकी। भोले बाबा बोले, सही बात है। पार्वती जी बोली, महाराज अब बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ ये मुंड किसके हैं, ये जो मुंडों की माला है ये किसकी खोपड़ियां हैं। शंकर जी बोले, बताएंगे।

और कोई प्रश्न? हाँ महाराज, ये जो भस्म है ये किसकी है? अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को बैठाया सामने। बैठो देवी जी, आपने सही सुना, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ महाराज? मुस्कुराते हुए त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव बोले, देवी हमारा विवाह किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। पूर्व जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में तुम पार्वती बन गई हो। अच्छा महाराज, हमारा ये मुंडों की माला किसकी है? बोले बाबा, बोले ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज? हाँ, जितने मुंडे हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं। पार्वती जी बोली, महाराज रुकियो रुकियो रुकियो रुकियो रुकियो, केवल हम ही भर गए, आप एक भी बार गायब नहीं भय? क्या हम ही भर गए, आप एक भी बार नहीं गए? बोले बाबा, बोले देवी जी, हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो फिर अमर अमर हो जाता, मरता नहीं है। पार्वती जी बोली, महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंगबली। अच्छा, पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है? बोले बाबा, बोले दो लोगों की। कौन कौन की? एक, बोले जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारा देह, तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं, और दूसरा राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा, बोले वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है। महाराज पिलाओ, अभी बर्तन ला रहे हम। नहीं नहीं नहीं नहीं, बर्तन से नहीं पिलाई जाती, फिर कानों से पीना पड़ता है। अच्छा महाराज, कानों से कौन सी बूटी? अरे भैया, बोले बाबा, बोले देवी जी, वो कोई और बूटी नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा भैया, वह मौत से परे हो जाएगा, मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया, वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई,

कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या। कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना कुंभकर्ण जैसे, ऐसा लगता है। हाँ बोले क्यों, बोले

साथ रहते उन्हें लगने लगता अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या। एक काम करो, इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ, सबसे ज्यादा बुरा ना मानना, इंदौर के पागलों तन से पूजा कर रहे आज के डेट में लोग तन

आजकल तन से पूजा कर रहे और मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है। अबे कहते गुरु जी कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा है। भाई तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी, बोलो जय बजरंग बली की। उपाय क्या है? मन से पूजा कर

0: अच्छा ये दशरथ क्या है? दशरथ, दस रथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, दस रथ हैं और दस रथों के ऊपर बैठा है मन, जो अपनी दसों इंद्रियों के ऊपर रूपी मन से बोलता है राम राम, उसी को एक बार के राम कहने में ही करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम, अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई, अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गईं, तो जो तोते का बच्चा ऊपर बैठा था उसके कानों में अमर कथा गई तो चेतनाएं आ गई, और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गई तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज, बढ़िया कह दई, ओ हो हो, हाँ जय हो, ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही, बोलो जय बजरंग बली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो वे, घर से पिट करके आए हो अपनी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ, तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में तीन घंटा कम से कम बच तो जाते। हमका मतलब है? बोले घर में रहो सो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरु जी। बताइए, बाद में पता लगा वो भी मूसा खेड़ी का था। बोलो सीताराम,
1: सीताराम।
0: तो भोले बाबा ने कथा सुनाई, वह सुख यानी तो तोता बीच बीच में जब

0: पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काव देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया? तो जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी, जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? आहा हा, जब भोले बाबा ने धरी ध्यान, देखो भोले बाबा जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करण हेतु शिव दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे, तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी, इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेदव व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी, धान। उसी समय उनको जमुहाई आई और जैसे ही जमुहाई आई, वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेदव व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेदव व्यास जी से बोले, हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेदव व्यास जी बोले, महाराज आपका कौन शत्रु? भोले बाबा बोले, एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। तो वेदव व्यास जी बोले, महाराज जी कौन सी कथा? अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेदव व्यास जी बोले, बाबा अब उसका करोगे क्या? भोले बाबा बोले, त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेदव व्यास जी बोले, लो तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है, वो कभी मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा। तब भोले बाबा को याद आया, अरे राम राम राम राम राम राम राम राम, अब तो भैया हम जे चले, भोले बाबा चले गए। 12 वर्ष तक रहे माता जी की कोख में। 12 वर्ष बाद वेदव व्यास जी ने कहा, भैया जो भी हो सो बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे, तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पड़वा दोगे, हमें प्रपंच में पड़ना नहीं। वेदव व्यास जी बोले, चिंता मत करो, हमको मोह नहीं सताएगा, तुम बाहर आओ। बोलो जय बजरंग बली। अब 12 वर्ष बाद जब वेदव व्यास जी की धर्म पत्नी के कोख से वह प्रकट भय तो कोई और नहीं, भागवत की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की
1: जय हो।
0: अब भैया जैसे ही प्रकट भय तो वेदव व्यास जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे आसू

को जो है माया नहीं सताएगी। जब 12 वर्ष बाद प्रकट भय तो जन्मते ही सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वन में आ गए। वेद व्यास जी कुछ देर तक तो दूर दूर तक पीछे पीछे गए। यम प्रभजन

सेवा बहुत दूर तक भागे। पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, वन में आकर बैठ गए। पर भैया, जो बालक घर छोड़कर चला गया था वही बालक भागवत भगवान की कृपा से पुनः घर आया। कैसे? जब 18,000 श्लोकों की संगता भागवत लिख दी तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखाए। यहां वहां जाकर श्लोक गाओ, सुंदर सुंदर मधुर मधुर श्लोक गाने लगे। जहां सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे तो एक शिष्य ने, वेद व्यास जी के शिष्य ने श्लोक गाया, भगवान की सुंदर रूप के बारे में गाया।

मधुर मधुर श्लोकों का गान श्री सुखदेव जी के सन्मुख वेद व्यास जी के शिष्य ने गाया। क्या कहा? बोले बरहा पीडम नट बर बपू। कोई इतना सुंदर है, कितना सुंदर? बोले कोई सांवरा है, बड़ा प्यारा सलोना है, नंद नंदन है। भैया उनका उनके स्वरूप का क्या कहना, पीला पीतांबर पहन रखा है, सुनहरी कोर है जिस पीतांबर की, बिजली सी चमक रही है, धारण किए हुए पीतांबर है, गले में काली कामरिया बांधे हुए हैं, सिर पर मयूर पंख लगाए हुए हैं, कानों में मकराकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, बांसुरी की मधुर मधुर

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
8: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
9: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
10: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
8: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
12: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
13: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
8: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
14: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
8: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
15: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
8: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
16: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
16: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
14: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
18: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
12: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
19: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
20: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
8: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
21: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
8: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
22: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
8: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
23: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
10: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 की है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
4: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
6: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: पर जब से ये फौजी 360 की है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
20: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
7: 50 states, 1 national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
24: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
25: Good news today.
26: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
26: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
26: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
26: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
26: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
26: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
26: गांधरबल में धूमधाम से चल रहा खीर भवानी मेला, मंदिर का किया गया विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 26 जून तक चलेगा ये मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। मुंबई में मानसून सीजन की पहली बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, कई इलाकों में भरा पानी, 23 जून से मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, 8 महीने में पूरा होगा निर्माण, रेल मंत्री ने जारी किया डिजाइन। आखिरी वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद विंबलडन सिंगल्स मुकाबले में शानदार वापसी करेंगे 44 साल की सेरेना विलियम्स, 29 जून से होगा मुकाबला, 7 बार की विंबलडन सिंगल्स चैंपियन है सेरेना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
26: जम्मू कश्मीर में आस्था और परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का आज से शुभारंभ, बड़ी संख्या में भक्त हुए इसमें शामिल। 200 बसों से नगरोटा से गांधरबल पहुंचे 9000 श्रद्धालुओं का जत्था, मंदिर में किया गया पूजा पाठ। श्रद्धालुओं ने मां अगन्या देवी की उतारी विशेष आरती, मां अगन्या देवी के लगाए जयकारे। खीर भवानी मेले को लेकर गांधरबल में तैनात किए गए डॉक्टर की टीम, दवाई भी करवाई जा रही उपलब्ध। गांधरबल में खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर के आसपास इलाकों में तैनात किए गए जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा में आस्था का मेला, गुजरात से पहुंचे 1200 से ज्यादा श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने महादेव की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पिछले 36 सालों में पहली बार पहुंचे बड़ी तादाद में सैलानी, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। ये यात्रा राष्ट्र प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में मनाई जाती है, यात्रा राष्ट्रीय एकता, भाईचारे, सांस्कृतिक चेतना का संदेश। सिंधु दर्शन यात्रा जम्मू कश्मीर से होते हुए लेह लद्दाख तक जाएगी, 30 जून तक चलेगी ये यात्रा। पुंछ में बहराम गाला मंदिर में वार्षिक उत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ किया अनुष्ठान, जमकर लगाए जयकारे। बहराम गाला मंदिर में वार्षिक उत्सव भंडारे का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। बहराम गाला मंदिर में वार्षिक उत्सव में दिखा आपसी भाईचारे का अनूठा संदेश, पूजा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय के लोग। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दरबार में पहुंचा बाबा रामदेव जी पहुंचे, विधि विधान के साथ की भगवान जगन्नाथ की यात्रा। गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिनों तक मंदिर के कपाट पूरी तरह रहेंगे बंद, 3 दिनों तक किसी तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं की जाएगी। मंदिर में दर्शन के लिए सभी ऑफलाइन विशेष दर्शन काउंटरों को बंद किया गया, विशेष दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास करना होगा बुक। मंदिर परिसर को खास शुद्धिकरण अनुष्ठान करने के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, 26 जून तक चलेगा ये मेला। मेले को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी, भक्तों के लिए कई जगहों पर की गई शिविर और भोजन की व्यवस्था। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अनंतनाग में सेना जम्मू पुलिस ने स्टेशन पर की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी, आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने को लेकर तैयारी को परखना, आपसी तालमेल को भी परखा गया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से भक्तों की लगे कतार। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे टीवी अभिनेता अर्पित रांका और सौरभ जैन, महाकाल के प्रिय दर्शन। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। जम्मू के क्षीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रोहतास में शिक्षक की बेटी सानिया कलीम ने 70वीं बीपीएससी में किया कमाल, हासिल किया 299 रैंक। जमुई के बेटे बने एसडीएम, फादर्स डे पर पिता को दिया बीपीएससी में सफलता का तोहफा। इंफाल में विश्व संगीत दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। पन्ना में फिर खुली किसान की किस्मत, नोएडा के किसान परिवार को मिला 6.54 कैरेट का हीरा, 20 से 25 लाख रुपए इसकी कीमत। भारतीय सेना ने तुलेल गुरेज में 4 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया, पानी में फंस गई थी सैलानियों की गाड़ी। मुजफ्फरपुर के प्रत्यूष बने एसडीएम, फादर्स डे पर पिता को दिया बीपीएससी में सफलता का तोहफा। सहरसा की श्वेता शिवम ने 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में कमाल किया। श्वेता ने 541वां रैंक जबकि शिवम 965वां रैंक उन्होंने हासिल किया। यूपी के प्रतापगढ़ की श्रद्धा ने बीपीएससी परीक्षा में टॉप किया, परिवार में खुशी। हैदराबाद की सड़कों पर चढ़ा फीफा का खुमार, गचीबोवली 65वां रैंक उन्होंने हासिल किया। यूपी के प्रतापगढ़ की श्रद्धा ने बीपीएससी परीक्षा में टॉप किया, परिवार में खुशी। हैदराबाद की सड़कों पर चढ़ा फीफा का खुमार, गचीबोवली फ्लाईओवर बना ओपन एयर फुटबॉल गैलरी। खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना फुटबॉल गैलरी, पिलर्स पर दिखे दिग्गज खिलाड़ी। वुमेन्स नेशन कप में भारत की बादशाहत, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कीवियों को 2-0 से रौंद कर रचा इतिहास। नवनीत में मैच के चौथे ही मिनट में एक जबरदस्त और दमदार स्ट्राइक के साथ गोल कर भारत को दिलाई 1-0 से बढ़त। मैच के 15वें मिनट में सुनीलिता टोपो ने किया कमाल, सुनीलिता टोपो ने किया गोल, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा भारत। महिला हॉकी इंडिया टीम पर पैसों की बरसात, हर खिलाड़ी के लिए 3 लाख रुपए और स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए हर सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। भारतीय महिला की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, लिखा FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीतने पर महिला टीम को बधाई। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा मानसून, कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश से गर्मी उमस से मिली राहत, 23 जून से मानसून पकड़ेगा रफ्तार। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव और आवाजाही भी प्रभावित हुई। मुंबई के बांद्रा में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भर गया पानी। पुणे में कई इलाकों में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश, बस स्टैंड में भर गया पानी। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना। पटना में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद, भीषण गर्मी के चलते डीएम कुंदन कुमार ने जारी किया आदेश। बिहार में स्कूलों की बदली टाइमिंग, अब सुबह 6:30 बजे खुलेंगी क्लासेस। थूथुकुड़ी में तेज चक्रवाती हवाओं से भारी नुकसान, कई इलाकों में घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। डुआनवू फेस्टिवल पर चीन के ल्हासा में खास आयोजन किया गया, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस। 3600 मीटर ऊंचाई पर ड्रैगन बोट रेस का रोमांच, 20 टीमों ने याक लेदर बोट रेस में हिस्सा लिया। पारंपरिक नावों ने खींचा ध्यान, लोकल संस्कृति का शानदार प्रदर्शन यहां पर दिखा। इंटेंजिबल हेरिटेज जोन रहा आकर्षण का केंद्र, जोंगजी बनाने का भी मिला अनुभव। त्योहार का पारंपरिक रंग दिखा, हर तरफ परंपरा और खेल का अनोखा संगम भी यहां पर देखने को मिला। डुआनवू फेस्टिवल पर चीन के फुजियान में 300 साल पुरानी अनोखी परंपरा, शीशी में समंदर में पानी उछालने की रस्म। 150 से ज्यादा नाव ने लिया हिस्सा, चीन और ताइवान के नाविकों की रही यहां पर अहम भागीदारी। नावों से एक दूसरे पर पानी उछालकर दी गई शुभकामनाएं, पर्यटकों के लिए अनोखा अनुभव। पानी उछालना बना खुशी का प्रतीक, बतख पकड़ने की प्रतियोगिता भी यहां पर आयोजित की गई। रंगीन और जीवंत दृश्य ने खींचा ध्यान, संस्कृति और उत्सव का अनोखा संगम यहां देखने को मिला। चीन के शांची में ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर हुकोउ वाटरफॉल में गूंजे ढोल नगाड़े, हुकोउ वाटरफॉल पर हुआ सांस्कृतिक प्रदर्शन। गोंग और ड्रम की ताल से गूंजा पूरा क्षेत्र, येलो रिवर की लहरों के साथ तालमेल ने बनाया नजारा। प्राकृतिक झरने के साथ संगीत का मेल, पर्यटकों ने लिया लाइव परफॉर्मेंस का मजा। बोगोर में दिखा नन्हा पांडा, रियो बना लोगों के दिलों का सितारा। इंडोनेशिया में जन्मा पहला जायंट पांडा पहली बार जनता के सामने आया। बोगोर में रियो को देखने उमड़ी भारी भीड़, माता पिता काई ताओ और हु चुन के साथ नजर आया रियो। चीनी शेंजोंग 23 मिशन के तीनों क्रू ने गट माइक्रोबायोटा और मेटाबॉलिज्म पर किया अध्ययन, स्पेस रमन स्पेक्ट्रोमीटर से सैंपल्स का विश्लेषण किया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज।

0: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
3: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
4: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
5: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
3: गांधरबल में धूमधाम से चल रहा खीर भवानी मेला, माता का किया गया विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 26 जून तक चलेगा मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। मुंबई में मानसून सीजन की पहली बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, कई इलाकों में भरा पानी, 23 जून से मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। अर्जेंटीना के न्यू क्वेन शहर में बीचों बीच लगाई गई फुटबॉलर लियोनेल मेसी की विशाल मूर्ति, बड़ी संख्या में मूर्ति देखने आए मेसी के फैंस।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो कहानी खीर भवानी की। तस्वीर है कश्मीर के गांदरबल की, जहां आज से माँ खीर भवानी का मेला लग चुका है। इस खास मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का समंदर उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। माँ खीर भवानी का ये धाम खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र रहा है। तो आज माँ खीर भवानी के प्राकट्य के अवसर पर गांदरबल के इस मंदिर में आस्था का महामेला लगा है। लिहाजा हर साल की तरह इस बार भी भारी संख्या में कश्मीरी पंडित और देश के दूसरे हिस्सों से लोग अगाध आस्था के साथ, श्रद्धा भाव के साथ माता की महापूजा के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शक्ति स्थल पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, खुशहाली और अमन चैन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो माँ के दरबार की आज बेहद निराली छटा दिखाई दे रही है। आप भी कीजिए इनके दर्शन। तो कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला में स्थित माँ खीर भवानी के मंदिर में आस्था का महामेला चल रहा है, जिसकी ताजा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। दूर दूर से कश्मीरी पंडित और श्रद्धालु इस मेले में पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि माँ खीर भवानी को कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी मानते हैं। इसीलिए ये मंदिर इनके लिए आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके कारण हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, माता के दर्शन पूजन करते हैं। खासतौर से माता के प्राकट्य दिवस के अवसर पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। श्रद्धालु यहां पर पूजा आराधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माता के प्रति अपनी आस्था का इजहार भी करते हैं। अब देखिए, गांदरबल के ही खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला लगा है। वहां लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है और किस तरह लोगों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हैं, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी मीर फरीद ने। देखिए,
1: हर साल की तरह इस साल भी माता खीर भवानी का जो मेला है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पूरे हर्षोल्लास से मना रही है। इस वक्त हम तुलमुला में हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है माता खीर भवानी का मंदिर। और बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है आज, अगर आप कश्मीरी पंडित की जो रिलीजियस भावनाओं को समझें या उनके जो फेस्टिवल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के दिन को माना जाता है माता रखने देवी का ये जो मंदिर है। और हर साल जैसे मैंने कहा कश्मीरी पंडित यहाँ आते हैं, लेकिन इस साल जो रजिस्ट्रेशन है उससे अलावा लोग आए हैं। ऐसे आप भीड़ देख सकते हैं आसपास, और जहां भीड़ है वहीं सुरक्षा के भी काफी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और 2-3 टायर सिक्योरिटी का रिंग है, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अगर कश्मीरी पंडित की बात करें और उनका जो वो यहां से डिस्प्लेस हुए थे, तो आज का दिन कल्चरली भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि सभी लोग जो हैं यहां जमा होते हैं और जो अपने रूट्स हैं, जो यहां कई सारे जो है जो हालात खराब हुए थे उसके बाद उनको यहां से पलायन करना पड़ा, तो वो भी एक इमोशनली काफी इंपॉर्टेंट आज दिन रहता है। इमोशनली कनेक्ट करते हैं अपने रूट्स के साथ, तो न सिर्फ रिलीजियस इसका सिग्निफिकेंस है बल्कि कश्मीरी पंडित्स का जो इकट्ठे दोबारा कश्मीर आना है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा कि हर साल काफी भीड़ होती है लेकिन इस साल रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुई है। और देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो कश्मीरी पंडित यहाँ आए हैं, और अंदर जो है पूजा भी चल रही है, भेंट भी चढ़ा रहे हैं माता रखने देवी को। और न सिर्फ तुलमुला में बल्कि 4 ऐसे और लोकेशंस हैं जहां पे ये जो दिन है पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, तुलमुला, गांदरबल।
0: वहीं खीर भवानी मेले के बारे में श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भाव क्या है इस मंदिर को लेकर, वो आपको सुनाते हैं।
2: मेरा नाम आशीष आनंद भट्ट है और मैं अपने इस कश्मीर की पावन धरती का ही एक पुत्र हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हूं और हमारे पूर्वज भगवान अमरनाथ गुफा के पुजारी भी थे और हम यहां पे माता के दर्शन करने आए हैं। जिस प्रकार से हर वर्ष माँ खीर भवानी के मेले में यहां पे सब यात्रीगण आते हैं, आप तो पूरे विश्व से आते हैं, पूरे देश से आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि माँ के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यही दिन है जिस दिन माँ यहां पे प्रकट हुई थी। लोग कहते हैं हम कल आएंगे, पर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस दिन माँ का दिन है, जिस दिन माँ इस जगह पर आई है, जिस इस जगह पर विराजमान हुई है और इस जगह पर उनका स्थापन हुआ है, उसी उसी दिन की महिमा है और सारे यात्रीगणों से हमारी यही निवेदन है इसी दिन की महिमा को मानिए। और सबसे बड़ी बात है ये जो माता यहाँ पे पानी के रूप में विराजमान है, ये जो यहाँ के कुंड का पानी है वही है माँ का स्रोत, वही है माँ का दर्शन।
0: तो श्रद्धालुओं की माता के प्रति कितनी गहरी आस्था है, अगाध आस्था है, वो तो आपने सुन लिया। आप खीर भवानी मेले के लिए प्रशासन ने यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इसके बारे में बता रहे हैं वहाँ के डेप्यूटी कमिश्नर, सुनिए जरा।
3: ये आप सब जानते हैं आज ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर यहाँ तुलमुल गांधरवल में खीर भवानी टेम्पल में खीर भवानी माता का मेला हर साल ऑर्गेनाइज होता है और इस साल भी बहुत ही सेलिब्रेटरी वे में और एक बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सुबह से ही डिवोटीज का यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छे नंबर्स में लोग आए हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की तरफ से और गांधरबल के सभी लोगों की तरफ से हम सब उनका वेलकम करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रही है कि उनका यहाँ पे स्टे और विजिट कंफर्टेबल रहे और स्पिरिचुअली एनरिचिंग रहे। तो उसी सिलसिले में सभी को आज ये मेले खीर भवानी की शुभकामनाएं भी देता हूँ और उम्मीद करूंगा कि सबका विजिट अच्छा रहे।
4: तो सिक्योरिटी के हिसाब से क्या कुछ अरेंजमेंट्स रखी गई
3: हैं? जी, सिक्योरिटी के भी पूरे अरेंजमेंट्स हैं, पुलिस हो या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हो, सबके तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, तो एकदम पूरा सिक्योर एनवायरमेंट है।
0: तो श्रीनगर के गांधरबल के ही समान जम्मू के जानीपुरा में भी खीर भवानी मंदिर है। यहां आज माता के प्रकट दिवस के मौके पर तड़के 3 बजे से आरती और पूजा प्रार्थना का सिलसिला चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू के इस मंदिर में माता के दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं और ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के पावन अवसर पर यहां माता की उपासना में लगे हैं। लोग दीप जला रहे हैं, माता को दूध और जल अर्पित किया जा रहा है। अपनी खुशहाली और अमन चैन के लिए लगातार लोग प्रार्थना कर रहे हैं। गांधरबल की तरह जम्मू के इस मंदिर की बड़ी मान्यता है और इसीलिए इस मंदिर में भी माता के प्रकट दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आखिर क्यों है माता खीर भवानी के मंदिर का यह विशेष महत्व, यह भी जानना बहुत दिलचस्प है, चलिए बताते हैं आपको।
5: माता रानी के भक्त साल भर इंतजार करते हैं कब ज्येष्ठ अष्टमी आ जाएगी। साल का एक दिन होता है। मूलतः जो खीर भवानी जिसको बोलते हैं इसका असली नाम श्यामा है। ये रावण वल्लंका में थी, फिर राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से वो नाराज हो गई माता। फिर जब भगवान राम ने लंका जीती तब भगवती ने और हनुमान जी को बोल दिया मुझे अब यहाँ से जाना है, मैं सतीसर जाऊँगी, सती प्रदेश, सतीसर बोलते हैं कश्मीर को। और हनुमान जी के साथ में 360 नाग के साथ माता रानी कश्मीर आई। जहाँ जहाँ हनुमान जी रुके वहाँ वहाँ माता रानी का स्थापन है। मंजगांव में है, रैथन में है, तुलमुला मेन है, तुलमुला में एक एक चीज़ है जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो बना है जिसका ये जो शेप है इसकी, जिसको कश्मीरी में हम नाग बोलते हैं, जिसको चश्मा बोलते हैं, दुनिया का एक चश्मा है जहाँ रंग बदलता है। ये एक एक ऐसा है माता रानी का दरबार है वहाँ। इसके साथ में 60 नाग हैं, श्रीबिंदु इसके साथ में, आप मानो सारा ब्रह्मांड इर्द गिर्द घूमता है। आज उल्लास है, यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर से मुंबई से जितने भी जिन माता के वक्त आज श्रीनगर गए हैं खीर भवानी, सरकार ने अरेंजमेंट्स रखे हैं,
6: बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं राइट फ्रॉम आफ्टर द मास माइग्रेशन। यहाँ पर ये लोग हमने ये रेप्लिका ऑफ द सेम तुलमुला जो खीर भवानी वहाँ पर है, हमें कोई डिफरेंस नहीं लगती है चाहे वहाँ हो और यहाँ है। हाँ, लोगों की श्रद्धा है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, लोग यहाँ इन थाउजेंड्स आ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ गए हैं। हम यही चाहते हैं कि अच्छा हो गया है, वहाँ भी चले और यहाँ भी चले। आज पूरा रात हमारे यहाँ यह भजन कीर्तन है और आज अभी ये रश जो देख रहे हैं ये शाम के 11 बजे तक तो चलता रहता है और कोई इसमें और किसी कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। और हमने यहाँ नियर अबाउट 10,000 लोगों के लिए ये प्रसाद रखा है तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
0: चलिए अब आपको बताते हैं माँ खीर भवानी की कहानी, बताते हैं माता की महिमा क्या है। दरअसल खीर भवानी मंदिर की कहानी का एक सीधा सिरा जुड़ता है रामायण काल के साथ। मान्यता यह है कि देवी रागन्या का निवास कभी श्रीलंका में हुआ करता था, लेकिन रावण के रुष्ट होकर वो भारत लौटे थे और बजरंगबली देवी रागन्या को कश्मीर लेकर आए थे। अब आपको ये बताते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी और बजरंगबली के साथ लौटी देवी रागन्या आखिर कश्मीर आकर ही क्यों बस गई।

0: हमेशा से गांदरबल का माखीर भवानी मंदिर घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। यहाँ देवी को खीर का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि खीर के भोग से माँ अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में यही खीर दी जाती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में मौजूद ये मंदिर देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गई थी, लेकिन कभी जिस रावण की आराधना से प्रसन्न होकर माँ खीर भवानी ने अपना देश छोड़ा था, आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर उन्होंने दोबारा अपने देश में वापस आने का निर्णय किया था। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। खीर भवानी धाम में बजरंग बली का मंदिर भी मौजूद है।
1: प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है, और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है, और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया, उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफ़ी दुखी हुई, और रावण की जो आसुरी कृत्य हैं उससे माता जो है काफ़ी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय, जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी, और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफी क्रोधित थी, काफी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मद देसे सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूँ। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहाँ कश्मीर घाटी लाए थे।
0: माँ श्यामा रावण की करतूतों से रुष्ट होकर अपने देश लौट तो आई, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकी कि उन्हें कश्मीर के कौन से इलाके में रहना चाहिए। दरअसल देवी के साथ उनके 360 नाग भी आए थे। ऐसे में माँ को अपना निवास बनाने के लिए ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ उनके नाग भी रह सके। और तब बेहद सोच विचार के बाद माँ श्यामा ने भौगोलिक स्थिति देखकर तुलमुला गांव में अपना निवास स्थान बनाया था।
1: तुलमुल गांव है ये, और अगर हम तुलमुल शब्द का जो है अर्थ जाने तो इसका मतलब है मार्शी लैंड, जो रुई जैसी नरम भूमि हो उसी को कहते हैं तुलमुल्य, और उसी से इस गांव का नाम भी है तुलमुल। तो माता को लगा कि ये उपयुक्त भूमि है उनके लिए और साथ ही में उनके 360 नागों के लिए, और माता ने फिर यहीं पर अपना निवास स्थान बनाया, अपना वास बनाया। और जिस दिन माता ने यहां पर अपना वास दोबारा स्थापित किया, उसी दिन को समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय महापर्व के रूप में मनाता है, माँ खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाता है, और ये दिन है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को।
0: कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद श्री राम हर साल यहाँ माँ रागन्या के दर्शन करने आते थे। वैसे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गांदरबल के मुख्य मंदिर के अलावा माँ खीर भवानी के कई और भी मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब माँ को लेकर वापस कश्मीर आए थे और माँ अपने लिए उपयुक्त निवास स्थान खोज रही थी, उस समय वे रास्ते में जहाँ भी रुकी वहाँ माँ का मंदिर बना दिया गया।
1: जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही मैं आपको मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं, जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी, लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है, चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, या दक्षिण कश्मीर में भी दिवसर में है, मंजगाम में है, लखटीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहां पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना वो ये है, तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है।
0: बताया जाता है कि तुलमुला में मौजूद मुख्य मंदिर का निर्माण डोगरा वंश के राजाओं ने करवाया था। डोगरा वंश के महाराजा प्रताप सिंह ने मंदिर बनवाया और बाद में राजा हरि सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कालांतर में माँ खीर भवानी के इस धाम से जुड़ी कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हुई। मसलन मंदिर में मौजूद षटकोणीय कुंड के बारे में कहा जाता है कि ये कश्मीर की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। यहाँ के मूल निवासी इस कुंड को देवी का प्रतीक मानते हैं और इसी कुंड के बीचों बीच माँ की स्थापना की गई है। मान्यता है कि माता को अपना ये कुंड बेहद प्रिय है और उन्हीं के प्रताप से इस कुंड के जल का रंग बदलता रहता है। इसके चलते माँ खीर भवानी के साथ साथ इस कुंड की भी पूजा अर्चना की जाने लगी। इस दौरान यह कुंड में फूल अक्षत के साथ साथ दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है।
1: गुड न्यूज टुडे के माध्यम से जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो माता खीर भवानी के दर्शन कर सकते हैं। इस पवित्र जलकुंड का जो रंग है हल्का हरा रंग है इस बार, और शुभ संकेत माना जा सकता है। 1990 के कालखंड में जब आतंकवाद कश्मीर घाटी में चरम पर था, तब माना जाता है कि इस पवित्र जलकुंड का रंग जो है काला हो गया था, क्योंकि इस जलकुंड के रंग का जो रंग जो है वो आने वाले समय का कुछ संकेत देता है। तो जब इसका रंग काला हो गया तो उसका अर्थ था कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, कोई बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है। और हुआ क्या, कश्मीर घाटी से समूचे कश्मीरी पंडित समुदाय को पलायन करना पड़ा।
0: सदियों तक कश्मीरी पंडित गांदरबल में अपनी इष्ट देवी के इस पावन धाम से जुड़े रहे, लेकिन 90 के दशक में धधकी आतंक की आग ने उन्हें अपने घर के साथ अपनी आस्था से जुड़े इस पावन तीर्थ को भी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन कश्मीरी पंडित देश भर में जहाँ जहाँ गए, उन्होंने माँ खीर भवानी के प्रति न केवल अपनी आस्था को जिंदा रखा, बल्कि माँ खीर भवानी के एक नहीं बल्कि अनेक मंदिर तैयार करवाए। हर साल माँ खीर भवानी के प्राकट्य उत्सव को गांदरबल के मुख्य मंदिर में तो मेला लगता ही है, लेकिन देश भर में मौजूद माँ खीर भवानी के दूसरे मंदिरों में भी कश्मीरी पंडितों के इस महापर्व को बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गांदरबल में माँ खीर भवानी धाम से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए इसी बीच आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें भी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यहां पर पहुंचे, खीर भवानी मंदिर में उस सुबह तड़के पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उन्होंने इस दौरान माता रानी से प्रदेश में खुशहाली और अमन चैन की प्रार्थना भी की। उन्होंने माता की आरती भी उतारी, उनको चुनरी भी भेंट की और इसके साथ ही उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस मंदिर की मान्यता इतनी ज्यादा है, आपको बता दें लाखों की संख्या में लोग सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और चलिए इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: और चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस की जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
8: यूं ही जापानियों को सिविक सेंस में दुनिया में सबसे अव्वल माना जाता है। आप अगर ये बात नहीं जानते तो ये वायरल तस्वीरें देखिए, आप खुद इसको सलाम करेंगे। वीडियो में देखिए जरा, यहाँ हुए एक स्टेडियम में मैच के बाद फैंस यहाँ फैले कचरे को अपने हाथों से उठा रहे हैं। बच्चे हो या युवा, कचरा उठाना यहाँ छोटा काम नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, जब फैन से इसकी वजह पूछी गई तो वो कहने लगे कि ये आदर का मामला है, हम खिलाड़ियों का, स्टेडियम का और खेल का सम्मान करते हैं, इसलिए हम स्टेडियम को गंदा नहीं छोड़ सकते हैं, है ना सम्मान का संदेश। इन तस्वीरों को देखिए जरा, इन्हें देख आप खुद समझ जाएंगे कि कभी कभी हमें जिनसे खतरा होता है वही हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। वीडियो में देख रहे बत्तख के बच्चों का एक झुंड अपनी माँ से बिछड़ गया, जहाँ उनकी मुलाकात इस गोल्डन रिट्रीवल पिल्ले से हुई। बत्तख के बच्चे इस पिल्ले के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो वो जब इन्हें सूंघ कर जाने लगा तो वो भी उसी के पीछे हो लिए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
0: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
7: मुंबई में मानसून सीजन की पहली बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, कई इलाकों में भर गया पानी। 23 जून से मानसून फिर से पकड़ेगा रफ्तार। हंगरी में दिखे सनातन और भारतीय संस्कृति के रंग, बुडापेस्ट में पवित्र पादुकाओं के साथ निकाली गई भगवान विट्ठल की भव्य पालकी यात्रा, कृष्ण भक्ति के में झूमते हुए नजर आए थे। गांधरबल में धूमधाम से चल रहा खीर भवानी का मेला, माता का किया गया विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 26 जून तक चलेगा मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु।
1: अर्जेंटीना के न्यू क्वेन शहर में बीचों बीच लगाई गई फुटबॉलर लियोनेल मेसी की विशाल मूर्ति, बड़ी संख्या में मूर्ति देखने के लिए आए मेसी के फैंस।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल बे।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नई हैं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: जम्मू कश्मीर में आस्था और परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का आज से शुभारंभ, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। 200 बसों से नगरोटा से गांधरबल पहुंचे 9,000 श्रद्धालुओं का जत्था, मंदिर में किया गया पूजा पाठ। खीर भवानी मेले को लेकर गांधरबल में तैनात किए गए डॉक्टर की टीम, दवाई भी करवाई जा रही उपलब्ध। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा में आस्था का मेला लगा, गुजरात से पहुंचे 1200 से ज्यादा श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने महादेव की पूजा अर्चना की, देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की।
13: गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिनों तक मंदिर के कपाट पूरी तरह से रहेंगे बंद, 3 दिनों तक किसी तरह की कोई पूजा अर्चना आरती या अन्य कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। पुंछ के भरा गमाला मंदिर में वार्षिक उत्सव की रौनक देखने को मिली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जम्मू के शेर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दरबार में पहुंचे बाबा रामदेव, पहुंचे विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की।
7: उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे टीवी अभिनेता अर्पित फ्रांका और अब जैन महाकाल के लिए दर्शन। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अनंतनाग में सेना जम्मू पुलिस ने स्टेशन पर की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी की तैयारियों को परखा।
13: रोहतास में शिक्षक की बेटी सानिया कलीम ने 70वीं बीपीएससी में किया कमाल, हासिल की 299 रैंक। जमुई के बेटे बने एसडीएम, फादर्स डे पर पिता को दिया बीपीएससी में सफलता का तोहफा। इम्फाल में विश्व संगीत दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।

0: पन्ना में फिर खुली किसान की किस्मत। नोएडा के किसान परिवार को मिला 6.5 कैरेट का हीरा, 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। भारतीय सेना ने तुलेल गुरेज में 4 पर्यटकों का रेस्क्यू किया, पानी में फंस गई थी सैलानियों की गाड़ी।
1: ड्वानवू फेस्टिवल पर चीन के लासा में खास आयोजन किया गया, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस देखी गई। 3600 मीटर ऊंचाई पर ड्रैगन बोट रेस का रोमांच, 20 टीमों ने याक लेदर बोट रेस में हिस्सा लिया। चीन के शांची में ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर हुको वाटरफॉल में गूंजे ढोल नगाड़े, हुको वाटरफॉल पर हुआ खास सांस्कृतिक प्रदर्शन। बोगोर में दिखा नन्हा पांडा, रियो बना लोगों के दिलों का सितारा, इंडोनेशिया में जन्मा पहला जायंट पांडा पहली बार जनता के सामने आया। विमेन्स नेशंस कप में भारत की बादशाहत, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कीवियों को 2-0 से रौंद कर रचा इतिहास।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपको लिए चलते हैं खबरों की प्लेट तैयार।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
0: गांदरबल में खीर भवानी मेले का शुभारंभ, मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
1: कामाख्या देवी मंदिर में आज से शुरू हुआ अंबुबाची मेला, 26 जून तक लगे रहेगा भक्तों का तांता।
0: मुंबई पहुंचा मानसून, पहली बारिश ने दी गर्मी से राहत, कल से और बढ़ जाएगी मानसून की रफ्तार।
1: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं, साउथ सुपरस्टार यश के फैंस को फाइनली गुड न्यूज मिल गई है, क्योंकि यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार उनके लिए खत्म हो गया। यश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने फैंस के साथ ये जानकारी शेयर भी की है।
0: तो वहीं आपको बता दें, टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी थी, लेकिन अब लंबे वीकेंड के साथ अगस्त के महीने में इसे रिलीज करने का मास्टर स्ट्रोक मेकर्स ने चल दिया है।
3: When I say it's over.
4: तो फाइनली राया ने ऐलान कर दिया है टॉक्सिक की रिलीज डेट पर पड़ा सस्पेंस अब ओवर हो चुका है। अब से तकरीबन 2 महीने बाद साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है।
3: छोड़ दो,
4: यश ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर के साथ रिलीज डेट अनाउंस की है। पोस्टर में तारीख लिखी है 26 अगस्त 2026, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक 11 दिन बाद ये एक्शन थ्रिलर मूवी सिनेमा घरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। टॉक्सिक की रिलीज डेट को लेकर सस्पेंस की बात इसलिए की जा रही थी कि अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी है। पहले ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट की वजह से फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। बाद में रिलीज डेट 4 जून तय की गई, लेकिन तब भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, जिसके बाद इसकी रिलीज डेट पर सस्पेंस गहराने लगा। लेकिन अब मेकर्स ने टॉक्सिक की रिलीज डेट 26 अगस्त फाइनल कर दी है। 26 अगस्त को बुधवार है, यानी हफ्ते के बीच का दिन, जबकि ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। दरअसल मेकर्स ने इस तारीख का ऐलान काफी सोच समझ कर किया है। छब्बीस अगस्त को ओणम का त्योहार है, 28 अगस्त को वर महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाएगा और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का भी त्योहार है, मतलब बुधवार से लेकर रविवार तक छुट्टियां ही छुट्टियां। टॉक्सिक को एक लंबा वीकेंड मिल रहा है, जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे सकता है। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है, जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। इस एक्शन थ्रिलर में यश राया और रूमी के दमदार और इंटेंस अवतार में दिखाई देंगे। फिल्म में यश के साथ 5 हीरोइन हैं, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी, यानी बॉलीवुड और साउथ का पूरा संगम है। करीब 500 करोड़ के मेगा बजट में बनी टॉक्सिक को पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल अपील है। टॉक्सिक की शूटिंग एक साथ दो मूल भाषाओं कन्नड़ और अंग्रेजी में की गई है, साथ ही इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अगस्त के महीने में रिलीज होते ही टॉक्सिक का मुकाबला कई मच अवेटेड फिल्मों से होने वाला है। एक तरफ श्रद्धा कपूर की ईथा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म वन। हर फिल्म की अपनी खासियत है
1: और देखिए तीनों ही फिल्में आपको एक सरप्राइज के साथ नजर आएंगी। फिल्में बड़े पर्दे पर हलचल मचाने का दम भी रखती हैं। दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर इस महा मुकाबले का बेसब्री के साथ इंतजार है।
5: साउथ सुपरस्टार यश ने जब टॉक्सिक की रिलीज डेट का ऐलान किया तो दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। दर्शकों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार था। केजीएफ के बाद फैंस यश को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे। अब अगस्त के महीने में यश के चाहने वालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। टॉक्सिक के रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार मुकाबला भी देखने को मिलेगा। दरअसल अगस्त के महीने में बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज होने वाली हैं। महीने की शुरुआत राजकुमार राव की फिल्म प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी से होने वाली है। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होंगी। इनमें से एक फिल्म सनी देओल की बंटवारा 1947 है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हो रही है। वहीं दूसरी फिल्म इमरान हाशमी की मच अवेटेड सीक्वल आवारापन 2 है। इन दोनों ही फिल्मों की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी और अब दोनों ही फिल्में एक साथ रिलीज होने जा रही हैं। लेकिन बड़े पर्दे की हलचल 26 अगस्त से और बढ़ जाएगी, जब यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज होगी। टॉक्सिक के रिलीज होने के दो दिन बाद यानी 28 अगस्त को दो और बेहद चर्चित फिल्में सिनेमा घरों में उतरेंगी। इनमें से एक है श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईथा, जिसके लुक ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, और दूसरी फिल्म है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की थ्रिलर विवैन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी। यानी अगस्त का पूरा महीना ही फिल्मों के लिहाज से काफी हलचल भरा होने वाला है। अगस्त के आखिरी वीकेंड में यश की टॉक्सिक, श्रद्धा कपूर की ईथा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की विवैन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिल्मों के जानकार इस मुकाबले को इस साल की सबसे बड़ी भिड़ंत भी मान रहे हैं।
3: छोड़ दो।
5: जाहिर है मुकाबला जितना कड़ा होता है, दर्शकों को बड़े पर्दे पर मनोरंजन का उतना ही जबरदस्त डोज भी मिलता है। टॉक्सिक ने तो दर्शकों का जोश पहले ही बढ़ा रखा था और अब इस मुकाबले ने तो सिनेमा के शौकीनों को दोहरी सौगात दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान छू लिया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया गया। लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजलिस में पब्लिक हॉलीडे रखा जाएगा। लॉस एंजलिस द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया ये सबसे बड़ा सम्मान है।
6: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है। उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। सात समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है, उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
7: In the city of LA, we're declaring a day after you. So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
8: My day?
7: Your own day in the city of Los Angeles.
8: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
6: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
8: थैंक यू सो मच। माय डे इन एलए हुण होया तैनु गड्डी च बिठा के ले जावां नी मैं एलए नु।
6: अब लॉस एंजल्स में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजल्स ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजल्स ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजल्स के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजल्स और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया।

0: मुखर्जी दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब खबर मुंबई में हुई हाई प्रोफाइल शादी की, जिसमें शाहरुख खान बने मेहमान और जमकर मचाया धमाल। देखिए रिपोर्ट।
2: सुपरहिट गानों पर थिरकते दिखे बॉलीवुड के किंग खान। नए हेयर स्टाइल और ब्लैक ड्रेस में शाहरुख ने जमकर मचाया धमाल। वीडियो में शाहरुख अपनी शानदार डांस मूव्स की नुमाइश करते दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये तस्वीरें एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले की बेटी की संगीत सेरेमनी की है। इसके एक वीडियो में सुप्रिया सुले की बेटी रेवती भी शाहरुख को गले लगाती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में रेवती के संगीत और विवाह समारोह में शाहरुख खान सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की और रंग जमा दिया। इस दौरान शाहरुख और सुप्रिया सुले की खास बॉन्डिंग भी देखने को मिली। बताया जाता है कि सुप्रिया सुले शाहरुख खान की बड़ी फैन है, लिहाजा बेटी की शादी में शाहरुख पहुंचे तो सुप्रिया ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया और फिर शाहरुख ने भी शादी से जुड़े समारोह में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको लाजवाब कर दिया। मुंबई में रेवती सुले की हाई प्रोफाइल शादी की रस्में शनिवार 20 जून को संपन्न हुई। सियासत से लेकर बिजनेस और एंटरटेनमेंट सहित हर सेक्टर की दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टियों के बड़े नेता शादी में शरीक होने पहुंचे। ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे भी शादी समारोह में शरीक हुए। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शादी में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर एक तरफ इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दिग्गज नेता सुप्रिया सुले के मेहमान बने, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या छगन भुजबल और रामदास आठवले, सभी इस शादी समारोह में सियासत की अदावत से दूर सभी के साथ खुले मिले नजर आए। वहीं अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, जैकी श्रॉफ, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, फरहान अख्तर और रणबीर कपूर भी समारोह में नव दंपति को शुभकामना देने पहुंचे। संगीत समारोह से लेकर शादी तक व्यापार जगत की भी जानी मानी हस्तियों ने इस उत्सव की शोभा बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब खबर भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक और सौगात उनको मिलने जा रही है। इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो चुकी है। शनिवार को तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हुआ। करीब 7 दिनों की यात्रा के बाद ये जत्था 27 जून को कैलाश मानसरोवर पहुंचेगा
1: और इस दिन सभी तीर्थयात्री मानसरोवर झील के पवित्र परिक्रमा को पूरा करेंगे। इस साल 1000 तीर्थयात्रियों का कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चयन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के लिपु लेक से भी तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर तीर्थ यात्रा के लिए जा सकेंगे।

0: हर हर महादेव के जय घोष के साथ शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। आस्था के सबसे मुश्किल मार्ग पर निकल पड़े शिव भक्त। समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर प्रस्थान कर गए। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं, साथ में अधिकारी हैं।
1: विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग

0: जो इनका आतिथ्य किया है सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूँ।
1: तीर्थयात्रियों ने 11 जून को नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की थी और 15 जून को गंगटोक पहुंचे थे। 16 जून से वे नाथुला के पास मौजूद हंगू झील एक्लिमेटाइजेशन सेंटर में ऊंचाई वाली इस यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहे थे।
2: और अब आपको नॉर्थ ईस्ट में उत्सव के अद्भुत रंग दिखाते हैं। गुवाहाटी के विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ हो गया है और ऐसी मान्यता है कि इस वार्षिक मेले के दौरान मां कामाख्या अपने मासिक धर्म यानी रजस्वला से गुजरती हैं और यही वजह है कि इस दौरान देवी मां को पूरा आराम दिया जाता है और मंदिर के मुख्य कपाट 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में मंदिर परिसर में किसी तरह की कोई पूजा अर्चना, आरती या अन्य कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते। चौथे दिन खास शुद्धिकरण अनुष्ठान करने के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। आज से शुरू हुआ अंबुबाची मेला 26 जून तक चलेगा।

0: गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में आज से श्रद्धा का मेला। शक्ति की प्रतीक मां कामाख्या के मंदिर में आज से महोत्सव। आज से शुरू हो रहा है पूर्व का महाकुंभ अंबुबाची मेला। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और दिव्य शक्तिपीठ है जो रहस्यों का भंडार और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में आज से नारी शक्ति के उस उत्सव का आरंभ हो रहा है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। आज से कामाख्या धाम में अंबुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। अंबुवाची मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है जहाँ हजारों साधु नागा बाबा भक्त आते हैं और 3 से 5 दिनों तक नीलांचल की पहाड़ियों पर रहते हैं। सिर्फ साधु संत ही नहीं, यहाँ पर देश विदेश से भक्त भी माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं।
1: मैं मॉरीशस देश से यहाँ हर साल आता हूँ ये अंबुबाची मेला में, और उनके आशीर्वाद पाकर हम बहुत आगे बढ़े हुए। जय माँ कामाख्या।
0: मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून यानी आज की रात 9:08:42 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ माँ कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजा कर सकेंगे।
2: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा, और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है, वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद हम मंदिर भक्त के लिए खोल लेंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अंबुबाची महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ शरण जाने के बाद जो अर्ध नक्षत्र का पहला शरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो शरण को महायोग बोलता है, अंबुबाची महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी शक्ति का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यही छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भ द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती हैं। इस दौरान गर्भगृह में 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है। अंबुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्व काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में मां को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, और वही लाल वस्त्र अंबुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अंबुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी का पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। कामाख्या मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है कि मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और चलिए इसके साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंधु दर्शन के आध्यात्मिक यात्रा के रंगों की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
7: Hanging out at the pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
8: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
9: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
10: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
11: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: मुंबई में प्री मानसून की बारिश, भीषण गर्मी, उमस से मिली राहत, कई इलाकों में भर गया पानी, अगले 48 घंटे में मुंबई पहुंचेगा मानसून। हंगरी में दिखे सनातन और भारतीय संस्कृति के रंग, बुडापेस्ट में पवित्र पादुकाओं के साथ निकाली गई भगवान विठल की भव्य पालकी यात्रा, कृष्ण भक्ति में झूमते हुए नजर आए भक्त। गांधरबल में धूमधाम से चल रहा खीर भवानी का मेला, माता का किया गया विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 26 जून तक चलेगा मेला, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। अर्जेंटीना के न्यूक्वेंट शहर में बीचों बीच लगाई गई फुटबॉलर लियोनल मेसी की विशाल मूर्ति, बड़ी संख्या में मूर्ति देखने आए मेसी के फैंस।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा को इस साल प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे में सिंधु दर्शन यात्रा पर निकले गुजरात के करीब 1200 लोगों के जत्थे ने गुलमर्ग के ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की
3: और देश की खुशहाली की कामना भी की है।
4: ये लोग गुजरात से आए हैं, पूरे 1200 लोगों का जत्था। वैसे तो सब सिंधु दर्शन के लिए निकले हैं, लेकिन गुलमर्ग में महादेव का ये ऐतिहासिक मंदिर इनके लिए आध्यात्मिक पड़ाव बन गया। खुला आसमान, पहाड़ों का पहरा, मानो प्रकृति अपनी सादगी में सुंदरता की कोई नई परिभाषा लिख रही हो। सबने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और हर हर महादेव का जय घोष किया।
5: सिंधु यात्रा ये बहुत मायने रखती है, पिछले 30 साल से हो रही है, मैं तो पहली दफा आ रहा हूँ। तो यहाँ के जितने मंदिर है, खास करके जो कश्मीर के लोग है उसके साथ इंटीग्रेटेड, कि वो हमारा गुजरात के बारे में जाने, हम कश्मीर के बारे में जाने, तो यहाँ अलग अलग मंदिरों में खास करके ये शिव मंदिर का बहुत मातम है, तो उधर मैं आया हूँ, परिवार के साथ आया हूँ। और मेरे साथ तकरीबन 500 से ज्यादा लोग गुजरात में से आए हैं और तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग ये कुंभ में इधर जाएंगे प्रथम कुंभ में।
4: भगवान शिव का ये ऐतिहासिक मंदिर गुलमर्ग में है, इसे महारानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 36 सालों में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में सैलानी एक साथ यहाँ पहुँचे हों और कश्मीर घाटी में इस तरह के बड़े धार्मिक समागम और भाईचारे का एक नया अध्याय लिखा हो, लेकिन अभी इन्हें और दूर जाना है।
6: दर्शन किया, हमको बहुत अच्छा लगा, इसका प्रभाव भी है कि हम दर्शन करके पावन हो गए हैं ऐसा लगता है। और हम क्या है, हिंदू और सिंधु संस्कृति आगे से जो चली जाती है वो एक हो, एकजुट हो, ऐसा हमारा भी ये कर्तव्य है।
4: सिंधु दर्शन का ये 30वां साल है और इस बार इसे प्रथम सिंधु कुंभ यात्रा के तौर पर मनाया जा रहा है। ये यात्रा जम्मू कश्मीर से जाते हुए लेह लद्दाख तक जाएगी। 17 से 30 जून तक चलने वाले इस यात्रा उत्सव का मकसद राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत और देशभक्ति को बढ़ावा देना है, साथ ही देश के रंग बिरंगे छटा को देखना भी। हर साल हजारों यात्री इस भव्य तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और सिंधु महोत्सव के दौरान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उत्तराखंड के पौड़ी में आस्था और भक्ति की महक बिखरी हुई है, यहाँ श्री कंडोलिया ठाकुर के सालाना पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।

0: पौड़ी गढ़वाल की सांस्कृतिक पहचान और आस्था के प्रतीक हैं भगवान श्री कंडोलिया ठाकुर। पौड़ी शहर के आराध्य देव कंडोलिया ठाकुर का सालाना उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। खास बात यह है कि पौड़ी के लोग जो देश के विभिन्न शहरों में रहते हैं, इस खास अवसर पर पौड़ी पहुंचकर कंडोलिया भगवान का आशीर्वाद लेने से नहीं चूकते। श्रद्धालुओं का मानना है कि कंडोलिया ठाकुर पौड़ी वासियों के सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, इसलिए इस वार्षिक पूजन में शामिल होना उनकी आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खास आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी जाती है। मंदिर परिसर की साफ सफाई से लेकर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और भंडारे की तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि इस खास अवसर पर 80,000 से 1,00,000 लोग पूरी श्रद्धा से यहां आते हैं, इसलिए खास व्यवस्था भी की जाती है।
1: मार्च के लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में हम लोग इसके लिए मीटिंग शुरू करने लगते हैं। प्रॉपरली हम मई से एक हर हफ्ते संडे के दिन इसके लिए बैठते हैं, रूपरेखाएं तैयार होती हैं, समितियां बनाई जाती हैं, भाई आपने किसी को सिलेंडर की, किसी को राशन की, किसी को बाजार से व्यवस्था करनी है, मार्केट घूमना है, कलेक्शन करना है, इस टाइप की हम व्यवस्थाएं तैयारी प्रॉपर शुरू से कर लेते हैं।
0: हालांकि शुक्रवार यानी 19 जून से श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और भंडारे का शुभारंभ हो गया है और आज इसका समापन होना है, लेकिन भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर साल यहां भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
2: ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसका आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि वन क्षेत्र है, यहाँ पर एक दिक्कत ये भी होती है कि सारी व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल होता है, सारी चीजें लेके आनी पड़ती है और फिर वापस भी देनी पड़ती है।
0: उत्तराखंड के पौड़ी शहर का कंडोलिया मंदिर आस्था और धार्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है और इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं।
3: काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी, तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहां पर स्थापित किया गया। तो ये डुमरियाल नेगी की जो जाति के लोग हैं वो इसके पुजारी होते हैं, वो इसके उन्हीं के संरक्षण में ये यहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी। क्योंकि ये क्षेत्रपाल भूमिया देव के रूप में स्थापित है, तो जिस ढंग से वो गांव नगर की तरफ बढ़ा, गांव से नगर हुआ, नगर से आज इतना बड़ा बड़ी आबादी है, तो उसी हिसाब से श्रद्धालुओं की भक्तों की संख्या बढ़ी है। तो मूलतः इसे हम जो कहा मतलब कथा कही जाती है, जो कुमाऊं में गोलू हैं, गोलू देवता गोलजू कहते हैं, जैसे चितई में चंपावत में है, घोड़ाखाल में है, तो उन्हीं उसी में से ये उसी का रूप है, मतलब वही देवता है। तो यहाँ पर हमने कंडोलिया कहते हैं, वो कंडोलिया से नाम पड़ गया कि क्योंकि उन्हें उस समय कंडी में लाया गया।
0: श्रद्धा सेवा और सामुदायिक सहयोग का ये अनूठा संगम हर वर्ष पौड़ी की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है और पौड़ी गढ़वाल के लोगों की भगवान कंडोलिया ठाकुर के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मॉनसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में अब झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई में अब तक इतनी बारिश हो चुकी है कि कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है, मगर पहले से की गई तैयारियों की वजह से मुंबईकरों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है और अब उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा।

0: मुंबई को जिस बारिश का कई हफ्तों से इंतजार था उसकी शुरुआत हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश हुई तो सबके चेहरे खिल गए। लंबे समय बाद मुंबईकरों को गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। इस महीने की शुरुआत में मॉनसून दक्षिणी कोंकण तक पहुंच गया था, लेकिन 8 जून से सोलापुर के पास रुका था। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जताया था कि 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र और इससे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है, लेकिन मॉनसून यहां भी मौसम विभाग के अनुमान से पहले राहत लेकर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासकर 25 और 26 जून को मॉनसून और मजबूत होगा, जिससे मुंबई में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून के आसपास मॉनसून महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। 21 से 26 जून के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। जहां तक दिल्ली की बात है तो मॉनसून के लिए दिल्ली को जुलाई के पहले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। आमतौर पर यह 27 जून के आसपास आता है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 25 जून तक मॉनसून की एंट्री हो सकती है। मॉनसून लेट होने से कम बारिश दर्ज की गई है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि 23 जून से वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर पड़ने लगेगा, तब मॉनसून के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनेंगी और मॉनसून की एंट्री हो सकती है। मॉनसून के लिए देश में एक बार फिर से अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी है, जिससे उम्मीद है कि 23 जून से मॉनसून आगे बढ़ेगा, जिससे यह तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी प्री मॉनसून एक्टिव है। इसके बावजूद 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। दिल्ली में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली NCR में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। बारिश और बादलों की वजह से तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो पूरी दुनिया पर फीफा का फीवर किस तरह से चढ़ा है, इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: States, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
5: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
6: Jack, come home. It's supper time.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
7: Could you play that one song with the words?
5: Jack FM, playing what we want.
8: But Raat Sachai Ki, Raat 9 Baje.
9: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
10: Aur durbhagya kehta hai
9: ki bhagya kahin dur nahi.
11: Avishwas mein vishwas basta hai.
9: Jo hum mein achhai jagata hai, hame गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है। दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों पर वर्ल्ड कप का खुमार साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर से लेकर मैचों की मेजबानी कर रहे स्टेडियम तक हर तरफ जश्न और उत्साह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। अपने पसंदीदा टीमों को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में फैंस सड़कों पर और फैन जोन में जुट रहे हैं।
13: तो वहीं आपको बता दें, रंग बिरंगे झंडे हों, टीमों की जर्सियां हों और जीत के नारों के बीच वर्ल्ड कप एक वैश्विक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। और खेल के मैदान के अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया में फुटबॉल थीम पर खास बेकरी की डिमांड बनी हुई है। यहां सुनहरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो, सॉकर बॉल और टीम के मैस्कॉट के आकार की कोंचास यानी कि बेकरी का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।
1: और देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लॉस एंजलिस में ही लाखों मैक्सिकन मूल के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस शहर में मैक्सिको टीम को जबरदस्त सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि कोंचास मैक्सिको की एक मीठी ब्रेड है जिसे अक्सर हॉट चॉकलेट या कॉफी के साथ खाया जाता है। ये इस इलाके में मैक्सिकन और आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लोग अपनी पसंदीदा टीम के रंगों वाली ब्रेड खाकर अपने समर्थन को दिखा रहे हैं।
14: एक ऐसा खेल जो सरहदों की सीमाएं मिटा देता है, और जब बात फीफा वर्ल्ड कप की हो तो दीवानगी अपने चरम पर पहुंच जाती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर दुनिया भर में फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। लोग अपने अपने अंदाज में फीफा वर्ल्ड कप का जश्न मना रहे हैं। कहीं चेहरे टीम के रंगों से रंगे हैं, तो कहीं जीत की उम्मीद में फैंस सड़कों पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। फुटबॉल का ये जुनून हर देश, हर शहर और हर दिल में साफ नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों फैंस विशाल स्क्रीन के सामने जमा हुए, और जैसे ही गेंद गोल पोस्ट में पहुंचती है पूरा इलाका तालियों, नारों और खुशी की चीखों से गूंज उठता है। चेहरे पर टीम के रंग, हाथों में झंडे और दिल में जीत की उम्मीद। दुनिया के कोने कोने से आए फैंस अपनी टीमों का हौसला बढ़ाने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। अर्जेंटीना हो, ब्राजील, स्पेन या इंग्लैंड, हर टीम के समर्थकों का जोश देखने लायक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा, यानी आज रात का मैच बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि लियोनेल मेसी वर्सेस किलियन एम्बापे होने वाला है, जिसको लेकर फैंस के बीच भारी उत्साह है। अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से रात 10:30 बजे से डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले मुकाबले में हैट्रिक गोल दागकर टीम को शानदार जीत दिलाने वाले मेसी से एक बार फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, और मेसी के फैंस ने अभी से जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेसी के फैंस की दीवानगी अपने चरम पर है। स्टेडियम हो या फैन जोन, हर तरफ उनके नाम के नारे गूंज रहे हैं। कोई उनकी जर्सी पहने दिखाई दे रहा है तो कोई चेहरे पर उनके नाम और टीम के रंग सजाए हुए हैं। अपनी टीम की जीत की उम्मीद में फैंस झूमते नाचते और गीत गाते नजर आ रहे हैं। जीत के नारों और उत्साह से भरे माहौल ने मुकाबले से पहले ही जश्न का रंग जमा दिया है, जबकि समर्थकों को भरोसा है कि मेसी एक बार फिर अपने जादुई खेल से टीम को जीत की राह दिखाएंगे। खेल के मैदान से लेकर बेकरी शॉप तक फीफा का फीवर देखा जा सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फुटबॉल थीम पर बनी खास बेकरी की डिमांड भी है। यहाँ सुनहरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, सॉकर बॉल और टीम के मस्कट के आकार की कुंचा यानी बेकरी का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: और इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल इतना ही,
1: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अक्षर पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
4: Good news today, friends.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: INS Mahendragiri और INS Malwan जुलाई में नौसेना में होंगे शामिल। INS Mahendragiri को विशाखापट्टनम में तो INS Malwan कोची के बेड़े में किए जाएंगे शामिल। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा लगेगा जुर्माना। कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी, डिजिटल कंट्रोल रूम से मिलेगी ऑटोमेटिक अलर्ट की सूचना। पश्चिम बंगाल में राज्य कर्मचारियों का दिए 20% बढ़ा। विधायक फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया। शुभेंदु सरकार ने पहले बजट में किए बड़े ऐलान। मुंबई में प्री मानसून की बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। कई इलाकों में भरा पानी, अगले 48 घंटों में मुंबई पहुंचेगा मानसून। हंगरी में दिखे सनातन और भारतीय संस्कृति के रंग। बुडापेस्ट में पवित्र पादुकाओं के साथ निकाली गई भगवान विट्ठल की भव्य पालकी यात्रा। कृष्ण भक्ति में झूमते हुए नजर आए भक्त। गांधरबल में धूमधाम से चल रहा है खीर भवानी मेला। माता का किया गया विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
4: जम्मू कश्मीर में आस्था और परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का आज से शुभारंभ, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। श्रद्धालुओं ने मां रागन देवी की उतारी विशेष आरती, मां रागन देवी के लगाए जयकारे। गांधरबल के खीर भवानी मंदिर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, विधि विधान से पूजा अर्चना की। खीर भवानी मेले को लेकर गांधरबल में तैनात किए गए डॉक्टर की टीम, दवाई भी कराई जा रही है उपलब्ध। गांधरबल में खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर के आसपास इलाकों में तैनात किए गए जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तीसवीं सिंधु दर्शन यात्रा में आस्था का मेला, गुजरात से पहुंचे 1200 से ज्यादा श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने महादेव की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पिछले 36 सालों में पहली बार पहुंचे बड़ी तादाद में सैलानी, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। ये यात्रा राष्ट्र प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में मनाई जाती है। यात्रा राष्ट्र एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना का संदेश है। सिंधु दर्शन यात्रा जम्मू कश्मीर से होते हुए लेह लद्दाख तक जाएगी, 30 जून तक चलेगी यात्रा। पुंछ में बैराम गला मंदिर में वार्षिक उत्सव की रौनक देखने को मिली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया अनुष्ठान, जमकर लगाए जयकारे। बैरमगाला मंदिर में वार्षिक उत्सव पर भंडारे का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। मंदिर में वार्षिक उत्सव में दिखा आपसी भाईचारे का अनूठा संदेश, पूजा में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई समेत सभी समुदायों के लोग शामिल हुए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दरबार में पहुंचा बाबा रामदेव पहुंचे, विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिनों तक मंदिर के कपाट पूरी तरह से रहेंगे बंद। 3 दिनों तक किसी तरह की कोई पूजा अर्चना, आरती या अन्य कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। मंदिर में दर्शन के लिए सभी ऑफलाइन विशेष दर्शन काउंटर्स को बंद किया गया। विशेष दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास करना होगा बुक। मंदिर परिसर खास शुद्धिकरण अनुष्ठान करने के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। 26 जून तक चलेगा मेला। मेले को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी, भक्तों के लिए कई जगहों पर की गई शिविर और भोजन की व्यवस्था। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अनंतनाग में सेना जम्मू पुलिस ने स्टेशन पर मॉक ड्रिल के इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने को लेकर तैयारी की गई, आपसी तालमेल को भी परखा। अट्ठाईस अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से भक्तों की लगी

उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे टीवी अभिनेता अर्पित रांका और सौरभ जैन, महाकाल के दर्शन किए। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विधि विधान से की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। रोहतास में शिक्षक की बेटी सानिया कलीम ने 70वीं बीपीएससी में कमाल किया, हासिल की 299 रैंक। जमुई के बेटे बने एसडीएम, फादर्स डे पर पिता को दिया बीपीएससी में सफलता का तोहफा। इम्फाल में विश्व संगीत दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।

पन्ना में फिर खुली किसान की किस्मत, नोएडा के किसान परिवार को मिला 6.5 कैरेट का हीरा, 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। भारतीय सेना ने तुलेल गुरेज में 4 पर्यटकों का रेस्क्यू किया, पानी में फंस गई थी सैलानियों की गाड़ी।

मुजफ्फरपुर के प्रत्यूष बने एसडीएम, फादर्स डे पर पिता को दिया बीपीएससी में सफलता का तोहफा। सहरसा की श्वेता और शिवम ने 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में कमाल किया। श्वेता ने 541 रैंक जबकि शिवम 965 रैंक हासिल कर चुके हैं। यूपी के प्रतापगढ़ की श्रद्धा पांडे ने बीपीएससी परीक्षा में टॉप किया, परिवार में खुशी की लहर। हैदराबाद की सड़कों पर चढ़ा फीफा का खुमार, गची बोवली फ्लाईओवर बना ओपन एयर फुटबॉल गैलरी। खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना फुटबॉल गैलरी, पिलर्स पर दिखे दिग्गज खिलाड़ी।

0: नौसेना की और बढ़ेगी ताकत। नौसेना में शामिल होंगे दो नए युद्धपोत INS महेंद्रगिरी और INS मालवान। जुलाई में महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में किया जाएगा कमीशन, जबकि मालवान को कोची में नौसेना में किया जाएगा कमीशन। दुश्मन के रडार से छिपने और एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है INS महेंद्रगिरी। छठा स्वदेशी युद्धपोत है INS महेंद्रगिरी। ओडिशा में पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है युद्धपोत का नाम। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किया गया निर्माण। भारतीय नौसेना को स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है INS मालवान। समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने और लड़ने में सक्षम है। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचे प्री मानसून, कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश। भारी बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत, अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र पहुंचेगा मानसून। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आवाजाही हुई प्रभावित। मुंबई के बांदा में भी मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भरा पानी। पुणे में भी कई इलाकों में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव। तमिलनाडु की नीलगिरी में भारी बारिश, बस स्टैंड से भरा पानी। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। पटना में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद, भीषण गर्मी के चलते डीएम कुंदन कुमार ने जारी किया आदेश। बिहार में स्कूलों की बदली टाइमिंग, अब सुबह 6:30 बजे खुलेंगी क्लासेस। थूथुकुड़ी में तेज चक्रवाती हवाओं से भारी नुकसान हुआ, कई इलाकों में घर और दुकानें क्षतिग्रस्त। अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा बरकरार, सिंगर के नाम पर रखा जाएगा पब्लिक हॉलिडे। 6 जनवरी 2027 को दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा पब्लिक हॉलिडे। दिलजीत दोसांझ हुए इमोशनल। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी बनेगी दुल्हनिया, अंशुला कपूर की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू। बॉक्स ऑफिस पर चला शाहिद और कृति सैनन और रश्मिका मंदाना का जादू, फिल्म कॉकटेल 2 ने 3 दिन में 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई। मां इंती बंगारम में हुई नोटों की बारिश, 3 दिनों में की 41 करोड़ से ज्यादा की कमाई। बुडापेस्ट में पहली बार पहुंची भगवान विठल रुक्मिणी की पवित्र पादुकाएं, भारतीय समुदाय ने भक्ति और उत्साह के साथ किया स्वागत। विदेश में भारतीय संस्कृति और वारकरी परंपरा का दिखा अनूठा संगम, पादुका दर्शन, भजन कीर्तन और प्रार्थना का भी आयोजन। बुडापेस्ट के हीरो स्क्वायर में पवित्र पादुकाओं की निकाली गई भव्य पालकी पदयात्रा, गूंजे विठल नाम के जयकारे। भारतीय बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में बिखेरे संस्कृति के रंग, भजन भक्तिमय गायन ने लोगों का मन मोह लिया। विदेश में भी जीवंत है पंढरपुर वारी की परंपरा, स्थानीय लोगों ने इस अनूठी भारतीय परंपरा को करीब से देखा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: जो July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
0: Khabri, kuch jeb par asar dalti hai, to kuch dil ko chho jaati hai. Aisi har ek khabar, jiska zindagi par hai asar. जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: इन्हें देख आप खुद समझ जाएंगे कि कभी कभी हमें जिनसे खतरा होता है वही हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। वीडियो में देख रहे बत्तख के बच्चों का एक झुंड अपनी माँ से बिछड़ गया, जहाँ उनकी मुलाकात इस गोल्डन रिट्रीवल पिल्ले से हुई। बत्तख के बच्चे इस पिल्ले के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो वो जब इन्हें सूंघ कर जाने लगा तो वो भी उसी के पीछे हो लिए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Hanging out at the pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: खबरें तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: INS महेंद्रगिरी और INS मालवान जुलाई में नौसेना में होंगे शामिल।

0: INS महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में तो INS मलवान कोची के बेड़े में शामिल होगा। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट केयर, प्रति घंटा लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम में होगी लाइव निगरानी, डिजिटल कंट्रोल रूम से मिलेगी ऑटोमेटिक अलर्ट सूचना। पश्चिम बंगाल में राज्य कर्मचारियों के लिए 20% बढ़ा, विधायक फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया, शुभेंदु सरकार ने पहले बजट में किए बड़े ऐलान। अपने तिलक समारोह में जमकर थिरके भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप, वीडियो हुआ वायरल, 24 जून को वाराणसी में हो रही है आकाश की शादी। मुंबई में प्री मानसून की बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, कई इलाकों में भरा पानी, अगले 48 घंटों में मुंबई पहुंचेगा मानसून। हंगरी में दिखे सनातन और भारतीय संस्कृति के रंग, बुडापेस्ट में पवित्र पादुकाओं के साथ निकाली गई भगवान विट्ठल की भव्य पालकी यात्रा, कृष्ण भक्ति में झूमते हुए नजर आए भक्त।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी। लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। आज तो हम पहुंच गए हैं खूबसूरत से नेल सैलों में, और जिस तरह आज यहां पर है ना नेल पेंट्स की वैरायटी, उसी तरह है हमारे पास भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस खूबसूरत सफर पर। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड विद आवर हेडलाइन।
1: और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, बिगड़ेगी नौनिका की तबीयत, ईशान को होगी चिंता,

0: हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अपनी शिफ्ट के लिए लेट होना है तो अपने रिस्क पे हो।
1: आरंभ ही मारेगी अवंतिका को थप्पड़, होगा सच का खुलासा। रूहानी और गुरु के प्यार को

0: और युग की शुरू होगी नोक झोंक।
1: आज इस मंच पर चार सुपरस्टार जो आई हैं, वो चार अलग अलग पीढ़ियों से आई हैं।
0: तुम होना में गेम के साथ साथ लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का।
1: परिवार को कई बार नहीं जानती है, आज पहली बार एक बहुत ही युवा सुपरस्टार इस मंच पर खड़ी है।
2: मैं हूँ थोड़ा सनकी, करूं मन की, कभी गाना लगा दे थोड़ा फन की, नहीं मन की, नहीं धन की, ये बात है तेरे तन की।
0: और जूनियर बच्चन सतलुज यानी कि अंश संग करेंगे डे आउट, जानेंगे उनके बारे में कई बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: तो क्या अब भी है इस कहानी में इश्क का जुनून या फिर किसी नए ट्विस्ट का? ओह माय गॉड, अब ट्विस्ट तो लेकर आता है कहानी में ड्रामा, यानी हम सब के लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको गुरु और रूहानी के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। लेट्स चेक इट आउट।
1: गुरु और टकराव।

0: तेजस्वी के काले इरादे।
1: पहले मैं गुरु को अपना बनाऊंगी, फिर उससे शादी करूंगी।
0: क्या आ जाएगी मियां बीवी के रिश्ते में दरार? दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भाई मामी और तेजस्वी ने ठान लिया है कि वो गुरु और रूहानी की मेहंदी की रस्म को खराब कर ही रहेंगे। तभी तो एक के बाद एक कोई न कोई नए षड्यंत्र वो चल ही रहे हैं। भाई सबसे पहले तो मामी ने घर की लाइट निकाल दी, देखिए कैसे मीटर बॉक्स में वायर का फेर बदल कर घर की लाइट चली गयी, जिसके बाद उन्होंने जमीन पर गिराया तेल, जिसके चलते रूहानी फिसल कर गिर जाए, और तीसरी बारी में उन्होंने आरती की थाली को ही गर्म कर दिया। भाई सबसे पहले तो गुरु और रूहानी मीटर बॉक्स के पास आ ही रहे होते हैं कि फर्श पर गिरे तेल से रूहानी फिसल कर गिरने वाली होती है, लेकिन गुरु उसे संभाल लेता है और दूर खड़े मामी और तेजस्वी ये नज़ारा देखकर अपने प्लान के फ्लॉप होने पर अफसोस करते हैं।

0: 반성해봐요. 이게 되게 생겨나요.
1: और दूसरी बार में देखिए कैसे जैसे ही कुसुम आरती की थाल पकड़ने जाती है, भाई रूहानी उसे गिरा देती है क्योंकि थाली गर्म थी, जिसके चलते कुसुम का हाथ जल जाता। भाई इन सब के पीछे भी मामी और तेजस्वी की ही चाल थी।
2: ओ मेहरबा
3: वो करता
2: था कहां चल जाता है।
3: ना तो तुम्हें बचा पा रहे ना तुम्हारी कोई मदद कर पा रहे।
4: नहीं माँ, अब जितनी मदद कर सकती है उतनी कर रहे हैं ना। ये सब चाल बिछाएगा था मेरे लिए बस मैं आ पा रही थी। तीन छोड़ मामी मेरा हाथ चलाना चाहती थी ताकि गुरु मेरे हाथ में मेहंदी ना लगा पाए।
3: उन दोनों की इतनी हिम्मत, हम अभी जाकर उनकी कर्तव्य को पर्दाफाश करते हैं।
4: नहीं मामी, शायद महातरानी ने दोनों की परीक्षा ली थी। मैं परीक्षा किसी और की मदद से पास नहीं करना चाहती।
3: माता रानी करे तो अपने हर प्रयासों में सफल रहो।

0: हेलो निकी, सुनो, चिट्ठी में बर्फ है और जले पे लगाने वाली दवाई और सारे टूथपेस्ट सब गायब कर दिए।
1: और क्या करने वाले?
0: बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा, पर अभी जो मैं बोल रही हूँ ना तो वो कर, ठीक है?
2: भाई जब इन सब से ये दोनों बाज नहीं आए तो देखिए कैसे तेजस्वी ने गुरु के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि वो अपने होश गवा बैठा और उसी के कमरे में आकर तेजस्वी बना रही है वीडियो जो वो पूरे घर को दिखा सके, साथ ही साथ रूहानी को भी। भाई यहाँ बेहोश पड़ा गुरु, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस बात का पूरा फायदा उठा रही है तेजस्वी। ऐसे में अब ये वीडियो किस तरीके से गुरु और रूहानी के रिश्ते में दरार लेकर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो हमारी डॉक्टर आलम भी हमसे यही कह रही हैं कि जो जो लड़कियां जरूरत से ज्यादा लंबे नाखून रखती हैं ना, उन्हें तो अवैध हथियार रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लेना चाहिए। एक्चुअली मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने लंबे नाखूनों को लड़कियां मैनेज कैसे करती हैं। फिलहाल यहाँ पर तो आरंभी के लिए भी कुछ चीजों को मैनेज कर पाना हो रहा है बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी लगातार आ रहे हैं ट्विस्ट, लेकिन ये ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको डॉक्टर आरंभी के सेट पर।
4: हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी बॉस हूँ, अपनी शिफ्ट के लिए लेट होना है तो अपने रिस्क पे हो।
2: अवंतिका को पड़ा आरंभी का थप्पड़।

0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरहान को किडनैप करवाने की?
1: सामने आया किडनैपिंग का सच।
0: जब मैं जाके विश्वास को बताऊंगी तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया है,
1: उड़े आरएमपी के होश।
2: फरहान की किडनैपिंग मैंने और विश्वास से मिलकर करवाई थी।
1: कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी इस खोज में लगी थी कि आखिरकार उसके बेटे की किडनैपिंग किसने करवाई है, और आखिरकार उसे सबूत मिल ही गया। उसे पता चल गया कि अवंतिका ने ही उसके बेटे की किडनैपिंग करवाई थी, जिसके बाद देखिए कैसे वो पहुंच गई है अवंतिका से सवाल जवाब करने के लिए। इतना ही नहीं, आरंभी ने आज अवंतिका को थप्पड़ भी जड़ दिया।
2: हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी बॉस हूँ, अपनी शिफ्ट के लिए लेट होना है तो अपने रिस्क पे हो।

0: दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की?
1: सवाल मैं करूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरहान को किडनैप करवाने की?

0: की जा रही हो? इतना बड़ा छोटा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? नशे वशे करके आई हो क्या?
1: होश में आई हूँ।
0: ये सब क्यों? हद में रहो। आज तक तुमने अपनी बार की अवंत का मेरे बच्चे का किडनैप करवाया, उसे रुलाया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसे डराया, धमकाया, उसे भूखा रखा, उसे जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। तो तुम्हें थप्पड़ मार के अपनी हद पार करना तो बहुत मामूली सी चीज है मेरे लिए। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुमसे सवाल पूछने के लिए जमीन आसमान पाताल की हर हद हर सीमा हर लिमिट पार कर सकती हूँ मैं, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझी? तो मेरे साथ जैसा बर्ताव किया मैंने साथ मेरे बेटे के साथ जो तुमने किया है, उसे जो तकलीफ पहुंचाई है उसे रुलाया है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
2: लेकिन आरंभी को जोर का झटका तो तब लगा जब अवंतिका ने ये खुलासा किया कि आरंभी के बेटे की किडनैपिंग में अवंतिका के साथ साथ विश्वास भी शामिल था, जिसके बाद अब आरंभी को जोर का झटका लगा है।
0: तो तुम्हारा है ये सब, मैं डिजर्व करती हूँ, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ससुराल, सब कुछ। वैसे मेरी सलाह नहीं, मेरी धमकी समझना अवंतिका, पुलिस से तुम्हारे लिए की मैं दिलवाऊं। जब मैं जाके विश्वास को बताऊंगी तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया है, और फिर देखते हैं कि वो क्या करता है। विहान की किडनैपिंग मैंने और विश्वास ने मिलकर करवाई थी।
2: अब आरंभी अवंतिका और विश्वास दोनों को ही सबक सिखाएगी, लेकिन इससे पहले घर में टेंशन का माहौल था। असल में ध्रुव कर रहा है इन सभी को परेशान, और ऐसे में विश्वास के पापा भड़क गए हैं और लगा रहे हैं इल्जाम डिंपल पर।
3: प्रॉब्लम तो सबको पता ही, इन्वेस्टर्स रिश्ता तोड़ रहे हैं उसे, हॉस्पिटल में सबको ये बात समझ में आने लगी है। ऐसी बात कर रहे हो विश्वास? वो ग्रैंड कह रहे ऊंट के मुंह में खीरा जैसा है, उसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला।
4: टेंशन और
3: बढ़ा रही
4: थी।
3: और नंदिता, अगर बोलना ही है तो चुप चुप बोलो। जब से मुंबई आए हैं सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, कभी स्कैंडल, कभी बैड पीआर, कभी कुछ कभी कुछ।
4: उस वक्त बिना परिवार को बताए मुंह उठा के डॉक्टर बचे, हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे हमारे हॉस्पिटल में नौकरी देनी पड़ी। देखा उसने मेरा पॉडकास्ट कैसे सैबोटाज किया था,
3: उसने क्या किया क्या नहीं मुझे भी पता है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? पॉलिटिक्स से जो बार बार आरंभी का नाम है,
5: और डिंपल अगर घर परिवार की वजह से बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो तुम क्या कह रही हो, क्या कर रही हो तुम? अब कुछ बिगड़ता दिख रहा है मुझे, घर, काम, हॉस्पिटल, सब कुछ। देखो यहाँ आके इतना टाइम हो गया, मुझे एक चाय तक नहीं पूछिए किसी ने।
4: आरंभी को कहा तो था? देखो नहीं, मेरी आरंभी
2: कहीं हाथ से डील ना चली जाए, इसीलिए सभी लोग ध्रुव को सारी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। घर में चल रही है मीटिंग, ऐसे में आरंभी भी अपने सजेशंस दे रही है।
6: सो माय डियर डैनिस एंड बारवाली, अगर अगले कुछ दिन कुछ भी तूफानी करने की कुछ भी बचे तो बिल्कुल
2: आरंभी का ये मिशन जहाँ उसे अवंतिका का खुलासा करना है, तो वहीं ध्रुव की प्लानिंग। तो देखना होगा कि अब परिवार पर कौन कौन सी नई मुसीबतें आती हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: थैंक गॉड तुम हो ना,
1: कभी कभी जब लास्ट मिनट होना पड़ता है हमें रेडी, तो कुछ ऐसा ही कहती हूँ मैं अपने नेल पेंट से, और ऐसा ही कहते हैं यहाँ पर हमारे पॉपुलर होस्ट राजीव खंडेलवाल इन सभी कंटेस्टेंट से। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको तुम हो ना के इस मंच पर और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग। वेल, यहाँ भी हो रहा है धमाल। कैसे? ऐसे
7: हमारी इन सुपरस्टार से मिली, इन्होंने अपने केक बिजनेस की शुरुआत की 10x10 के मकान से, और आज वो पूरे शहर की सबसे फेमस केक शॉप है। जोरदार तालियां मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आई सुपरस्टार सावित्री राजपूत जी के लिए।
8: जब एक्सीडेंट हुआ, सामने वाले बोल रहे थे कि बंदा रहा नहीं, मैं तो उस टाइम पे तो कहीं, मेरा छोटा बच्चा था वो 1.5 साल का, फिर इन्हें जैसे जैसे आगरा लेके वो लोग, फिर हमने घर की जिम्मेदारी संभाली, बाहर वालों ने सपोर्ट किया, अपनों ने नहीं किया। जब इन्होंने बिजनेस डाला तो घर वालों ने ही मेरा बिजनेस सब ठप करवा दिया है।
7: सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ?
9: खेत की तरफ से आ रही थी लौट कर शाम के टाइम, तो वो शराब पी हुए थे, उन्होंने सीधी मार दिया आगे मुझे। इतनी परिस्थितियां खराब हो गई घर की, धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत जा।
7: आपने कर्जे की बात की, कर्जा किस चीज का?
8: सर, हस्बैंड को चोट लगी थी तो उस टाइम पे मेरे पास भैंसे थी, अब भैंस का आप जानते हो, दो चार महीने दूध देती 4 महीने के लिए ठप, तो वो जब बच्चों को पढ़ाते थे या इनकी दवा लाते या घर के कुछ काम होते, समझते सिटी में रहना बहुत मुश्किल है, तो हम अपनी चीज जैसे गिरवी रख देते, वहीं से पैसा ले आते थे, तो वो चलाते थे खर्चा जैसे चला, फिर हमने चीज की उम्मीद ही छोड़ दी, हमने अब नहीं छूटेगा मेरा कुछ भी। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी ऐसे आप केक बनाओ बेचो और वीडियो बनाओ, आ जाएगा कहीं से पैसा, मेरा बच्चा बहुत हिम्मत देने वाला।
7: पहला जो केक आपने बनाया वो प्रॉपर ओवन में बनाया, कैसे बनाया?
8: पहले मैंने चूल्हे पे शुरुआत की सर, कढ़ाई में, फिर मैंने गैस पे, फिर मैंने अपनी कमाई से OTG लिया, अब हम इनको करके दिखाएंगे कुछ तो हम बनेंगे।
7: ये मंच बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आज इस मंच पर 4 सुपरस्टार जो आई हैं वो 4 अलग अलग पीढ़ियों से आई हैं, और उन्होंने अपने जीवन में संजीवनी बूटी बनकर अपने परिवार को कई बार नई जान दी है। आज पहली बार एक बहुत ही युवा सुपरस्टार इस मंच पर खड़ी है, ये अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना चाहती है बल्कि बहुत कुछ करना चाहती है। जोरदार तालियां नागपुर से आई हमारी सुपरस्टार बेटी गीतिका अय्यर जी के लिए।
10: थैंक यू सो मच।
7: ये क्या हमेशा से ऐसी है?
10: थोड़ा बोल्ड टाइप की तो थी शुरू से ही, बट इतनी रेस्पॉन्सिबल निकलेंगे उसके फादर के लिए ऐसा लिवर वगैरह डोनेट करने का सोचेंगे।
11: जब लिवर डोनेशन का चल रहा था सब, तो उन्होंने बोला वो दे सकती हैं क्या, बट माय मदर इज अ कैंसर सर्वाइवर। आई वाज 19 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जब मैंने डिसीजन लिया। 40% अ डोनर कैन डाई, और ये जानते हुए मैंने लिवर डोनेट किया। जब मुझे होश आया तो 2 दिन बीत चुके थे सर्जरी, और मैंने पूछा कि मेरे पापा कैसे, और उन्होंने बोला कि पापा बहुत ज्यादा ठीक है अभी। मैं चल भी नहीं पा रही थी, मैं मूव भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन ही वाज ऑलराइट, तो इसलिए मैं ऑल पूरे टाइम मैं एनेस्थेसिया के इफेक्ट में थी, बट आई वाज स्माइलिंग ऑल द टाइम।
7: 21 साल की इतना कुछ करती है, इतना कुछ कर दिया उन्होंने।
10: इसको मैं शादी के जोड़े में अब देख पाऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो, एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे लगेंगी।
7: आपको इतनी जल्दी क्या है इन्हें शादी के जोड़े में देखने की?
10: क्योंकि कैंसर
12: जनरली एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो हम उसको जननी कहते हैं, लेकिन यहाँ एक बच्ची ने जो कि इतनी छोटी उम्र की है, उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, और उसने अपने पापा को जो लीवर दान किया है, शायद वो शब्दों में बयान करने जैसा नहीं है।
11: जब वो गुजरे तो वो मेरा लिवर था, उनके साथ चला गया, तो इसीलिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि वो आज भी जिंदा है, क्योंकि मेरा एक हिस्सा उनके साथ है, तो वो आज भी जिंदा है।
1: वो कहते हैं ना, व्हाट इज लाइफ विदाउट ड्रामा, और ऐसी हैं हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियां। कभी सोचा है आपने, अगर ना होता कहानियों में ड्रामा तो वो कैसी होती? ऑब्वियसली वो हो जाती डल एंड बोरिंग, सीधी साधी। तभी तो कहानियों के लेखक लेकर आते हैं इसमें नए नए ट्विस्ट और नया नया ड्रामा। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली कहानी की ओर, क्योंकि यहाँ भी है आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। कैसे? ऐसे।

0: जब नजर मियां बीवी की तकरार।
1: तुमने चार पूछ के एसी का वायर खींचा है ना, ताकि मुझे गर्मी लगे और मैं यहाँ पे गर्मी में बैठा रहा हूँ। तो ठंड लग रही थी ना, इसलिए क्या ना तुमने ये सब।
0: भड़का युग का गुस्सा।
2: इन सारे कामों में ना मेरा दिमाग नहीं चला, और इतनी तो कल है मुझ में कि एसी के फटने से आग लग सकती है। तुम्हारी और मेरी जान में खतरे में क्यों डालूंगी।
1: डायलॉग मत बोलो। अभी काम, तुम यहाँ पे गर्मी में बैठी रहो, ये डायलॉग मत बोलो, ठीक है?
0: टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में प्याज तन्वी सच धज कर नवारी साड़ी में एकदम मराठी अंदाज में बैठ चुकी है, लेकिन वो काफी टेंशन में है। साथ ही उसके चेहरे पर दिख रही है उदासी भी। ऐसे में कमरे में होती है युग की एंट्री, जो अपने कमरे को इतना साफ देखकर भाई सबसे पहले तो हैरान है, और दूसरा वो जता रहा है तन्वी पर नाराजगी, क्योंकि उसने उसके कमरे की साफ सफाई जो की है।
1: साफ सफाई ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे मुझे एंग्शियस फील होता है, है ना? मुझे मेरा रूम जीता जाता ही पसंद है। वहां इचल करण जी में तुम बॉस थी, इसलिए तुम्हारे तौर तरीके चलते थे, बट यहाँ पे आई एम द बॉस, इसलिए मेरे तौर तरीके चलेंगे यहाँ पे। और अगर तुम्हें ये शादी वादी निभानी है ना, तो इन सबके बीच में रह के निभाओ, समझी? लेकिन मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि ये जबरदस्ती वाले रिश्ते में ना मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, मेरा स्टाइल ही नहीं है। और हाँ, मुझे मेरा एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री ही पसंद है। अगर तुम्हें आदत नहीं है तो डाल लो, वरना स्वेटर पहन के बैठी। और ये बेड बेड ना इतना साफ सुथरा मुझे पसंद ही नहीं है, बेड के चादर में मुझे रिंकल्स पसंद है, समझी? नहीं पसंद मुझे।
0: भाई तन्वी पर गुस्सा उतार कर देखिए कैसे जब युग अपने बेड से उतर रहा होता है कि उसका पांव फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ऐसे में उसे देखकर घबरा जाती है तन्वी, और फिर वो उसे सुनाने लगती है, लेकिन यहाँ पर भी युग बाज नहीं आता। देखिए कैसे वो तन्वी को डरा रहा है।
1: मुझे तकलीफ थोड़ी ना होगी, कोई इंसान नहीं, मैं हूँ एक वेयरवुल्फ, एक इच्छाधारी भेड़िया। पूर्णिमा की रात को ना मेरे नाखून, मेरे दांत सब बाहर आ जाते हैं, मुझसे बच के रहना, वरना मैं खून भी पी सकता हूँ, समझी?
0: इतना ही नहीं, उसने तन्वी को तंग करने के लिए शुरू कर दिया है कमरे में लाउड म्यूजिक, जिसके चलते भाई तन्वी तो परेशान हो ही रही है, साथ ही घर वाले भी होंगे।
1: सबको मेरी लाउड म्यूजिक की आदत है।
2: अरे तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है।
1: जो आदमी हार्ट अटैक से उठते ही लोगों को मैनिपुलेट करने में लगा है, उसे क्या ये म्यूजिक से फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा?
0: भाई तन्वी तो काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन युग आवाज कम करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ आवाज और दूसरी तरफ एसी की ठंडक। भाई देखिए कैसे तन्वी यहाँ पर ठंड के मारे परेशान हो रही है। इसी बीच हो जाता है एसी में छोटा सा शॉर्ट सर्किट, और घबराकर तन्वी युग पर जा गिरती है, और देखने को मिलती है आंखों ही आंखों में छोटे से प्यार की झलक। लेकिन ये प्यार ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि युग तन्वी पर लगाता है इल्जाम।

0: तुमने चार पूछ के एसी का वायर खींचा है ना, हाँ, ताकि मुझे गर्मी लगे और मैं यहाँ पे गर्मी में बैठा रहा हूँ। हाँ? तो ठंड लग रही थी ना, इसलिए क्या ना तुमने ये सब।
1: एक मिनट, इन सारे कामों में ना मेरा दिमाग नहीं चलता और इतनी तो कर है मुझ में कि एसी के फटने से आग लग सकती है। तुम्हारी और मेरी जान में खतरे में क्यों डालूंगी।

तो देखा आपने, आज इस नेल सैलों में आकर मैंने करवा दी ना आपकी मुलाकात कितने खूबसूरत रंगों से। ऐसे ऐसे ही एक प्यारी सी मुलाकात की है हमारी टीम सास बहू और पेठा ने आपके फेवरेट सितारे से। पता है ये कौन है? ये चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। जी हाँ, आपका फेवरेट सेगमेंट सितारे से मुलाकात।

अमिताभ बच्चन का स्वैग। सतलुज की रियल दुनिया।

0: सास बहू और बेटियों में आज हमारे खास मेहमान हैं बरेली के बच्चन के बच्चन यानी कि सतलुज।
1: और हम सतलुज मैकेनिक का काम करते हैं, बिगड़ी गाड़ियों को सुधार देते हैं।
2: कचौड़ी अंदर से कच्ची थी।
1: कचौड़ी कच्ची थी इसलिए तो आपका रिश्ता पक्का नहीं हुआ भैया। अब अगर लड़ने झगड़ने का मार कुटाई का इतना ही शौक है ना तो थोड़ा शरीर बना लो अपना। ये बूंदों तरह पिटपिटा कर आ गए वहाँ पर, पूरे बरेली में हमारे नाम का इज्जत का फलौदा बना दिया।
0: जिनके साथ आज हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। सीरियल में तो सतलुज एंग्री मैन है, हंसते तक नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में है काफी जिंदा दिल। अपनी मम्मी से करते हैं बेहद प्यार, चाय बनाते हैं, डांस करते हैं, यानी है एकदम संस्कारी। और आज हम अंश के बारे में कई सारी बातें जानेंगे, देखेंगे उनका दिनचर्या, मिलेंगे उनकी मम्मी से, करेंगे घर से सेट तक का सफर, मिलेंगे रियल फैमिली से, ये हमें अपने सेट वाला बंगला भी दिखाएंगे, यानी कि होगा ये फन डे आउट। तो चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं अंश के घर पर और करते हैं इस डे आउट की शुरुआत।
3: दिन की शुरुआत हो रही है एंग्री बच्चन के साथ और इनका एंगर इतना है कि सारे ऑडियंस खींचे चले आ रहे हैं लेकिन इनके एंगर से, राइट?
4: वही सब इंतजार कर रहे हैं कि एंगर खत्म होगा कि नहीं होगा। मुझे तो ये भी लोग बोलते हैं कि आप हंसोगे कब, आप हंस क्यों नहीं रहे अभी तक। तो मैंने कहा कि मुस्कुराने का भी सही वक्त आता है दोस्त, जब आएगा तब मुस्कुराएंगे, लेकिन एक ही बार मुस्कुराऊंगा बस। मेरी फैमिली बहुत लकली अभी आई हुई है, जब शो लॉन्च हो रहा है, शो का सब कुछ चल रहा है, तो ये एक एक्सपीरियंस, मतलब एज अ प्राउड मदर और एज अ प्राउड सिस्टर फादर ये तो सब चाहते हैं कि हो जाए। तो शो के लॉन्च के एक हफ्ता पहले ही वो लोग आए थे एंड उनको पता भी नहीं था कि अभी लॉन्च हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्रेजी बहुत अच्छी बात है, बाकी दिस इज़ वेयर आई स्टे, वेयर आई लिव, और अब इसके बाद हम लोग घर पे जाएंगे एंड वील

0: भाई हम पहुंच गए हैं अंश के घर पर और चलिए मिलते हैं उनकी मम्मी से, क्योंकि अंश है मम्मी के लाडले बेटे।
1: मेरी मम्मी है, अगर आपको मैं थोड़ा सा भी ब्यूटीफुल लगता हूँ तो वो यहीं से आता है, फुल इनकी देन है। और इन्हीं की वजह से मैं एक्टर बन भी पा रहा हूँ, मैं चीज़ें कर भी पा रहा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप अब मेरे बारे में कुछ कहना चाहोगे?
2: मतलब हम तो देख देख के बस रोने लगते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम रोने लगते हैं तो ये लोग सब, मतलब लगता तो है ही। और बार बार अभी सुबह भी इसको हम बोल रहे थे, आप लोग आ रहे थे कि इतना बड़ा दिन है, तुम भगवान को थैंक यू बोलो बार बार बार बार। तो हम लोग तो बस यही ब्लेस्ड इतना फील कर रहे हैं कि बस भगवान को बार बार थैंक यू बोलते रहते हैं।
1: लेकिन मैं एंग्री हूँ एक्चुअली, ये आप बता सकते हो सबको?
2: इसका वैसा है कि गुस्सा आया और दो मिनट में एकदम ठीक हो जाता है, वैसा वाला है,
1: क्योंकि ये लोग मुझे परेशान कर देते हैं।
0: तो भाई मम्मी से भी मिलिए, अब बारी घर की सैर करने की। वैसे अंश को बुक्स पढ़ने का काफी शौक है और आज वो दिखा रहे हैं अपने बुक्स का कलेक्शन।
1: तो ये मेरा क्यूट सा ड्राइंग रूम है। दीज आर अ फ्यू बुक्स दैट आई रीड। इनमें से मैंने सब आधी आधी पढ़ी है, एक भी पूरी नहीं पढ़ी है। फेवरेट इसमें से फाइबल से मेरी वो कहूंगी यार मम्मा, जो हम लोग पढ़ रहे थे साथ में। मेरी सबसे पहले तो लाइफ की पहली बुक ये थी, द एक्टर प्रिपेयर्स। ये मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड करी थी तो मैंने ये पूरी पढ़ी है। और इसके बाद एक बुक मैंने और पूरी पढ़ी है, वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। वो बहुत अच्छी बुक है अगर आपको पढ़नी है तो। देन आपको अगर अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसिस के बारे में कुछ सीखना है तो ये एक किताब है जो आप सीख सकते हो, रिच डैड पुअर डैड, वेरी गुड बुक। फिर ये रही, अच्छा ये किताब, बेसिकली मुझे हिंदी का सबसे ज़्यादा शौक है अपनी लाइफ में, अंग्रेज़ी से ज़्यादा मुझे हिंदी पसंद है, तो मैं हिंदी लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। और ये किताब है नौकर की कमीज, विनोद कुमार जी की। ये किताब मेरे लिए मतलब इतनी फन किताब है ना, इसमें हिंदी इतने प्यार से लिखी है, मतलब आप दो पन्ने पढ़ लो तो आपको ऐसे हो जाएगा हाँ क्या क्या बोल दिया। तो बहुत अच्छी किताब है ये भी। या ये मेरी दो तीन फेवरेट किताब है। अब मुझे अगली पढ़नी है ऑब्सेस्ड, इस पे मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना इस किताब के बारे में। सो दिस इज माय थोड़ा सा एक क्यूट सा रीडिंग कॉर्नर। नीचे क्रेयॉन्स वाली बुक्स भी पढ़ी हैं। हाँ, ये बेसिकली मुझे, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था तो मुझे ये दिखा तो मैंने कहा यार इसको मैं सजाऊंगा, लेकिन तब से मेरे दिमाग में कुछ भी ख्याल नहीं आया कि इसको मैं क्या सजा सकता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने थोड़े से छोटे टॉयज कैंडल, और इस पे मुझे एक प्लांट डालना है जो इनका काम था डालना लेकिन ये भूल गई हैं बट और ये मेरा बॉम्बे में पहला थिएटर ग्रुप था, ये उनकी फ़ोटो है, ये मेरी बहन ने मुझे एक रिसेंटली गिफ्ट दिया था उसका मेमोरी है, और ये मेरे दो भाई हैं, ऐसे ही मेरे दो और भाई हैं, ये सब लोग मेरे साथ बचपन से हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ भी अभी लगानी बाकी क्योंकि हम रिसेंटली घर में शिफ्ट हुए हैं। रतन टाटा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखना है मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत भी ऐसे बन गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बाकी ही तो एवरीथिंग। मैंने इनके बाद तो मार्वल देखना ही बंद कर दिया भाई साहब। आयरन मैन ने अगर हमें इतना बचाया है दुनिया से तो आप कैसे उसको छोड़ सकते हो। हर दिन अपने आप को कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, आई लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, क्योंकि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत पुरानी कहानी है कि शुरू क्यों किया था। तो मैं इसको रोज़ पढ़ता हूँ घर से निकलते हुए, अलग ही मोटिवेट होकर निकल जाता हूँ फिर। बाकी हाँ ये भी एक है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट है मेरे हिसाब से, ऑलवेज ट्राई जस्ट वन मोर टाइम, क्योंकि आप इतना रिजेक्ट होते हो ना ऑडिशंस में रोज़, तो वो एक बार और कर लो खुद को अगर आपने बोल दिया तो बहुत ही आप सही कर सकते हो अपनी लाइफ। ये तो कुछ मैंने अपने टू डू लिस्ट बनाई थी इस साल की, ये उसको मैंने सजा के इसलिए रखा है यहाँ पर ताकि मैं इसको उतनी इज्जत से पढ़ पाऊँ। स्लीप एट 10, 11, वेक अप एट 6, बिल्ड योर साइड इनकम बहुत ज़रूरी है। एक पास था वो कुछ था, फिर ये भी था, इफ यू वांट मेक इट बिग फिक्स योर लाइफस्टाइल शेड्यूल फ्रेंड्स हार्डवर्क एंड माइंड और गेट अप एंड वर्क स्टॉप क्राइंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव और हैव लॉस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट यू कैन बी एंड स्टॉप डूइंग अच्छा PDA ऑफ योर लाइफ ऑन इंस्टाग्राम। इतना भी मत करो कि तुम्हें अपने आप ही नजर लग जाए। दिस इज व्हाट आई मेंट। तो ये सब मैं अपने आप को रोज पढ़ने के लिए लिखता हूँ।
0: अब बारी अंश के सरप्राइज की। भाई काम के चलते अंश मुंबई में रहते हैं और फिलहाल उनकी फैमिली यहाँ आई हुई है, लेकिन आज ही उनकी मम्मी वापस जाने वाली है। ऐसे में आज अंश ने सरप्राइज प्लान किया है और वो बनाने वाले हैं अपनी मम्मी के लिए स्पेशल वाली चाय।
1: आपको पता है मम्मी आई हुई है और इस ट्रिप का उनका ये लास्ट डे है लाइफ का नहीं तो क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा ये सोचा था एज अ जेस्चर, क्योंकि इस ट्रिप पे अगर मेरी फेवरेट डिश कोई रही है तो चाय पराठा है, क्योंकि वो पराठा से भी औरत बना सकती है और वो चाय से भी औरत बना सकती है। तो क्योंकि अब मैं कुछ करना चाहता तो आज चाय तेरा भाई बनाएगा।
2: क्या भाई बनाएगा?
1: क्या बोलते हो? आपने मेरे लिए कुछ बनाया है?
2: क्या हमने भी कुछ सरप्राइज तुम्हारे लिए प्लान किया है, तुम्हारा फेवरेट।
1: ओ कोकी, आई न्यू इट, लास्ट डे तो कोकी बननी थी। सो इट्स कोकी चाय टाइम, बेस्ट ब्रेकफास्ट एवर। चाय में डुबा बात बताऊंगा, खाते खाते दिखाऊंगा।
0: तो भाई अंश पहुंच गए हैं किचन में बनाने चाय, तो आइए देखते हैं आज अंश कौन सी स्पेशल रेसिपी के साथ चाय बनाते हैं, जिससे चाय का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और चाय के साथ वो खाएंगे वो स्पेशल डिश जो उनकी मम्मी ने खास अपने बेटे के लिए बनाई है।
1: मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुकिंग इज लाइफ, लाइफ इज कुकिंग। मेरे लिए कुकिंग थेरेपी है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने अटेम्प्ट ना करी हो बनाना, और मैंने बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन उनका ये कहना है कि ट्रेडिशनली चाय बनानी चाहिए, जब तक माचिस से गैस ना जले चाय बढ़िया नहीं बनती है। मैंने कहा चाय है। मम्मा चाय पत्ती कहाँ है? हाँ ठीक है ठीक है। मानता हूँ कि पहले जब तक चाय पत्ती ना पके, तुम पास आओ जरा थोड़ा बाबू, मैं ये मानता हूँ जब तक चाय पत्ती ढंग से ना पके तब तक चाय का मजा नहीं आता। अदरक टाइम, दो तरीके होते हैं, या तो मैं इसको कद्दूकस कर दूं या इसको पीट पीट के आलू बना कर दूं। आई चूज बॉयलेंस बिकॉज़ आई एम सख्त हूं।

0: This is something that you have to take care of.
1: डली नहीं अभी किसने खुशबू छोड़ना शुरू कर दिया। थोड़े गुनगुने पानी में चाय पत्ती के साथ अदरक तैरती है दाएं बाएं, उसको देख के जो सुकून मिलता है भाई साहब।
0: ये एक नॉर्मल हाउसहोल्ड नहीं होता है कि चिया सीड के डिब्बे में चीनी। वो तो शुगर ट्रांसपेरेंट है ना, कभी ढूंढ भी नहीं पाता कि हमारी अम्मा ने कहाँ पे क्या रख दिया है।
1: दूध से जितनी भी मलाई निकलती है उसको उठा के रखो साइड में, उसमें डालो हल्की सी चीनी और बनाओ एक पराठा। उस पराठे में होना चाहिए अजवाइन, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, और वो पराठा इतना मोटा होना चाहिए, इतना मोटा, समझ रहे हो। उस पराठे को मलाई और चीनी में डुबा डुबा के, पैसे होते हैं मोटे, मैं उसको खाता हूँ साल में सिर्फ दो बार, एक बार जब मम्मी आती है, एक बार जब मैं कानपुर जाता हूँ। क्या उबाले मार रही है, वाह वाह, देखिए।
2: तो आखिरकार चाय बन चुकी है और किचन में अंश की मम्मी भी पहुँच गई है अपनी ये स्पेशल वाली डिश लेकर।
1: कहते हैं ना, रहा नहीं जाता ना, माँ तो होती माँ ही है, आ गई यहाँ पे बीच में भी।
3: चलो तुम्हारा तो हो गया, तुमने चाय बना दी, अब ये देखो हमने आज तुम्हारे लिए कुकी बनाई है।
1: भाई साहब, अगर मेरे बस में हो तो मैं कम से कम 17 कुकी खाऊं एक बार में, अगर मेरे बस में हो। अभी देखते हैं, लेकिन चाय नहीं देखना आप। हाँ देखो नहीं, बाहर जाओ, हो गया आपका। यार देखेंगे, चार कमी निकाल देंगे, अच्छा लगता है आप लोगों के, अगर मेरी बेइज्जती हो। वैसे सत्तू बन के इतना माशो मैन बना हुआ, अभी यहाँ पे खत्म हो जाएगा सारा ऑरा।

सिंधी परिवार की कमजोरी और ताकत भुजिया। पर मैं पंजाबी हूँ, मेरी माँ सिंधी है, तो मैं पला बड़ा सिंधी की तरह ही गया हूँ। बट मैं ऐसे कास्ट वाइज अगर आप बोलो तो पंजाबी हूँ। ये अंश मनुजा के हाथ की चाय है, अपनी हैसियत में रहती है, बाहर नहीं आके गिरती, समझे? सत्तू का डर है ये।

0: तो भाई अब माँ और बेटे मिलकर साथ साथ ये यमी वाला ब्रेकफास्ट करेंगे और साथ ही होंगी काफी बातें भी।
1: अगर मैं मस्ती ना करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा दिन ही, अभी आप सेट पे भी देखना, अगर मैं हल्ला गुल्ला ना मचाऊं तो ना सेट पे लोगों को मजा आता है ना मुझे दिन में अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा हो अब आप कोकी सर्व कर दो कि सब मैं ही हैं, सैलरी भी दे दो थोड़ी सी। ओहो भाई साहब, हसीन दिलरुबा, शायद अगर मुझे रेट करना हो तो मैं कोकी को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखूंगा इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स। और किसी ने भी अगर इस घर में बैठे हुए लोगों में से चाय का गलत रिव्यू दिया, आपको बोलना है चाय बढ़िया बनी है, ठीक है? पहले चाय पी लो, फिर डिपेंड करता है आप मेरे हाथ से खाओगे कि नहीं।
2: बढ़िया, मस्त
1: है, तो खाओ।
2: इसकी बहुत करना है,
1: बाइट बड़ा था आपके लिए, छोटा कर रहा
2: है। हमारी कॉफी कम हो जाती है।

0: कि ऐसा लगता है कि जब ये लोग यहाँ पर होते हैं तभी मैं शायद सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ, सबसे ज्यादा इनकी वजह से नहीं, इनकी प्रेजेंस तो फोन में मिल जाती है। खाना खाना मेरे लिए सब कुछ है।
1: तो भाई पेट पूजा तो हो गई, अब निकल पड़ते हैं सेट की ओर, जिसके लिए झटपट से अंश ने चेंज किया, अपना बैग पैक किया और मम्मी को बाय बाय कहकर निकल पड़े घर से सेट तक के इस सफर के लिए।

0: तो इस सफर के दौरान अंश ने बताई हमें ढेर सारी बातें, कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत की और बताया अपना सफरनामा।
1: तो अब हमारा सफर तो चालू ही है, लेकिन एक्चुअल सफर कहाँ से शुरू हुआ, तो नींव कहाँ रखी गई थी उस बारे में अगर मैं बताऊँ तो, मैं कानपुर से हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, वहीं पे स्कूलिंग और कॉलेज भी मैंने वहीं पे किया था, क्योंकि मैं एक्टिंग स्कूल के लिए बाद में बाहर आया था दिल्ली, पर बॉम्बे में अभी 3.5-4 साल पहले ही आया हूँ। और इनिशियली मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन किया फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, और तब से मैं फिर एड्स करने लगा था, एड्स UGC। बट दिस ईयर लाइफ में ये टीवी इंडस्ट्री हमारी सुंदर सी आ गई हमारी ज़िंदगी में, और मैंने अपना पहला कैमियो महादेवन सन्स में किया था एज कल्याण, यू ऑल रिमेंबर, क्योंकि आप लोग तो मैसेज करते रहते कल्याण कहाँ ले गया रज्जी को। और अब मैं अपना प्रोमिनेंटली पहला शो कर रहा हूँ जिसमें आई एम प्लेइंग योर वेरी लव्ड सतलुज। बट सतलुज एज अ कैरेक्टर वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे मेरे अंदर घुस रहा है, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे घुस रहा है, क्योंकि बहुत ट्रिकी कैरेक्टर है। कि एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूँ तो मुझे बड़े मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप हंसोगे कब, आप हंस क्यों नहीं रहे हो, आप हंसोगे कब, और मुझे अपनी मेमोरी में याद नहीं आ रहा है कि मैं एज अ कैरेक्टर सतलुज कब हंसा था लास्ट, शायद मैं नहीं हंसा हूँ, मुझे पता भी नहीं मैं आगे कब हंसूंगा। तो ये कैरेक्टर बहुत ट्रिकी है प्ले करना, लेकिन उतना ही मज़ा आ रहा है क्योंकि यार मैं ही तो हूँ जो सब कुछ हाल रहा है, कि सबकी मज़े ले रहा है। मतलब एक्चुअली मेरे कमबैक्स एज अ कैरेक्टर सबको छेड़ना, परेशान करना और किसी की नहीं सुनना, मन मर्जी, वो वैसा ही मैं रियल लाइफ में भी हूँ और वैसा ही मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंट्रूगिंग कैरेक्टर है मेरे लिए, कि मुझे भी और जानना है इस बारे में और क्या क्या होने वाला है। मतलब कौन सा लड़का ऐसा होता है कि लड़की भाव दे रही है, आके कह रही मेरा हाथ पकड़ो और तुम हाथ पे थप्पड़ मार के चला, भाग, मैं वो नहीं पकड़ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कैरेक्टर, बस अब इसका बिल्डअप मुझे खुद बनाना है, जो बनाने में बड़ा मजा आने वाला है। तो वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच।

0: बातें करते करते हम पहुंच गए हैं बरेली के बच्चन के सेट पर, जहां अब अंश सतलुज के किरदार में ढलने वाले हैं।
1: स्वागत है आपका हमारे सेट पे, और यहीं से अब हमारा सफर शुरू होगा शूटिंग का, शूटिंग फॉर द डे। टूडल्स, अब आएगा ना मजा बिड़ू, अब आपको कन्वर्ट होते हुए दिखूंगा मैं सतलुज में, जैसे कि अभी मैं बात करते

0: Me and my brother.
1: वो कहाँ गया? ये लोग आगे कहीं चले गए पता है? अच्छा वो बैठा होगा नीचे किंचुक भैया के रूम में. थैंकफुली
2: मुझे नए कपड़े मिले आज. मुझे नए कपड़े मिले आज.
0: ए यार अब सतलुज में कन्वर्ट होना पड़ेगा यार.
3: तो चेंज कर शुरू हो चुका है सतलुज का मेकअप. वैसे अंश को मेकअप में ज्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट से वो सतलुज के किरदार में ढल जाते हैं.
0: जानी चाहिए क्योंकि सतलुज हंसता नहीं है. तो अपना काम करो, हमें वही मतलब मेकअप करो आप. ये स्पेशल ट्रीटमेंट है स्किन केयर का, बट मैं इतना सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि दो चीज़ें पानी से रिले. पानी इज़ द सोल्यूशन टू एवरीथिंग. खूब सारा पानी पियो भाई. और दूसरा खूब सारी करो आइसिंग. आज भी मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले बर्फ़ के पानी में अपना मुंह डाला था. आइसिंग करने से आपकी स्किन जो चमक कर आती है, यू लाइक फील द डिफरेंस. प्लस अगर तुम जितना सैलड खाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. ये देखा, ये इनसे मिलिए हमारे संतोष भाई हैं. इनको पता है मैं आ गया हूँ तो मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी और मेरा दूध हमेशा रेडी रहता है क्योंकि मैं ओट्स में दूध डालता हूँ. तो संतोष भाई डे वन से हमारे लिए सेम चीज़ करते आए कि भैया अब क्या बात है बाबू, तुमको आज बिना बोले तुम ले आए, तुमने मेरी इज्जत रख ली.

0: वंश अब सतलुज के किरदार में ढल चुके हैं, लेकिन सतलुज का एक रिचुअल है जो वो सेट पर जाने से पहले जरूर करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज, जो आज भी अंश कर रहे हैं। यही तो है सतलुज हो या अंश उनके फिटनेस का राज।
1: देखा, पलक झपकती, मेकअप खत्म, अपन हो गए रेडी, टाइम टू गो ऑन सेट। बट सेट पे जाने से पहले एक सतलुज का रिचुअल है जो करना जरूरी है, वरना सतलुज का किरदार अधूरा रह जाता है। तो वो रिचुअल करके अपन जाएंगे, वो आप खुद पता चल जाएगा, आप खुद जो भी हो।

तो ये हमारा रेगुलर रूटीन हो गया, जब टाइम मिलता है तब हम 15,000 स्टेप्स भी अपने पूरे करते हैं, रनिंग भी कर लेते हैं, दैट्स अबाउट इट. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स शूटिंग.

0: तो भाई एक्सरसाइज हुई पूरी, अब बारी सेट पर जाने की। वैसे आ गए हैं उनके भाई माही भी, जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग है काफी स्ट्रॉन्ग।
1: चलिए सेट पे चलते हैं, अब आएगा मजे। ये काम धाम से कोई मतलब नहीं है, बाहर लुकबाजी शोबाजी चल रही है।
2: क्या हो रहा है?
1: मिली हमारे सबसे छोटे बच्चन, हमारे सचिन माही से, जो माही भी सचिन है, सचिन भी माही ही है, ऑलमोस्ट सेम।
2: अंश भैया से तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, फिटनेस सीखता हूँ, कैसे डिसिप्लिन में रहना सीखता हूँ, टाइम से खाना जो मेरे से होता नहीं है पर वो मैं सीख रहा हूँ इनसे। सुबह आते ही कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छे से, कैसे डिनर करते हैं। कितने स्टेप्स करते हो आप दिन के?
1: 15,000।
2: 15,000 स्टेप्स करते हैं दिन के? मेरे हो जाते हैं पर भैया काउंट रखते हैं अपने। ये सब सीख रहा हूँ, डिसिप्लिन, रूटीन, फिटनेस।
1: क्या अलग करवाओगे तुम मुझे?
2: अरे अलग क्या, वैसे तो ये बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत मतलब न्यूट्रल से रहते हैं वैसे आम दिनों पे, पर आज मतलब कुछ मेहमान आए हैं, सास बहू बेटी आई हैं, कुछ अलग होना चाहिए। जैसे मैंने इनको सिखाता हूँ कि कुछ डांस करो, कुछ बोलो, कुछ नाच गाना करो, रील बनाओ, दुनिया पे छाओ, है ना?
1: जीवन रील ही नहीं है सब कुछ, रील
2: आज आज कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ डांस नाच गाना, कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना सबके लिए।
1: हमारा एंटरटेनमेंट यही है तुमसे बात करना, हमारा इंटरव्यू।
2: हाँ यार, एक एक
1: नहीं,
2: एक
1: नहीं, नहीं,
2: सुनो
1: नहीं,
2: मैं सोच के आया हूँ
1: ये नहीं तुम्हारा हो जाए कुटाई। नहीं नहीं
2: नहीं,

0: कह रहे कम इन, शर्म भी नहीं आती। स्क्रिप्ट रीडिंग
1: क्या कर रहे हो तुम, बोलो। हाँ सुबह सुबह
0: भैया, इनके पास आते ही कैसे हमारा एकदम चेहरा चमक जाता है, चहक जाता है, खुशी आ जाती है। आदमी ऐसा होना चाहिए।
1: एक्चुअली ऐसा मेरी तरफ से इनके लिए है और इनकी तरफ से भी मेरे लिए है। Correct. क्योंकि ये आई टेक देम एज लाइक माय स्मॉलर ब्रदर, यंगर ब्रदर, और ये मेरा भाई है,
0: मेरे बड़े भाई।
1: हाँ, और हमेशा लाइफ में रहेगा,
0: ऑब्वियसली मरते दम तक।
1: नहीं, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा मेरा भाई रहेगा। हाँ? तेरे को तो पता ही है, लेकिन ऑडियंस को भी पता होना चाहिए ना।
0: मेरी तरफ से भी तो होना चाहिए ना।
1: वो तेरे को, मेरे को पता है।
0: हम लोग अब वैसे जिम पार्टनर्स भी होने वाले हैं, साथ में हम लोग जिम भी करने वाले हैं।
1: यस, भाई ये जीत रहा है, ये जान मुझ के हार रहा है।
0: नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।
1: हाँ तो ये स्टेबल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसे स्टेबल रखा हुआ है, अभी तक ये हरा देता मुझे।
0: ऐसा मतलब नहीं नहीं, मैं हारूंगा।
1: हार के जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। मैं बाजीगर
0: ये हमारे घर के, हमारी लाइफ के बाजीगर यही हैं, हमें सिखाने वाले, समझाने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले सब यही हैं। हमारा तो माथा गर्म रहता है, उसको ठंडा करने वाले यही हैं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये सब मैं सिखा सकता हूँ इनको।
2: तो भाई जूनियर बच्चन हो या हो सीनियर बच्चन, बरेली के ये सभी बच्चन रहते हैं इस आलिशान बंगले में, जिनकी सैर आज सतलुज हमें करवाने वाले हैं और दिखाएंगे कैसा है इनका ये आशियाना, जिसमें चीजें कुछ आधी अधूरी है लेकिन खुशियाँ भरपूर है।
0: आपको अपना आलिशान बंगला दिखाने, हमारा शीश महल, मार्बल्स और सांचे से बना हुआ हमारा घर, अंदर सोना गड़ा हुआ है इस जमीन में। इतना महंगा घर बॉम्बे में, अगर मैं ये घर रेंट पे चढ़ाऊं तो कम से कम 20 लाख रुपए रेंट होगा पर महीने का। पर हम ना दिल के अच्छे, हम ये सब घर अपना किसी को देते वेते नहीं। ये देखिए हमारा आलिशान सा मैंशन, ये हमारा दरवाजा है, ये हमारा दरवाजा है, ये ऐसे बंद हो जाता है, आते हैं तो इसको खोल लेते हैं। ये हमारा दरवाजा है, ये हमारे पिताश्री की बैठक है जिसपे वो बैठकर दवाई पीते हैं, दवाई, सिर्फ दवाई। और वो बाहर हमारी बाइक खड़ी है जो चलाकर हम फर्राटे से वापस आते हैं अपने घर। ये हमारा जिम है जिसके बहुत ही मेहनत से, जुगाड़ से, और बाप रे बहुत भारी है, सीमेंट डाल डाल के हमने ये बनाया हुआ है ताकि थोड़ा सा सेहत का और मार कुटाई का ध्यान बना रहे इसलिए। और ये हमारे शोल्डर की मशीन है, ये नीला ड्रम है जिसमें माही बैठ के नहाता है, और जब हमारे घर में आग लग जाती है तो खाना यहाँ बनता है। अभी कुछ समय पहले ही पिताजी ने आग लगा ही दी थी ऑलमोस्ट हमारे घर पे, जो आपको पता चलेगा। ये हमारे पिताश्री की खटिया है जिसपे वो बैठ के, लेट के, या फिर दवाई के असर के बाद ऐसे ही सो जाते हैं। आइए आपको दिखाता हूं अपने आलिशान से बंगले का ड्राइंग रूम। ये हमारा ड्राइंग रूम, ये हमारे सोफा, यही हमारी टेबल, यही हमारी चेयर, और यही हमारा ड्राइंग रूम। कम से कम 3000 स्क्वायर फीट में है ये घर। आप समझ लीजिए कि आपको इसका रेंट भरने में आपकी आमदनी खत्म हो सकती है, और हम ये रेंट पे देते नहीं। हमारा बहुत पर्सनली आलिशान बंगला है। बाकी हमारे खाटू श्याम बाबा, जिनका चप्पल उतार लूँ इसका आशीर्वाद लेकर ही हम अपना दिन शुरू करते हैं। और ये हमारे पिताजी की दराजे हैं, टीवी बॉक्सेस हैं। ये हमारा खुजली बहुत होता है ना भैया, क्या करें, खुजली बहुत होता है। थोड़े से गरीब हैं हम, ज्यादा नहीं। अलमारी है लेकिन कपड़े नहीं, किचन है लेकिन खाना नहीं, फिल्टर है लेकिन उसमें पानी नहीं, दिल है लेकिन लड़की नहीं।

अलमारी है जो खुलती भी नहीं, अलमारी है लेकिन वो भी खाली है। कोई बात नहीं, कपड़े तो क्योंकि सारे यहाँ है ना, कपड़े तो यहाँ है, अलमारी की जरूरत क्या है, कपड़े ही इतने हैं। ये हालांकि नाम की खटिया है जिसको हम एज अ सोफा कम बेड यूज करते हैं जब मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि हम तो जमीन पर सोते हैं। देखिए ग्राउंडेड लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम जमीन पर ही सोने में विश्वास रखते हैं। ये हमारी शू रैक है। आपको मैं बताऊं, ऐसा कोई जूता है नहीं बचा है जो इसमें ना हो। देखिए मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, मेरे नजरों से देखो। ये हमारा दूसरा कमरा है, जो हमारा कमरा एक्चुअली नहीं है, ये हमारे हैं एक, तो ये कमरा हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। आइए यहीं से, एक शॉर्टकट है हमारे किचन का। ये हमारी रसोई, गंगा भैया यहाँ पूरा टाइम खाना बनाते हैं, उनको उनके लिए थेरेपी है खाना बनाना। बेसिकली उनको लगता है कि खाना बना लिया तो शायद उनका दिन पूरा हो गया, इसमें कुछ तो पड़ा होगा। नहीं, कुकर है लेकिन खाना नहीं, जैसे कि मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, तो ये ऐसा ही है।

0: आपको मजा आया हो तो हमारे बंगले मत आइएगा, हम अपना मेन दरवाजा बंद रखते हैं, किसी को आने नहीं देते, क्योंकि एक सेकंड ट्रिकी है। हाँ, नहीं आना अंदर, मना कर दिया ना मैंने, समझ नहीं आता लोगों को यार, नहीं आने दूंगा। चलिए अब इट्स निन्नू टाइम।
1: तो देखा आपने, कुछ ऐसे हैं रियल लाइफ में सतलुज यानी अंश। उम्मीद है आपने अंश के बारे में कई बातें जानी होंगी, और उम्मीद ये भी है कि बरेली के ये बच्चन आपका दिल खोलकर मनोरंजन करे।
0: ये था हमारा सफर और हमारा पूरा दिनचर्या। सुबह उठो, खाना खाओ, कसरत करो, काम पे आओ, वापस जाओ, अपने स्टेप्स करो और सो जाओ। ये है अंश की लाइफस्टाइल। अब आप इसी में सतलुज को भी मिल चुके हैं, तो उम्मीद ये करता हूँ, आशा ये रखता हूँ कि सतलुज भी आपको उतना ही पसंद है जितना आपको अंश पसंद आता है। और सब जगहों से देख देख कर प्यार बरसाते रहिए, देखते रहिए बरेली के बच्चन 9 बजे मंडे से फ्राइडे कलर्स चैनल और जियो हॉटस्टार पर। सतलुज आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए आप भी सतलुज को बहुत प्यार करिए, क्योंकि सतलुज आपको खुश रखेगा और रियलिटी में रखेगा। नहीं देखा तो फिर सतलुज को गुस्सा भी बहुत आता है, समझे? अस्त लवीस्ता, हट।

0: माय गॉड, आपका फेवरेट शेड ऑफ नेल पेंट हो गया डिसकंटिन्यू। आई नो, आ गया जिंदगी में ड्रामा। अब कितना मुश्किल है फिर से अपने लिए वो परफेक्ट शेड को चुनना। वैसे आपको एक बात बताऊं, इससे भी बड़ा ड्रामा आ पहुंचा है हमारी इस अगली कहानी में, जो बदल रहा है इस कहानी का मोड। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या हो रहा है कहानी में आज, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
1: बेटी का प्यार

0: नयनी का सन क्वालिटी टाइम बिता दी टिन्नी।
1: एक बहुत बड़ा राज
0: नयनिका की नई मुश्किल।
1: इस लम्ब से मुझे लड़ना ही होगा तिन्नी के लिए।
0: स्टार प्लस के सीरियल सहराब में नयनिका बीमार है, ऐसे में उसकी देखभाल करने और उससे बात करने के लिए पहुंच गई है उसकी बिटिया रानी। और देख लीजिए, कभी नयनिका उसे समझाती तो कभी टिन्नी। इन दोनों के बीच बातें भी हो रही हैं और दोनों एक दूसरे का साथ पाकर देखिए कैसे इमोशनल भी हो रही है। असल में नयनिका काफी बीमार है, ऐसे में उसे अपनी बेटी का सहारा मिल गया है।

0: एज मदिराक्षी इट्स अ ब्यूटिफुल सीन ऑफ मदर एंड अ डॉटर, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो ये चीज़ मैं फील कर सकती हूँ. और टेक में भी जब मैं गोद में सोई और वो मेरी बाहों में आई टिनी, तो मुझे लिटरली आई कुड फील यू नो कि मेरी मम्मी अभी भोपाल में है, तो मैं उनको मिस कर रही थी. तो लिटरली आई हैड टीयर, ओके अभी मैं मम्मी को कॉल करती हूँ. सो इट वॉज अ वेरी इंटेंस सीन, वेरी ब्यूटिफुली शॉट. हमारे जो डायरेक्टर सर हैं योगी जी, बहुत अच्छे से शूट किया उन्होंने. बट व्हाट आई वांट यू गाइस टू सी इज द इमोशंस, कि जो सीन्स में इमोशंस हमने डाले हैं दे आर प्योर, दे आर रियल इमोशंस. ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ शूट किया हुआ है, इट्स प्योर, वी आर फीलिंग इट.
1: क्या कोई उस इंसान को इतना दर्द दे सकता है जिस इंसान से वो इतना प्यार करता हो? और अगर वो आपसे इतना प्यार करते थे तो उन्होंने आपको इतनी गहरी चोट क्यों पहुंचाई? माँ आपकी इतनी इंसल्ट क्यों की उन्होंने? नहीं, मैं तो बस सोच रही थी, आज जब उन्होंने मुझे बुलाया आपके बारे में बात करने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद आज भी कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते.
2: ऐसे में अब नयनिका जाएगी मुंबई अपना इलाज करवाने, क्योंकि नयनिका को कोई बड़ी बीमारी हुई है जो वो सभी घर वालों से छुपा रही है.
3: नयनिका को अभी बुखार है जिसके वजह से वो मुंबई अपनी ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, और कहीं ना कहीं उसे पता चल जाता है कि उसको क्या बीमारी है, तो वो किसी को नहीं बता रही होती है, ना ही टिन्नी को बता रही होती है और ना ही किसी और घर वाले को. तो वो मुंबई के लिए जा रही होती है. उसी पहले रात के मतलब टाइम टिन्नी उसके रूम में जाती है और एक बहुत प्यारा सा सीन चलता है उनके उन दोनों के बीच. वो टिन्नी अपनी मॉम को सुला रही होती है लोरी सुनाकर, और बहुत ही क्यूट सीक्वेंस है. वो
0: सेपरेशन की बात नहीं आई इसमें, ये बात आई है कि नयनिका क्योंकि अब मुंबई जा रही है फॉर 2-3 डेज, एक्चुअली 2 दिन ही जा रही है, बट वो ये बताना चाह रही है कि क्योंकि उसका बुखार उतर नहीं रहा है, वो खुद भी डॉक्टर है, तो हो सकता है कि उसको एक कुछ अलग टेस्ट करवाना पड़े, उसमें टाइम जा सकता है. तो इसलिए वो अपनी बेटी से 2-3 दिन एक्स्ट्रा मांग रही है कि आगे पीछे हो सकता है 1-2 दिन, तो तू टेंशन मत लेना, अपना ख्याल रखना जब तक मैं नहीं हूँ, फिर मैं काम खत्म करके आ जाऊँगी. तो शी डजंट वॉन्ट टू टेल हर डॉटर कि वो कुछ टेस्ट करवाने जा रही, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी.
2: ऐसे में अब नयनिका से मिलने ईशान भी पहुंच गया है, और देखिए कैसे ईशान नयनिका के लिए लेकर आया है फ्लावर्स.

0: कैसी हो तुम? तेज बुखार है तुम्हें?
1: मैं ठीक हूँ।
0: कितना टेम्परेचर है? तुम में से कोई टेम्परेचर चार्ट मेंटेन कर रहा है?
1: नहीं, अब वो चार्ट नहीं बनाया, पर
2: अब कर लेंगे। मॉम ने इस बारे में कुछ बताया नहीं।
0: हमें किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तुम्हारी मॉम तो वैसे भी डॉक्टर है, इनके कॉन्टेक्ट हो गए।
1: तुम मेरी फिक्र मत करो ईशान, मैं ठीक हूँ।
0: तुम ठीक नहीं हो। लुक एट योरसेल्फ।

0: ये आपके लिए, मुझे समझ नहीं आया तो मैं ये सब लेकर आ गई, शरबत लीजिए ना।
1: नहीं मैं खा कर ही आया हूँ, ये सब मैं नहीं खा सकता, थैंक यू।
2: ये सब बातें रहने दो ना प्लीज।
3: मॉम आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, अगर आपको चक्कर आ गए तो, अगर गिर गिर गए तो
2: इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी।
3: मॉम
4: मम्मम क्या बातें कर रही हो यार।
3: मम्मम आज के बाद ऐसी बात की ना तो देख लेना, ऐसा मत बोला करो।
0: अच्छा तुम लोग सब बातें करो, ईशान आप कुछ खा लीजिएगा और दीदी कुछ लगे तो मुझे बताना ठीक है, मैं आ जाऊंगी।
5: भाई इतना ही नहीं, सभी के जाने के बाद ईशान नौनिका से अपने दिल की बातें कह रहा है। भाई दोनों में प्यार तो है लेकिन कई चीजों की वजह से दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं कर पा रहे।
1: मैंने फोन पर तुमसे एक बात कही थी, अभी हम मिल ही गए तो सोचा भी कह देता हूँ।
0: प्लीज ईशान ऐसे कुछ मत कहना जिसे सुनकर मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं।
1: मुझे लगा मैं ये बात तुम्हारे सामने कह सकता हूँ, मैं नहीं चाहता तुम्हारा कोई भी नुकसान हो, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। देखो हम दोनों ने जो भी वक्त साथ बिताया वो बहुत ही जेन्युइन और प्योर था। मैं उन लम्हों को कभी भूलना नहीं चाहता हूँ।
2: मीना नहीं आई तुम्हारे साथ?
0: बाय द वे मीना ईशान्स गर्लफ्रेंड।
1: हीना? हीना मेरे साथ क्यों आएगी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। हीना का या किसी टीम मेंबर का ऐसा कोई प्लान नहीं था।
0: अब ईशान मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए।
2: मुझे कोई नहीं चाहिए, तुम मीना के साथ खुश रहो ईशान।
5: वैसे इसी के साथ कहानी में नया ट्विस्ट आएगा जहां नौनिका अपनी बीमारी छुपाएगी लेकिन ईशान को हो जाएगा शक। तो भाई अब देखना होगा कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है।
1: मुझे पता करना होगा।
5: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: एक बहुत बड़ा राज छुपाया है मैंने अपने परिवार से, इस लम से मुझे लड़ना ही होगा तिमी के लिए।
1: नौनिका कुछ छुपा रही है मुझसे, मुझे पता करना होगा।
6: बर्तन धोने से डर नहीं लगता साहब, ना खून टूटने से लगता है। अपराजिता आपकी बात से हम सब सहमत हैं। एक्चुअली बात तो सही है क्योंकि वो टूटे फूटे नाखून अच्छे भी नहीं लगते। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको अपराजिता और रक्षित के पास क्योंकि फिलहाल इनकी कहानी में है हमारे लिए कंप्लीट एंटरटेनमेंट। कहानी में आया है एक इतना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो लेकर आ रहा है इस कहानी में ड्रामा। ड्रामा मतलब मनोरंजन। लेकर चलते हैं आपको यहाँ।

0: जीता और रक्षित का सफाई मिशन। अपराजिता का नया आशियाना। छिपकली से डरते अपराजिता और रक्षित। प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज हो रहा है गोलमाल। असल में अपराजिता अपने नए घर में शिफ्ट हो रही है कि उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं रक्षित इस नन्ही परी संग। और देखिए कैसे ये सभी मिलकर पहुंच गए हैं घर के अंदर, लेकिन घर है काफी गंदा। ऐसे में शुरू हो गई है इनकी सफाई गिरी।
1: ये घर नहीं, स्टोर रूम है।
2: नहीं बेटा, ये घर है, मेरा अपना घर। शादी करके जब किसी और के घर जाती है तो उसे भी सजाती, कभी पर्दे लगाकर, कभी नए पौधे लगाकर।
3: पर्दे, पौधे, चाय, मूर्ति, प्यार, उम्मीद वाला घर।
2: और सफाई में है भलाई, तो मैं जल्दी कर दूंगी सफाई, ठीक है?
4: मैं भी हेल्प करूंगी।
3: और हम भी।
2: आप ये सूट पहनकर सफाई करेंगे?
3: अपना अपना टैलेंट है। ए चुड़ंगी, चाओ मेरे लिए चेंज ले आओ।
1: चाचू, लुंगी चलेगी।
3: अरे उड़ेगी।
0: और इस सफाई गिरी के साथ साथ ही दोनों को मिल गया है करीब आने का मौका, क्योंकि फिर जुड़ रहा है रक्षित और अपराजिता का ये लव कनेक्शन।

0: थैंक यू।
1: लेकिन इस रोमांस पर भी ब्रेक तब लग जाता है जब घर में आ जाती है छिपकली, जिसे देखकर अपराजिता और रक्षित दोनों ही डर रहे हैं। लेकिन ये बच्ची है ना, ये तो इसे मार भगा रही है।
2: भूख लगी है।
3: पिज़्ज़ा पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी?
4: यस
0: यस
5: यस पिज़्ज़ा पार्टी।
3: लगता है पिज़्ज़ा आ गया। मैं लाया।
1: खैर, फिर एक बार शुरू हो गया तमाशा जब पहुंच गई अपराजिता की माँ और उसने रक्षित को खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि इस नए घर में शिफ्ट होने पर रक्षित उसकी मदद कर रहा है।
6: आपको इस घर में देखकर मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा है। माँ, वो घर साफ करने में समेटने में हमारी मदद कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज के यहाँ से सफाई करने जाते हैं? या आपको कोई स्पेशल एम्प्लॉय? क्या रिश्ता है आपका अप्पू के साथ?
1: तो भाई, इस लव स्टोरी के दुश्मन तो कई हैं, लेकिन अब देखना होगा अपराजिता और रक्षित की ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: ओ माय गॉड, कितना रॉकिंग है ना रंग बिरंगे नेल पेंट्स की शॉपिंग करना। एक टाइम ऐसा होता था मैं एक साथ जाकर खरीद लेती थी ना जाने कितने नेल पेंट्स। And this was absolutely rocking. लेकिन जब कभी आपका favorite nail paint गिरके टूट जाए, oh my god, दिल को लगता है झटका, और ये होता है हमारे लिए shocking. Exactly ऐसा ही है हमारा ये अगला segment, जहां हम दिखाते हैं आपको entertainment की दुनिया से अलग अलग खबरें। ये तो है rocking and shocking news.
1: सबकी मन्नत यानी आयशा ने मनाया अपना जन्मदिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली संग। देख लीजिए इनके बर्थडे सेलिब्रेशन के ये सभी नज़ारे।

शफक नाज ने ये रिवील किया है कि उन्होंने शादी कर ली है। असल में शफक ने तो 1.5 साल पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी ये बात बताई है। उनके हस्बैंड का नाम जिशान है। ऐसे में देख लीजिए इनकी ये तस्वीरें।

शनाया कपूर ने शेयर की हैं। उनके कजिन अंशुला कपूर की प्री वेडिंग रिचुअल्स की ये तस्वीरें, जहां पूरी फैमिली मौजूद है और शुरू हो चुकी हैं शादी की रस्में। आपको बता दें कि अंशुला करेंगी शादी रोहन ठक्कर संग, जिसमें शामिल होगा पूरा कपूर परिवार।

0: शूटिंग चल रही है।
1: पर जल्द आने वाला है नया शो थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमां। देख लीजिए इसका नया प्रोमो जिसमें नजर आएंगे गौरव वाजपेयी, अंकिता फगुना और आरती बिराजदार।
2: परफेक्ट गॉर्जियस मॉडल मुझे मिल ही नहीं सकती।
3: थैंक यू, लेकिन मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं परफेक्ट हूँ, मुझे ये पता है।
4: अरे वाह, हीरोइन के चेहरे पर हमारे ही जैसी सादगी है
5: और उसके कॉन्फिडेंस से तो सबका दिल जीत लिया।
4: अरे हमने तो इसे रोल मॉडल समझ लिया था। सब क्रीम बेचने का तरीका है।
2: मास दो इसे, मुझे सिर्फ अनुप्रिया ही चाहिए हर जगह। वाओ अनु, कितनी स्टनिंग लग रही हो तुम। एक सेल्फी प्लीज, सिर्फ मेरे लिए। हेलो बास कूपर,
5: समाज का आईना कभी नहीं बदल सकता। जहाँ हर चेहरा दिखावे का मुखौटा पहने हैं, वहाँ सच के साथ जीना ही मेरे सपनों की उड़ान है।
6: थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान।
7: सबसे आगे, सबसे तेज होने के लिए लगता है फोकस, लगन और हार्डवर्क। रेडी?
3: साथ है एक ऐसे।
1: देख लीजिए आलिया भट्ट का ये वीडियो जहाँ वो अपनी आने वाली फिल्म अल्फा के लिए प्रैक्टिस करने में लगी है और उनके साथ है एथलीट गुरिंदर वीर।
3: आपने कब डिसाइड किया कि मुझे इंडिया का सबसे तेज एथलीट बनना है?
7: फादर की ट्रॉफीज होती थी, मेडल्स होते थे, तो मैं उसको साफ करता था। उनकी भी एक फोटो भी थी, उसमें वो जंप कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। सोचता मैं भी एक दिन ऐसे जंप करूंगा। फिर मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा, फिर मैं सोचा मैं एथलेटिक्स करूंगा।
3: हाँ।
7: तो बोले भी इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहा कोई नहीं, मैं रेडी हूँ इसके लिए।
3: पापा को एक इंजरी हुई थी
7: जी,
3: उनके वॉलीबॉल करियर में
7: छोड़ना पड़ा। हाँ, हाँ।
3: तो उस टाइम पे आपको याद है उनको कैसे लगा था?
7: जब एक दो पैक लगाते थे तो बोलते थे अगर मैं करता रहता गेम तो शायद मैं आज कुछ और होता। फिर वो मेरा सपना बन गया। तो जब मैंने रेस फिनिश की, मैं उनको कॉल किया पहला, मगर डैडी अब बताओ कैसे लग रहा है। कह रहे मजा आ गया।
3: वो काफी इन्वॉल्व थे आपके स्टार्टिंग जर्नी में?
7: इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ लिया ही नहीं। जब डैडी काम से आते थे, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाना, सबसे फेवरेट शेफ मेरे डैडी हैं, उनसे टेस्टी खाना कोई नहीं बना सकता। तो पहले मेरे स्पाइक से वो न्यूजीलैंड से डैडी लेके आए थे, उनके ब्रदर न्यूजीलैंड में। तो वो उसको मैं नीचे भी रखने नहीं देता था, मैं कहे टेबल पे रहेंगे, इसको नीचे नहीं रखेगा कोई।
3: इंजरीज तो हुए होंगे, मैंने पढ़ा हाँ, भी था हाँ, कि आपने 2024 में यू फेस्ड अ बिट ऑफ अ सेटबैक।
7: हमारा ऐसा सिचुएशन आ गई थी भी, मैं बोल रहा था डैडी पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। डैडी बोलते चल तू वापस आ जाए घर पे, कुछ और सोच लेंगे, तू आ जा वापस आ जा। तो उस टाइम मम्मी ने मेरी ने हम दोनों को स्ट्रांग किया भी कोई नहीं, अगर मुश्किल टाइम आ गया भगवान पे भरोसा रखो ये निकल जाएगा।
3: 2025 में ऐसा क्या किया अलग That's brought you here today?
7: मैं Reliance Foundation ज्वाइन किया, जो बचपन से मैं चाह रहा था वो मुझे इधर आके मिला। अच्छी वेट ट्रेनिंग, अच्छा लाइक एटमॉस्फेयर, अच्छी डाइट, ये सब मैं जो लैक कर रहा था मेरे को एक जगह पे मिला। नीता मानी मैम का मैं थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने ये फाउंडेशन शुरू किया।
3: आपको मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, आज हम आपके लिए लाए हैं।
7: आज पूरा खाऊंगा। और मैम हम हमारी टीम की तरफ से, हमारे अल्फाज की तरफ से,
3: दिस इज सच अ लवली थिंग, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
7: 26 में मैंने आपको मिलना था तो नहीं तो मैं पहले मिलता तो मेरे से बातें नहीं होती इतनी। एक ने भी लिखा है फॉलो मी।

डिस्कवरी टीवी लेकर आ रहा है पहला पीरियड ड्रामा, जिसे प्रोड्यूस करने वाले हैं राहुल तिवारी। ऐसे में इसमें नजर आएंगे हिमांशु सोनी, समीक्षा जायसवाल और मीर अली, जो लीड रोल में नजर आने वाले हैं।

लेकर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। असल में जमीन को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा था, जिस वजह से कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया और अब वो पटना के अस्पताल में भर्ती है।

0: बाद लंबी सांस ले।
1: हुमा कुरैशी जल्द नजर आने वाली है उनके आने वाली नई फिल्म बेबी डू और डाई में, जिसका आ गया है सामने ट्रेलर।
2: ये कोई टाइम है घर आने का?
3: पता नहीं क्या करती रहती है रात रात भर।
4: और मेरा छाता भी देकर आओ।
2: इस सब में छाता क्यों चाहिए तुझे?
1: जल्द आने वाला है एक नया रियलिटी शो जिसका नाम है अलायंस। ऐसे में सामने आए हैं इसकी सेट की एक झलक।

0: आपने अप्लाई किया अपना फेवरेट शेड ऑफ रेड नेल पेंट, वाओ। लेकिन जैसे ही आपने ये काम खत्म किया वैसे ही बजा दी किसी ने बेल, अब तो नेल पेंट का खराब होना पक्का है। आ गया ना आपकी जिंदगी में ट्विस्ट। कुछ ऐसे ही ट्विस्ट आते हैं यहाँ पर हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में, जो बदल देते हैं इन कहानियों का मोड। तो चलिए फिर दिखा देते हैं कि कौन सी कहानी में आज आप पहुंचा है, कौन सा एंटरटेनिंग ट्विस्ट जो बदल रहा है उस कहानी का मोड।
1: महादेव एंड सन्स।
2: धीरू कहाँ हो तुम?
3: भाभी मैं आशु दादा के साथ आया था काम से, कुछ बताइए।
2: अच्छा जल्दी से सिटी चौराहे पर पहुंचो, कुछ इम्पोर्टेंट है जो तुम्हें दिखाना है। आशु दादा तुम्हारे साथ है ना, उन्हें भी साथ लेकर आओ।
3: क्यों बुलाया मैं?
4: इस बैग में अगर देखोगी तो आपकी तबीयत एकदम रंगीन हो जाएगी।
5: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में रची और नर्मदा को पता चल चुका है कि मोगरा बैग में सामान डालकर कुछ चोरी कर ले जा रही है। ऐसे में उन्होंने बाकी घर वालों को भी बुला लिया है ताकि मोगरा का खुलासा कर सके। लेकिन मोगरा वो तो यहाँ पहुँची है, उसने सामान भी दिया लेकिन उसने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है। कहीं न कहीं उसे पता है कि रची और नर्मदा की नज़र उस पर है। तभी तो देखिए यहाँ पर शुरू हो गया है नया तमाशा।
6: नर्मदा तुम होश में हो या नहीं, तुम हमारी वाइफ और सास पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो।
4: इल्जाम नहीं लगा रहे आशु दादा, हम सच कह रहे हैं, भाभी ने खुद देखा है। और वैसे भी अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो बस एक बार ये बैग चेक कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धीरज धीरज प्लीज।
3: सॉरी भाभी लेकिन आपके बैग की तलाश लेनी पड़ेगी।
5: इसी के साथ बात इतनी आगे बढ़ गई कि मोगरा के बैग की तलाशी भी ली गई लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। यानी फिर एक बार रजी और नर्मदा की टाई डाई फिस हो गई।
2: हाँ केतन ने इसी लिफाफे में पैसे रख के मोगरा को दिए थे।
3: पक्का भाभी आप दोनों इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो ये बात?
2: क्योंकि हमने खुद देखे थे। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो?
3: वो क्या है ना, पैसों से जेब गरम होते हुए हमने सुना है लेकिन कभी एनवेलप और लिफाफा गरम होते हुए नहीं सुना।
0: तो कैसा लगा आपको नेल पेंट्स की तरह रंग बिरंगा हमारा ये एपिसोड? अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज। टिल देन टेक इट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
8: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
9: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
10: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
11: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements।
14: INS महेंद्रगिरी और INS मालवान जुलाई में नौसेना में होंगे शामिल। INS महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में तो INS मालवान को कोची में बेड़े में किया जाएगा शामिल। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा लगेगा जुर्माना। कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी। डिजिटल कंट्रोल रूम से मिलेगी ऑटोमेटिक अलर्ट की सूचना। बंगाल में राज्य कर्मचारियों का डीए 20% बढ़ा। विधायक फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया। शुभेंदु सरकार ने पहले बजट में किए बड़े ऐलान। अपने तिलक समारोह में जमकर थिरके भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप। वीडियो हुआ वायरल। 24 जून को वाराणसी में हो रही आकाश की शादी। मुंबई में प्री मानसून बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। कई इलाकों में भरा पानी, अगले 48 घंटे में मुंबई पहुंचेगा मानसून। हंगरी में दिखे सनातन और भारतीय संस्कृति के रंग। बुडापेस्ट में पवित्र पादुकाओं के साथ निकाली गई भगवान विट्ठल की भव्य पालकी यात्रा। कृष्ण भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
14: जम्मू कश्मीर में आस्था परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का आज से शुभारंभ। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। श्रद्धालुओं ने मां रागन्या देवी की उतारी विशेष आरती। मां रागन्या देवी के लगाए जयकारे। गांधरबल के खीर भवानी मंदिर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। खीर भवानी मेले को लेकर गांधरबल में तैनात किए गए डॉक्टर की टीम। दवाई भी करवाई जा रही उपलब्ध। गांधरबल में खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंदिर के आसपास इलाकों में तैनात किए गए जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा में आस्था का मेला। गुजरात से पहुंचे 1200 से ज्यादा श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने महादेव की पूजा अर्चना की। देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना भी की। पिछले 36 सालों में पहली बार पहुंचे बड़ी तादाद में सैलानी यहां पर। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। ये यात्रा राष्ट्र प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में मनाई जाती है। यात्रा राष्ट्र एकता भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देती है। सिंधु दर्शन यात्रा जम्मू कश्मीर से होते हुए लेह लद्दाख तक जाएगी। 30 जून तक चलेगी यात्रा। पुंछ में बहरामगाला मंदिर में वार्षिक उत्सव की रौनक। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ किया अनुष्ठान। जमकर लगाए जयकारे। बहरामगाला मंदिर में वार्षिक उत्सव भंडारे का भी आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। बहरामगाला मंदिर में वार्षिक उत्सव में दिखा आपसी भाईचारे का अनूठा संदेश। पूजा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पहुंचे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दरबार में पहुंचे बाबा रामदेव। विधि विधान के साथ की भगवान की पूजा अर्चना। गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेले का शुभारंभ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिनों तक मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद रहेंगे। 3 दिनों तक किसी तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं होगी। मंदिर में दर्शन के लिए सभी ऑफलाइन विशेष दर्शन काउंटरों को बंद किया गया। विशेष दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास बुक करना होगा। मंदिर परिसर को खास शुद्धिकरण अनुष्ठान करने के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। 26 जून तक चलेगा मेला। मेले को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी। भक्तों के लिए कई जगहों पर विशेष शिविर और भोजन की व्यवस्था की गई। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। बाबा महाकाल को भांग चंदन सिंदूर आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप उनका श्रृंगार, सुबह से लगी भक्तों की कतार। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंचे टीवी अभिनेता अर्पित रांगा, सौरभ जैन महाकाल के किए दर्शन पूजन। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। जम्मू के एक क्षीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की।

0: रोहतास में शिक्षक की बेटी सानिया कलीम ने 70वीं बीपीएससी में किया कमाल, हासिल किया 299 रैंक। जमुई के बेटे बने एसडीएम, फादर्स डे पर पिता को दिया तोहफा। इम्फाल में विश्व संगीत दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पन्ना में फिर से खुली किसान की किस्मत, नोएडा के किसान परिवार को मिला 6.54 कैरेट का हीरा, 20 से 25 लाख रुपए इसकी कीमत। भारतीय सेना ने तुलेल गुरेज में 4 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया, पानी में फंस गई थी इनकी गाड़ी। साढ़े 8 लाख की नौकरी छोड़ मुजफ्फरपुर के विकास बने मैंगो मैन, उगा रहे 92 किस्म के आम। बगीचे में जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की दुर्लभ वेराइटीज के आम आपको मिल जाएंगे, एक पेड़ पर लगते हैं 3 अलग अलग स्वाद वाले आम। फिरोजाबाद में सीएम योगी ने 658 करोड़ की 81 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा विकास की गति और तेज होगी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी की रस्में शुरू, धूमधाम से हुआ तिलक समारोह, दुल्हन की तरह पूरा गांव सजाया। आकाशदीप ने तिलक समारोह में भोजपुरी गाने में जमकर डांस किया, दोस्तों के साथ मस्ती भी की। बलिया के लक्ष्मी नारायण मंदिर को मिला नया महंत, मंत्रोच्चारण के बीच किया गया अभिषेक। 11 साल के बालक शाश्वत का अब नाम हुआ श्याम नारायण दास, बालक दास उर्फ राम भद्राचार्य ने महंत को दी गुरु दीक्षा। गया शहर के प्रमुख चौराहों पर दिखी धार्मिक संस्कृति और विरासत की झलक, चौक पर की गई शानदार लाइटिंग। बंगाल में राज्य कर्मचारियों का डीए 20% बढ़ा, विधायक फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी। नौसेना की ओर बढ़ेगी ताकत, नौसेना में शामिल होंगे 2 नए युद्धपोत, INS महेंद्र गिरी और INS मालवान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव

था जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर। ये गंधपुरा पत्थर में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है,
मेरे पास ऐसी

0: अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या आपका बच्चा बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: 50 स्टेट्स, 1 नेशनल मॉल, 2 वीक्स ऑफ फ्रीडम। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें
8: गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: INS महेंद्रगिरी और INS मालवान जुलाई में नौसेना में होंगे शामिल। INS महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में तो INS मालवान को कोची के बेड़े में किया जाएगा शामिल। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा लगेगा जुर्माना। कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी, डिजिटल कंट्रोल रूम से मिलेगी ऑटोमेटिक अलर्ट की सूचना। बंगाल में राज्य कर्मचारियों का डीए 20% बढ़ा, विधायक फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया। शुभेंदु सरकार ने पहले बजट में किए बड़े ऐलान। अपने तिलक समारोह में जमकर थिरके भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप, वीडियो हुआ वायरल। 24 जून को वाराणसी में हो रही आकाश की शादी। मुंबई में प्री मॉनसून बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, कई इलाकों में भर गया पानी। अगले 48 घंटे में मुंबई पहुंचेगा मॉनसून।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। हम आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ रोचक और कल्याणकारी बातें बताते हैं जिनका होता है आपसे सीधा संबंध और सरोकार। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे सनातन धर्म में 108 की महिमा। क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा पाठ, माला जाप, शुभ कार्य या किसी धार्मिक अनुष्ठान में 108 की संख्या को ही क्यों चुना जाता है, इसे शुभ क्यों माना जाता है? 108 के अंक से जुड़े कई रहस्य आज हम आपको बताएंगे।

0: क्यों कहते हैं 108 बार मंत्रों का जाप? क्यों मनकों की माला 108 बार फेरने की पड़ी है छाप? सनातन धर्म में 108 के अंक को क्यों माना जाता है इतना खास? चाहे हो वो ज्योतिषी या फिर हो धर्म के जानकार, हम सबका ही है 108 के अंक में पूर्ण विश्वास। ज्योतिष विज्ञान में 108 की संख्या को पवित्र और ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे अस्तित्व और चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाला अंक माना जाता है। विज्ञान भी 108 की महिमा को बताता है। माना जाता है कि खगोल विज्ञान में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का आपस में 108 के साथ कनेक्शन है। खगोल विज्ञान कहता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है। इसी प्रकार पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी सूर्य के व्यास की लगभग 108 गुना है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का लगभग 108 गुना है।
1: संपूर्ण ब्रह्मांड उसी 108 के अंतर्गत छिपे हुए हैं, क्योंकि राशियां भी उसी में आ गई, नक्षत्र भी उसी में भी आ गए, ग्रह भी उसी में आ गए और उसके चरण भी उसी में आ गए। तो जब 108 में सारी चीजें आ गई तो ब्रह्मांड उसी में समाहित हो गया है।
0: क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो मंत्र जाप, माला जाप या वैदिक कर्म करते हैं उनमें शुभता के लिए 108 अंक ही क्यों लिए जाते हैं? ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा योग और शरीर विज्ञान में भी 108 का महत्व बताया गया है। आप भी देखिए आखिर 108 का हमारे शरीर से क्या संबंध है। मानव शरीर में 108 मुख्य ऊर्जा मार्ग यानी नाड़ियां होती हैं, जो इंसान के हृदय चक्र में आकार लेते हैं। इसलिए योग या प्राणायाम के मंत्र का जाप 108 बार किया जाता है।
1: 108 की उत्पत्ति ब्रह्मांड से हुई है, चमत्कारिक माना गया है। यह आध्यात्मिक होने के साथ यह पूर्णता चेतना का प्रतीक माना गया है। यह सर्वोच्च अंक है जिसको मनुष्य को इस अंक के द्वारा, इसको पूजने से, इस अंक की माला से जप करने से ब्रह्मांड से मनुष्य को जोड़ता है।
0: सनातन धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म की अनुयायी भी जपने वाली माला में 108 बार मनके की माला पर जाप करते हैं। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर ध्यान लगा रहा है। आज हम आपको 108 से जुड़े इस गूढ़ रहस्य के बारे में बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इसका इस्तेमाल ज्यादातर शुभ कामों में होता है। अगर 108 की संख्या को जोड़ा जाए तो 1, 0 और 8 को मिलाकर परिणाम 9 आता है। अगर 9 के पहाड़े का गुणनफल जोड़े तो भी परिणाम 9 ही रहेगा। मतलब ये कि ब्रह्मा ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। सीताराम और राधा कृष्ण नाम का भी अंक 108 से संबंधित है। सीताराम राधा कृष्ण की अक्षरों की वर्णमाला क्रम के नंबरों का जोड़ भी 108 ही होता है। माँ सीता और राधा शक्ति हैं, राम और कृष्ण ब्रह्मा रूप हैं। मनकों या मनियों की संख्या भी 108 ही होती है। उपनिषदों की संख्या भी 108 ही है, शक्ति हैं, राम और कृष्ण ब्रह्मा रूप हैं। मनकों या मनियों की संख्या भी 108 ही होती है। उपनिषदों की संख्या भी 108 ही है।
1: इसका अर्थ यह हुआ ईश्वर परम सत्य है, शून्य और पूर्णता का है और अनंत इन्फिनिटी को प्रदान करने वाला है, इसलिए यह 108 का महत्व सबसे अधिक है। और एक सुमेरु होता है, 109 दाने की माला होती है जिसमें 108 दाने होते हैं और एक ऊपर उसमें सुमेरु होता है। तो इस माला से, इस 108 की माला से, माला के द्वारा जप करने से सीधे सीधे ईश्वर और ब्रह्मांड की प्राप्ति होती है।
0: हिंदू धर्म में 108 के अंक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ईश्वर के जप, मंत्र जाप, पूजा स्थल या आराध्य की परिक्रमा में इसी अंक को महत्व दिया जाता है। आपने देखा होगा कि विशिष्ट धर्म गुरुओं के नाम के साथ 108 संख्या को लिखने की परंपरा है। माना जाता है कि 108 के अंक का संबंध ग्रहों, नक्षत्रों और ऋतुओं से भी जुड़ा है। ज्योतिषी कहते हैं कि 108 मनकों की माला या 108 जाप की संख्या आदि शक्ति और ब्रह्मा का बोध कराती है। इस रहस्यमयी अंक 108 से जुड़ी और भी आश्चर्यजनक बातें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे।
2: आपने धर्मशास्त्र या ज्योतिषियों के मुंह से सुना होगा कि इस मंत्र का 108 बार जाप करें, उच्चारण करें। संख्या 108 को यूं ही खास नहीं माना जाता है। देखिए, इसके पीछे तमाम वजह और तथ्य हैं जिनको समझने पर इस संख्या की महत्ता का पता चलता है। 108 न सिर्फ शुभता का प्रतीक है बल्कि ये राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों से भी संबंध रखता है। यही नहीं, 108 परम ब्रह्म का भी प्रतीक है।

0: 108 की संख्या से जुड़े हैं रोचक तथ्य। 108 की संख्या में है ब्रह्मांड के रहस्य। जीवन में शुभता का प्रतीक है अंक 108। ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म में विशेष है अंक 108। सनातन धर्म में ऐसी कई परंपराएं हैं जिनका पालन तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम उनके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को नहीं जानते। उन्हीं रहस्यों में से एक है क्रिया अंक 108 का इस्तेमाल। माना जाता है कि माला जाप, मंत्र जाप, भगवान को याद करने की संख्या, इन सब में अंक 108 सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। माना जाता है कि मंत्रों के जाप, पूजा पाठ, परिक्रमा या कोई दूसरे शुभ कार्य हो, हर कार्य में 108 की संख्या को शुभ माना जाता है। माना जाता है कि 108 अंक की महत्ता सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि इसको कई अन्य धर्मों में भी उतना ही पवित्र माना जाता है। बौद्ध, जैन धर्मों में भी इस अंक को महत्वपूर्ण माना गया है। गौड़ीय वैष्णव धर्म में भी वृंदावन में 108 गोपियों का ही जिक्र है। 108 मनकों पर भी गोपियों के नाम का जाप पवित्र माना जाता है, महत्वपूर्ण माना गया है। गौड़ीय वैष्णव धर्म में भी वृंदावन में 108 गोपियों का ही जिक्र है। 108 मनकों पर भी गोपियों के नाम का जाप पवित्र माना जाता है। इस जाप को नाम जाप कहते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 108 दिव्य क्षेत्रों को बताया गया है। इन्हें 108 दिव्य देशम कहा जाता है। 108 का संबंध समुद्र मंथन से भी है। समुद्र मंथन में मंदार पर्वत पर वासुकी नाग लिपटे थे। वासुकी को 54 देवता और 54 राक्षसों ने अपनी अपनी ओर खींचा था। 54 देव और 54 राक्षस यानी कुल मिलाकर 108 लोग इसमें शामिल थे।
1: यह आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोत्तम है। यह भगवान को मिलाने का सबसे उत्तम साधन होता है। जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सिद्धि प्राप्त करने के लिए जप करते हैं, तो जप करते हैं तो 108 माल के दाने से करते हैं, और 108 दाना शिव जी का है, तो जब शिव जी के अंक के द्वारा हम जप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं।
0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि महादेव का संबंध भी 108 अंक से है। जानकार बताते हैं कि मुख्य शिवांगों की संख्या 108 होती है, इसलिए सभी शैव संप्रदाय विशेषकर लिंगायत संप्रदाय में रुद्राक्ष की माला में 108 मनकों का जाप होता है। रुद्राक्ष की माला में 108 मनकों का जाप होता है। शिव के अष्ट शतना मावली का भी जाप 108 है। शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य में 108 मुद्राएं हैं।
1: शिव तांडव स्तोत्र में भी भगवान ने जो तांडव किया था, जो नाट्य किया था, उसमें भी यह उनकी 108 मुद्राएं थी। शिव तांडव जब स्तोत्र किए थे तो जितनी मुद्राएं उन्होंने तांडव करने में किया था उसमें कुल 108 मुद्राएं थी, जिसको वो भगवान ने अपने तांडव में उतनी 108 मुद्राएं प्रदर्शित की थी, इसलिए इसका महत्व अधिक बन गया है।
0: मान्यता है कि 108 का सबसे ज्यादा चलन जो देखने को मिलता है वो ज्योतिषीय शास्त्र में है। माना जाता है कि 108 अंक का राशियों और ग्रहों से संबंध है। आइए आपको बताते हैं ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों का 108 की संख्या से क्या मेल है। कुंडली में कुल 12 राशियां होती हैं। इनमें ग्रहों की संख्या 9 होती है। सभी राशियों पर ग्रहों का प्रभाव होता है। 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल होता है 108। ज्योतिषीय शास्त्र के अंदर आकाश में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इनके 4-4 चरण होते हैं। 27 और 4 का गुणनफल भी 108 होता है। ज्योतिष में 108 महादशाओं की भी चर्चा की गई है।
1: इसमें 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। 9 ग्रह और 12 राशियों का गुणन करेंगे तो 108 होगा। 9 ग्रह हमारे सब ब्रह्मांड को करते हैं और मनुष्य जो राशियां होती हैं वो 12 होती हैं। तो 9 और 12 को जब गुणा करेंगे तो 108 होता है। उसी तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 गुणे 4 जब करेंगे तो 108 होगा। इसलिए इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है।
0: विवरण मिलता है कि बौद्ध शिक्षाओं में 108 संसारिक प्रलोभनों और 108 गुणों का उल्लेख है जो ज्ञान देय की ओर ले जाते हैं। माना जाता है कि 108 अंक बेहद पवित्र, चमत्कारी और कल्याणकारी हैं। आदि देव, परम ब्रह्मा और आदि शक्ति का सूचक है। आप कह सकते हैं कि 108 का अंक इस ब्रह्मांड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है।
2: तो आज हम आपको बता रहे हैं संख्या 108 की महिमा और इससे जुड़ी रोचक बातें। तो देखिए, 108 से धार्मिक आस्था और मान्यताएं भी जुड़ी हैं। तभी तो कर्म कांड, पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के हर काम में 108 को शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कहां कहां प्रयोग होता है अंक 108।

0: नाट्य शास्त्र के पिंडी लक्षणम में 108 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि संस्कृत के 54 मूल अक्षर हैं और प्रत्येक अक्षर को शिव और शक्ति का स्वरूप माना गया है।
1: ये महादेव जी से संबंधित है। 108 का अंक ये शिव पुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव के अनुयायी और शिव गण जो थे उनकी भी संख्या 108 थी। भगवान शिव के अनुयायी और उनके गण जो लोग थे वह 108 थे, इसलिए हुआ 108 का अगर हम जप करते हैं, जप के लिए ही है या इसलिए हुआ 108 का महत्व सबसे अधिक माना गया है।
0: इस प्रकार 54 का दोगुना करने पर संख्या 108 प्राप्त होती है। 108 की संख्या का रहस्य भी ऐसा ही है। कर्मकांड, पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के हर काम में 108 की संख्या को शुभ माना जाता है, क्योंकि 108 परम ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,800 है, जिसमें शून्य हटाने पर 108 आता है। यज्ञ की वेदी में 10,800 ईंटों की आवश्यकता मानी गई है। 2 शून्य कम करें तो 108 ही शेष रहता है। जैन धर्म में अक्षमाला में 108 दाने रखने का विधान है। ये विधान गुणों पर आधारित है। अरहंत के 12, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 27 गुण। इस तरह पंच परमिष्ट के कुल 108 गुण होते हैं।
1: इसकी सिद्धि का प्रमाण तो यही है कि 108 दाने की माला से जिस कामना से जिस चीज के लिए हम जप करते हैं वो अपने आप सिद्ध हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र जप, गायत्री मंत्र जप, किसी भी देवी देवता का जप करेंगे 108 माले की दाने की मंत्र रुद्राज की चाहे तुलसी की चाहे लाल चंदन की, वह अपने आप मनुष्य को सिद्धि प्रदान कर देती है, इसलिए इसको सिद्ध महासिद्ध मंत्र माना गया है।
0: हो सकता है कि 108 से संबंधित कई ऐसे रहस्य होंगे जिनका वर्णन हम आपके सामने नहीं कर पाए हों। कई रहस्य अभी खोजे जाने बाकी हों तो 108 सर्वव्यापक, सर्व कल्याणकारी और मंगलकारी है। इसलिए शुभता और वैदिक कार्यों में 108 की संख्या का ही प्रयोग होता है। उम्मीद है कि 108 का रहस्य समझकर आप इसके महत्व को समझ पाए होंगे।
2: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
4: क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या आपका बच्चा बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
6: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: चलिए उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में आस्था भक्ति की महक बिखरी है। यहाँ श्री कंडोलिया ठाकुर के सालाना पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी एकत्रित हुए।

0: पौड़ी गढ़वाल की सांस्कृतिक पहचान और आस्था के प्रतीक हैं भगवान श्री कंडोलिया ठाकुर। पौड़ी शहर के आराध्य देव कंडोलिया ठाकुर का सालाना उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पौड़ी वासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। खास बात यह है कि पौड़ी के लोग जो देश के विभिन्न शहरों में रहते हैं, इस खास अवसर पर पौड़ी पहुंचकर कंडोलिया भगवान का आशीर्वाद लेने से नहीं चूकते। श्रद्धालुओं का मानना है कि कंडोलिया ठाकुर पौड़ी वासियों के सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, इसलिए इस वार्षिक पूजन में शामिल होना उनकी आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खास आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी जाती है। मंदिर परिसर की साफ सफाई से लेकर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और भंडारे की तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि इस खास अवसर पर 80,000 से 1,00,000 लोग पूरी श्रद्धा से यहां आते हैं, इसलिए खास व्यवस्था भी की जाती है।
1: मार्च के लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में हम लोग इसके लिए मीटिंग शुरू करने लगते हैं। प्रॉपरली हम मई से एक हर हफ्ते संडे के दिन इसके लिए बैठते हैं, रूपरेखाएं तैयार होती हैं, समितियां बनाई जाती हैं कि भाई आपने किसी को सिलेंडर की, किसी को राशन की, किसी को बाजार से व्यवस्था करनी है, मार्केट घूमना है, कलेक्शन करना है, इस टाइप की हम व्यवस्था तैयारी प्रॉपर शुरू से कर लेते हैं।
0: हालांकि शुक्रवार यानी 19 जून से श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन और भंडारे का शुभारंभ हो गया है और आज इसका समापन होना है, लेकिन भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर साल यहां भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
2: ये तो कंडोलिया देवता की महिमा है कि ये दिनों दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जब हमने शुरुआत की थी आज से 35 साल पहले तो बहुत कम लोग, सीमित लोग ही इसका आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज कालांतर में इतने लोग जो है आप देख रहे हैं कि कहीं जगह नहीं होती है, सभी लोग जो है इस भंडारे में आयोजन में आते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि वन क्षेत्र है, यहाँ पर एक दिक्कत ये भी होती है कि सारी व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल होता है, सारी चीजें लेके आनी पड़ती हैं और फिर वापस भी देनी पड़ती है।
0: उत्तराखंड के पौड़ी शहर का कंडोलिया मंदिर आस्था और धार्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है और इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं।
3: काली कुमाऊं से कोई लड़की ब्याह के आई थी पौड़ी गांव में, तो वो अपने साथ अपने आराध्य देव को ले आई थी, तो उन्हें गांव में ही उन्होंने स्थापित किया था और कुछ समय बाद कुछ देवता की इच्छा के अनुरूप उसे यहां पर स्थापित किया गया। तो ये डुंगरियाल नेगी की जो जाति के लोग हैं वो इसके पुजारी होते हैं, वो इसके उन्हीं के संरक्षण में ये यहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी। चूंकि ये क्षेत्रपाल भूमिया देव के रूप में स्थापित है, तो जिस ढंग से वो गांव नगर की तरफ बढ़ा, गांव से नगर हुआ, नगर से आज इतना बड़ा बड़ी आबादी है, तो उसी हिसाब से श्रद्धालुओं की, भक्तों की संख्या बढ़ी है। तो मूलतः इसे हम जो कहा मतलब कथा कही जाती है, जो कुमाऊं में गोलू हैं, गोलू देवता गोलजू कहते हैं, जैसे चितई में, चंपावत में है, घोड़ाखाल में है, तो उन्हीं उसी में से ये उसी का रूप है, मतलब वही देवता है। तो यहाँ पर हमने कंडोलिया कहते हैं, वो कंडोलिया से नाम पड़ गया कि क्योंकि उन्हें उस समय कंडी में लाया गया।
0: श्रद्धा, सेवा और सामुदायिक सहयोग का ये अनूठा संगम हर वर्ष पौड़ी की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है और पौड़ी गढ़वाल के लोगों की भगवान कंडोलिया ठाकुर के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या आपका बच्चा बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
6: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. that great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
7: Tune In's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
13: Asian Relay Championship में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड, 100 मीटर रिले में चीन को हराया, भारत ने कुल 3 पदक किए अपने नाम। देश भर में मॉनसून पकड़ रहा रफ्तार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश। समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, अगले महीने INS महेंद्रगिरी और INS मलवान नेवी में होंगे शामिल, निगरानी और युद्ध क्षमता में होगा इजाफा। दिल्ली में अब अंधेरे पर होगी सख्ती, स्ट्रीट लाइट खराब हुई तो लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी 24 घंटे निगरानी। क्रिकेटर आकाशदीप का धूमधाम से हुआ तिलक, भोजपुरी गाने पर जमकर थिरके गेंदबाज, 24 जून को वाराणसी में शादी।

0: के साथ श्वेता झा। एआई वाली दुल्हन से सावधान। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आगे आपको पता चलेगा। दरअसल बता दें कि तकनीक का दौर है, लिहाजा हर काम टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है। अब तो शादी के लिए लड़के और लड़कियां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। चट मंगनी पट ब्याह के सपने संजोए कई युवा मैट्रिमोनियल वेबसाइट से जुड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी शादी के हसीन सपने दिखाने वाली कुछ फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आपकी जेब खाली कर सकती है। यानी कि तकनीक के इस दौर में एआई के जरिए ठगी की जा रही है, इसलिए अवेयरनेस बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एआई का जाल फैलता जा रहा है, लोग बड़ी आसानी से डीप फेक के शिकार हो रहे हैं। एआई और डीप फेक के जरिए फर्जी चेहरे क्रिएट किया जा रहे हैं। ये लोगों के विश्वास पर वार करते हैं, उनके पहचान की चोरी है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, लेकिन आज हम इस पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। दरअसल कानपुर में शादी कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने परफेक्ट रिश्ता, शादी मैच और शादी मैच इंडिया जैसे नामों से कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग को पकड़ा है। एआई और एडिटिंग टूल से तैयार आकर्षक लड़कियों के प्रोफाइल दिखाकर लड़कों का भरोसा यहां जीता जाता था। एक युवक से 4 लाख रुपए के फ्रॉड की शिकायत मिलने के बाद यह मामला सामने आया। पूरा किस्सा क्या है, कैसे डी फेक और फेक प्रोफाइल को पहचाने, क्या सावधानियां जरूरी हैं, साइबर क्राइम को लेकर आपके कानूनी अधिकार क्या कहते हैं, क्यों इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, तो इन तमाम पहलुओं पर हम लीगल और साइबर एक्सपर्ट से आगे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि मामला दरअसल ये है कि कानपुर में पुलिस साइबर ठगी करने वाले एक ऐसे शातिर गिरोह को उसने पकड़ा है, जो कि शादी कराने के नाम पर लोगों की जेब खाली कर रहा है। ये गिरोह कुवारे लड़कों को शादी का झांसा देता था और फिर उनकी हैसियत देखकर लाखों रुपए की प्रोसेसिंग फीस वसूलता था। गिरोह एआई से नकली दुल्हनों का मायाजाल बनाता था, फिर शादी का झांसा देकर युवकों को फंसाता था। ये पूरा खेल नकली मैट्रिमोनियल वेबसाइट से चल रहा था। पुलिस की छापेमारी में 3 हाईटेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले ये इंटरनेट से ली गई तस्वीरों को एआई से आकर्षक बनाते थे, फिर युवाओं से उनकी शादी तय कराने के नाम पर ठगी करते थे। बताया गया है कि ये ठगी करोड़ों रुपए तक की हो सकती, जिसकी पड़ताल के लिए पुलिस पूरे गिरोह की पड़ताल में जुट गई। अब तक की जांच में कई दिलचस्प तथ्य सामने आए। ये डिजिटल फ्रॉड गैंग सोशल मीडिया पर शिकार तलाशता था। सोशल मीडिया पर शादी के इच्छुक युवाओं की जानकारी जुटाई जाती, फिर कॉल सेंटर से संपर्क किया जाता। काउंसलिंग के बाद युवाओं को लड़कियों की फेक तस्वीरें भेजी जाती। फेक प्रोफाइल के जरिए युवाओं को भरोसा जीता जाता। किसी एआई दुल्हन को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बताया जाता। हर कॉल के साथ कॉल सेंटर का बिल और डिमांड बढ़ती जाती और एआई दुल्हन के झांसे में युवाओं से लाखों का फ्रॉड किया गया।
1: 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए, और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी, उनसे पैसा ऐठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है, इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और यहां पर कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था, जो जिसकी जांच पड़ताल के बाद से NCRP पोर्टल पर 3 कंप्लेंट भी मिली थी और कई नंबरों की एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए।
0: आपको बता दें कि अब तक की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का असली कारोबार शादी कराना नहीं बल्कि शादी का सपना बेचना था। पुलिस का कहना है कि आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म से युवाओं का डेटा इकट्ठा करते थे। ऐसे युवक जिनके प्रोफाइल में मेंशन होता था कि वो विवाह के इच्छुक हैं, उन्हें टारगेट किया जाता था।
1: ये लोगों को कॉल करके फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जो शादी के इंटरेस्टेड होते थे उन पे लड़कियों का फोटो भेजते थे। AI जनरेटेड फोटो और पेनड्रेस्ट से फोटो लेकर के वो जेमिनाई से बना करके भेजते थे और उसके इंटरेस्ट के आधार पर जिसमें जो रिक्वेस्ट होती थी उसका रिप्लाई करते थे। और इन्होंने एक स्कीम बना रखी थी जिसमें शुभ सिल्वर, शुभ गोल्ड, प्लेटिनियम और प्रीमियम करके इनका एक ब्रोशर होता था जिसमें पेमेंट 3,000, 5,000 और 10,000 रुपये का लेकर के था। और उसके बाद अपनी कॉल सेंटर की लड़कियों से टेलीफोन से बात कराते थे और फोटो जो है जो पेन ड्रेस से और AI जनरेटेड होती थी उसको भेजते थे।
0: चलिए तो पूरी कहानी आपको पता चल गई, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद कुमार जैन जो कि फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं रितेश भाटिया जो कि फाउंडर V4Web साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ पवन दुग्गल जी जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानेंगे साइबर लॉ के बारे में, सर आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अमित मल्होत्रा हमारे साथ हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपने भी ये स्टोरी देखी होगी, आपने भी देखा कि कानपुर में क्या कुछ हुआ और ये बात सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं है। तो सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आते हुए पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि सर इस तरह के जो केसेस अब हम देख रहे हैं ये इन दिनों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं?
2: तो वजह बहुत जल्दी पैसा कमाना है और जो मेहनत वाले जॉब हैं उनसे बचना है, कोई ऐसा इजी रास्ता ढूंढना है जिससे कि करोड़ों जल्दी से जल्दी कमाए जा सकें। ये बड़ा नोवेल तरीका ढूंढा है क्योंकि ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं बहुत सी प्रचलित हैं देश में और लोग बाग उन पे पैसा भी देते हैं, पेपर्स में भी एड्स निकलते हैं। तो इन्होंने यही रास्ता चुना, इस तरह के नाम रखे जो अभी आपने नाम लिए
0: जी।
2: और इससे जो है बताया तो जा रहा है कि 1700 लोग इसका शिकार हो चुके थे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा एक उठाया है चैनल के माध्यम से, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपका शो देखकर पब्लिसिटी से बहुत से लोग सामने आएंगे, अपनी रिपोर्ट्स लॉन्च कराएंगे, तब पता चलेगा इसका क्या मैग्नीट्यूड है। 1700 की बात कही जा रही है, 11 लिंक्ड बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जितने के ये ATM कार्ड्स मिले हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, कीपैड फोन्स हैं, एंड्रॉइड फोन्स हैं।
0: बिल्कुल सर, सारा का सारा नेटवर्क चल रहा था, बिल्कुल जैसे एक कॉल सेंटर में अगर कोई काम करता है उसमें जो जो चीजें चाहिए होती है, जो आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर बिजनेस चल रहा था। आएंगे सर आपके पास, पवन दुग्गल जी आपके पास आते हुए, आपको क्या लगता है कि AI के आने से साइबर क्राइम में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, ऐसा आप मानते हैं?
3: कोई दुराह नहीं है कि AI के आने के बाद अब साइबर क्राइम 4 गुना लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। और उसका कारण भी है, आज AI खासतौर पर वो डार्क वर्जन्स जो डार्कनेट पर उपलब्ध हैं वो आपकी मदद करते हैं खुद साइबर क्राइम करने के लिए। तब तो आपको हाथ भी गंदे करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल AI को दिशा निर्देश देंगे, ऑर्डर करेंगे और AI आपके बिहाव पर क्राइम करेगा। तो इससे ज्यादा सुनिश्चित तौर पर पूरी तरीके से आश्वस्त होने की ज्यादा अच्छा मॉडल नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस अगर पहुंचेगी भी तो केवल AI तक तो पहुंचेगी, लेकिन ये कैसे जानेगी कि AI के पीछे इंसान कौन? तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सब जो AI की दुनिया में चपेट में आ गए हैं, हम समझ लें कि अब AI सबसे ज्यादा पावरफुल कैटलिस्ट बनने वाला है इस पूरे साइबर क्राइम के प्रकरण को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। और जितनी जल्दी हम कानून की जो लैकुन है उसको समझें, क्योंकि भारत के पास कोई AI क्राइम संबंधी कानून नहीं है, यहाँ तक कि भारत के पास कोई साइबर क्राइम भी समर्पित कानून नहीं है। जो कुछ है कुछ चुनिंदा प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, पर बहुत जल्दी अब आपको AI ड्रिवन क्राइम को निपटने के लिए लीगल प्रोविजन लाने होंगे क्योंकि आज की तारीख में एआई को लेकर कानूनी मान्यता ही नहीं है, एआई को लॉ रिकॉग्नाइज करता नहीं है।
0: बिल्कुल रितेश जी, जो पवन जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहीं से जो है परेशानी की शुरुआत होती है कि हमारे यहाँ किसी तरह का एआई को लेकर कोई कानून नहीं है, हमारे यहाँ न्याय संहिता भी हमारे यहाँ अलग अलग तरह की है, लेकिन एआई को लेकर और साइबर क्राइम को स्पेशली लेकर अभी भी, जबकि साइबर क्राइम आज कोई नई चीज नहीं है, बहुत समय से साइबर क्राइम हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन कहें कि एक ठोस जो कानून बनना चाहिए वो नहीं है। और ऐसे में ये बताइए साथ ही, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एआई से अब फोटोग्राफ्स बनाना या फिर किसी का वीडियो बनाना, डीप फेक का उसमें और ज्यादा आ जाना, ये चीजें और एक तरह से इस तरह का जो फ्रॉड और क्राइम संगठित तौर पर हो रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह आप भी मानते हैं?
4: जी, तो श्वेता जी, पहले तो पहले अगर हम देखेंगे ना, ये शुरुआत है खाली, ये अभी आप जो एक कॉल सेंटर की बात कर रहे हैं वगैरह, ये पहले भी हो चुका था, अप्रैल महीने में झांसी में हुआ था, जबकि कुछ 17 लोग पकड़े गए थे या ऐसे कुछ था, अभी ये वापस से हो रहा है और ये बढ़ता ही बैठेगा। जो हम देख रहे हैं वो शुरुआत ही है, क्योंकि अभी इनका नेक्स्ट स्टेप भी ऐसा ही है कि जब वो बात भी करेंगे किसी से तो वो सामने वाले, जैसे आपने वर्ड यूज किया है डीप फेक्स, आपको लगेगा कि आप एक यू नो एक्चुअल कोई लड़की से बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसका पूरा डीप फेक रहेगा, वो उसी के लैंग्वेज में बात करेगी। हाल फिलहाल तो ये सारे हिंदी में बात कर रहे थे, अभी तो आपके स्क्रिप्ट्स भी वैसे आ जाएंगे क्योंकि डीप फेक के थ्रू, मतलब ये आप तमिल में बात कर पाएंगे, कन्नड़ में बात कर पाएंगे, भोजपुरी में बात कर पाएंगे, पंजाबी में बात कर पाएंगे, ये सारी चीजें। तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ ये अभी के लिए तो ये शुरुआत ही है। जहां तक आप लॉ की बात करते हैं, तो अब हम देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी में आप देख लीजिए, साइबर क्राइम में ही देख लीजिए, हम अभी भी वो आईटी एक्ट 2000 से हैं, जो एक लास्ट मॉडिफाई हुआ था कुछ 2008-2010, पवन सर इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। और उसके बाद क्या हुआ है, आज तक कहां हमारा एक ठोस साइबर क्राइम्स के भी लॉ बने हैं? एआई तो बहुत दूर की बात रह गई है, हमने एक एआई मिशन के बारे में बात की, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, लेकिन लॉ की कहां बात हो रही है, गवर्नेंस की कहां बात हो रही है? और एआई में अगर सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दिन में अगर कुछ है ना, तो वो है एआई गवर्नेंस, और यहीं पर हम बहुत पीछे रह रहे हैं। हम बाकी हर चीज में बोलो आप, हम डेटा सेंटर खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, मतलब स्टार्टअप्स को एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन कानून कहाँ है, गवर्नेंस किधर है, कौन ये सब चीजों को करेगा? एक बीच में सरकार ने ये भी बोला था कि एक आप कोई भी एक एआई जनरेटेड इमेज बनाते हो या वीडियो बनाते हो या कंटेंट भी रहता है, आपको उधर उस पर एक वाटरमार्क डालना पड़ेगा 10% ऑफ द कवरेज एरिया में कि ये एक एआई जनरेटेड है, नहीं तो यूजर के ऊपर, क्रिएटर के ऊपर एक कार्रवाई भी हो सकती है और उसको पेनल्टी भी लग सकता है। लेकिन वो भी नहीं हुआ क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लॉबिंग हुआ है यू नो बाकी इंटरमीडियरी से कि श्वेता ये लोग ने उसको भी मतलब डाउन कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये शुरुआत है, आगे और खतरा है एआई का। आपने अभी एकदम असली विशाल जो एकदम ही जो गंदा रूप है वो अभी हमने देखा नहीं है।
0: बिल्कुल अमित जी, आपके पास आते हुए रितेश जी अभी जो बात कह रहे थे वो वाकई डराने वाला है, वो खौफनाक है, ये सच। अभी तो कहते हैं ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग वो हम देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कितना भयावह हो सकता है इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाकई अगर हम आज के समय में बात अगर करें अमित जी, तो जरा ये बताइए, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कि हम आज जब 4 लाख रुपए किसी के, 5 लाख रुपए गाढ़ी कमाई, और न सिर्फ किसी की कमाई, देखिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें होता है। जब आप किसी से मैरिज ब्यूरो या किसी काउंसिल पे आप किसी से जुड़ते हैं, जाहिर सी बात है आप शादी करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन है, इमोशनली भी आप अटैच होते हैं, तो इसमें आप इमोशनली भी ड्रेन हो रहे हैं, आपके पैसे भी जा रहे हैं, और उसके पीछे आप किसी को पकड़ नहीं सकते। अगर ये सच्चाई भी सामने आ गई कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप कैसे पकड़ें, किसको पकड़ें?
5: मैम देखिए, मैम एआई जो है, एआई के अंदर काफी सारे चैट मॉडल्स आते हैं, जैसे कि स्कैमर्स आजकल क्या कर रहे हैं, एआई को चैटबॉट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि 28 इयर्स ओल्ड गर्ल बन के बात करूं, ठीक है, वॉइस क्लोनिंग करूं। तो वॉइस क्लोनिंग के साथ साथ हम लोग अपना एआई में अवतार बना सकते हैं। मैंने अपने हाल फिलहाल अपने फोन पे ही एक एआई का मॉडल लगाया जो कि मेरे भैया पे बात करता है, सारी बात करता है। मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी, तो अगर मेरी गाड़ी पार्क होती है तो कोई मेरे को फोन मारते कि ना अमित जी से बात करनी गाड़ी हटवाने के लिए, तो वो लेडी बिल्कुल रियल लेडी की तरह बात करती है, हाँ जी कौन सी गाड़ी पार्क है, कहाँ पे पार्क है, बताइए कहाँ से हटवानी है, अमित सर तो अभी बिजी है। तो मतलब सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता कि ये एआई बात कर ली है। मेरे पास अगर कोई फोन मारता है तो मेरा फोन जो है एआई पहले बात करती है, फिर वो मेरे को कॉल फॉरवर्ड करती है। तो सामने वाला जब पहचान ही नहीं पा रहा, इतने सारे मॉडल्स आ गए, इतने सारे अवतार आ गए, इतनी सारी चीजें आ गई, मतलब डीप से अगर हम बात करते हैं तो एआई से इतनी ज्यादा बनाई जा रही है कि सामने वाला पहचान नहीं पा रहा। इसी केस में यही चीज हुई है कि सामने वाले ने क्या किया, ऐसे एक लोगों को ठगता गया ठगता गया ठगता गया, लोग उसके शिकार होते गए। लेकिन एआई की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज में थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसमें भी काफी सुधार हो रहा है, लोग उसमें भी काफी काम कर रहे हैं। हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए, एआई से बचाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे कि वो रियल है कि फेक है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि उसके ऊपर कोई वॉटर मार्किंग होनी चाहिए, जब अगर हम वॉइस की भी बात कर रहे हैं वॉइस में
0: बिल्कुल
5: इसको पहले
0: देखिए,
5: स्टार्टिंग में ऐसा
0: अभी
5: देना
0: तो
5: चाहिए।
0: काम तो बहुत हो रहा है, काम बहुत हो रहा है एआई पे, लेकिन हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि भाई हमारे देश में अभी उसके लिए क्या कानून है। अरविंद जी आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए बहुत चैलेंजेस सर आ रहे हैं। एक तो पहले ही हमारे कानून में कई तरह की चीजें हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि फ्लॉज बहुत तरह से हैं, लेकिन हाँ कई चीजें हैं जिसको बहुत ही स्ट्रांगली और आपको असर्टिव वे में देखना और करना होगा, ये भी हम मानते हैं। और जब से साइबर सिक्योरिटी की बात सामने आ गई है, आपको नहीं लगता है कि बहुत पहले से, जैसे अब तो बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहे हैं, कि स्कूल लेवल से ही लोगों को इसकी शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे समझ सके कि साइबर फ्रॉड क्या होता है या साइबर सिक्योरिटी क्या होती है या खुद को कैसे बचाएं?
2: बिल्कुल ठीक कहना है आपका, बिल्कुल जितनी जल्दी हम इसकी एजुकेशन दे सकें, हम एजुकेट कर सकें बच्चों को, हमारे पुलिस के जो कोर्सेज हैं जो डिफरेंट लेवल पे रिक्रूटमेंट है उनमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो एथिकल हैकर्स हैं उनकी भी मदद दी जा रही है, हर जिले में साइबर क्राइम के थाने खुल रहे हैं। ये पहले अनइमेजिनेबल था, पहले नकब लगते थे गाँव में, पहले डकैतियां होती थी, पहले किडनैपिंग फॉर रैंसम होता था, अब वो सब अपराध खत्म है। अब तो इसमें करोड़ों का वारा न्यारा होता है एक बार में। तो ये जो मूड बना रहे हैं इसमें बस एक ही तरीका है, मेरा मानना है कि देखिए जैसे जैसे क्राइम बढ़ता है वैसे वैसे लॉज भी इवॉल्व होते रहते हैं, वैसे वैसे वो और उसमें और सख्तियां की जाएंगी। अभी जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं पर हम लोग काम करें और सख्ती से उनको इम्प्लीमेंट करें, जो भी रिलेटेड इनके बैंक अकाउंट्स हैं वो सब फ्रीज करें और एक मैसेज जाए पूरा समाज में कि हाँ भाई ये इस टाइप का एक फ्रॉड ये चल रहा था और इसको बस किया गया है। तो इससे बहुत से लोगों को शिक्षा भी मिलेगी, ये 1700 लोग और जगह सब बताएंगे, पेपरों में छपेगा, दे विल बी कॉशियस इन द फ्यूचर, लोग अपने को तैयार करेंगे एआई को लेके। दुग्गल साहब का सबका कहना बिल्कुल ठीक है, तो अभी शुरुआत है और शुरुआत में देखिए ये सब इतना कुछ हो रहा है तो हम लोग को अपने को गेयर अप करना पड़ेगा और तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, मैं तो आए दिन सुनता रहता हूँ,
0: बिल्कुल।
2: और वो हाँ डिजिटल अरेस्ट
0: लेकिन
2: हो रही
0: सर,
2: है।
0: अगर अगर एज इफ नाउ अभी की अगर हम बात करें तो आप ये बताइए कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, क्या वो सक्षम हैं आज के समय में डील करने के लिए इस तरह के सिचुएशंस को?
2: नहीं, वो सक्षम बहुत नहीं है। हम लोग तो खुद इस बात के लिए वरिड हैं, इसके सेमिनार्स भी हो रहे हैं, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं,

0: होंगे और
1: बिल्कुल
0: इनसे हमको बहुत बहुत निपटना होगा।
1: बिल्कुल पवन दुगल जी, आपके पास आते हुए जैसा कि सर बता रहे थे कि ऑब्वियसली देखिए अभी जो हमारा सिस्टम है एज इफ नाउ वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, ये इस बात को हम जानते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आप जैसे या और भी जो कई साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनके अलग अलग सेशंस हो रहे हैं और अलग अलग जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जिनको जरूरी है, जिनको जानना, हमारे कानून से जुड़े, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग हैं उनके यहाँ स्पेशली सेशंस कराए जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस सब चीज के लिए भी इतना डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि अब बहुत हद तक देखिए अब फ्रॉड किस लेवल पे आ रहा है, शादी ब्याह जैसी चीजें आ गई, हम देख रहे हैं पैसे किसी बात को लेकर किसी और कंपनी के नाम पे आप रजिस्टर कराते हैं और किसी और खाते में आपका पैसा चला जाता है, पैसे की चोरी और तमाम तरह की चीजें हम देख चुके हैं, लेकिन अब शादी ब्याह जैसी चीजों को लेकर हम देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से और किस लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर आपको नहीं लगता है कि बहुत पहले और हमें तैयारी कर लेनी चाहिए थी? वी आर लेट।
0: मुझे लगता है हम लोगों की तैयारी है ही नहीं। ये जो तैयारी है वो चुनौती की सामने बहुत कमजोर पड़ जाती है। उसका रीजन भी ये है, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या के राष्ट्र, सबसे बड़ी तादाद साइबर क्राइम की हमारे यहाँ हो रही है, और हमारे यहाँ ऐसा राष्ट्र है जहां पर साइबर क्राइम को समर्पित कोई कानून ही नहीं, कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम लेजिस्लेशन नहीं, और हम चुनिंदा इक्का दुक्का सेक्शन डाल देते हैं बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, और हम पूछ रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, हम नहीं कामयाब। देखिए, मैं भारत का पहला साइबर क्राइम कन्विक्शन वाले मामले में वकील था कंप्लेनेंट का 2003 में। जब हम लोगों ने कन्विक्शन कराई थी तब उम्मीद था कि साहब अब बहुत और कन्विक्शन होंगी, कुछ साल कन्विक्शन हुई भी, लेकिन फिर आईटी अमेंडमेंट एक्ट आ गया जिसने अधिकांश साइबर क्राइम्स को बिलबल बना दिया। तो हम लोग तो एक साइबर क्राइम फ्रेंडली लेजिस्लेशन के तौर पर उभरने लग गए। तो विद द रिजल्ट साइबर क्रिमिनल्स को पता लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब खुल के हम साइबर क्राइम करते हैं, जहां पर हम पकड़े भी गए हमें बेल तुरंत मिलेगी, बाहर आएंगे अपने बर्थ ऑफ एविडेंस डिस्ट्रॉय करेंगे और आगे बढ़ेंगे और तमाशा देखेंगे, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आपके यहाँ सजा नहीं हो सकती।
1: सर लेकिन
0: तो
1: आप
0: ये
1: जो
0: बात
1: बात कह रहे हैं, अब माफ करिएगा आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं और साइबर क्रिमिनल्स जो हैं इस बात को लेकर आश्वस्त हैं इसलिए और ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो इसके पीछे मैं क्या समझूं? क्या हमारी सरकारें इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है या वो इस बात की गंभीरता को, साइबर क्राइम की गंभीरता को समझ नहीं पा रही है?
0: मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। एक, हम लोग इस चुनौती के महत्वपूर्ण विकराल रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा, हम साइबर क्रिमिनल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते जा रहे हैं, भारत में जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए रोज नई टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तीसरा, शायद हम उसको इतना ज्यादा महत्व भी नहीं दे रहे, क्योंकि शायद साइबर क्राइम्स वोट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अगर आप साइबर क्राइम निपटोगे तो उसका ताल्लुक नहीं है कि आपको वोट मिलेंगे, तो शायद
1: बिल्कुल
0: इस रीजन से भी लगता है कि इसको इतना ज्यादा तवज्जो महत्व नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो कानून है या जो भी कानूनी प्रकरण है, पुलिस है, वो साइबर क्राइम विक्टिम फ्रेंडली नहीं है। आज आप थाने में रिपोर्ट करने जाओ, वो खुद ही आपसे 50 सवाल पूछेंगे, आप कहोगे मेरी जान छोड़ो भैया मैं रिपोर्ट
1: बिल्कुल
0: नहीं करता।
1: बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अमित जी आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहूंगी कि इस बात को समझने की जरूरत है जैसा कि पवन जी ने कहा कि भाई इससे वोट इफेक्टेड नहीं होता है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ आज भी, जबकि 2003 की सर बात कर रहे थे कि उस समय उन्होंने कन्विक कराया था और आज देखिए हम 26 में बैठे हैं और किस लेवल पे क्राइम हो रहा है साइबर क्राइम, और आज तक हमारे पास कोई एक ठोस नियम कायदा कानून कुछ भी नहीं है, कोई लॉ नहीं है?
2: बिल्कुल मैम, अगर आईटी एक्ट में भी देखा जाए तो आईटी एक्ट में 66C और 66D दो ही धाराएं इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, या तो इधर आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर आपका चीटिंग ऑफ पर्सोनेशन की आपकी पहचान के चोरी करके मतलब फेक किया गया है, तो इसके अलावा कोई और मतलब एक्ट भी आईटी एक्ट में इसके ऊपर आता नहीं है। लेकिन अगर एआई को देखो तो एआई से करे गए क्राइम बहुत सारे हैं, अगर एआई के ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल करा जाए, ढंग से बनाया जाए, तो एआई के ऊपर सच्चाई होगी। और मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि जितना साइबर फ्रॉड है उसको रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने इधर आधार कार्ड को उसके साथ लिंक कर देना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट के साथ, ताकि सोशल मीडिया अकाउंट भी कोई ऐसे ना खोल सके, क्योंकि तो आजकल क्या है किसी को भी देखो सोशल मीडिया अकाउंट खोल के फेक एआई से फोटो बना के कुछ भी करके वेरीफाई करके एक अकाउंट

0: देता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो कानून क्या है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक क्राइम को भी रोकना बहुत टफ है।
1: बिल्कुल रितेश जी, जो अमित जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या जितना आसान हो गया है, मैं इनफैक्ट एक्स की भी बात करूं, जब वो ट्विटर था उस वक्त हमारा ही जब अकाउंट था, तो हमारी पूरी प्रोफाइल को देख करके कि हम कहाँ हैं, क्या काम करते हैं, उसमें जो डेटाज हमने डाले हैं वो सही है या नहीं, तब जाके हमारा अकाउंट लंबे प्रोसेसिंग के बाद वेरीफाइड हुआ था। फिर जैसे ही वो एक्स हुआ, हमने देखा कि उसके बाद सीधे ये हो गया कि आप सर्टेन अमाउंट दीजिए, आप पैसे दीजिए और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा।
0: जी श्वेता जी, तो आप जो ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं और हम ये बहुत सारी चीजें की बात कर रहे हैं कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, क्या हो रहा है, लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि इसमें इंटरमीडिएट्स की जवाबदारी कहाँ गई है। आज जैसे ये जो थे जिन्होंने कॉल सेंटर चालू किया था, उन्होंने जो पैसे लिए थे कोई कैश में तो नहीं लिया था, उन्होंने एक बैंक अकाउंट में लिया था, वो सारे क्या थे? म्यूल अकाउंट्स थे, ये थे। अल्टीमेटली उस जो विक्टिम है, वो जो उनका जो कस्टमर हुआ, उनका जो यूजर हुआ, उसको क्या राहत चाहिए? आप जैसे बोल रहे थे एक इमोशनल जो ट्रॉमा हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा उसको फाइनेंशियल हुआ। इतना इमोशनल नहीं हुआ है जितना उसको फाइनेंशियल हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। तो वो तो यही बोलेगा कि भाई मेरे 1 लाख गए हैं, 4 लाख गए, मुझे ये वापस दो। तब तक मालूम पड़, तब तक वो पुलिस में कंप्लेन कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये भाई साहब लोग ने तो सारे पैसे विड्रॉ कर डाले। तो ये पैसे जो विड्रॉ भी किए हैं वगैरह, तो इनकी केवाईसी का क्या? हम बात कर रहे हैं हमारी केवाईसी की, आप बोल रहे हो कि एक्स ने इतना केवाईसी किया या उसने, लेकिन इनकी केवाईसी का क्या? ये पैसे कहाँ गए हैं? तो ये चीजें ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिजिटल अरेस्ट भी देखोगे जहां पे लोगों के करोड़ों जाते हैं, अभी तक वो सीन चालू है। और ये ना इतना याद रखना श्वेता कि लाइक साइबर क्राइम ना इज मोर ऑफ एन इमोशनल क्राइम देन अ टेक्निकल क्राइम, और यहाँ पे वो इमोशंस के साथ ही खेल के सब कुछ हो रहा है। तो
1: बिल्कुल
0: अगर आप देखोगे भी डिजिटल अरेस्ट में भी जो हो रहा है, वो एक जो फियर जो आ रहा है, वो फियर के ऊपर वो लोग इस पर्टिकुलर चीज में खेल रहे हैं। और वो लेकिन वो है कौन? वो कोई टेक्नोलॉजिकली हैकर्स वैकर्स नहीं है वो लोग, ये एक आम आदमी लोग हैं। लेकिन ये कैसे बचाया जा सकता है, जो भी है ठीक है, अवेयरनेस आप कर रहे हैं, आपका चैनल भी करता आया है, सारा मीडिया कर रहा है, सरकार भी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं वगैरह, लेकिन ये इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? ये इफेक्टिव इसके लिए नहीं हो रहा है कि जहां वो फाइनली जो उनका जो मोटिव है कि पैसे कमाना, वो जो पैसे जिस बैंक में जा रहे हैं वो
1: बिल्कुल
0: अकाउंट कैसे खोल रहे हैं। तो हम कभी भी ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ये इन पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे आप बता रहे थे कि हाँ ये स्कूल से चालू हो जाए, अरे स्कूल से चालू होएगा, लेकिन जब तक वो बच्चा बड़ा होएगा तब तक उसके साथ और एडवांस क्राइम होएगा। लेकिन आज जिनके साथ हो रहा है, जो 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के लिए,
1: बिल्कुल एक
0: उनका
1: बड़े
0: क्या?
1: लेवल पे, एक बड़े लेवल पे नहीं, नहीं सर, आपने जो कहा वो बात बिल्कुल रितेश जी सही है, लेकिन स्कूल के लेवल पे भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और आज जिनकी आप बात कर रहे हैं जिस एज ग्रुप की, मैं तो कह रही हूं कि वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस बहुत जरूरी है जिस लेवल पे ये फ्रॉड हो रहा है, और अभी तो शुरुआत ही है। आप सभी बने रहे हमारे साथ, हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे समाधान कि आखिर कैसे बचें आप इस तरह के साइबर फ्रॉड से। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि सावधान आपको रहना चाहिए एआई वाली दुल्हन से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हमने आपको बताया कि किस तरह से कानपुर में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसके पीछे किस तरह से एक कॉल सेंटर काम कर रहा था, कई लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी काफी कुछ ऐसा है जो आपको जानने और समझने की जरूरत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनसे हम चर्चा करते हैं। अब सीधे तौर पर, हालांकि ये बहुत मुश्किल है आप सभी की बातों को जानने और समझने के बाद, कि एक लाइन में अगर मैं समाधान की बात करूं तो समाधान पर अभी हम तुरंत नहीं उतर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अरविंद जी आपके पास ही आते हुए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आज के समय में, भाई कहीं से तो हम शुरू करेंगे ना, हम सिर्फ चर्चा करके छोड़ नहीं सकते चीजों को। हम देख रहे हैं अब इस तरह के क्राइम्स बहुत बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि तुरंत या फिर फौरी तौर पर सबसे पहले आपके ही डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से भी?
1: देखिए, पहली बात तो जब भी कोई रिपोर्ट करे, जैसा दुग्गल साहब कह रहे थे कि 50 सवाल पूछे जाते हैं वो हतोत्साहित हो जाता है, तो वो ये सब ना करें, उसको जो है उसकी बात को समझें, तो रजिस्टर करें। अब देखिए, जैसे ये मुकदमा दर्ज हुआ एक चंद्रेश नाम के व्यक्ति के बाराबंकी का, जिसके उस पर लिखा गया है, तो जब साइबर क्राइम वालों ने देखा, 3 कंप्लेंट्स उनको नेशनल जो साइबर क्राइम पोर्टल है उसके ऊपर पहले से मिली इसी प्रकार की, वो भी इसी से लिंक हुई, तो इसका मतलब पहले से इस टाइप का चल रहा था। जैसे ही संज्ञान में आए तत्काल, ये हमेशा से कहा जाता है क्राइम के लिए, जब छोटा बदमाश है पहला अपराध करे तभी सख्त कार्रवाई करिए, आपने जब उसको बड़ा बना दिया और वो खुलकर अपराध करने लगा तब आप हैंडल करेंगे तो दिक्कत होगी। वही मेरा मानना है इसमें भी, कि वही वही वही नजरिया अपनाया जाना चाहिए, जैसी शिकायत आए उनको एंटरटेन करें, उनको बिठाएं, उनसे पूरी बात समझें, सारी डिटेल्स उनसे रेलिवेंट लें और सब लोग उसमें लगें। इसी प्रकार ये एक्सपोज होगा और जब अरेस्ट होंगी, जेल जाएंगे, इसमें करोड़ों का लॉस होगा इनको, इनके अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए हैं, सब पता चल जाएगा। पुलिस के अपने तौर तरीके हैं सब हैंडल करने के, तो मैं इनसे रोक लगे, और अगर हम इनको सख्ती से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इन एप्लीकेशंस को दबा देंगे, जांच में उसको इधर से उधर घुमाते रहेंगे, तो इस प्रकार के अपराधों में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी।
0: बिल्कुल पवन दुग्गल जी, आपने सर बहुत सही कहा। पवन दुग्गल जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि ये बताइए कि जो क्राइम हमारे समाज में आमतौर पर हम देखते हैं, चोरी, डकैती, रेप, तमाम तरह की घटनाएं जो हम देखते हैं, उसमें ये होता है कि अक्सर जो लोग हैं वो उतने ना जागरूक होते हैं ना उतने पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये जो साइबर अपराधी होते हैं वो हमने देखा है, वो डॉक्टर भी होते हैं, वो इंजीनियर भी होते हैं, वो कुल मिला के हाईली क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कि हर बार देखा जाएगा तो पुलिस से 4 कदम वो आगे ही होंगे। इनसे निपटना कितना मुश्किल है या कैसे निपटा जाए?
2: देखिए, साइबर क्रिमिनल जो हैं वो शेर की सवारी करना जानते हैं और लगातार शेर की सवारी करते हुए अपने प्लान्स को, अपने मंसूबों को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते रहते हैं। हम लोग क्या, हम लोग इतिहास के पन्नों में रहते हैं, खासतौर पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो एक बार सीख लिया उसके बाद तो दिमाग नहीं लगाना, देखना ही नहीं कि साहब नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है, उस दुरुपयोग को हम रोक कैसे सकते हैं। तो ये बुनियादी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्कुल सामने नजर आती हैं। मुझे लगता है मानसिकता की इशू है, मैं कहीं ना कहीं आपको एक नया माइंडसेट जागृत करना पड़ेगा कि साहब अब आपको टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन के साथ साथ अपने दिमागों को भी चलाना होगा, एंटिसिपेट करना होगा कि किस तरीके से साइबर क्रिमिनल जो है वो आज टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर सकते हैं और उसको रोकथाम करने के लिए टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस तरह की मानसिकता लेकर आए, जागरूकता लेकर आए, इफेक्टिव ट्रेनिंग लेकर आए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, इफेक्टिव टूल्स हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि आज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी आने वाले समय में इनका अच्छा मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई मुकाबला नहीं है। आज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज 5वें कदम पे चल रही हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल 50वें कदम पहुंच चुके हैं।
0: बिल्कुल, आपने सर बहुत बड़ी बात कही है और ये चिंता का विषय है, लेकिन पवन जी ने जो बात कही, अरविंद जी आपसे ये समझना चाहेंगे, कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें ये साफ हो चुका है कि ये जो पैसे जहां जमा करते हैं, जाहिर सी बात है कोई एक खाता है, एक बैंक अकाउंट है जहां पर ये जमा होता है, जैसे ही क्लाइंट ने पैसा डाला ये फौरन वहां से निकाल लेते हैं पैसा। हमने ये भी देखा है कि लीज पर, एक तरीके से रेंट पर, ये बैंक खातों को लेकर के रखते हैं किसी से, और वो एक ऐसा शख्स होता है जो मे भी शायद वो खुद पैसे ना रख सकता हो, गरीब हो या फिर जरूरतमंद हो, वो ऐसे लोगों को कम पैसे में रेंट पर दे दिया करता है, जिसमें बैंक के अधिकारी भी जो है उनकी मिलीभगत भी होती है। तो कहां कहां तक ये नेटवर्क फैला हुआ है और उन सबको पकड़ना कितना मुश्किल है?
1: पहले ये होता था कि जो बैंक अकाउंट खुलते थे उसमें दो लोग वेरीफाई करते थे और उनकी आइडेंटिटी और उनके अकाउंट नंबर्स भी बैंक में रहते थे कि इन्होंने वेरीफाई किया है कि दिस पर्सन इज अ जेन्युइन पर्सन। आज की तारीख में बैंक में अकाउंट खोलना से ज्यादा आसान काम कोई नहीं है। सब तैयार बैठे हैं कि आप जाइए अकाउंट खोल दीजिए, कब वो अकाउंट बंद हो गया, कब उससे कहाँ ट्रांसफर हो गए, विदेशों तक के खातों में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, मेरा मानना है, और इसके ऊपर गंभीरता से जो है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि बैंक खाते तो करोड़ों की संख्या में खुल गए हैं। कोई भी आपको लोन पे खाता दे सकता है, आप उसका बेवकूफ बना के भी उसके खाते को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसको जेल भेजने से अनावश्यक कोई पर्पज सॉल्व नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर विचार होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट खोलना तो इतना आसान हो गया है, और जो साइबर इसके फ्रॉड करने वाले हैं उनके लिए तो बाएं हाथ का काम है, सिम लेना और एटीएम कार्ड्स बनवाना, क्यूआर कोड लेना, वो तो मतलब इसको थोक में कर रहे हैं
0: बिल्कुल। और अगर एक ब्रॉडली कहें तो भाई सरकार को भी, चाहे वो राज्य सरकारें हो या फिर सेंटर में हो हमारी सरकार, वोट पॉलिटिक्स से निकलकर हमें सोचना होगा और समझना होगा कि ये कितना बड़ा खतरा आने वाले समय में हो सकता है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि साथ ही साथ ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है। हम यही कहेंगे कि ये साइबर फ्रॉड और जिस तरह से इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, डिजिटल जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां न सिर्फ नकली चेहरे, नकली पहचान है, बल्कि नकली रिश्तों से भी आप धोखा खा रहे हैं। ऐसे में सचेत रहना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बीच हम इस टॉपिक को, जो कि इतनी बड़ी चर्चा है आज के समय में, इसको हम खत्म करें, उससे पहले एक एक और कमेंट हम ले लेना चाहेंगे आपसे। अमित जी, आपसे यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि जिसकी हम बात कर रहे थे, सरकारी लेवल पर सबसे पहले तो बहुत जरूरी है नियम कायदे कानून बनना, लेकिन आप समाज के लेवल पर, एक इंडिविजुअल के लेवल पर, आपको क्या लगता है कि लोग कितना, अपनी जिम्मेदारी कितनी लें और किस तरह से वो आगे काम करें?
3: मैम देखिए, अपनी जिम्मेदारी तो ये है कि सबसे बड़ी चीज है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जहाँ पे लोग फ्री के चक्कर में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। इंटरनेट पे कोई भी आपको ऐसी चीज मिलती है जो फ्री मिल रही है तो कभी भी उस झांसे में ना आए, क्योंकि कोई भी चीज कभी भी किसी को भी फ्री नहीं मिलती है। अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई चाल है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इंटरनेट पे हमेशा अवेयर रहे, सेल्फ अवेयरनेस से बड़ी कोई चीज नहीं है। जितना आप जागरूक रहेंगे उतना आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं।
0: बिल्कुल रितेश जी, आपसे अगर मैं ये समझना चाहूं कि वो कौन कौन से छोटे 3 से 4 ऐसे आप पॉइंटर्स बताएंगे जिसे देख करके लोग सतर्क हो जाए, समझ जाए कि सामने वाला जो है, जो बता रहा है, दिखा रहा है, वो गलत है, फेक हो सकता है।
4: पहले एक ही ना, जो हमारा एटीट्यूड है, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, इसको जरा साइड पे रखिए, इस एटीट्यूड को निकाल दीजिए। क्योंकि आप छोटे बच्चे हो या मिडिल एज हो या बूढ़े हो या जो भी हो, ये जो है साइबर क्राइम, ये हर किसी के साथ होने वाला है, कितने भी आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। तो ये एटीट्यूड मत रखिए कि अरे ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, होएगा, आपका भी नंबर आएगा। सेकेंड चीज मैं ये बोलूंगा कि अब जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वेदर इट इज मतलब कोई कंटेंट के रूप में आ गया, इमेज के रूप में आ गया, वीडियो के रूप में आ गया या वॉइस के रूप में आ गया, इस एआई की दुनिया पे आप उस पर भरोसा नहीं कीजिए। आप उसको हमेशा शक की नजर से देखिए और उसको जाके आप वेरीफाई कीजिए। यही चीज अगर ये जितने भी ये विक्टिम्स थे उन्होंने किया होता था कि ये एक नवा वेबसाइट बना हुआ है वगैरह, ठीक है, भले वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन कम से कम कुछ रिव्यूज पढ़ लिए होते थे, ये देख लिया होता था, तो शायद ये उनके साथ नहीं होता था। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉपिंग की बात हो या मैट्रिमोनियल की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, कोई जो पॉपुलर वेबसाइट्स है, ऐसा नहीं कि मैं उनके बारे में बात करना, मैं बोल रहा हूँ कि वो एकदम सिक्योर्ड है, लेकिन वहां पर उनके जो कंट्रोल्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, वो एथिकल रहते हैं वो लोग। तो ये जो है जो पॉपुलर वेबसाइट्स है आप उन्हीं पे जाएं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपको कम भाव में मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है या तो ये कोई एक नवी चीज आ गई, वो सब स्टंट्स मत ट्राई कीजिए।
0: बिल्कुल पवन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो ही गया है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए और कितनी राहत की उसे उम्मीद है आज के सिस्टम में?
2: सबसे पहले शोर मचाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए 1930 पर, cybercrime.gov.in पर तुरंत। पहले हम गोल्डन आवर की बात करते थे एक घंटे की, अब हम गोल्डन 10 मिनट्स की बात करते हैं कि अगर 10 मिनट में आपने कर दिया, हो सकता है बैंकिंग चैनल में कुछ पैसा है तो शायद बच जाएगा, लेकिन अगर बैंकिंग चैनल से पैसा बाहर निकल गया तो बिल्कुल भी पैसा वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। केसेस बहुत दर्ज हो रहे हैं लेकिन लोगों को अक्सर रेमेडीज नहीं मिल पा रहे हैं। अल्टीमेटली इस एपिसोड से अपने आप को एक सीख लीजिए कि साहब मुझसे आज गलती हुई और आज के बाद आजीवन के लिए दो आदतें मैं उनको गांठ बांध दूंगा। नंबर वन, मैं शकी हो जाऊंगा, हर जानकारी को तब तक शक के दृष्टिकोण से देखूंगा जब तक उसको मैं ऑथेंटिकेट या वेरीफाई ना कर सकूं। दूसरा, मैं कंजूस हो जाऊंगा, अपनी जानकारी को कंजूसी के साथ लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि इसका दुरुपयोग कर मुझे साइबर क्राइम का शिकार ना बनाया जाए।
0: अमित जी, आप क्या लोगों को सलाह देंगे?
3: मैम, मैं भी यही देना चाहूंगा कि इंटरनेट पे कुछ भी एक सिंगल क्लिक अगर हम कर देते वो बैक नहीं होता कभी भी, तो हर क्लिक को करने से पहले 20 बार सोचिए और 20 बार सोचने के बाद ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एक क्लिक किया गया फिर आपका बैक नहीं हो सकता, बैक नहीं होने के कारण आपका कितना लॉस हो सकता है, कितना आप उसके अंदर डूब सकते हैं तो वो आप भी नहीं जानते। तो यही है कि हमेशा सोच समझ के क्लिक कीजिए।
0: बिल्कुल, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ जागरूक रहें। अभी जिसकी बात हम कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी की, और जिस तरह से साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपको बेहद जागरूक रहना होगा। इंडिविजुअल जो आपकी जिम्मेदारी है, जो भागीदारी है समाज में, उसे भी समझने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब आपको नॉर्थ ईस्ट में उत्सव के अद्भुत रंग दिखाते हैं। गुवाहाटी के विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आज से अंबुबाची मेला का शुभारंभ हो गया है। ऐसी मान्यता है कि इस वार्षिक मेले के दौरान मां कामाख्या अपनी मासिक धर्म यानी कि रजस्वला से गुजरती हैं और यही वजह है कि 3 दिनों तक मंदिर परिसर में किसी तरह की कोई पूजा अर्चना या फिर आरती या अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। 4th दिन खास शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं।

0: गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में आज से श्रद्धा का मेला। शक्ति की प्रतीक मां कामाख्या के मंदिर में आज से महोत्सव। आज से शुरू हो रहा है पूर्व का महाकुंभ अंबुबाची मेला। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और दिव्य शक्तिपीठ है जो रहस्यों का भंडार और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में आज से नारी शक्ति के उस उत्सव का आरंभ हो रहा है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। आज से कामाख्या धाम में अंबुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। अंबुवाची मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है जहां हजारों साधु नागा बाबा भक्त आते हैं और 3 से 5 दिनों तक नीलांचल की पहाड़ियों पर रहते हैं। सिर्फ साधु संत ही नहीं, यहाँ पर देश विदेश से भक्त भी माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं।
1: मैं मॉरीशस देश से यहाँ हर साल आता हूँ ये अंबुबाची मेला में, और उनके आशीर्वाद पाकर हम बहुत आगे बढ़े हुए। जय माँ कामाख्या।
0: अंबुवाची मेला आज से शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव में मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून यानी आज की रात 9:08:42 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ माँ कामाख्या के वार्षिक राजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजा कर सकेंगे।
2: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा, और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है। वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद मंदिर भक्त के लिए खोल देंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अंबुबाची महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ चरण जाने के बाद जो अर्ध नक्षत्र का पहला चरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो चरण को महायोग बोलता है, अंबुबाची महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी शती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यहीं छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भ द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुवाची पर्व के दौरान यहां देवी रजस्वला होती हैं। इस दौरान गर्भगृह में 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है। अंबुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्व काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में मां को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, और वही लाल वस्त्र अंबुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अंबुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी का पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है।
3: कामरूप देवी में कामाख्या गुवाहाटी में जो सुख है वो कहीं नहीं। यहाँ पर साक्षात माँ देवी का दर्शन होता है। हम जहां जहां भक्तों से ये अनुरोध है कि अपने जीवन काल में जो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कामरूप देवी की कामना को पूर्ण करने वाली महामाया को अगले वर्ष भी आ जाएं, क्योंकि महामाया कामरूप देवी कामाख्या वरदान देने वाली है। ये कामरूप देवी सुख वैभव यश कीर्ति धन और नेताओं को आगे ले जाने वाली है।
0: कामाख्या मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है कि मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती हैं। कामाख्या मंदिर के प्रांगण में अम्बुबाची पर्व साल में एक बार ही मनाया जाता है और इस दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
6: Jack, you're killing me.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या आपका बच्चा बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी।
3: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनसून की, जिसके इंतजार की कम से कम उत्तर भारत में तो हद ही हो गई है। जून के आखिरी 10 दिन बचे हैं, लेकिन मॉनसून अभी ठीक से महाराष्ट्र तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों इतना सुस्त है इस बार का मॉनसून, और मुंबई में मॉनसून के दस्तक का क्या है सीन, इसके आगे विस्तार से करेंगे हम बात।
4: नमस्कार, मैं हूं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आगे बात दिलजीत दोसांझ के करेंगे, जिन पर लगता है अमेरिका वालों का दिल सा गया है। अभी तक दिलजीत अपने शोज के जरिए अमेरिका के दिल में उतरे थे, अब इनके दिनों में भी उतर आए हैं। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में खास ऐलान किया है। ये खबर पूरी क्या है ये आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड, 100 मीटर रिले में चीन को हराया, भारत ने कुल 3 पदक किए अपने नाम। देशभर में मॉनसून पकड़ रहा रफ्तार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश। समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, अगले महीने INS महेंद्रगिरी और INS मलवान नेवी में होंगे शामिल, निगरानी और युद्ध क्षमता में होगा इजाफा।
4: दिल्ली में अब अंधेरे पर होगी सख्ती, स्ट्रीट लाइट खराब हुई तो लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी 24 घंटे निगरानी। गिर नेशनल पार्क में शुरू होने जा रहा एशियाई शेरों का वेकेशन, कल से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी गिर सफारी, आखिरी दिन बड़ी संख्या में जुटे सैलानी। डेनमार्क में आसमान में उड़ी 25,000 रंग बिरंगी पतंगें, करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने लिया हिस्सा, 26 देशों के आए पतंगबाज़।

0: भाई जिधर इंतजार था उधर तो आ नहीं रहा, दूसरी जगह पहले पहुंच गया, मतलब मुझे वापस बॉम्बे चले जाना चाहिए।
1: मैं आपके साथ चलूंगी,
0: है ना? इन दिनों में तो एटलीस्ट हम जा सकते हैं। देखिए रिमझिम फुहारें कहाँ पड़ रही हैं, ये पड़ रही हैं मुंबई में, वहां तस्वीरें सामने आ गई हैं। मुंबई वासियों को, मुंबई करों को मिल गई है गुड न्यूज, क्योंकि मानसूनी फुहारों का जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है। देश में जहां जहां मानसून ने दस्तक दी है वहां गर्मी का नामो निशान सा गायब है, लेकिन अभी मानसून की मेहरबानी का इंतजार देश के एक बड़े हिस्से को है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसी फहरिस्त में मुंबई भी है, जिसके लिए अपडेट यही है कि मानसून यहां भी बहुत जल्द दस्तक देने वाला है। असम में मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है, आसमान में बादलों की आवाजाही बनी है, जिसे देखकर मौसम के जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि यहां मानसून आने में अब देर नहीं, जल्द ही मुंबई में मानसूनी फुहारे लोगों को भिगाने वाली हैं।
1: लेकिन आपको बता दें दिल्ली से अभी मानसून दूर है, यहां रह रहे लोग हर साल जून के आखिर तक मानसून का इंतजार करते रहे हैं। आमतौर पर 27 जून के आसपास मानसून दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी जुदा नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस देरी का कारण उन अनुकूल मौसम प्रणालियों का ना होना है, जो कि आमतौर पर बारिश लाने वाली हवाओं को नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ओर बढ़ने में मदद करती है, इसलिए मानसून की दिल्ली में एंट्री जुलाई के पहले हफ्ते तक खिसक सकती है।
2: बादलों का कमाल देखिए, बारिश का धमाल देखिए और मुंबई की चाल देखिए। रिमझिम बारिश हुई तो गर्मी से परेशान और लंबे समय से मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल गई। मुंबई में आज दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई तो मॉनसून जैसा माहौल बन गया। सड़कें पानी से तर हो गई, पिछले दिनों तपिश से झुलस रही धरती को मानो तरावट मिल गई। हालांकि हकीकत ये है कि मुंबई में कल से अभी तक हुई बारिश को प्री मानसून बारिश ही कहा जा रहा है, क्योंकि असल में मानसून के जानकार मानते हैं कि मुंबई तट पर मानसून अगले 48 घंटे में दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के मध्य की ओर बढ़ चुका है, परिस्थितियां अनुकूल हैं, लिहाजा इसके अब तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। मुंबई के आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और आंधी बारिश की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को भी शहर के कई इलाकों में सीजन की पहली अच्छी बारिश दर्ज की गई और अभी भी बरसात जारी रहने के पूरे आसार हैं। मुंबई में हर साल मानसून में मूसलाधार बारिश होती रही है, हालांकि इस बार पूरे महाराष्ट्र में मानसून की रफ्तार सुस्त है, जिसका असर मुंबई में भी नजर आ रहा है। आमतौर पर मॉनसून मुंबई में 11 जून तक पहुंच जाता है, इस बार भी इसके लिए अरब सागर में भरपूर नमी भी मौजूद थी, लेकिन सूखी और ठंडी हवा के कारण बादल कमजोर पड़ गए। मुंबई में बारिश लाने वाले बादलों को क्यूमई लो निम्बस या तूफानी बादल कहा जाता है। ये बादल तब बनते हैं जब जमीन से गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है और ठंडी होकर पानी की बूंदों में तब्दील हो जाती है। अगर बादलों को लगातार सूखी हवा मिलती रहे तो मॉनसून की बारिश शुरू होने में देर होती है। यही वजह है कि इस बार मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री टलती गई और मानसून का इंतजार बढ़ता चला गया। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने की शुरुआत में मानसून दक्षिण कोंकण तक पहुंच गया था, लेकिन 8 जून से सोलापुर के पास रुका हुआ था। अब पश्चिमी घाट में बादल बनने से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बारिश शुरू हुई है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और आगे के इलाकों में बढ़ेगा और फिर मुंबई में भी मानसून की झमाझम बारिश होगी। वैसे तो मानसून की रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र और इससे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग के जानकारों का कहना है कि मानसून की शुरुआत इस बार भले ही थोड़ी देरी से हुई है, लेकिन अब जो बारिश शुरू हो गई है वो आगे भी जारी रह सकती है, जिससे मुंबई वासियों को गर्मी और उमस से राहत का एहसास हो सकता है और तालाब भरेंगे तो पीने के पानी की किल्लत भी दूर हो सकती है।
3: मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है, जिसका असर आने वाले 2 दिनों में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे में जो मानसून है मुंबई को हिट करेगा, जिसके कारण मुंबई में रहने वाले लोगों को झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं साल देखा गया कि मानसून थोड़ा सुस्ता गया, जिसके पीछे बड़े कारण एल नीनो, साथ ही सोमाली जेट और बे ऑफ बंगाल में कम प्रेशर को बताया जा रहा है। वहीं बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां अमूमन हर साल मानसून 27 से 30 जून तक दस्तक दे देता है, इस साल मौसम विभाग के अनुसार मानसून जुलाई के पहले सप्ताह पहले हफ्ते दिल्ली वालों को दस्तक देगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोलनाथ पाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
1: देखिए वैसे तो शगुफ्ता हम दिल्ली में इंतजार कर रहे थे बारिश का, लेकिन चलिए कहीं तो बारिश हुई, मुंबई में बारिश आई,
0: किसी को तो गुड न्यूज मिली। मुंबई तो अब शुरू हो गया ना, अभी तो ट्रेलर है उनके लिए, पिक्चर अभी बाकी है,
1: अभी काइंड ऑफ अभी वहां भी मॉनसून आया नहीं है।
0: इतना मॉनसून आएगा कि आप कहेंगे कि दिल्ली वापस चला जाओ, मुंबई वाले इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन फाइनली हमें राहत मिलने वाली है।
1: आई नो, और आई होप कि मतलब इस बार कम से कम बीएमसी ने अच्छा काम किया हो और मुंबई के लोगों को वहां दिक्कत ना हो, क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा लोग जो बाहर निकलते हैं पॉट होल्स और इन सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो वैसे आपको बता दें कि मुंबई में जिस तरह से संडे मंडे सुबह सवेरे बारिश की फुहारे पड़ी है, उसको वे मौसम वैज्ञानिक भी इसे मॉनसून की जल्द होने वाली एंट्री ही बता रहे हैं। जाहिर है शहर का गर्म मौसम अब कुछ बदला ही नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी विद्या मौसम की वो बदली हुई तस्वीर आपको दिखा रही हैं।
4: मुंबई में मॉनसून का सीजन आया लेकिन बरसात नहीं आई थी, इसलिए बहुत ज्यादा इंतजार था लोगों को। आखिरकार रविवार सवेरे और फिर अब सोमवार सवेरे भी थोड़ी बहुत बरसात हुई है, जिसकी वजह से मुंबई और आसपास के इलाके जो हैं वहां पर उनका मौसम थोड़ा सा जो गर्माहट थी वो थोड़ी सी कम हुई है। और इसी वजह से देख लीजिए मरीन ड्राइव पे भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें जिस तरीके से हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में, लोग एकदम गायब थे, दिखते ही नहीं थे, बहुत कड़क धूप थी, लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब जाके थोड़ी बहुत लोग दिख रहे हैं क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम हुई है। बादलों का जो आप देख लीजिए, बादल बहुत सारे दिख रहे हैं मुंबई शहर के ऊपर भी, लेकिन क्या ये बरसात करेंगे, कितना बरसात होगा मुंबई में और आसपास के इलाकों में, क्योंकि खासतौर से पानी की किल्लत जो है उसके बारे में बीएमसी हमेशा बोलते आई है, तो क्या ये बरसात का जो पानी है वो लेक्स, जहां 7 लेक्स हैं जहां जो मुंबई को सप्लाई करते हैं पानी, वहां पर भी बरसात होगी, ये तमाम बातें हैं जिस पर मुंबई के लोग जो हैं थोड़े चिंतित हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो ये बरसात हुई है उससे उनको राहत ज़रूर हुई है।
1: देखिए वहीं पे मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर क्या ताजा जानकारी दी है, कहां कहां मॉनसून पहुंच गया है, किन शहरों में मॉनसूनी फुहार पड़ने का इंतजार किया जा रहा है, इन जैसे कई और पहलुओं पर मौसम वैज्ञानिक को ही आप सुनिए।
4: देर से ही सही लेकिन आ रहा है, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। आखिर कहां तक पहुंचा है मॉनसून और कितना क्या बरसात इसके बाद ठीक ठाक होगी मुंबई और महाराष्ट्र में, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरएमसी के प्रमुख विक्रम सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अलीबाग तक पहुंच गया है मॉनसून ये बताया जा रहा है, अलीबाग से थोड़ी ही दूर है, तो मुंबई, क्या मुंबई में अब बरसात मॉनसून का होगा, कब से शुरू होगा?
5: बिल्कुल, अब देख रहे हैं कि बोला था पहले कि अभी थोड़ा बीच में तो एक्टिविटी कम रहेगी, और फिर हमने बोला था कि 22 के आसपास से जो है जो एक्टिविटी वो मिलने वाली है, और मुंबई के लिए फिर बोला था कि 23-24 से जो यहाँ भी एक्टिविटी बढ़ेगी, और फिर उसके बाद देखते हुए कि चीज़ों को देखते हुए जो भी और भी पैरामीटर्स या फैक्टर्स देखने हैं वो देख के फिर डिक्लेयर होगा मानसून का। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आज जो बारिश की कंटिन्यूटी करीब 2 दिन से थोड़ा मिल रही थी, और पास्ट 24 आवर्स में अच्छी बारिश मिली है, जो हमारे कोंकण एंड गोवा के एरियाज हैं जो डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं, या मध्य महाराष्ट्र के भी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ भी अच्छी बारिश मिली है। तो उस चीज़ को देखते हुए आज जो है जो आप कह रहे थे 8 तारीख से करीब जो एक तरह से रुका हुआ था मानसून का फ्लो जो है, तो वो अब आगे बढ़ा है, और आज जो है अलीबाग से होते हुए जो पूना होते हुए तो जो नॉर्दर्न लिमिट है मानसून की वो दी गई है, तो आगे 48 आवर्स में भी जो मुंबई की जहाँ जब बात आती है तो मुंबई में बारिश मिलनी तो शुरू हो गई है, और ठीक ठाक बारिश मिली भी है, लेकिन मानसून के लिए बोला कि अगले 48 घंटे में जो है यहाँ पर भी जो है वो पहुंच जाएगा।
4: वही मैं जानना चाह रही थी कि 48 आवर्स में के बाद, अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स में मुंबई पहुंच जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद जो अभी जिस तरह से हम बरसात देख रहे हैं जहां पर कि 1 घंटे या आधे घंटे होती है उसके बाद बंद हो जाती है और पूरे दिन गर्मी और परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती, क्या वैसा ही रहेगा मौसम या उससे बेहतर हो जाएगा?
5: नहीं, मौसम बिल्कुल बेहतर होगा। आप देखेंगे 23-24 में जो मुंबई के लिए अगर बात करूं खासकर मैं, तो वाइड स्प्रेड टाइप की रेन मिलनी चाहिए, और साथ में हैवी रेन्स की भी जो है बिल्कुल संभावना है कि 23 और 24 में वो मिलेंगी, और जो क्लाउड कवरेज वो भी धीरे धीरे अब बढ़ता रहेगा, तो आप एक देखेंगे कि जो सनशाइन आवर्स वो काफी कम हो जाएंगे और जो पीछे से जो मानसून का सर्ज है उस तरह जो चीजें दिख रही हैं तो वो भी दिख रहा है कि आगे जो कंटिन्यूटी भी रहेगी तो बिल्कुल लोगों को राहत मिलेगी और जो मानसून है वो भी आगे बढ़ेगा और मुंबई में खासकर मैं कहूँ कि 2-3 दिन अच्छी बारिश जो मिलनी चाहिए।
0: कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए हमारा दिल ललचा रहा है जो इन्होंने कहा कि मुंबई वासियों को राहत मिल सकती है, लेकिन राहत यहाँ भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब देखिए इस बार मॉनसून इतना सुस्त क्यों है, इसके रीजंस क्या है वो आपको बताते हैं, क्यों मॉनसून इतना सुस्ता कर आगे बढ़ रहा है। चलिए अब इसकी वजह समझते हैं। पहली बड़ी वजह है अल नीनो, जिसकी सक्रियता ने हमेशा की तरह मानसूनी हवाओं को कमजोर कर रखा है। अल नीनो को इस बार मानसून के लिए बड़ा विलन कहा जा रहा है, जो बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। मानसून की लेट लतीफी की दूसरी बड़ी वजह बादलों को दक्षिण से उत्तर की ओर धकेलने वाले सिस्टम का अचानक से कमजोर पड़ जाना, जिसके प्रतिकूल या कमजोर होने से इंडियन ओशन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर पर्याप्त बादल नहीं बन पा रहे।
1: और आपको बता दें जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये कि अरब सागर के ऊपर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो है वो कमजोर पड़ गई है, जिसकी वजह से भारत के पश्चिमी तट जैसे कि महाराष्ट्र तक उतनी नमी नहीं पहुंच पाई है जितनी बारिश के लिए जरूरी है। इस बार सुस्त मानसून की चौथी बड़ी वजह है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों ही जगह मानसून को खींचने वाले मजबूत साइक्लोन सर्कुलेशंस का कमजोर होना, जिसकी वजह से बादल नहीं बन पा रहे हैं। यही नहीं, मानसून की गतिविधि को बनाए रखने वाली मानसूनी ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसक गई है, जिससे कि मध्य और उत्तर भारत में बारिश अभी रुकी हुई है।
0: अब देखिए इसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शुष्क और गर्म हवाओं का प्रभाव ज्यादा है। ये हवाएं मानसून की नमी को सोख लेती हैं, जिससे बादलों का बनना मुश्किल हो जाता है। मानसून को गति देने वाले तेज मानसूनी झोंके यानी कि मानसून सर्ज भी अभी तक गायब है, जिससे मानसून एक ही जगह यानी इस बार तेलंगाना के पास काफी दिनों तक अटका रहा।
1: वहीं आपको बता दें कि ग्लोबली टेम्परेचर में बढ़ोतरी और क्लाइमेट चेंजेस के चलते भी मानसून के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, इससे मानसूनी बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम बड़ा अनिश्चित सा हो गया है। चलिए अब आपको एक ऐसी हम तस्वीर दिखाते हैं जिसका कनेक्शन मौसम से है, लेकिन देखने वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरअसल रविवार शाम को तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक सहमा देने वाला मंजर देखने को मिला। आसमान में घुमावदार धूल और बादलों के एक बड़े खंभे जैसी आकृति दिखाई दी, जो कि टोर्नाडो जैसी लग रही थी। इस घटना ने कई घरों, दुकानों, टोल प्लाजा और एक प्राइवेट थीम पार्क को नुकसान पहुंचाया। काफी देर तक बादलों के इस बवंडर को लेकर इलाके में चर्चा चलती रही,
0: हालांकि बाद में साइंटिस्ट ने यह साफ कर दिया कि असली टॉर्नेडो नहीं था बल्कि एक शक्तिशाली थंडरस्टॉर्म अपड्राफ्ट था। इसी सिस्टम के एक्टिव होने के चलते थूथुकुड़ी जिले में रविवार शाम के वक्त तेज आंधी और बारिश हुई। अचानक से हवा का तेज झोंका आया और धूल का एक बड़ा घुमावदार कॉलम जमीन से उठकर आसमान की तरफ गया, लेकिन इसने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों को उखाड़ फेंका। कुछ घरों की छतें तक उड़ गई तो बिजली के खंभे भी झुक गए। चलिए खबरों के रुख को डाइवर्ट करते हैं और क्रिकेट के मौसम की खबर कर लेते हैं, क्योंकि बात होगी वैभव सूर्यवंशी की। इस यंग प्लेयर की तारीफ में जाहिर सी बात है कि कुछ बताना कुछ कहना तो हम नहीं चाहते, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपना लोहा मनवाने वाले वैभव ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत का एहसास करवा दिया। उन्होंने बीते रविवार को श्रीलंका के खिलाफ खेली गई ट्राई सीरीज के फाइनल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की।
1: आपको बता दें कि वैभव ने महज 29 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्के लगाकर 94 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है। हालांकि सीरीज के पिछले 4 मैचों में वैभव के बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली थी, लेकिन खिताबी मुकाबले से पहले वैभव ने सलाह देने वालों को कुछ ऐसे बल्ले से जवाब दिया।
6: तूफान रास्ता नहीं पूछते और आंधियां इजाजत लेकर नहीं चलती। आईपीएल के बाद वैभव सूर्यवंशी को एक नहीं हजारों नसीहतों का पुलिंदा थमाया गया। कहा गया जरा लगाम कसिए, वनडे क्रिकेट में कदम फूंक फूंक कर रखिए, लेकिन दांबुला के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया कि शेर को शिकार करना नहीं सिखाया जाता। महज 11 गेंदों में अर्धशतक, 29 गेंदों में 94 रन और श्रीलंका पर ऐसा धावा कि विरोधियों की सारी चालें धरी की धरी रह गईं। गेंदबाज बदलते रहे लेकिन नतीजा नहीं बदला। वैभव ने साबित कर दिया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत किसी की सलाह नहीं बल्कि उनके खेल का बेखौफ अंदाज है। श्रीलंका ए के खिलाफ खिताबी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 324 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 94 रन कूट डाले। यही पारी इंडिया ए की जीत की नींव नहीं बल्कि जीत की इमारत बन गई। अब अगला पड़ाव आयरलैंड और इंग्लैंड है और क्रिकेट के गलियारों में चर्चा है कि आयरलैंड में ही वैभव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दहलीज पार करने का मौका मिल सकता है। फाइनल में खेली वैभव की इस पारी की कीमत सिर्फ 94 रन नहीं है, ये उस सोच का जवाब है जो उनके बल्ले पर ब्रेक लगाना चाहती थी। पिछले कुछ समय से उन्हें समझाया जा रहा था कि वनडे क्रिकेट में वक्त के साथ चलना है, पारी को बुनना पड़ता है, जोखिम को तराजू में तोलना पड़ता है, लेकिन दांबुला में वैभव ने मानो दुनिया से कह दिया कि नदी की तरह बहना उसकी पहचान है, अगर बहाव रुक गया तो नदी नदी नहीं रहती। आईपीएल में जिस तूफानी बल्लेबाजी ने उन्हें रातों रात सुर्खियों का सितारा बनाया वो चमक श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती मुकाबलों में कुछ फीकी नजर आई। रन तो बन रहे थे लेकिन बल्ले में वो बिजली नहीं थी, वो धमाका नहीं था जिसने उन्हें क्रिकेट जगत की नई सनसनी बना दिया था। फिर वो मुकाबला आया जहां मैदान पर जुबानी जंग हुई, तनातनी हुई और मामला चर्चा का विषय बन गया। लेकिन क्रिकेट का एक पुराना उसूल है, बल्ला बोले तो बहसें खामोश हो जाती हैं। फाइनल में उतरते ही लगा मानो वैभव ने खुद से एक वादा कर लिया हो, अब ना कोई समझौता ना कोई बनावटी बदलाव, अब वही खेल जिसने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा किया और फिर शुरू हुई चौके छक्कों की ऐसी बरसात जिसमें श्रीलंकाई रणनीतियां तिनकों की तरह उड़ गईं। मैच में वैभव को सेंचुरी तो नहीं मिली लेकिन महज 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने का कीर्तिमान जरूर उन्होंने बना दिया। बेशक तीर कमान से निकल चुका था, निशाना भेदा जा चुका था, दामुला में खेला गया फाइनल सिर्फ वैभव की 94 रन की कहानी भर नहीं है, ये 15 साल के इस बल्लेबाज का ऐलान है जिसने दुनिया को बता दिया कि उन्हें किसी सांचे में ढालने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें फॉर्मेट के नजरिए से ना देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब बात हमारी छोरियों की कर लेते हैं। विश्व हॉकी वुमेन्स नेशन कप 2025-26 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम आज रात बेंगलुरु वापस लौट रही है। टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत दर्ज की है। इस शानदार और ऐतिहासिक कामयाबी के तुरंत बाद हॉकी इंडिया ने पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए बंपर प्राइज मनी की घोषणा कर दी है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की नेशंस कप में दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले भारत ने साल 2022 में आयोजित हुए इसके पहले सीजन का खिताब भी जीता था।
0: अब देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजय रही। पूल ए के मैचों में भारत ने यूएसए को 3-2 से हराया, जापान को 2 के मुकाबले 1 गोल से रौंदा और उरुग्वे को 3-2 से धूल चटाई। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने चिली को 6-0 से एक तरफा शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया था। पूरे टूर्नामेंट में कुल 6 गोल दागने वाली दीपिका टॉप स्कोरर बनी। इस खिताबी जीत के साथ ही भारत ने अगले सीजन के FIH हॉकी महिला प्रो लीग में भी अपनी जगह पक्की कर ली है।
1: वहीं विजेता टीम की प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीठ थपथपाई है। आपको बता दें, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई देते हुए लिखा, भारतीय हॉकी खिलाड़ी देश के लिए गौरव और आनंद लेकर आए हैं। विश्व हॉकी महिला नेशंस कप में विजेता बनने पर महिला टीम को बहुत बहुत बधाई। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण रूप से बेहतरीन खेल दिखाया है। टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये जीत कई दूसरे युवाओं को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी।
7: भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। विमेंस नेशन कप खेल रही इस टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर ये कप अपने नाम किया। 2-0 से भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। अगर इस मुकाबले की बात करें तो पहले ही क्वार्टर से भारतीय टीम लगातार दबाव पे दबाव बना रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ और नतीजा ये हुआ कि नवनीत ने पहले और उसके बाद सुनीलिता ने दूसरा गोल करके हमेशा के लिए भारतीय टीम को इस मुकाबले में आगे कर दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से जरूर कुछ अटैक्स हुए लेकिन शानदार डिफेंस का मुजाहरा पेश करते हुए भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को कभी भी इस मुकाबले में टिकने नहीं दिया। इस जीत पर भारतीय टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बधाई आई है और सबसे बड़ी बात ये कि इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने प्रो लीग में भी अपनी दावेदारी पक्की कर दी है।
0: अब बात करते हैं उस भारतीय बेटी की जो देश की दूसरी बेटियों को फॉर्मूला 1 रेसिंग में शौक आजमाने के लिए प्रेरित कर

0: ड्राइवर है। नाम है अतीक काबीर, जिन्होंने साल 2021 से 7 साल की उम्र में प्रोफेशनल कार रेसिंग में भाग लेना शुरू किया। आज अतीका ने 11 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली अतीका की परवरिश दुबई में हुई। हाल ही में वो फॉर्मूला 1 एकेडमी के प्रेस्टीजियस डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुनी गई। इसके साथ ही अतीका ये उपलब्धि पाने वाली भारत और एशिया की पहली महिला रेसर बन गई हैं। अतीका के पिता आसिफ नजीर मीर भारत के पहले राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन और फॉर्मूला एशिया ड्राइवर रह चुके हैं और आज वो अपनी बिटिया के कोच भी हैं। अपने पिता से ही मोटर रेसिंग की बारीकियों को सीख रही अतीका अक्सर खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखने का मंत्र भी उन्हीं से लेती हैं। अतीका के लिए उनके पिता ही प्रोफेशनल मोटर रेसिंग स्पोर्ट में आने की खास इंस्पिरेशन भी रहे हैं।
1: A former Formula Asia driver and India's first national karting champion. So I got inspired by him and I saw him race a little bit in Dubai too.
0: दरअसल Formula One Academy के Discover Your Drive पहल का मकसद ही ग्लोबल लेवल पर प्रतिभाशाली युवा महिला ड्राइवर्स की खोज करना और उन्हें पेशेवर मोटर स्पोर्ट में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और अवसर दिलाना है। और इस खेल विधा के बेसिक्स को अतीका बखूबी सीख भी रही हैं।
1: So basically, like you have four tires and a steering wheel, two pedals. On the right one is the accelerator, the left one is a brake, and then you have an engine. You just gotta drive it as fast as possible. Like that's the basics.
0: पिछले कुछ समय से ये यंग गर्ल कार्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। अतीका ने अभी तक कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में न केवल अपने कौशल का प्रदर्शन किया बल्कि कई इंटरनेशनल इवेंट में भारत का झंडा बुलंद किया। अतीका के पिता आसिफ नजीर भी मानते हैं कि मोटर रेस के इस गेम में महिलाओं ने आज तक कुछ खास किया नहीं है, ऐसे में पुरुषों के वर्चस्व वाले इस रेसिंग गेम में अतीका ताल से ताल मिला रही हैं। वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष ड्राइवर्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं, जो कि खुद में एक बड़ी बात है।
2: जो अतीका कर रही है इस वक्त, दैट इज हिस्टोरिक, ऐतिहासिक कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो मेंस के ग्रिड पे जाके उनको बीट कर रही है, और इंडिया में नहीं, एशिया में नहीं, यूरोप में कर रही है, जो कि वर्ल्ड की सबसे मुश्किल कैटेगरी है रेसिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी अच्छा कर रही है ना, मतलब जो आज तक ऑलमोस्ट किसी फीमेल ने नहीं किया है वो कर पा रही है।
0: बेशक वर्ल्ड मोटर रेस की दुनिया में नए कीर्तिमान बना रही अतीका का फॉर्मूला 1 एकेडमी के लिए सिलेक्शन होना किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है। भारत की ये बेटी आज अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग मंच पर देश के साथ जम्मू कश्मीर का भी गौरव बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब बात करते हैं लोक संस्कृति महोत्सव की। कश्मीर के गांधरबल में माता खीर भवानी मेले की खूब रौनक बिखरी है। ये धार्मिक आयोजन कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा उत्सव होता है। खास बात यह है कि धर्म आस्था के इस मेले में कश्मीर की साझा संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी यहाँ पहुंचकर माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। तुलमुला में खीर भवानी मेले में आयोजित करने वाले यहाँ रहने वाली मुस्लिम आबादी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती है। स्थानीय मुस्लिमों द्वारा कश्मीरी पंडितों का स्वागत करना, उनके रहने खाने पूजा सामग्री का इंतजाम करना, ये दिखाता है कि दिलों की दूरियां चाहे जो भी हो, त्योहारों की मिठास आज भी कायम है।
4: वहीं आपको बता दें कि असीम आस्था के प्रतीक खीर भवानी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भारी संख्या में देश विदेश और घाटी के कोने कोने से हजारों कश्मीरी पंडित मेले में शामिल हुए। यही नहीं, मंदिर में भाईचारे, एकता और सौहार्द के नाम पर दिए भी जलाए गए। यही वजह है कि खीर भवानी मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं बल्कि कश्मीर की कश्मीरियत और हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है।
5: श्रीनगर यहाँ कश्मीर से निकले थे, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरा तो लाइफ में पहली बार ये मेला अटेंड करना है, जबकि हमारे पेरेंट्स हर ज्येष्ठ अष्टमी पे आते थे, तो मेरे लिए तो बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है और आई एम क्वाइट इमोशनल।
6: गुफा के पुजारी भी थे, और हम यहाँ पे माता के दर्शन करने आए हैं। जिस प्रकार से हर वर्ष माँ खीर भवानी के मेले में यहाँ पे सब यात्रीगण आते हैं, आप तो पूरे विश्व से आते हैं, पूरे देश से आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि माँ के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यही दिन है जिस दिन

0: माँ यहाँ पे प्रकट हुई थी। लोग कहते हैं हम कल आएंगे, पर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस दिन माँ का दिन है, जिस दिन माँ इस जगह पे आई है, जिस इस जगह पे विराजमान हुई है और इस जगह पे उनका स्थापन हुआ है, उसी उसी दिन की महिमा है। और सारे यात्रीगणों से हमारी यही निवेदन है, इसी दिन की महिमा को मानिए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो माँ का माता यहाँ पे पानी के रूप में विराजमान है, ये जो यहाँ के कुंड का पानी है, वही है माँ का स्रोत, वही है माँ का दर्शन, वही है माता का।
1: हर साल की तरह इस साल भी माता खीर भवानी का जो मेला है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पूरे हर्षोल्लास से मना रही है। इस वक्त हम तुलमुला में हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यही है माता खीर भवानी का मंदिर। और बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है आज, अगर आप कश्मीरी पंडित की जो रिलीजियस भावनाओं को समझें या उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के दिन को माना जाता है माता रघुनी देवी का ये जो मंदिर है। और हर साल जैसे मैंने कहा कश्मीरी पंडित यहाँ आते हैं, लेकिन इस साल जो रजिस्ट्रेशन है उससे अलावा लोग आए हैं, ऐसे आप भीड़ देख सकते हैं आसपास। और जहाँ भीड़ है वहीं सुरक्षा के भी काफी जो हैं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और 2 से 3 टायर सिक्योरिटी का रिंग है, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अगर कश्मीरी पंडित की बात करें और उनका जो वो यहाँ से डिस्प्लेस हुए थे, तो आज का दिन कल्चरली भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। न सिर्फ रिलीजियस इसका सिग्निफिकेंस है, बल्कि कश्मीरी पंडित का जो इकट्ठे दोबारा कश्मीर आना है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा कि हर साल काफी भीड़ होती है, लेकिन इस साल रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुई है। और देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो कश्मीरी पंडित यहाँ आए हैं, और अंदर जो है पूजा भी चल रही है, भेंट भी चढ़ा रहे हैं माता रघुनी देवी को। और न सिर्फ तुलमुला में बल्कि 4 ऐसे और लोकेशंस हैं जहां पे ये जो दिन है पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कैंपस मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, तुलमुला, गांधरबल।
2: और हमारे देश के धर्म और आध्यात्म की रौनक केवल आंतरिक तौर पर ही नहीं बिखर रही, अब ग्लोबली भी धर्म आस्था की लहर समय समय पर उमड़ती रही है। ऐसे में हंगरी के बुडापेस्ट में रहने वाले भारतीय समुदाय की एक ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाते हैं जो भारतीय परंपराओं, संस्कृति और आध्यात्म का दर्शन है। दरअसल बुडापेस्ट में पहली बार ग्लोबल वारी 2026 के तहत भगवान श्री विट्ठल रुक्मिणी की पवित्र पादुकाएं लाई गई हैं। ये पवित्र यात्रा इस साल 6 जून को यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई और नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक होते हुए 21 जून को बुडापेस्ट पहुंची। यहां हीरोज स्क्वायर पर यह खास कार्यक्रम हुआ।
3: अब देखिए, इस धार्मिक रास्ते का, यात्रा का रास्ता भारत में पंढरपुर की ओर बढ़ेगा। दरअसल मूल रूप से महाराष्ट्र की पंढरपुर वारी यात्रा है, जो केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति, एकता और सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। लेकिन अब ग्लोबल वारी 2026 के जरिए यही भक्ति और वारकरी परंपरा अब भारत से बाहर यूरोप के अलग अलग देशों तक भी पहुंच रही है। चलिए इसके साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे अमेरिका के दिल में उतर गए दिलजीत दोसांझ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Pepsi Prebiotic Cola in Original and Cherry Vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
8: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ LG मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किए दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। देश भर में मॉनसून पकड़ रहा रफ्तार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश। दिल्ली में अब अंधेरे पर होगी सख्ती, स्ट्रीट लाइट खराब हुई तो लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी 24 घंटे निगरानी। गिर नेशनल पार्क में शुरू होने जा रहा एशियाई शेरों का वेकेशन, कल से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी गिर सफारी, आखिरी दिन बड़ी संख्या में जुटे सैलानी। डेनमार्क में आसमान में उड़ी 25,000 रंग बिरंगी पतंगे, करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने लिया हिस्सा, 26 देशों के आए पतंगबाज।
12: चलिए अब बात कर लेते हैं दिलजीत दोसांझ की। क्यों भाई?
3: सबके दिलों में राज करने वाले दिलजीत दोसांझ,
12: दिल जीत लिया, मतलब न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे विश्व का, वर्ल्ड का,
3: सबका नाम रोशन कर दिया।
12: एग्जैक्टली मतलब अब हम कह नहीं सकते कि पंजाब के सिंगर, आप कह लीजिए कि वो भारत के नहीं है, वो ग्लोबल सिंगर हो गए हैं दिलजीत दोसांझ। और अभी जो हम खबर आपको बताने वाले हैं, वाकई ये खबर जब हमने देखी सोशल मीडिया पर, मैं भी आपको बताऊं वीकेंड में मैंने ये खबर देखी, लगा सही में यार, मतलब आप लोग क्या कहते हैं पंजाबी में, कटके ले गया, मतलब समथिंग दिल कटके ले गया, क्या बोलते हैं, तो वैसा ही हुआ है। देखिए पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान छू लिया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम कर दिया है। लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है।
3: भाई कितनी बड़ी बात है कि दे आर सेलिब्रेटिंग वन डे ऑन हिज नेम,
12: क्या बात,
3: कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। अब इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी के साथ, यानी नए साल के साथ। फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजलिस में पब्लिक हॉलीडे रखा जाएगा। लॉस एंजलिस द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया ये अब तक का सबसे बड़ा सम्मान है।
13: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है, उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। चांद समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
14: So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
15: My day?
14: Your own day in the city of Los Angeles.
15: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
13: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
15: थैंक यू सो मच माय डे इन एलए हुण होया तैनू गड्डी च बिठा के ले जावानी मैं एलए नू।
13: अब लॉस एंजल्स में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजल्स ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजल्स ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजल्स के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजल्स और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपनी ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
15: जिन्ना मर्जी सानू रोक लो, जिन्नी मर्जी साड़ियां लत्तां खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे खिट्टियां नू चिंबड़ी चलो, पंजाबी आ गए।
13: लॉस एंजल्स में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थीं। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजल्स में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय ऑरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: लगता है सितारों के दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो दिलजीत दोसांझ की हमने आपको गुड न्यूज दी है, अब यश की गुड न्यूज भी दे देते हैं।
16: बिल्कुल दीजिए।
12: अब देखिए, साउथ सुपरस्टार हैं यश, ये तो आप जानते हैं। उनके फैंस को फाइनली गुड न्यूज मिल गई है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार आप सबके लिए खत्म हुआ। यश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दे दी है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी।
16: आपको बता दें कि टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट दो बार टल चुकी थी, लेकिन अब लंबे वीकेंड के साथ अगस्त महीने में इसे रिलीज करने का मास्टर स्ट्रोक मेकर्स ने चल दिया है।
17: तो फाइनली राया ने ऐलान कर दिया है। टॉक्सिक की रिलीज डेट पर पड़ा सस्पेंस अब ओवर हो चुका है। अब से तकरीबन दो महीने बाद साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है।
18: छोड़ दो।
17: यश ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर के साथ रिलीज डेट अनाउंस की है। पोस्टर में तारीख लिखी है 26 अगस्त 2026, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक 11 दिन बाद ये एक्शन थ्रिलर मूवी सिनेमा घरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। टॉक्सिक की रिलीज डेट को लेकर सस्पेंस की बात इसलिए की जा रही थी कि अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट दो बार टल चुकी है पहले ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट की वजह से फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। बाद में रिलीज डेट 4 जून तय की गई, लेकिन तब भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, जिसके बाद इसकी रिलीज डेट पर सस्पेंस गहराने लगा। लेकिन अब मेकर्स ने टॉक्सिक की रिलीज डेट 26 अगस्त फाइनल कर दी है। 26 अगस्त को बुधवार है, यानी हफ्ते के बीच का दिन, जबकि ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। दरअसल मेकर्स ने इस तारीख का ऐलान काफी सोच समझ कर किया है। छब्बीस अगस्त को ओणम का त्योहार है, 28 अगस्त को वर महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाएगा और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का भी त्योहार है। मतलब बुधवार से लेकर रविवार तक छुट्टियां ही छुट्टियां। टॉक्सिक को एक लंबा वीकेंड मिल रहा है, जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे सकता है। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है, जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। इस एक्शन थ्रिलर में यश राया और रूमी के दमदार और इंटेंस अवतार में दिखाई देंगे। फिल्म में यश के साथ 5 हीरोइन है, नयनतारा, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी, यानी बॉलीवुड और साउथ का पूरा संगम है। करीब 500 करोड़ के मेगा बजट में बनी टॉक्सिक को पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल अपील है। टॉक्सिक की शूटिंग एक साथ 2 मूल भाषाओं, कन्नड़ और अंग्रेजी में की गई है। साथ ही इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
16: अगस्त के महीने में रिलीज होते ही टॉक्सिक का लेकिन मुकाबला आपको बता दें कि कई मच अवेटेड फिल्मों से होने वाला है। एक तरफ श्रद्धा कपूर की ईथा होगी तो दूसरी तरफ तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म वन।
3: यानी हर फिल्म की देखिए अपनी खासियत है और तीनों ही ये फिल्में बड़े पर्दे पर हलचल मचाने का दम रखती हैं। दर्शकों को बॉक्स ऑफिस के इस महा मुकाबले का बेसब्री के साथ इंतजार है।
19: साउथ सुपरस्टार यश ने जब टॉक्सिक की रिलीज डेट का ऐलान किया तो दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। दर्शकों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार था। केजीएफ के बाद फैंस यश को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे। अब अगस्त के महीने में यश के चाहने वालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। टॉक्सिक के रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार मुकाबला भी देखने को मिलेगा। दरअसल अगस्त के महीने में बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज होने वाली हैं। महीने की शुरुआत राजकुमार राव की फिल्म प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी से होने वाली है। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर 14 अगस्त को 2 बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होंगी। इनमें से एक फिल्म सनी देओल की बंटवारा 1947 है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हो रही है। वहीं दूसरी फिल्म इमरान हाशमी की मच अवेटेड सीक्वल आवारापन 2 है। इन दोनों ही फिल्मों की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी और अब दोनों ही फिल्में एक साथ रिलीज होने जा रही हैं। लेकिन बड़े पर्दे की हलचल 26 अगस्त से और बढ़ जाएगी, जब यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज होगी। टॉक्सिक के रिलीज होने के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को 2 और बेहद चर्चित फिल्में सिनेमा घरों में उतरेंगी। इनमें से एक है श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईथा, जिसके लुक ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, और दूसरी फिल्म है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की थ्रिलर विवैन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी। यानी अगस्त का पूरा महीना ही फिल्मों के लिहाज से काफी हलचल भरा होने वाला है। अगस्त के आखिरी वीकेंड में यश की टॉक्सिक, श्रद्धा कपूर की ईथा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की विवैन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिल्मों के जानकार इस मुकाबले को इस साल की सबसे बड़ी भिड़ंत भी मान रहे हैं।
18: सिद्ध छोड़ दो।
19: जाहिर है मुकाबला जितना कड़ा होता है, दर्शकों को बड़े पर्दे पर मनोरंजन का उतना ही जबरदस्त डोज भी मिलता है।
18: Over.
20: It's over.
19: टॉक्सिक ने तो दर्शकों का जोश पहले ही बढ़ा रखा था और अब इस मुकाबले ने तो सिनेमा के शौकीनों को दोहरी सौगात दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
20: आई एम होम।
3: बॉक्स ऑफिस के धुरंधर ने रणवीर सिंह को कमाई का नया धुरंधर बना दिया है। रिपोर्ट से कहती है कि धुरंधर के दोनों पार्ट से रणवीर सिंह को करीब 325 करोड़ की कमाई हुई है। इसी के साथ रणवीर ने कमाई के मामले में शाहरुख, रजनीकांत, अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
21: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली धुरंधर ने रणवीर सिंह को कमाई का बादशाह भी बना दिया। धुरंधर की कामयाबी ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी एक नई पहचान दर्ज करा ली। क्रिटिक्स की तारीफ के साथ साथ इस फिल्म ने कमाई के भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म की इस कामयाबी ने धुरंधर के एक्टर रणवीर सिंह को भी एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। धुरंधर दो पार्ट्स में रिलीज की गई थी और इन दोनों ही पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए कोई तय फीस नहीं ली थी। फीस लेने की बजाय उन्होंने फिल्म में एक्टिंग के लिए प्रॉफिट शेयरिंग का विकल्प चुना था, यानी फिल्म की कमाई बढ़ने के साथ ही रणवीर की हिस्सेदारी का बढ़ना भी तय था। जब फिल्म का बजट बढ़ा तो रणवीर ने खुद इस प्रोजेक्ट में पैसा भी लगाया था। आंकड़ों के अनुसार धुरंधर ने दुनिया भर में करीब 3100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई के बाद रणवीर को बड़े पर्दे के कलेक्शन के साथ डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के हिस्से के तौर पर 325 करोड़ रुपए मिले। इस कमाई के साथ रणवीर सिंह ने शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार्स की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि एक्टर या फिल्म मेकर्स की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई है। रणवीर से पहले भारत में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के नाम था। साल 2024 में आई फिल्म जेलर से रजनीकांत ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं शाहरुख की पठान और जवान ने भी 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 और प्रभास ने कल की 2898 एडी के लिए 200 करोड़ से ज्यादा की फीस ली थी। लेकिन एक ही फ्रेंचाइजी से 325 करोड़ कमाकर रणवीर सिंह बॉलीवुड में कमाई के भी धुरंधर बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
16: चलिए, फिल्मों की तो बहुत सारी बातें हो गई, रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है फीफा वर्ल्ड कप फीवर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
22: Fifty states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
23: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है। दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों पर वर्ल्ड कप का खुमार साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर से लेकर मैचों की मेजबानी कर रहे स्टेडियम तक हर तरफ जश्न और उत्साह का माहौल है। अपनी पसंदीदा टीमों को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में फैंस सड़कों और फैन जोन में जुट रहे हैं। रंग बिरंगे झंडे, टीमों की जर्सियां और जीत के नारों के बीच वर्ल्ड कप एक वैश्विक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है।
3: बिल्कुल, और खेल के मैदान के अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया में फुटबॉल थीम पर खास बेकरी की डिमांड बनी हुई है। यहां सुनहरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, सॉकर बॉल और टीम के मैस्कट के आकार की कॉन्ट्रास्ट यानी बेकरी का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। तैयारी की जा रही है। लॉस एंजलिस में लाखों मैक्सिकन मूल के लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है, इस शहर में मैक्सिको टीम को जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आपको यह भी बता दें कि कॉन्ट्रास्ट मैक्सिको की एक मीठी ब्रेड है जिसे अक्सर हॉट चॉकलेट या कॉफी के साथ परोसा जाता है। ये इलाके में रहने वाले लोग यानी मैक्सिकन और आम लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है क्योंकि लोग अपनी पसंदीदा टीम के रंगों वाली ब्रेड खाकर अपना सपोर्ट उनको देते हैं।
12: हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
25: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
26: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
27: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: डेनमार्क के फैनो द्वीप पर कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां दुनिया के सबसे बड़े पतंग महोत्सव में 26 देशों के हजारों पतंगबाज जुटे। यहां खुले आसमान में रंगों का समंदर, हवा में तैरती हुई कल्पनाएं और धरती से लेकर क्षितिज तक पतंगों का अद्भुत नजारा देखने लायक रहा। इन खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर तो खूब देखा जा रहा है।
16: हर साल जून में आयोजित होने वाले फैनो इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स मीटिंग में इस बार करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों के मुताबिक वीकेंड में आसमान में लगभग 25,000 रंग बिरंगी पतंगे उड़ी, जिनमें बड़ी सी ड्रैगन, समुद्री जीव, कार्टून कैरेक्टर्स और अनोखे कलात्मक डिजाइन शामिल थे। मानो ये फैनो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एक विशाल खुली आर्ट गैलरी बन गया। तो चाय पर चर्चा में आज फिलहाल इतना है, लेकिन कल शाम ठीक 5 बजे मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
22: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: Good news today.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किए दर्शन पूजन। कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। देश भर में मॉनसून पकड़ रहा रफ्तार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश। दिल्ली में अब अंधेरे पर होगी सख्ती, स्ट्रीट लाइट खराब हुई तो लगेगा जुर्माना। कंट्रोल रूम से होगी 24 घंटे निगरानी। गिर नेशनल पार्क में शुरू होने जा रहा एशियाई शेरों का वेकेशन। कल से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी गिर सफारी। आखिरी दिन बड़ी संख्या में जुटे सैलानी। डेनमार्क में आसमान में उड़ी 25,000 रंग बिरंगी पतंगे, करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने लिया हिस्सा। 26 देशों के आए पतंगबाज।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बेहद दमदार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये पेशकश आप सबके नजर। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास का आईना बनकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक साथ 3 गेम चेंजर नौसैनिक जहाजों का जलावतरण किया है। ये तीनों नेवल शिप अपने अपने क्षेत्र के मास्टर पीस हैं, जिनकी ताकत और क्षमता जानकर दुश्मन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इन तीनों नेवल शिप्स के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद हिंद महासागर में हिंदुस्तान की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ, इसलिए इन्हें भारतीय नौसेना का गेम चेंजर माना जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि तीनों भारत में ही डिजाइन है और स्वदेशी तकनीक से लैस है। देखिए देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट।
1: आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है।

समंदर में भारत की स्वदेशी तकनीक और ताकत की नई नुमाइश को देखकर दुश्मन की नींद उड़ गई है। इंडियन नेवी ने रविवार को हिंद महासागर में अपनी तकनीक और ताकत का बवंडर उठाते हुए एक साथ 3 गेम चेंजर नेवल शिप्स को कमीशन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को अलग अलग खासियतों से लैस 3 नौसैनिक जहाजों को भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया। तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण बंगाल की खाड़ी में किया गया। गजब का इत्तेफाक ये है कि तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण उस दिन हुआ जब पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा था। काबिले गौर है कि 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन पीएम मोदी ने समंदर में भारत की शक्ति का शक्तिशाली मुजाहिरा भी कर दिया।

0: पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर तीन महत्वपूर्ण नेवल शिप्स को राष्ट्र को समर्पित किया जाना कितना अहम और असरदार है ये समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने चीन निर्मित हंगोर क्लास की सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया था। जाहिर है 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में नौ सैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने तीन अलग अलग विशेषताओं वाले जहाज को उसी बंगाल की खाड़ी में उतार कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने तो चीन में निर्मित सबमरीन को अपनी नौसेना में शामिल किया, लेकिन भारत ने जिन तीनों नेवल शिप्स को कमीशन किया है वो पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: अब आपको बताते हैं कि ये तीनों नेवल शिप्स किस किस तरह के हैं और कैसे समंदर में इनकी मौजूदगी दुश्मन की नींद उड़ाने का काम करेगी। इनमें से पहला है INS दुनागिरी, जो कि एक फ्रिगेट यानी कॉम्बैट शिप है। दूसरा है INS अग्रय, जो एक एंटी सबमरीन शिप है। और तीसरा है INS संशोधक, जो कि एक सर्वे शिप है। ये तीनों सिर्फ नेवल शिप्स ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक मुनादी है, क्योंकि ये तीनों समंदर में भारत के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। जब आप इन तीनों जहाजों की ताकत और विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि तीन नौसैनिक जहाजों के जलावतरण से क्यों चीन और पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं INS दुनागिरी की विशेषताओं के बारे में। INS दुनागिरी जल तकनीक से बना अत्याधुनिक फ्रिगेट है, जो दुश्मन की नजरों में आए बगैर समंदर से लेकर आसमान तक की उनकी तबाही का पैगाम लिखने की क्षमता से लैस है। INS दुनागिरी नई पीढ़ी का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो रडार और दूसरे सेंसर्स को चकमा देने में माहिर है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस के अलावा MRSM वायु रक्षा प्रणाली, MF स्टार रडार तकनीक, अत्याधुनिक सोनार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस है। INS दूनागिरी लंबी दूरी के समुद्री वॉरफेयर के साथ ही मिसाइल हमले और पनडुब्बियों के खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हुए हैं।
2: इट इज द फिफ्थ शिप इन द सीक्वेंस। So why do we call it a stealth frigate? We call it a stealth frigate because it has got reduced RCS, radar cross sectional area, and we have features that makes it very very silent. So in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced state of the art early warning radars in all three dimensions, capable of carrying all types of helicopters. And that provides us the advantage of operating and meeting all missions.
1: INS Doonagiri की जबरदस्त खासियतों को जानने के बाद अब बात करते हैं INS Agra की, जो कि एंटी सबमरीन शेलो वाटर शिप है। ये खास तौर पर उथले तटीय जल क्षेत्रों, बंदरगाहों और अहम समुद्री रास्तों की निगरानी करने में पूरी तरह से सक्षम है। INS Agra हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और हाईटेक सोनार सिस्टम से लैस है। इसे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही डुबा देने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।
3: इस शिप की स्पेशलिटी ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडर वाटर सेंसर्स लगे हैं। एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडर वाटर, उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज़ डिज़ाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन।
1: INS Doonagiri और INS Agra की खासियत जानने के बाद अब जानते हैं तीसरे नेवल शिप INS संशोधक के बारे में। INS संशोधक सर्वे वेसल लार्ज यानी SLV श्रेणी का अत्याधुनिक हाईटेक पोत है। इसका काम मुख्य तौर पर समुद्र की गहराई, समुद्री तल की संरचना और नौसैनिक रास्तों का सर्वेक्षण करना है। ये नेवल शिप ऑटोनोमस अनमैंड व्हीकल, रिमोट ऑपरेटेड वाहन और मल्टी बेम इको साउंडर जैसे उन्नत वॉरफेयर से लैस है। सबसे खास बात यह की किसी मेडिकल इमरजेंसी के हालात में INS संशोधक एक हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
2: दिस इज बेसिकली सर्वे शिप, सो प्राइमरी रोल इज टू कंडक्ट ए हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड कलेक्ट मैरिटाइम डाटा। सो एज अ सेकेंडरी रोल दिस शिप कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन हॉस्पिटल शिप। सो वेरियस ऑनबोर्ड स्पेसेस दैट वी विल कन्वर्टेड इनटू वार्ड्स एंड द ऑपरेशन थिएटर। सो we have modern telemedicine facility which help in real time consultation with the specialist and super specialist, as well as we are equipped with a lab facility for routine blood and urine investigation, and we are also having the ultrasound machine, so we can treat the patient, we will stabilize him here during any emergency.
1: kehne ki zarurat nahi ki ravivar ko bharat ne hind mahasagar mein jo teen naval ships utare wo tino hindustan ki aatmanirbharta ke sath hi बढ़ते आत्मविश्वास के भी प्रतीक हैं। सबसे अच्छी बात यह कि डिजाइन के साथ ही इनमें लगे 75% से ज्यादा उपकरण और साजो सामान पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इतना ही नहीं, इन्हें बनाने के लिए 200 से ज्यादा MSME सेवाएं ली गई हैं। इसका मतलब यह कि समंदर में हिंदुस्तान की निगरानी और दुश्मन की परेशानी का सबब बनने के साथ ही इनमें भारी तादाद में रोजगार का भी सृजन हुआ है।

0: कोलकाता से श्रांशी डे और इंदिरा चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: इन तीनों नौसैनिक जहाजों का हिंद महासागर में उतरना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वैश्विक मुनादी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, यहां तक कि हम रक्षा उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि भारत की सैन्य ताकत पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा हो चुकी है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि भारत न सिर्फ कन्वेंशनल हथियार बना रहा है बल्कि वक्त की नजाकत को देखते हुए टेक्निकल वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक को भी लगातार विकसित कर रहा है।

0: स्वदेशीकरण, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जय घोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का। ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और बड़ी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या

0: बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
1: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। देश भर में मॉनसून पकड़ रहा है रफ्तार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश। दिल्ली में अब अंधेरे पर होगी सख्ती, स्ट्रीट लाइट खराब हुई तो लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी 24 घंटे निगरानी। गिर नेशनल पार्क में शुरू होने जा रहा है एशियाई शेरों का वेकेशन, कल से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी गिर सफारी, आखिरी दिन बड़ी संख्या में जुटे सैलानी। डेनमार्क में आसमान मोड़ी 25,000 रंग बिरंगी पतंगें, करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने लिया हिस्सा, 26 देशों के आए पतंगबाज।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: मानसून को लेकर अच्छी खबर, कई राज्यों में आगे बढ़ने के लिए बेहतर हालात बने। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान। अगले 48 घंटों में मानसून के छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए अच्छी हालात। मानसून के लिए दिल्ली के लोगों को करना होगा इंतजार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार। गुजरात के अमरेली में खूब बरसे बदरा, बारिश से किसान हुए खुश। पिछले दो दिनों से कई गांवों में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश, बुवाई का इंतजार कर रहे किसानों के खिले चेहरे। गुजरात के वलसाड में भी अच्छी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली, कई इलाकों में भर गया पानी। सूरत में भी हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। आईएमडी के मुताबिक अल नीनो की वजह से गुजरात में अब तक मॉनसून की शुरुआत नहीं हो पाई, अभी 3 से 5 दिनों तक करना होगा और इंतजार। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर गुजरात से सौराष्ट्र होते हुए पश्चिम मध्य अरब सागर तक कम दबाव का इलाका बना है, इसके चलते कई शहरों में हो रही बारिश। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा प्री मानसून, कई इलाकों में बारिश। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी अलीबाग पहुंचा हुआ है, अगले 48 घंटों में मुंबई पहुंचने का अनुमान। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, आवाजाही प्रभावित। मुंबई के बांद्रा में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भर गया पानी। पुणे में भी कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, कई जगहों पर जलजमाव। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश, बस स्टैंड में पानी भर गया। थूथुकुड़ी में तेज हवाओं से भारी नुकसान पहुंचा, कई इलाकों में घर और दुकानें क्षतिग्रस्त। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट, कल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी। पटना में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक के लिए बंद, भीषण गर्मी के चलते डीएम कुंदन कुमार ने फैसला लिया। बिहार में स्कूलों की बदल गई टाइमिंग्स, अब सुबह 6:30 बजे खुलेंगे क्लासेस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, हरि सेवा आश्रम में आयोजन संत सम्मेलन में शामिल हुए। मेरठ के संकेत ने पेश की मिसाल, दो नंबर से जेई एडवांस में असफल होने के बाद सेल्फ स्टडी करके बने इसरो के साइंटिस्ट। एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड, 100 मीटर रैली में चीन को हराया। जूनागढ़ के गिरिरा सासन में जंगल के राजा एशियाई शेरों का वेकेशन हो गया शुरू, 23 जून से 15 अक्टूबर तक गिर सफारी पर्यटकों के लिए बंद। मॉनसून का समय शावकों के पालन पोषण के लिए होता है, वन्य जीवों को शांत और सुरक्षित वातावरण मिल सके इसलिए सफारी पर लगाई जाती है अस्थायी रोक। पूर्व अग्निवीरों के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। साफ सफाई के मामले में 88 साल के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इंद्रजीत सिंह सिद्धू लोगों के लिए बने प्रेरणा, चंडीगढ़ में सार्वजनिक जगहों की सफाई के लिए करते हैं काम। सार्वजनिक जगहों की सफाई करने के लिए रोज 8 घंटे देते हैं इंद्रजीत सिंह सिद्धू, नागरिक का जिम्मेदारी के प्रति समर्पण के लिए पद्मश्री से किए गए हैं सम्मानित। भारतीय नौसेना के जहाज INS उदयगिरी और INS कवरत्ती वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंचे। अमेरिका से आई गुड न्यूज, भारतीय मूल की पहली बार चुनाव लड़ रही अपर्णा राज ने वॉशिंगटन DC काउंसिल सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत की।

0: नौसेना की ओर बढ़ी ताकत। नौसेना में शामिल होंगे दो नए युद्धपोत, INS महेंद्रगिरी और INS मालवा। जुलाई में महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में किया जाएगा कमीशन, मालवान को कोची में नौसेना में किया जाएगा शामिल। दुश्मन के रडार से छिपने और एक साथ कई मोर्चों से लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है INS महेंद्रगिरी, छठा स्वदेशी युद्धपोत है INS महेंद्रगिरी। ओडिशा में पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी के नाम से रखा गया है युद्धपोत का नाम, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किया गया निर्माण। भारतीय नौसेना को स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है INS मालवा, समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने और लड़ने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में आस्था और परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का आज से शुभारंभ हो गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां रागन्या देवी की उतारी विशेष आरती, माता रानी की लगाए जयकारे। गंदरबल के खीर भवानी मंदिर में पहुंचे LG मनोज सिन्हा, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। खीर भवानी मेले को लेकर गंदरबल में तैनात की गई है डॉक्टर्स की टीम, दवाई भी कराई जा रही उपलब्ध। गांधरबल में खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, मंदिर के आसपास इलाकों में तैनात किए गए हैं जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा में आस्था का मेला, गुजरात से पहुंचे 1200 से ज्यादा श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने की महादेव की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना। पिछले 36 सालों में पहली बार पहुंचे बड़ी तादाद में सैलानी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। यात्रा राष्ट्र प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में मनाई जाती है, राष्ट्रीय एकता भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना का संदेश। सिंधु दर्शन यात्रा जम्मू कश्मीर से होते हुए लेह लद्दाख तक जाएगी, 30 जून तक चलेगी यात्रा। पुंछ में बहराम गाला मंदिर में वार्षिक उत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु ने विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया, जमकर लगाया जयकारे। बहराम गाला मंदिर में वार्षिक उत्सव पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद चखा। बहराम गाला मंदिर में वार्षिक उत्सव में देखी आपसी भाईचारे की मिसाल, पूजा में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई भी नजर आए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दरबार में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा। गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिनों तक मंदिर के कपाट पूरी तरीके से रहेंगे बंद। मंदिर में दर्शन करने के लिए सभी ऑफलाइन विशेष दर्शन काउंटर को बंद कर दिया गया है, विशेष दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास करना होगा बुक। मंदिर परिसर को खास शुद्धिकरण अनुष्ठान करने के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। मेले को लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं, भक्तों के लिए कई जगहों पर शिविर और भोजन की व्यवस्था। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार। महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे टेलीविजन एक्टर अर्पित रांका और सौरभ चंद। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। डेनमार्क में आसमान में उड़ी 25,000 रंग बिरंगी पतंगे, करीब 5,000 पतंग प्रेमी शामिल हुए। रोहतास में शिक्षक की बेटी सानिया कलीम ने 70वीं PPSC में किया कमाल, हासिल की 299वीं रैंक। जमुई के बेटे बने SDM, पिता को दिया BPSC में सफलता का तोहफा। इम्फाल विश्व संगीत दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पन्ना में फिर खुल गई किसान की किस्मत, नोएडा के किसान परिवार को मिला 6.54 कैरेट का हीरा, 20 से 25 लाख रुपए कीमत। भारतीय सेना ने तुलेल कुरेस में 4 पर्यटकों को किया रेस्क्यू। 8.5 लाख की नौकरी छोड़कर मुजफ्फरपुर के विकास बने मैंगोमैन, उगा रहे हैं 92 किस्म के आम। बगीचे में जापान से ऑस्ट्रेलिया तक की दुर्लभ वैरायटी भी उपलब्ध है। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 658 करोड़ की 81 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा विकास की गति और तेज होगी। टीम इंडिया के गेंदबाज आकाशदीप की शादी की रस्में हुई शुरू, धूमधाम से हुआ तिलक समारोह। आकाशदीप ने तिलक समारोह में भोजपुरी गाने में जमकर किया डांस। बलिया के लक्ष्मी नारायण मंदिर को लेकर मिला नया महंत, मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक किया गया। ग्यारह साल के बालक शाश्वत, अब उनका नाम हो गया है श्याम नारायण दास बालक दास उर्फ राम भद्राचार्य ने गुरु दीक्षा दी है। गया शहर के प्रमुख चौराहों पर दिखी धार्मिक सांस्कृतिक और विरासत झलक, चौक पर शानदार लाइट्स। बंगाल में राज्य कर्मचारियों का डीएफ 20% बढ़ा, विधायक फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर रात प्रति घंटा लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी। अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा, सिंगर के नाम पर रखा जाएगा पब्लिक हॉलीडे। 6 जनवरी 2027 का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, पब्लिक हॉलीडे दोसांझ हुए इमोशनल। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी बनेंगी दुल्हनिया, अंशुला कपूर का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू। बॉक्स ऑफिस पर चला शायद कृति सेनन और रश्मिका मंदाना का जादू, कॉकटेल 2 ने 3 दिन में 75 करोड़ का आंकड़ा पार किया। माइंती बंगारम पर हुई नोटों की बारिश, 3 दिनों में 41 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। बुडापेस्ट में पहली बार पहुंची भगवान विट्ठल रुक्मणी की पवित्र पादुकाएं। विदेश में भारतीय संस्कृति और वारकरी परंपरा का अनूठा संगम, पादुका दर्शन, भजन कीर्तन और प्रार्थना का आयोजन किया गया। बुडापेस्ट में हीरो स्क्वायर में पवित्र पादुकाओं की निकाली गई भव्य यात्रा। भारतीय बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में बिखरे संस्कृति के रंग, भजन भक्तिमय गाय। विदेश में भी जीवंत है पंढरपुर वारी की परंपरा, स्थानीय लोगों ने भी इस अनूठी परंपरा में भाग लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फुटबॉल टीम पर बेकरी में बनी खास मिठाई, बेकरी में बनी मिठाइयों की बढ़ी डिमांड। फुटबॉल जर्सी के आकार को कोंचास बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी नजर आई। फुटबॉल टीम पर बेकरी में बनी खास मिठाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड कप टीम वाली कोंचास बना सोशल मीडिया पर चर्चा का मुख्य विषय। मैक्सिकन संस्कृति और फुटबॉल प्रेम का दिख रहा है अनोखा मेला, टीमों के रंग देख रहे इनको मिल रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में 4th चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का शुभारंभ कर दिया गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी AI बना सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र, स्मार्ट सिटी स्मार्ट हेल्थ केयर भी नजर आया। चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में 85 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। एक्सपो में लो ऑल्टीट्यूड इकोनॉमी जोन भी देखने को मिला। अर्जेंटीना के न्यून बेन शहर के बीचों बीच लगाई गई है फुटबॉलर लियोनेल मेसी की विशाल प्रतिमा। गुआनवू फेस्टिवल पर चीन के ल्हासा में खास आयोजन किया गया, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट। 3600 मीटर ऊंचाई पर ड्रैगन बोट की रेस का रोमांच, 20 टीमों ने भाग लिया। पारंपरिक नावों ने खींचा सभी का ध्यान, लोकल संस्कृति के दर्शन। अनटचेबल हेरिटेज जोन रहा आकर्षण का मुख्य केंद्र, जोंगजी बनाने का मिला अनुभव। त्योहार का पारंपरिक रंग देखने को मिला, परंपरा और खेल का अनोखा संगम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
3: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें

0: स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थी। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजलिस में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय औरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: साउथ सुपरस्टार यश के फैंस को फाइनली गुड न्यूज मिल गई है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है। यश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी।
2: When I say it's over.
3: तो फाइनली राया ने ऐलान कर दिया है टॉक्सिक की रिलीज डेट पर पड़ा सस्पेंस अब ओवर हो चुका है। अब से तकरीबन 2 महीने बाद साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है।
2: छोड़ दो।
3: यश ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर के साथ रिलीज डेट अनाउंस की है। पोस्टर में तारीख लिखी है 26 अगस्त 2026 यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक 11 दिन बाद ये एक्शन थ्रिलर मूवी सिनेमा घरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। टॉक्सिक की रिलीज डेट को लेकर सस्पेंस की बात इसलिए की जा रही थी कि अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी है। पहले ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी लेकिन मिडिल ईस्ट संकट की वजह से फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। बाद में रिलीज डेट 4 जून तय की गई, लेकिन तब भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी जिसके बाद इसकी रिलीज डेट पर सस्पेंस गहराने लगा। लेकिन अब मेकर्स ने टॉक्सिक की रिलीज डेट 26 अगस्त तक फाइनल कर दी है। 26 अगस्त को बुधवार है यानी हफ्ते के बीच का दिन, जबकि ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। दरअसल मेकर्स ने इस तारीख का ऐलान काफी सोच समझ कर किया है। छब्बीस अगस्त को ओणम का त्योहार है, 28 अगस्त को वर महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाएगा और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का भी त्योहार है। मतलब बुधवार से लेकर रविवार तक छुट्टियां ही छुट्टियां। टॉक्सिक को एक लंबा वीकेंड मिल रहा है जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे सकता है। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। इस एक्शन थ्रिलर में यश, राया और रूमी के दमदार और इंटेंस अवतार में दिखाई देंगे। फिल्म में यश के साथ 5 हीरोइन हैं, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी, यानी बॉलीवुड और साउथ का पूरा संगम है। करीब 500 करोड़ के मेगा बजट में बनी टॉक्सिक को पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है जिसमें इंटरनेशनल अपील है। टॉक्सिक की शूटिंग एक साथ 2 मूल भाषाओं कन्नड़ और अंग्रेजी में की गई है, साथ ही इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
7: La Que Buena.
6: ESPN Radio.
8: We know LeBron has to be the best player on the planet to
6: have. The Daily.
9: From the New York Times, I'm Katrin Ben-Holt, and this is The Daily. And

0: so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
1: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मरोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किए दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। देशभर में मॉनसून पकड़ रहा रफ्तार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश। गिर नेशनल पार्क में शुरू होने जा रहा एशियाई शेरों का वेकेशन, कल से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी गिर सफारी, आखिरी दिन बड़ी संख्या में जुटे सैलानी। डेनमार्क में आसमान में उड़ी 25,000 रंग बिरंगी पतंगे, करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने लिया हिस्सा, 26 देशों से आए पतंगबाज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। भगवान शिव का सबसे पवित्र और दिव्य धाम, आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो गया है। वर्षों के इंतजार के बाद एक बार फिर से श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा का शुभारंभ। आपको बता दें कि बर्फ से ढकी चोटियों, पवित्र मानसरोवर झील और शिव के निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु उत्साह और उल्लास के साथ कैलाश मानसरोवर पहुंच रहे हैं।

0: हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है। कठिन रास्तों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही है। समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर रवाना हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1: बाबा विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है। और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूँ।
0: यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही है, क्योंकि वर्षों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार होने जा रहा है।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिक्किम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सभी स्टाफ बहुत अच्छे, हम लोगों का देखभाल किया।
3: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक along with ITBP, STDC and the Ministry of External Affairs. So I think it has been a wonderful journey. They have made it very, very facilitating.
0: कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में सबसे अंतिम, सर्वोच्च और महातीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है, लिहाजा विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यात्रियों को आगाह किया है कि तिब्बत का क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और सीमित सुविधाएं चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूरी तैयारी, चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक सावधानियों के साथ यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। दरअसल दूतावास की टीम ने हाल ही में यात्रा मार्गों का विस्तृत निरीक्षण किया। टीम ने भारत के सिक्किम और उत्तराखंड के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तक जाने वाले प्रमुख मार्गों का दौरा किया और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों को थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी।
4: इज यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर पिलग्रिम्स कमिंग ऑन प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड टूर्स। यू नीड टू नो दैट यू नीड प्रॉपर फुटवेयर। पिलग्रिम्स कम नॉट गोइंग टू वर्क इफ यू हैव यू नो ओपन फुटवेयर। दिस इज फार टू कोल्ड। एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन टिबेट ऑटोनोमस रीजन इज गोइंग टू बी फार टू कोल्ड फॉर यू टू मैनेज लाइक दैट। You need any waterproof footwear, you need layered clothing, including a thick jacket, to keep you warm and to keep the rain off, the rain does happen.
0: कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद यमद्वार से कैलाश जी की परिक्रमा शुरू होती है। पथरीला रास्ता, चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इनके बीच 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा करीब 50 किलोमीटर की है, जिसे 3 दिनों में पूरा किया जाता है। जिन शिव भक्तों ने परिक्रमा की है, शिव को करीब से देखा है, उनके पास महादेव के दर्शन से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव हैं। जो पहली बार जा रहे हैं वो पहले ही आनंद से भरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: कश्मीर के गांदरबल में माता खीर भवानी मेले में खूब रौनक बिखरी है। ये धार्मिक आयोजन कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा उत्सव है। खास बात यह है कि धर्म आस्था के इस मेले में कश्मीर की साझा संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है माता खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी यहां पहुंचकर माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि तुलमुला में खीर भवानी मेले को आयोजित कराने में यहां रहने वाली मुस्लिम आबादी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। स्थानीय मुस्लिमों द्वारा कश्मीरी पंडितों का स्वागत करना, उनके रहने खाने और पूजा सामग्री का इंतजाम करना, ये दिखाता है कि त्योहारों की मिठास आज भी कायम है। असीम आस्था के प्रतीक खीर भवानी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भारी संख्या में देश विदेश और घाटी के कोने कोने से हजारों कश्मीरी पंडित मेले में शामिल हुए। यही नहीं, मंदिर में भाईचारे, एकता और सौहार्द के नाम पर दिए भी जलाए गए। यही वजह है कि खीर भवानी मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं बल्कि कश्मीर की कश्मीरियत और हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है।
6: हर साल की तरह इस साल भी माता खीर भवानी का जो मेला है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पूरे हर्षोल्लास से मना रही है। इस वक्त हम तुलमुला में हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है माता खीर भवानी का मंदिर। और बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है आज, अगर आप कश्मीरी पंडित की जो रिलीजियस भावनाओं को समझें या उनके जो फेस्टिवल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के दिन को माना जाता है माता रखने देवी का ये जो मंदिर है। और हर साल जैसे मैंने कहा कश्मीरी पंडित यहाँ आते हैं लेकिन इस साल जो रजिस्ट्रेशन है उससे अलावा लोग आए हैं। ऐसे आप भीड़ देख सकते हैं आसपास और जहाँ भीड़ है वहीं सुरक्षा के भी काफी जो हैं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 2 से 3 टायर सिक्योरिटी का रिंग है। अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। तो न सिर्फ रिलीजियस इसका सिग्निफिकेंस है बल्कि कश्मीरी पंडित्स का जो इकट्ठे दोबारा कश्मीर आना है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे और जैसे मैंने कहा कि हर साल काफी भीड़ होती है लेकिन इस साल रिकॉर्ड तो रजिस्ट्रेशन हुई है और देश के अलग अलग हिस्सों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो कश्मीरी पंडित यहाँ आए हैं और अंदर जो है पूजा भी चल रही है, भेंट भी चढ़ा रहे हैं माता रखने देवी को। और न सिर्फ तुलमुला में बल्कि 4 ऐसे और लोकेशंस हैं जहां पे ये जो दिन है पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
5: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और पूरे देश में टॉपर बनी है उत्तर प्रदेश की बेटी श्रद्धा पांडे। प्रतापगढ़ के रानीगंज की रहने वाली श्रद्धा ने 593 अंक लाकर टॉप रैंक हासिल किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है बीपीएससी परीक्षा में यूपी की श्रद्धा पांडे टॉपर। बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को 70वीं परीक्षा का फाइनल लिस्ट जारी किया। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने कुल 593 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त कर लिया। उन्हें एसडीएम पद मिल सकता है। श्रद्धा प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र के 50 गांव की रहने वाली हैं। खास बात यह है कि श्रद्धा पहले से ही यूपी में असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर के पद पर लखनऊ में तैनात हैं। उन्होंने यूपीपीएससी संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा 2024 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 153वीं रैंक हासिल की थी। पहले ही अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस क्वालिफाई करने वाली श्रद्धा ने अब बीपीएससी में भी परचम लहरा दिया। श्रद्धा की शुरुआती पढ़ाई रानीगंज के मनीष मेमोरियल स्कूल में इंटर संगम इंटरनेशनल स्कूल से और ग्रेजुएशन स्वामी करपात्री जी महाराज राजकीय महाविद्यालय से हुई। और खास बात यह है कि श्रद्धा ने कहीं भी कोचिंग नहीं ली। प्रतापगढ़ की बेटी श्रद्धा पांडे ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
7: सिद्ध इतनी है जिसका पारावार नहीं है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि बिटिया ने जो है बिहार टॉप करके, बिहार पीसीएस में टॉप करके और ये हमारा मतलब अपने माता पिता का नाम रोशन किया, उसके बाद रानीगंज का नहीं तहसील का, जिले का और पूरे प्रदेश में जो है इसने जो है अपना परचम लहराया। हम अपनी बिटिया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी तो इससे हमारी अच्छे से बात नहीं हो पाई है तो खुशी तो बहुत है, इतनी खुशी है कि दिल तो बल्लियों उछल रहा है और व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर महसूस किया जा सकता है।
5: गया शहर में एक अनोखा पार्क है। यहाँ पर हर पौधे के साथ बिहार के एक आईएएस अधिकारी का नाम लगा है। दरअसल ब्रह्मयोनी पहाड़ के नीचे बंजर जमीन पर आईएएस अधिकारियों ने एक मंथन वाटिका का निर्माण किया है जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है बंजर जमीन में आईएएस अधिकारियों की मंथन वाटिका। इस पार्क में करीब 200 पौधे लगाए गए हैं और सभी पौधों पर बिहार राज्य के विभिन्न जिले के डीएम, कमिश्नर, सचिव सहित बिहार के कई प्रशासनिक आला अधिकारियों का नेम प्लेट यहां लगा हुआ है।

0: बिहार के गया शहर में एक अनोखा पार्क है जहां पर हर पौधे के साथ एक आईएएस अधिकारी का नाम जुड़ा हुआ है। ये जगह है गया शहर में स्थित ब्रह्मयोनी पहाड़। पहाड़ के नीचे पड़ी बंजर जमीन पर ये पौधे लगाए गए हैं और इसे नाम दिया गया है मंथन वाटिका। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था यानी बिपार्ट के द्वारा इस वाटिका का निर्माण किया गया है। इस मंथन वाटिका में लगभग 200 से अधिक पौधे लगाए गए हैं और सभी पौधे पर बिहार राज्य के विभिन्न जिले के डीएम, कमिश्नर, सचिव सहित राज्य के कई प्रशासनिक आला अधिकारियों का नेम प्लेट लगा हुआ है।
1: इस समय हम मौजूद हैं गया जिला के ब्रह्मयोनी पहाड़ के नीचे, जहां पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार के आईएएस अधिकारियों के द्वारा एक मंथन वाटिका का निर्माण किया गया है। और इस वाटिका में बिहार के सभी आईएएस अधिकारियों के द्वारा एक पेड़ लगाया गया है और उस पेड़ के पास उनका नेम प्लेट भी लगाया गया है।
0: 2025 के दिसंबर महीने में गया स्थित बिपार्ट में बिहार के सभी आईएएस अधिकारियों के साथ मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इस कार्यक्रम में सभी आईएएस अधिकारियों के साथ पर्यावरण को लेकर एक चर्चा हुई। इसके बाद आईएएस अधिकारियों के द्वारा ब्रह्मयोनी पहाड़ के नीचे बंजर जमीन पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। ये मंथन वाटिका पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की सामाजिक भागीदारी का अनोखा उदाहरण बन गया है।
2: वृक्षरोपण जो है वो एक जीवन प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी अगर वो वृक्ष लगा रहे हैं सम्पोज, अगर ये आने वाले 10 साल में अगर ये बड़ा तैयार होता है तो लोगों को छाया भी मिलेगी, प्लस में उनका एक यहाँ पर कह सकते हैं कि एक मार्क भी उनका रह गया कि हाँ हमने जब एज अ ट्रेनिंग, जब हम लोग ट्रेनिंग के दौरान जब वहाँ पे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने वृक्षरोपण किया।
0: बंजर जमीन पर हरियाली लाने वाले इस योजना का आम लोग स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखकर लोग वृक्षारोपण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिहार के आईएएस अधिकारियों की इस पहल को देखकर स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं और मंथन वाटिका इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
3: ये सरकार की यह मंथन थी तो आईएएस अफसर खुद यहाँ पे पेड़ लगाए हैं और इससे अच्छा है कि ये इनके थ्रू आम पब्लिक भी इस पे ये लगा सकते हैं पेड़, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पे हम बहुत खुलकर सपोर्ट भी करते हैं।
0: दरअसल राज्य में वन क्षेत्र अब दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, ऐसे में पौधा लगाकर वनों के संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया है। अधिकारी वृक्षारोपण करके लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
4: मुझे ये संदेश जाता है कि आप अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, अपने घर में भी पेड़ पौधे आप लोग लगाएं। पानी हम लोग को बचाना चाहिए, क्योंकि आगे अगर यदि हम लोग रिस्पॉन्सिबली अपना कार्य नहीं करेंगे या पेड़ नहीं संरक्षण करेंगे या पानी का नहीं संरक्षण करेंगे तो आगे हम लोग को जीवन जीने में और हमारे बच्चों के लिए आगे भविष्य में संकट होगा, पानी का भी और स्वच्छ हवा का भी, प्रदूषण का भी समस्या होगा। तो उससे निपटारा के लिए हम लोग को सभी की भूमिका है, सिर्फ सरकार की नहीं है, सभी आमजनों की, सभी की भूमिका है।
0: इस मंथन वाटिका को देखकर लोग भी वन संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो भविष्य में पानी का संकट भी होगा और साफ हवा भी मुश्किल से मिलेगी। ऐसे में ये वाटिका भविष्य में पर्यावरण की रक्षा का भी संदेश दे रही है। गया से पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे।
5: मध्य प्रदेश के पन्ना को यूं ही हीरो की नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ की धरती ने एक बार फिर से नोएडा निवासी मीणा सिंह की किस्मत चमका दी है। मीणा सिंह को जरुआपुर गांव की उथली हीरा खदान में से 6.54 कैरेट का उज्जवल किस्म का बेशकीमती हीरा मिला है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है पन्ना की धरती ने फिर उगला लाखों का हीरा। पन्ना नगर के समीप स्थित जरुआपुर गांव के निजी भूमि की उथली खदान से नोएडा निवासी मीणा सिंह की खदान में 6.54 कैरेट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार मीणा सिंह के पति राणा सिंह वर्ष 2021 में कोरोना काल के बाद पन्ना आए थे और यहां हीरो की कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में खदाने लगाना शुरू किया। तब से अब तक उन्हें 15 छोटे बड़े हीरे मिल चुके हैं। यहां पर राणा सिंह की पत्नी मीना सिंह के नाम पर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई गई थी। इसी में मजदूरों के द्वारा खदान का उत्खनन कराया गया, जिसमें एक बड़ा हीरा मिला है, 6.54 कैरेट का हीरा। कार्यालय में जांच के बाद जमा करा दिया गया, जिसे आगामी हीरा नीलामी में रखा जाएगा। इस नीलामी में हीरे की अच्छी खासी कीमत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
6: ग्राम जरुआपुर में मीना देवी पति श्री राणा प्रताप सिंह के द्वारा ग्राम जरुआपुर में खदान लगाई गई थी, तो उनको 6.54 कैरेट का उज्ज्वल किस्म का हीरा प्राप्त हुआ है। बहुत ही उज्ज्वल किस्म का है हीरा है, जो कि जिसमें थोड़ी सी परतदार भी है और घूमर किस्म का हीरा है। ये करीब इन्होंने आवेदन लगाया था माह फरवरी के बाद, मार्च के समथिंग उन्होंने आवेदन लगाया था। ये मूलतः एक किसान है जो कि आज आए थे, तो उन्हीं के द्वारा जमा किया गया। इसको आगामी नीलामी में रखा जाएगा और अधिक से अधिक राजस्व जमा करके उनका दाम निकाल।
5: पहाड़ों की रानी शिमला अपनी खूबसूरत वादियों, घने जंगलों और मनमोहक मौसम के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब इस खूबसूरती के बीच पर्यटक गंदगी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में शिमला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अब स्थानीय लोग खुद मैदान में उतर आए हैं। आज की हमारी अगली जो गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। तो हमारी छठी गुड न्यूज है, शिमला में स्थानीय लोग चला रहे ऑपरेशन क्लीन। शहर और आसपास के इलाकों में फैली गंदगी और कूड़े कचरे के खिलाफ लोगों ने साफ सफाई को लेकर अभियान शुरू किया। शिमला में ऑपरेशन क्लीन मुहिम के तहत स्थानीय निवासी, युवा और सामाजिक संगठन मिलकर पर्यटन स्थलों, जंगलों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर रहे हैं।

0: शिमला, जहां हर रोज हजारों सैलानी खूबसूरत वादियों और सुहाने मौसम का आनंद लेने पहुंचते हैं, लेकिन पहाड़ों की रानी कहलाने वाला यह खूबसूरत शहर इन दिनों कूड़े कचरे की बढ़ती समस्या से जूझ रहा है। पर्यटन स्थलों, सड़कों और जंगलों में फैली गंदगी न केवल शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित कर रही है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर चुनौती बनती जा रही है।
1: पर अगर आप तस्वीरों में ये दिखा पाएं, ये नेशनल हाईवे 5 है। नेशनल हाईवे 5 पे एक बड़ा नाला जो है वो दिखाई देता है। जितना भी कूड़ा कचरा जो अलग अलग दिशाओं में इधर उधर गिरा हुआ है, वो जब बारिश होती है, भारी बारिश के साथ साथ वो इन नालों के जरिए जो है वो निचले इलाकों में जाता है। और ये आप तस्वीर यहाँ से देखिए कि इन नालों के जरिए यहाँ पर जो है नाले में कूड़ा जो है वो यहाँ पर ब्लॉक होता है।
0: बढ़ते कूड़े के ढेर को देखते हुए अब स्थानीय लोग खुद कदम उठा रहे हैं और शहर शहर ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके जरिए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, ताकि शिमला की पहचान और खूबसूरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे।
2: अभी पानी वाले सोर्सेज हैं वो सारे खराब हो रहे हैं, मतलब आजकल बरसातें आएंगी, बरसातों में सारे नाले चौक हो जाते हैं। चौक होने की वजह यही है कि कूड़ा ही लोगों के घरों का कूड़ा या टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं वो हर कहीं खा रहे पी रहे अपने रैपर हर कहीं फेंक रहे हैं। कोई भी प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि डस्टबिन ही नहीं है। या तो डस्टबिन हो तो बंदा उसमें डाल दे कूड़ा, पर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि कोई नहीं देख रहा सड़क में छोड़ दो अपना कूड़ा, तो वो सबसे बड़ी समस्या है।
0: दरअसल ऑपरेशन क्लीन के जरिए पर्यटकों के लिए एक संदेश जारी किया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा भागीदारी से ही संभव है। और अगर पर्यटक भी कूड़े के निपटारे को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझे, प्लास्टिक और अन्य कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डाले, तो खूबसूरत पर्यटन नगरी को स्वच्छ और सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: इस तरह का टूरिस्ट का फैलाया हुआ कूड़ा है, ये आज की डेट में हमारे लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि अभी कमिंग मानसून है, हमारे नाले इसके कारण चौक हो रहे हैं। और जैसा बड़ा डिजास्टर हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 34 में आया था, वो मुझे लगता है कि शायद इसी कारण आया था, क्योंकि हमारे मैक्सिमम नाले चौक हो गए थे। उसमें जो कूड़ा है वो मैक्सिमम वो है जो टूरिस्ट व्हीकल से निकल के आ रहा है, क्योंकि डोर टू डोर और गार्बेज कलेक्टर्स और झाड़ू देने वाले वो रेगुलर हमारे वार्ड्स में आते हैं।
0: इसके अलावा पहाड़ों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण को बचाने के लिए नगर निगम शिमला ने नो गार्बेज जोन बनाए हैं और वहां सीसीटीवी लगाए गए हैं, ताकि कूड़ा फैलाने वालों पर सख्त नजर रखी जा सके।
4: भी हमारे शिमला में हॉटस्पॉट्स हैं, जहां जहां पहाड़ियों में लोग कूड़ा कचरा डालते हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकते हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, वहां हम कैमरे भी लगा रहे हैं, ताकि लोगों को, उस आदमी को पकड़ा जा सके और उसको हम पब्लिक डोमेन में भी मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि सफाई एक ऐसा इशू है कि सबकी जिम्मेवारी है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको इसमें कॉपरेट भी करना चाहिए।
0: शिमला में कूड़ा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने समेत कई कड़े नियम भी लागू किए गए हैं, क्योंकि सख्त नियमों के जरिए ही पहाड़ों की रानी शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सकता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ वीरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: फलों का राजा आम और आमों का राजा कहलाने वाला गुजरात का मशहूर केसर आम इस बार अपने साथ रिकॉर्ड तोड़ खुशियां ये लेकर आया है। गुजरात के गीर और तलाला क्षेत्र में इस साल केसर आम का सीजन ऐतिहासिक रहा। करीब 2 महीने तक चले सीजन में केसर आम ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, गुजरात में केसर आम की रिकॉर्ड पैदावार। गुजरात में केसर आम ने पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के गीर और तलाला क्षेत्र में करीब 61 दिनों तक

0: ज़्यादा 10 किलो के बॉक्स की आवक हुई है और केसर केरी की सीजन एकंदर किसानों के लिए केरी खानारों के लिए और केरी उत्पादकों के लिए भी बहुत फलदायी निवड़ी है और केसर केरी पिछले 10 साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन भी हुआ है। वैसे उत्पादन बुवाई की सापेक्ष में कम है पर अन्य जिला है जैसे अमरेली है, जूनागढ़ है तो और ऊना तालुका है, पोरबंदर जिला है, उनकी भी केरी ज़्यादातर केसर यहाँ बिकने के लिए आती है। यहाँ जो केसर केरी का मथक है वो जग विख्यात है और केसर केरी के जो खाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर तलाला ही पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ हमें केंद्र सरकार की ओर से केसर केरी को GI टैग मिला है जो स्वाद की दृष्टि से भी उत्तम है।
1: इसी के साथ 7 बजे साथ गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या आपका बच्चा बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: 50 states, 1 national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
2: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair, July 4th.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अमुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता कीर भवानी मेले का शुभारंभ, LG मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किए दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-on-1 बात कर चीता, मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या 32। गिर नेशनल पार्क में शुरू होने जा रहा है एशियाई शेरों का वेकेशन, कल से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी गिर सफारी, आखिरी दिन बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। डेनमार्क में आसमान में उमड़ी 25,000 रंग बिरंगी पतंगे, करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने लिया हिस्सा, 26 देशों से आए पतंगबाज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में आप सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की तरह रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन स्क्रीन पर सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर किसी घटना, तस्वीर या वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से दूर तक ताल्लुकात नहीं रखती। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, यहाँ वायरल दावों की सटीक से जांच होती है, अफवाहों की पड़ताल की जाती है और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल में हुए बुलडोजर एक्शन के बाद का है। क्या है वायरल दावे का सच, आगे आपको बताएंगे। देखिए, हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बीच समंदर में ईरान ने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कतार में कई सारी टूटी हुई दुकानों को साफ तौर पर देखा जा सकता है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है पश्चिम बंगाल में हुए बुलडोजर एक्शन के बाद का है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद टीएमसी अब बिखरती नजर आ रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी की नेतृत्व वाली सरकार में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें किसी सड़क किनारे कई सारी टूटी हुई दुकानें नजर आ रही हैं। ये वीडियो सड़क से गुजरते हुए रिकॉर्ड किया गया है। ये नज़ारा बुलडोजर कार्रवाई के बाद का लगता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल का बताकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के 15 सालों के कार्यकाल में जितने भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण थे, शुभेंदु सरकार आते ही स्वाहा हो रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल अवैध अतिक्रमण मुक्त सुगम यातायात बनाने की दिशा में चल पड़ा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। किसी सड़क किनारे कई सारी टूटी हुई दुकानें नजर आ रही हैं और ये वीडियो जो है सड़क से गुजरते हुए रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में हुए अवैध अतिक्रमण को शुभेंदु अधिकारी सरकार जो है हटा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और इस दौरान हमारा ध्यान गया सड़क से गुजरती बाइक और स्कूटी के नंबर प्लेट पर। और जब हमने इसे गौर से देखा तो ये बांग्ला में लिखा हुआ था, जबकि पश्चिम बंगाल में वाहनों की नंबर प्लेट का जो प्रारूप है वो WB से शुरू होता है, जो राज्य को दर्शाता है, और इसके बाद से दो अंक जिले यानी RTO को दर्शाते हैं। जैसे कि कोलकाता के लिए अगर हम देखें तो WB01, इसके बाद एक रैंडम नंबर और सीरीज शुरू हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला, मतलब साफ था वीडियो बांग्लादेश का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा तो जाहिर तौर पर पहला सवाल यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल हो रहा यह वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और जगह के अतिक्रमण को हटाए जाने के कारण वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की। दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान इसमें एक बिल्डिंग के पास एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा है CCCC चिटागोंग। इसके बारे में सर्च करने पर पता चला कि ये कैडेट कॉलेज क्लब की बिल्डिंग है जो कि बांग्लादेश के चट्टोग्राम में स्थित है। हमें ये जगह गूगल मैप्स पर भी मिल गई। ये जगह शेख मुजीब रोड के पास है। जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ये बांग्लादेश के कई लोकल न्यूज आउटलेट्स पर इस जगह हुई बुलडोजर कार्रवाई के वीडियो मिले। 12 मई के एक फेसबुक पोस्ट के मुताबिक CDA यानी चट्टोग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शेख मुजीब रोड के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। इस वीडियो में कैडेट कॉलेज क्लब की वो बिल्डिंग भी नजर आती है जो वायरल वीडियो में देखी जा सकती है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का रैंप बनाने के लिए इन दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करके इन्हें हटाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये दुकानें सालों से सरकारी जमीन पर लीज पर चल रही थी। कई दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही इसके बदले कोई मुआवजा दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रही इस वीडियो का पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो बांग्लादेश का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में ईरान सेना ने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट, देखिए।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। वीडियो में समुद्र के बीचों बीच एक शिप पर मौजूद कई सैनिक उनके पास आते हुए एक हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार से हमला करते नजर आते हैं। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ईरान ने महज $150 की कीमत वाले हथियार से अमेरिका के $1 अरब के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये जबरदस्त सिनेमा है, ब्रेकिंग न्यूज। ईरान ने $1 अरब की अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए $150 कीमत वाले हथियार का इस्तेमाल किया। पहली बार अमेरिका का सामना अपने असली दुश्मन से हुआ था। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में कुछ सैनिकों को एक हेलीकॉप्टर पर हमला करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसे शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये ईरान सैनिकों का वीडियो है जिन्होंने अमेरिका की ओर से किए गए हमले को नाकाम करते हुए एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये इसी हालिया बयान को बयां करते हुए धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए पड़ताल की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने अपनी तहकीकात शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां नजर आईं जिससे दावे की असलियत पर हमको शक हुआ। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो वीडियो में जो सैनिक कंधे पर हथियार रखकर हेलीकॉप्टर पर निशाना लगा रहा है, ध्यान से देखने पर उसके बाजू पर अमेरिकी सेना का आधिकारिक लोगो साफ नजर आता है। इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में सुनाई दे रही आवाजें पूरी तरीके से बनावटी नजर आती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि देखिए, अगर दावा सच है तो इस वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट, देखिए।
0: दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें किसी भी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला। हालांकि इस दौरान हमें कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिसमें बताया गया था कि ईरान ने अमेरिकी सेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ। उदाहरण के लिए वीडियो में हर सैनिक का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता है और ऐसा लगता है मानो वो एक दूसरे के क्लोन्स हैं। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने वायरल वीडियो को 99.9% संभावना के साथ AI जेनरेटेड बताया। इसके अलावा हमने वायरल वीडियो को एक दूसरे AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म डीप फेको मीटर पर भी जांचा। इस टूल के 3 डिटेक्टर्स ने उच्च संभावना के साथ वीडियो को AI जेनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो वास्तविक घटना का नहीं है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: 50 स्टेट्स, 1 नेशनल मॉल, 2 वीक्स ऑफ फ्रीडम। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
4: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और इसी के साथ वक्त चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, यानी अब कुछ ऐसे वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
8: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं। ये वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का है लेकिन इसमें छिपा संदेश लाखों लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक बच्चा महात्मा गांधी के वेश में सड़क किनारे खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके पूरे शरीर पर सिल्वर रंग लगा हुआ है, आंखों पर गोल चश्मा है और हाथ में एक डंडा भी है। वो बिल्कुल गांधी जी की तरह स्थिर खड़ा नजर आ रहा है। तभी नन्हे बच्चे के पास एक छोटी बच्ची आती है और कुछ ऐसा करती है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बच्ची अपने हाथ में खाने की चीज लेकर उस बच्चे के पास पहुंचती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। मासूम बच्ची को शायद ये नहीं पता था कि सामने खड़ा बच्चा सिर्फ गांधी जी का किरदार निभा रहा है। उसने उसमें कोई कलाकार नहीं बल्कि एक इंसान देखा जिसे शायद भूख लगी होगी। बच्ची उसके पास जाती है और कुछ खिलाने लगती है। ये छोटा सा पल लोगों के दिलों को छू रहा है। यहाँ ज्यादातर लोग कंटेंट बनाने और तस्वीरें खींचने में लगे थे, वहीं बच्ची ने दया और इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
10: इतने अच्छे लगते हो अब, इतने सुंदर लगते हो, उनको पूछो मत, मतलब उसके बारे में वो पूछो ही मत कुछ।
11: कितनी सुंदर लगती
10: है ऐसे वाले सुंदर लगते।
11: अच्छा,
8: माँ के निस्वार्थ प्यार को इन दिनों वायरल हो रहे वीडियो में एक बच्चे ने जितनी बखूबी समझा उसने हर किसी का दिल छू लिया। तभी तो उसने बताया कि डांट खाने के बाद भी वो रोते हुए सबसे पहले अपनी माँ की ही गोद ढूंढता है। इस नन्हे बच्चे ने अपनी माँ से इतनी सादगी और मासूमियत से बात की कि देखने वाले का दिल पिघल गया।
11: आपको गुस्सा करते हो तो भी आप मम्मी मम्मी करते हो, ऐसे क्यों?
10: मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी को बुलाना पड़ता है। मम्मी मैं तो खाना कोई नहीं बनाता।
8: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। बेंगलुरु की एक सड़क किनारे बैठा एक बुजुर्ग कलाकार नारियल के बेकार समझे जाने वाले खोल से ऐसी अनोखी कलाकृतियां बना रहा है कि देखने वाले दंग रह जा रहे हैं। उसके हाथों की जादूगरी से पलक झपकते ही नारियल का खोल कभी मुस्कुराता बंदर बन जाता है तो कभी दौड़ता हुआ खरगोश और भारी भरकम हाथी में भी बदल जाता है। बिना किसी महंगे उपकरण और स्टूडियो के, सिर्फ साधारण औजारों और अद्भुत हुनर से ये शख्स लोगों का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग उस छोटी बच्ची की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक मासूम बच्ची इंसानियत और दयालुता की शानदार मिसाल पेश करती दिखाई देती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाय हैंडपंप के पास खड़ी है और उसे प्यास लगी है। बच्ची ये बात समझ जाती है और तुरंत उसकी मदद करने लगती है। वो लगातार हैंडपंप का हैंडल चलाती है ताकि पानी निकलता रहे और गाय आराम से अपनी प्यास बुझा सके। वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि बच्ची पूरी लगन के साथ हैंडपंप चलाती रहती है जबकि गाय उसके सामने खड़ी होकर पानी पीती रहती है। गाय ने अपना मुंह हैंडपंप के मुंह के बिल्कुल पास रखा हुआ है और जैसे ही पानी निकलता है वो उसे पी लेती है। बच्ची और गाय के बीच का ये प्यारा दृश्य लोगों को काफी भावुक कर रहा है। पुलिस वाले की आवाज में जो दर्द और ठहराव है
0: उसे सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स को महान गायक नुसरत फतेह अली खान साहब की याद आ गई। लोगों का कहना है कि बिना किसी तामझाम और म्यूजिक सिस्टम के ऐसी ताल छेड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती।

इस वीडियो को देखने के बाद लोग खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पा रहे। आम पब्लिक से लेकर बड़ी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स भी इस जवान के टैलेंट के मुरीद हो गए हैं।

जब कोई विदेशी कलाकार भारतीय गानों को अपने अंदाज में ढालता है तो दिल खुश होना लाजमी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला बॉलीवुड के सुपरहिट गानों को इंग्लिश में गाती नजर आ रही है।

ये वायरल वीडियो लॉस एंजलिस की रहने वाली लिंडसे जेड का है। लिंडसे पेशे से एक सिंगर और सॉन्ग राइटर है जो लाइव शोज भी करती हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या आपका बच्चा बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
7: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दे, ना ना करते मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बरसने वाले हैं मानसून के बादल। खीर भवानी माता के दर पर भक्त पवित्र कुंड में दूध खीर अर्पित करने से उनको मिल रहा पुण्य। वहीं गोबर जूट की जादुई कुटीर 10 मिनट के एकांत से तनाव होगा छू मंतर। तो तमाम खबरें होंगी, लेकिन पहले हेडलाइंस।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ। 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांदरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ। मेजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किए दर्शन पूजन। कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कुनो नेशनल पार्क का दीदार। 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा। भारत में जन्मे चीतों की संख्या 32 हुई। गिर नेशनल पार्क में शुरू होने जा रहा एशियाई शेरों का वेकेशन। कल से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी गिर सफारी। आखिरी दिन बड़ी संख्या में जुटे सैलानी। डेनमार्क में आसमान में उमड़ी 25,000 रंग बिरंगी पतंगे। करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने लिया हिस्सा। 26 देशों से आए पतंगबाज़।

अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मानसून की। बीते कई दिनों से सुस्त पड़ा दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 जून को महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात बिल्कुल मुफीद हैं। साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि 48 घंटे के भीतर मानसून मुंबई में एंट्री कर सकता है। हालांकि मानसून के पहुंचने से पहले ही मुंबई और आसपास के इलाकों में आज जोरदार बारिश देखने को मिली है।

0: सोमवार की सुबह जब मुंबई वाले सोकर उठे तो सुहाने मौसम ने उनका वेलकम किया। आसमान में काले घने बादलों का डेरा, ठंडी हवा और झमाझम बारिश ने न सिर्फ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई बल्कि बारिश को लेकर उनके इंतजार को भी खत्म किया। हालांकि मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई इस बारिश को प्री मॉनसून बारिश कहा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर खुशखबरी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून मुंबई में दस्तक दे सकता है और एक से दो दिन जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है।
1: तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आज जो बारिश की कंटिन्यूटी करीब दो दिन से थोड़ा मिल रही थी और पास्ट 24 आवर्स में अच्छी बारिश मिली है, जो हमारे कोंकण एंड गोवा के एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं, या मध्य महाराष्ट्र के भी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ भी अच्छी बारिश मिली है। तो उस चीज़ को देखते हुए आज जो है, जो आप कह रहे थे 8 तारीख से करीब जो एक तरह से रुका हुआ था मानसून का फ्लो जो है, तो वो अब आगे बढ़ा है और आज जो है अलीबाग से होते हुए जो पूना होते हुए तो जो नॉर्दर्न लिमिट है मानसून की वो दी गई है। आगे 48 आवर्स में भी जो मुंबई की जान जब बात आती है तो मुंबई में बारिश मिलनी तो शुरू हो गई है और ठीक ठाक बारिश मिली भी है, लेकिन मानसून के लिए बोला कि अगले 48 घंटे में जो है यहाँ पर भी जो है वो पहुंच जाएगा।
2: आखिरकार रविवार सवेरे और फिर अब सोमवार सवेरे भी थोड़ी बहुत बरसात हुई है, जिसकी वजह से मुंबई और आसपास के इलाके जो हैं वहां पर उनका मौसम थोड़ा सा जो गर्माहट थी वो थोड़ी सी कम हुई है। और इसी वजह से देख लीजिए मरीन ड्राइव पे भी काफी लोग दिख रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें जिस तरीके से हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में, लोग एकदम गायब थे, दिखते ही नहीं थे, बहुत कड़क धूप थी, लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब जाके थोड़ी बहुत लोग दिख रहे हैं क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम हुई है। बादलों का जो आप देख लीजिए, बादल बहुत सारे दिख रहे हैं।
0: आमतौर पर मुंबई में मानसून 10 और 11 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पहले 3 दिन की देरी से मानसून केरलम पहुंचा और फिर कुछ दिन बाद उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई, जिसके चलते इस बार मानसून की बारिश के लिए मुंबई वालों का इंतजार बढ़ गया। हालांकि एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात बिल्कुल मुफीद हैं।
1: मौसम बिल्कुल बेहतर होगा। आप देखेंगे 23-24 में जो मुंबई के लिए अगर बात करूं खासकर मैं, तो वाइड स्प्रेड टाइप की रेन मिलनी चाहिए और साथ में हैवी रेन्स की भी जो है बिल्कुल संभावना है कि 23 और 24 में वो मिलेंगी, और जो क्लाउड कवरेज वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो आप एक देखेंगे कि जो सनशाइन आवर्स वो काफ़ी कम हो जाएंगे और जो पीछे से जो मानसून का सर्ज है उस तरह जो चीज़ें दिख रही हैं तो वो भी दिख रहा है कि आगे जो कंटिन्यूटी भी रहेगी, तो बिल्कुल लोगों को राहत मिलेगी और जो मानसून है वो भी आगे बढ़ेगा और मुंबई में खासकर मैं कहूँ कि 2-3 दिन अच्छी बारिश जो मिलनी चाहिए।
0: बात अगर उत्तर पश्चिम भारत की करें तो यहाँ के राज्यों में भी उमस भरी गर्मी से बेहाल लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है, जैसे कि आज भी जम्मू कश्मीर और यूपी के कुछ शहरों में प्री मानसून बारिश लोगों के लिए राहत बनकर आई। मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आगे बढ़ते मानसून के असर से देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने वाला है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, जहां अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक की संभावनाएं जताई गई हैं। यानी गर्मी और लू से बेहाल उत्तर भारत के लोगों के लिए मौसम मेहरबान होने वाला है।
3: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो है वहाँ के कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश जो है वो जारी रह सकती है और उसके साथ ही ओला वृष्टि भी जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही अगर दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की अगर हम बात करें तो आने वाले 4 दिन तक जो है लगातार बारिश की संभावना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल सकती है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की हो तो आज से लेके अगले 4 दिन तक जो है बारिश की संभावना है। हालांकि अभी धूप है लेकिन मौसम बदलता हुआ जो है वो नजर आएगा।
0: मौसम में बदलाव की जो स्थितियां अभी बन रही हैं, उसे देखकर ये संभावना जताई जा रही है कि इससे दक्षिण पश्चिम मानसून के यूपी की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मुंबई से विद्या और धर्मेंद्र दुबे के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: और अगली अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के गांधरबल से है, जहां पर तुलमुला गांव में मौजूद माता रागन्या देवी मंदिर में ऐतिहासिक खीर भवानी मेला शुरू हो चुका है। ऐसे में इस मेले में शामिल होने और देवी रागन्या का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित देश भर से वहां पहुंचे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए ये घाटी का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। वहीं इस खास मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती माता खीर भवानी के दर पर पहुंची और आशीर्वाद लिया।

0: आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु माँ के आशीर्वाद के लिए दूर दूर से दौड़े चले आए। क्या आम और क्या खास, हर कोई माता रागन्या देवी के इस पवित्र धाम में शीश झुकाने पहुँचा। मेले के शुभारंभ पर सबसे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव के साथ माता रागन्या देवी की पूजा अर्चना की। इसके बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी माता रागन्या देवी का आशीर्वाद पाने के लिए इस देवी धाम में पहुंची। खूबसूरत वादियों और चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच मौजूद ये देवी धाम कश्मीरी पंडितों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। कश्मीरी पंडितों में ज्यादातर लोग उन्हें अपनी रक्षक देवी या कुल देवी भी मानते हैं, इसलिए हर साल लगने वाले इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पहुँचते हैं। इस साल भी बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित पूजा अर्चना के लिए खीर भवानी मेले में पहुंचे हैं, जिनमें कुछ देवी के दर्शन कर खुशी से झूमने लगे, जबकि कोई माँ के दर पर आकर भावुक हो गया। दरअसल 90 के दशक में आतंकवाद की वजह से विस्थापन के लिए मजबूर हुए कश्मीरी पंडित आज जब खीर भवानी मेले में पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
1: तकरीबन 9 से 10 हजार लोग जो यहाँ आए हैं इस साल, और पिछले साल से कई ज्यादा जो है संख्या में यहाँ कश्मीरी पंडित आए हैं, और न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आके जो है आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं, और जो एक डेट रहती है उनकी इस मंदिर के साथ और माता जो खीर भवानी है उनके साथ वो पूरी करते हैं। तो जहाँ धार्मिक अगर आप एक जो है एंगल देखें तो बहुत जरूरी दिन है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए एक अपने रूट्स के साथ दोबारा जुड़ने का, अपने कल्चर के साथ जो घर छोड़ के वो यहाँ से गए थे वो यादें जो है ताजा करने के लिए भी ये आज का दिन बहुत जरूरी है।
2: कश्मीरी कम्युनिटी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, इस बरादरी के लिए बहुत ही अहम दिन है ये ज्येष्ठा माता इसका खीर भवानी माता का दिन है। आज यहाँ पे दूर दूर से आज लोग आए हुए हैं, दिल्ली जहाँ पे भारत में जहाँ भी हमारे पंडित बरादरी वो सब यहाँ पे आज आई हुई है।
3: कश्मीर से निकले थे, मैं बहुत छोटी थी तो मेरा तो लाइफ में पहली बार ये मेला अटेंड करना है, जबकि हमारे पेरेंट्स हर ज्येष्ठ अष्टमी पे आते थे, तो मेरे लिए तो बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है और आई एम क्वाइट इमोशनल।
4: कैसा लगा यहाँ आके कश्मीर?
3: बहुत अच्छा लगा, कश्मीर फील्स लाइक होम, कश्मीर दिल से कहीं निकलता ही नहीं है।
0: देवी के इस धाम में एक चमत्कारिक कुंड भी है, जिसको लेकर मान्यता है कि कुंड के पानी का रंग कश्मीर के भविष्य के बारे में बताता है। जहाँ हरा और गुलाबी रंग को शुभ माना गया है तो वहीं काले रंग को किसी मुसीबत का संकेत माना जाता है।
1: इस पानी के साथ भी कई सारी मान्यताएं जुड़ी हैं। ये जो माता रागन्या देवी का मंदिर है और जो पानी का जो रंग होता है उसके हिसाब से कश्मीरी पंडितों की मान्यता है, ये मानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है वो इस पानी के रंग से समझ जाते हैं, और ये सालों साल से होता आया है। आज हरा रंग है, लाइट कलर है, इसका मतलब कि आने वाला समय अच्छा होने वाला है, लेकिन जब ये रंग लाल या काला हो जाता है तो साफ संकेत है कि माता रागन्या देवी जो है वो क्रोधित है, और उसकी वजह से जो कोई जो है प्राकृतिक आपदा या फिर कोई मैन मेड डिजास्टर जो है होने वाला है, और वो इससे पहले भी इन्होंने देखा है। जब 1990 में इनको यहाँ से पलायन करना पड़ा, कई सारे मारे भी गए, तो उस वक्त इसका रंग जो है ये बताया जाता कि काला हो गया था।
0: धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में तेजी से हालात बदले हैं, जिसका असर इस खीर भवानी मेले में भी साल दर साल देखने को मिल रहा है। हर साल यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसके चलते यहां यात्री सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।
5: यहाँ पे तुलमुल्ला खीर भवानी मेला के लिए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से मेडिकल एड कैंप लगाया गया है। यहाँ पे हम सारी सर्विसेज दे रहे रिगार्डिंग ओपीडी, आईपीडी, कार्डियोलॉजी रिगार्डिंग सर्विसेज, डॉक्टर्स यहाँ सारे डॉक्टर अवेलेबल है, मेडिकल ऑफिसर्स, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज, पैरामेडिक स्टाफ सारा अवेलेबल है।
0: खास बात यह है कि इस मेले का जितना बेसब्री से इंतजार कश्मीरी पंडित करते हैं, उतना ही बेसब्री से इंतजार घाटी के मुस्लिम भी करते हैं। इसलिए ये मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडित समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और आपसी भाईचारे का अनूठा संगम भी है। गांदरबल से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चलिए अब बात करते हैं ऐसी कुटीर की जिसको बनाने वाले आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव के बीच बड़ा सुकून देने का दावा कर रहे हैं। पुणे की एक संस्था ने इमोशन एब्जॉर्बर ध्यान कुटर नाम का ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें 10 मिनट की साधना मात्र से सभी तरह के तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसको बनाने वाली संस्था की तरफ से गोबर जूट की इस जादुई कुटर में 10 मिनट के एकांत से तनाव छूमंतर होने का दावा किया जा रहा है। ध्वनि तरंगों के इस्तेमाल से मन मस्तिष्क में छिपे तनाव से राहत की गारंटी का भी दावा किया जा रहा है।

0: आम मच्छरदानी जैसी बनावट वाला ये स्ट्रक्चर इंसानों से तनाव को दूर रखने का भरोसा देता है। नाम है इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटी। दौड़ती भागती जिंदगी में तनाव और चिंता को दूर रखना हर इंसान के लिए एक बड़ी चुनौती है। पता नहीं चलता कि कब दिमाग तनाव और डिप्रेशन यानी अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं का बोझ उठाने लगता है। दावा है कि इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान नाम के इस कुटीर में बिताया गया 10 मिनट का वक्त मन और मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर देता है। इस ध्यान कुटीर को सिर्फ जूट और गाय के गोबर से तैयार किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इसमें प्राकृतिक पौधों और फूलों के अर्क यानी आवश्यक तेल का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि मन शांत हो और मानसिक तनाव से राहत मिले, जिससे इंसानी शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़े।
1: इसको हमने नाम दिया है इमोशनल एब्जॉर्बेंट ध्यान कुटीर। सो इमोशनल एब्जॉर्बेंट इसके लिए है क्योंकि ये बना है जूट से। जूट जो है वो पुराने ज़माने से हमारे वस्त्रों में वगैरह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ऐसा पाया गया है कि जूट इमोशंस एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो और उसके साथ हम लोग ने गोबर का वो जो इस्तेमाल किया है, तो इसमें हम लोग ने काउ कॉन्शियसनेस को ऐड करने का कोशिश किया है क्योंकि गोबर की अपनी एक, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं तो गाय का प्रेजेंस ऑलरेडी एक कामनेस देता है क्योंकि उसमें मातृत्व भाव है। तो इसके लिए गोबर का इंटीग्रेशन है। उसके साथ मैट भी जो हम लोग ने यूज़ किए हैं वो भी गोबर से ही बने हुए मैट्स हैं। और उसके साथ हम लोग ने इंटीग्रेशन किया है अरोमा थेरेपी। अरोमा मतलब सुगंध, तो वो जूट की सुगंध है, उसके साथ साथ गोबर की सुगंध है जो अपने दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करने में काम हेल्पफुल करती है।
0: ध्यान कुटीर के अंदर 10 मिनट तक बैठने के दौरान व्यक्ति को प्राकृतिक ध्वनियां सुनाई जाती हैं, जिनमें समुद्र की लहरों की आवाज, पानी की बौछारों की ध्वनि, घंटियों और दूसरे धातुओं से उत्पन्न होने वाला कंपन भी शामिल है। मेडिटेशन के अलावा अरोमा थेरेपी और ध्वनि चिकित्सा को मिलाकर इंसानी दिमाग के लिए तैयार की गई ये व्यवस्था नाद सिद्धांत से प्रेरित है। नाद सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड कंपनों और ध्वनियों से बना है और इसे नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। आईआईटी मंडी में इस प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया जा रहा है। अगले 1-2 महीने में इसके बाजार में उतरने की भी संभावना है।
1: पूरा साउंड का सेटअप है, तो साउंड थेरेपी के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिर हम लोग उसके हिसाब से हर एक इंसान को स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, पेन फ्री लाइफ के लिए हेल्प कर रहे हैं। दिस इज सनातन, दिस इज फिलोसॉफी, इट इज़ कॉल्ड एज नाद ब्रह्म। कि जो हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ों की उत्पत्ति जो है वो नाद से है, तो हम लोग नाद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ नाद को डिफरेंट फॉर्म में हम लोग ला रहे हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ ला रहे हैं। कुटीर का मॉडल है, ये प्रोटोटाइप अभी है। अभी जो पूरा एक्चुअल मॉडल विद जूट के साथ बनने के लिए गया हुआ है, 1-2 महीने में वो प्रोडक्ट अपने ऑल काम जनता के लिए आ जाएगा। तो वी आर डेवलपिंग मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी आल्सो, तो अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करेंगे।
0: साफ है कि ये तकनीक मेंटल हेल्थ के लिए एक नए बूस्ट की तरह साबित होगी। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव की वजह से थके दिमाग की बत्ती फिर से जल उठेगी। मंडी से धर्मवीर के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बढ़ते हैं आगे। पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान छू लिया है। जी हां, अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा की है और इसकी शुरुआत होगी 2027 के 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम से लॉस एंजल्स में पब्लिक हॉलीडे रखा गया है। लॉस एंजल्स द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया यह सबसे बड़ा सम्मान है।
3: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सुरमा की तोती बोलती है। उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। सात समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है, उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
4: In the city of LA, we're declaring a day after you. So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
5: My day?
4: Your own day in the city of Los Angeles.
5: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
3: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
5: थैंक यू सो मच। माय डे इन एलए हुण होया तैनु गड्डी च बिठा के ले जावानी मैं एलए नु।
3: अब लॉस एंजल्स में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजल्स ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजल्स ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजल्स के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजल्स और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपने ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
6: जिन्ना मर्जी सानू रोक लो, जिन्नी मर्जी साड़ियां लता खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे खिट्टियां नू चिमड़ी चलो, पंजाबी आरे।
3: लॉस एंजल्स में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थीं। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजल्स में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय ऑरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और आपको बता दें कि साउथ सुपरस्टार यश के फैंस को फाइनली गुड न्यूज मिल गई है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है। यश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट दो बार टल चुकी थी, लेकिन अब लंबे वीकेंड के साथ अगस्त महीने में

0: टॉक्सिक की रिलीज डेट को लेकर सस्पेंस की बात इसलिए की जा रही थी कि अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट दो बार टल चुकी है। पहले ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट की वजह से फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। बाद में रिलीज डेट 4 जून तय की गई, लेकिन तब भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, जिसके बाद इसकी रिलीज डेट पर सस्पेंस गहराने लगा। लेकिन अब मेकर्स ने टॉक्सिक की रिलीज डेट 26 अगस्त फाइनल कर दी है। 26 अगस्त को बुधवार है, यानी हफ्ते के बीच का दिन, जबकि ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। दरअसल मेकर्स ने इस तारीख का ऐलान काफी सोच समझ कर किया है। छब्बीस अगस्त को ओणम का त्योहार है, 28 अगस्त को वर महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाएगा और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का भी त्योहार है। मतलब बुधवार से लेकर रविवार तक छुट्टियां ही छुट्टियां। टॉक्सिक को एक लंबा वीकेंड मिल रहा है, जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे सकता है। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है, जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। इस एक्शन थ्रिलर में यश राया और रूमी के दमदार और इंटेंस अवतार में दिखाई देंगे। फिल्म में यश के साथ 5 हीरोइन है, नयनतारा, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी, यानी बॉलीवुड और साउथ का पूरा संगम है। करीब 500 करोड़ के मेगा बजट में बनी टॉक्सिक को पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल अपील है। टॉक्सिक की शूटिंग एक साथ 2 मूल भाषाओं, कन्नड़ और अंग्रेजी में की गई है। साथ ही इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: वेलकम बैक टू yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
4: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
3: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
5: No.
6: Oh, no.
7: Welcome to Get Real.
5: I got something to say.
7: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
6: Oh, my God.
8: It's got to be deliciously desperate.
9: Why do these girls forgive him? Well,
10: she has a soft spot for troubled men.
8: Boo bloody hoo.
7: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
6: Love runs deeper than we know.
7: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
11: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
13: तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

0: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर छोटे बच्चे बहुत बीमार होते हैं, उनकी सेहत में दिक्कतें होती हैं जिसको लेकर माता पिता परेशान रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के हिसाब से आप कौन से उपाय करें जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम के 4:39 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र प्रातः 11:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। कोई भी छोटा बच्चा है, उसके ऊपर किन ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा निभाता है। उम्र के लगभग 12 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव होता है और इसमें भी पहले 8 साल तक चंद्रमा विशेष शक्तिशाली होता है, यानी जन्म से लेके 12 साल तक बच्चे का जीवन चंद्रमा से चलता है। इसके बाद बुध का प्रभाव धीरे धीरे आता जाता है, होता जाता है। किसी बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा पर विचार करना होगा, चंद्रमा को जानना होगा। इसके बाद कुछ अंशों में सूर्य पर भी ध्यान देना होगा। यानी अगर किसी बच्चे को स्वस्थ रखना है तो उसके चंद्रमा और उसके सूर्य पर ध्यान बनाए रखना होगा।
बच्चों के स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार में विवादों से बचाव करें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपका छोटा बच्चा है, उसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तो क्या उपाय करेंगे? डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा और डॉक्टर की दवाइयां मानिएगा। उसके अलावा बच्चे को सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक रोज जरूर रखिएगा, उगते हुए सूर्य की रोशनी में। एक बाल्टी पानी सूर्य की धूप में रख दीजिए और बाद में उस जल से बच्चे को स्नान करवाइए, यानी सूर्य की रोशनी वाले जल से स्नान कराएं। बच्चे को लाल रंग के वस्त्र ज्यादा धारण कराएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को पीलिया से छुटकारा पाना आसान होगा। अगर आपका छोटा बच्चा है और बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, तो क्या करेंगे? बच्चा जब नहाता है तो नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालिए। बच्चे को रोज सुबह और शाम नमक के पानी से स्नान करवाइए। बच्चे के गले में चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में धारण करवाइए। और अगर कोल्ड कफ की समस्या ज्यादा है तो बच्चे के लिए सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा। ऐसा निरंतर अगर आप करें तो आपके बच्चे को सर्दी जुकाम से, कोल्ड कफ से छुटकारा मिलेगा। बच्चे के स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक
राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपके छोटे बच्चे को डाइजेशन की, पेट की समस्या ज्यादा होती हो तो क्या करना चाहिए? बच्चे के गले में एक तांबे का सूर्य धारण करवाइएगा, लाल धागे में रविवार को सवेरे, और जब सूर्य उदित होते हैं उस समय बच्चे को कुछ समय धूप में जरूर रखिएगा। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सफेद और हल्के रंग के वस्त्र धारण करवाइएगा। अगर ये उपाय किए जाएं तो बच्चे का डाइजेशन बेहतर होगा, पेट की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपके छोटे बच्चे को बार बार चोट चपेट लगती हो, बार बार दुर्घटना का शिकार होता हो तो क्या करना चाहिए? मंगलवार को माता पिता में से कोई भी हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को जो सिंदूर लगाया हुआ है उसमें से थोड़ा सिंदूर मांग करके ले आए, और रोज जब बच्चा नहा ले तब यही सिंदूर उसके माथे पर या उसके कंठ पर लगाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपका बच्चा दुर्घटना का शिकार नहीं होगा, दुर्घटना से बच जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी,
परिवार में शांति बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आप चाहते हैं कि आपका छोटा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, शिक्षा में, प्रतियोगिता में उसे सफलता मिले, तो इसके लिए दो तीन आदतें अपने बच्चे को छोटी उम्र से डलवाने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात, बच्चे को छोटी उम्र से ही सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डलवाइए। शुरुआत में जब जल नहीं चढ़ा पाता है तो कम से कम सुबह तैयार होकर सूर्य भगवान को नमस्कार करे, और जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दे। दूसरी आदत, बच्चे को बचपन से गायत्री मंत्र बोलने की आदत सिखाइए, ताकि आपका बच्चा गायत्री मंत्र नियमित रूप से बोले या सुने। और तीसरी बात, आप बचपन से कोशिश करिए कि सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अपने बच्चे को साथ में लेकर मंदिर जाइएगा। अगर ये तीन चीजें बच्चे के बचपन से उसके जीवन में ले आएंगे तो बच्चे की सफलता की, उन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आज हमने आपसे बात की बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या के बारे में और उसके समाधान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। घर में सामान्यतः कांच के बर्तनों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कांच के बर्तनों का प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य की और रिश्तों की समस्या आपको परेशान करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
2: No.
3: Oh, no.
4: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh, my God.
2: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
5: Well, she has a soft spot for troubled men.
2: Boo bloody hoo.
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
3: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
6: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: और अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। इस यंग प्लेयर की तारीफ में जाहिर है कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने बीते रविवार को श्रीलंका ए के खिलाफ खेली गई ट्राई सीरीज के फाइनल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वैभव ने महज 29 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्के लगाकर 94 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।
12: तूफान रास्ता नहीं पूछते और आंधियां इजाजत लेकर नहीं चलती। आईपीएल के बाद वैभव सूर्यवंशी को एक नहीं हजारों नसीहतों का पुलिंदा थमाया गया। कहा गया जरा लगाम कसिए, वनडे क्रिकेट में कदम फूंक फूंक कर रखिए, लेकिन दांबुला के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया कि शेर को शिकार करना नहीं सिखाया जाता। महज 11 गेंदों में अर्धशतक, 29 गेंदों में 94 रन और श्रीलंका पर ऐसा धावा कि विरोधियों की सारी चालें धरी की धरी रह गईं। गेंदबाज बदलते रहे लेकिन नतीजा नहीं बदला। वैभव ने साबित कर दिया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत किसी की सलाह नहीं बल्कि उनके खेल का बेखौफ अंदाज है। श्रीलंका ए के खिलाफ खिताबी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 324 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 94 रन कूट डाले। यही पारी इंडिया ए की जीत की नींव नहीं बल्कि जीत की इमारत बन गई। अब अगला पड़ाव आयरलैंड और इंग्लैंड है और क्रिकेट के गलियारों में चर्चा है कि आयरलैंड में ही वैभव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दहलीज पार करने का मौका मिल सकता है। फाइनल में खेली वैभव की इस पारी की कीमत सिर्फ 94 रन नहीं है, ये उस सोच का जवाब है जो उनके बल्ले पर ब्रेक लगाना चाहती थी। पिछले कुछ समय से उन्हें समझाया जा रहा था कि वनडे क्रिकेट में वक्त के साथ चलना है, पारी को बुनना पड़ता है, जोखिम को तराजू में तोलना पड़ता है, लेकिन दांबुला में वैभव ने मानो दुनिया से कह दिया कि नदी की तरह बहना उसकी पहचान है। अगर बहाव रुक गया तो नदी नदी नहीं रहती। आईपीएल में जिस तूफानी बल्लेबाजी ने उन्हें रातों रात सुर्खियों का सितारा बनाया, वो चमक श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती मुकाबलों में कुछ फीकी नजर आई। रन तो बन रहे थे, लेकिन बल्ले में वो बिजली नहीं थी, वो धमाका नहीं था जिसने उन्हें क्रिकेट जगत की नई सनसनी बना दिया था। फिर वो मुकाबला आया जहां मैदान पर जुबानी जंग हुई, तनातनी हुई और मामला चर्चा का विषय बन गया। लेकिन क्रिकेट का एक पुराना उसूल है, बल्ला बोले तो बहसें खामोश हो जाती हैं। फाइनल में उतरते ही लगा मानो वैभव ने खुद से एक वादा कर लिया हो। अब ना कोई समझौता, ना कोई बनावटी बदलाव, अब वही खेल जिसने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा किया। और फिर शुरू हुई चौके छक्कों की ऐसी बरसात जिसमें श्रीलंकाई रणनीतियां तिनकों की तरह उड़ गईं। मैच में वैभव को सेंचुरी तो नहीं मिली, लेकिन महज 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने का कीर्तिमान जरूर उन्होंने बना दिया। बेशक तीर कमान से निकल चुका था, निशाना भेदा जा चुका था, दांबुला में खेला गया फाइनल सिर्फ वैभव की 94 रन की कहानी भर नहीं है, ये 15 साल के इस बल्लेबाज का ऐलान है जिसने दुनिया को बता दिया कि उन्हें किसी सांचे में ढालने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें फॉर्मेट के नजरिए से ना देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किए दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कुनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या 32 हुई। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा 11 साल के बच्चे की भी हो रही है जो एक मठ का महंत बन गया है।
14: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में रविवार की शाम आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। यहाँ आसमान में बने इस विशालकाय और अनोखे नजारे को देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। आसमान में घुमावदार धूल और बादलों की एक बड़े खंभे जैसी आकृति दिखाई दे रही थी, जो टोर्नेडो जैसी लग रही थी। हालांकि तेज हवा के झोंके ने कुछ जगहों पर नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये कोई डरावना टोर्नेडो नहीं था, बल्कि बादलों के सिस्टम से जुड़ा एक बहुत शक्तिशाली और अनोखा थंडरस्टॉर्म अपड्राफ्ट था। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सिर्फ 11 साल का एक मासूम बच्चा अब एक बड़े मठ का महंत बन गया है। बलिया के मझौवा मठ में रविवार की शाम अद्भुत नजारे की गवाह बनी, क्योंकि 11 साल के बालक शाश्वत शौर्य तिवारी का पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक किया गया। सोशल मीडिया और इलाके में इस नन्हे महंत की चर्चा हर तरफ है। दिलचस्प बात यह है कि जब तिलक और अभिषेक की रस्में चल रही थी, तो ये 11 साल का बच्चा वीडियो कॉलिंग पर अपने परिवार से बात करते हुए हंसता मुस्कुराता नजर आया। इस मौके पर मठ के तमाम भक्त तो मौजूद थे ही, आसपास के इलाकों के लोग भी इस अलौकिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। महंत बनने के बाद अब 11 साल के इस बच्चे को नया नाम मिला है, श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णोदास। अयोध्या में दूल्हा सरकार के दबाव को इस बार किसी आम फूलों और पत्तियों से नहीं, बल्कि फलों के राजा आम और उसकी पत्तियों से सजाया गया है। गर्मी के सीजन में मंदिर को पूरी तरह से मैंगो थीम पर डेकोरेट किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चारों तरफ लटकते हुए हरे और रसीले आम और उनके बीच विराजे प्रभु। आस्था और मौसम उत्सव के इस अनोखे संगम को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई दूल्हा सरकार के इस मनमोहक रूप के दर्शन करने और इस अद्भुत सजावट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। आम के पत्तों और तरह तरह की वैरायटी के आमों से सजे इस दरबार की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मैदानी इलाकों में बढ़ते पारे के साथ ही पहाड़ी इलाकों में रौनक देखने लायक है। वीकेंड पर तो सैलानियों की तादाद 2 से 3 गुना हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखने को मिला, जहां सैलानी बड़ी तादाद में उमड़े। पहाड़ियों की चोटियों पर हसीन मौसम तो सैलानियों को भी भा रहा है, लेकिन कुल्लू की ब्यास नदी के किनारे भी सैलानियों का मेला लगा हुआ है। अलग अलग इलाकों से आए सैलानी नदी की ठंडी धारा में रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले रहे हैं। नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानियों के लिए राफ्टिंग रोमांच से भरपूर है। गर्मी से राहत की तलाश में यहां पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी बोनस जैसा है। जून महीने में सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते ब्यास नदी में राफ्टिंग की संख्या बढ़ रही है, और सैलानियों के आने से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी इसका खूब फायदा मिल रहा है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ता तनाव और मानसिक दबाव लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल की है, इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटीर विकसित की है। आईआईटी मंडी में इस परियोजना का प्रोटोटाइप भी दिखाया जा चुका है। गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से इन कुटीरों को बनाया गया है। कुटीर में एक शख्स को लगभग 10 मिनटों का समय बिताना होता है। इस दौरान उसे अलग अलग प्राकृतिक ध्वनियां सुनाई जाती हैं, जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज, पानी की बौछारों की ध्वनि और घंटियों की आवाज शामिल है।
3: और अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भक्ति और आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के प्रथम जत्थे को झंडे दिखाकर रवाना किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं।

0: नाथुला में भारत चीन बॉर्डर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिक्किम के पर्यटन मंत्री शेरिंग थेंडुक भूटिया, भारतीय सेना आईटीबीपी और सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। सिक्किम के राज्यपाल ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, हर हर महादेव की गूंज पूरी फिजा में बिखर गई। नाथुला में श्रद्धालुओं के बीच भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता और उत्साह नजर आया। कई तीर्थयात्रियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने यात्रा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार हो रहा है। एक तीर्थयात्री ने कहा कि अब तक ये एक शानदार यात्रा रही है, प्रशासन ने हम सभी के लिए इसे बहुत आसान बना दिया है, अब भगवान शिव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है।
1: हम हमें दर्शन देंगे वहाँ जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, कैलाश पर्वत दर्शन होगी, इससे बढ़िया और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हम बहुत खुश हैं।
0: समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर रवाना हुए। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति, आस्था और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अनुपम अवसर भी है।
2: आज बाबा विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है, और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूं। और ये पिछले 5 सालों से जो बंद था, पिछले साल ही शुरू हुआ, और मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला है।
0: हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन कर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही है, क्योंकि सालों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार जो होने जा रहा है।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा से जो मेरा जो मानना है वो मैं क्या मांगूंगा, शायद कोई नहीं मांग रहा होगा, कि मैं चाहता हूं कि भगवान शिव जी भारत में आके हमको दर्शन दें।
0: सिक्किम के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते समय श्रद्धालुओं में बहुत जोश और उत्साह था और उम्मीद है कि उनकी धर्म यात्रा बाबा बर्फानी की कृपा और आशीर्वाद से सफल होगी।
4: जितना भी यहाँ लोग भक्तजन श्रद्धालु सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट बैच कम से कम सिक्किम में मोटा मोटी 5 दिन पहले वहाँ लोग का उन लोग का आक्रमण हुआ था, और इसीलिए उन लोग का एकदम डिफरेंट जगह पे हम लोग उन लोग को एक्लमाटाइजेशन के लिए एकदम रखा गया था। और इसके लिए जितना भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख के सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जितना भी ऑफिशियल्स है वो सब उन लोग को एकदम देखभाल, जो हॉस्पिटलिटी जो सिक्किम का देना था वो सब दे के एकदम इतना अच्छा खातिरदारी करके, जब अभी हम लोग उन लोग के साथ जितना भी भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे प्रेजेंट था, जो अभी आर्मी के जो अभी वो ऊपर जो मेन हॉल में हम लोग का थोड़ा इंट्रैक्शन हुआ था, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए हम लोग को ऐसा मतलब जानने में आए कि वो लोग एकदम खुश था, जो सिक्किम का जो हॉस्पिटैलिटी में जो हम लोग बहुत ही स्पेशल है बोल के उन लोग का मुंह से हम लोग को सुनने में आ रहा था, इसलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा हुआ,
5: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अलोंग विद आईटीबीपी, एसटीडीसी एंड दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल कुल 500 तीर्थयात्री नाथुला रास्ते से यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों को 50-50 लोगों के 10 समूहों में बांटा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से सिक्किम टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं तीर्थयात्रियों ने अलग अलग सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं की तारीफ की।
4: भगवान का कोई दर्शन करने के लिए आए हैं तब एकदम वो लोग एकदम खुश था, सही ये यात्रा सफल रहेंगे और ये 10 दिन की यात्रा रहेंगे और कम से कम ये 30 तारीख को वो लोग सब यहाँ पे बॉर्डर फिर वापस आएंगे। इसी तरह मतलब इस साल का भी जो 10 बैच है वो लोग एकदम टर्न वाइज करते आएंगे और लास्ट बैच रहूँगा ये अगस्त महीना में जो लास्ट बैच हम लोग हैंडल करेंगे। शायद ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब मतलब जो हो रहा है, जो यात्रा शुरू हो रहा है, ये काफ़ी साल से कम 5 साल से बंद था। लास्ट ईयर ही ये मतलब यात्रा शुरू हुआ है। ये यात्रा शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिक्किम टूरिज्म में वैल्यू एडिशन देने का एक मतलब काम हो रहा है।
6: बहुत अच्छा है, सिक्किम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सभी स्टाफ बहुत अच्छे, हम लोगों का देखभाल किया बहुत।
0: बता दें कि इस यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। ये ग्रुप देश के अलग अलग हिस्सों से आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से पहले सभी श्रद्धालुओं का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और सभी यात्री पूरी तरह स्वस्थ पाए गए।
7: जैसा कि पता है कि ITP कैलाश मानसरोवर यात्रा में शुरू से इन्वॉल्व है और दोनों तरफ से लिपु लेक और नाथुला की तरफ से हम यात्रा कराते हैं। हमारा काम यात्रियों को सिक्योरिटी प्रदान करना और साथ ही साथ मेडिकल कवर देना होता है। तो बाकी साल की तरह भी इस साल भी हम लोगों ने उसी ढंग का अरेंजमेंट किया है और फॉर्चुनेटली मेडिकल फाइनल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें सारे यात्री क्लियर हो गए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इनको सिक्योरिटी देना, मेडिकल कवर कराना और क्रॉस कराना हमारी जवाबदारी। इस बार भी यात्री करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से हैं, तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, नोएडा, पूरे इलाके के, पूरे हिंदुस्तान के यात्री हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 30 साल से लेकर 70 साल तक।
0: हालांकि ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई जरूर है, लिहाजा विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास ने यात्रियों को आगाह किया है कि तिब्बत का क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और सीमित सुविधाएं चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूरी तैयारी, चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक सावधानियों के साथ यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में अंतिम, सर्वोच्च और महातीर्थ माना गया है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदुओं, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर इंडोनेशिया में सुनाएंगे 3 दिनों तक हनुमंत कथा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में हनुमंत कथा की तैयारी कर रहे हैं। जकार्ता में वो 3 दिनों तक सनातन की अलख जलाएंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जकार्ता में 26 से 28 जून तक प्रभु का गुणगान करेंगे, जहां 3 दिनों तक भव्य हनुमंत कथा और दिव्य दरबार सजेगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडोनेशिया के कार्यक्रम की जानकारी शेयर की है। भारतीय उपभोक्ता अब सामानों से ज्यादा अनुभवों पर खर्च कर रहे हैं। CBRE की नई रिपोर्ट बता रही है कि 2030 तक अनुभवों पर होने वाला खर्च 10.3% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा, जो कि भौतिक वस्तुओं से आगे निकल जाएगा। इसमें होटल सेवाओं की ग्रोथ सबसे तेज यानी करीब 10.6% रहने का अनुमान है। CBRE की रिपोर्ट बता रही है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत जेंजी है। ये पीढ़ी तेजी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है और जैसे जैसे इनकी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके खर्च करने का तरीका भी बाजार की दिशा तय कर रहा है। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बदलने वाली है। इसके तहत अब सिर्फ लाइट लगाना ही नहीं बल्कि उसे चालू रखना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर किसी इलाके की स्ट्रीट लाइट खराब होती है और उसे समय पर ठीक नहीं किया जाता है तो ठेकेदार को भुगतान में कटौती झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। जितने घंटे लाइट खराब रहेगी उसी के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें स्मार्ट एलईडी लाइट्स को एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा जो रियल टाइम में पूरे नेटवर्क पर नजर रखेगा। इससे अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अंधेरे वाले हिस्सों की पहचान जल्दी हो सकेगी। असम के ग्लोबल कम्युनिटी से जोड़ने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। ईयू के सदस्य देशों असम के लिए ट्रैवल एडवाइजरी हटा लेने के बाद अब एयर इंडिया 4 अगस्त से गुवाहाटी से दुबई और अबुधाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन नॉन स्टॉप सेवाओं के साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट अब 4 देशों यूएई, थाईलैंड, सिंगापुर और भूटान से जुड़ गया है। सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद अगला लक्ष्य वियतनाम के लिए सीधी सेवाएं शुरू करना है। सीएम ने बताया कि गुवाहाटी को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक बड़े ट्रैवल और ट्रांजिट हब के तौर पर स्थापित करने की तैयारी हो रही है। सासनगीर और गिरनार जंगल में घूमने और एशियाई शेरों के दीदार करने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अहम खबर है। एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू हो रहा है। वन विभाग ने कल से सासनगीर और गिरनार जंगल सफारी को अगले 4 महीने के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए लायन सफारी भी बंद रहेगी।
8: अमूमन जब हम किसी सरकारी दफ्तर या फिर विभाग में जाते हैं तो अधिकारियों के कमरों के बाहर उनके नाम की नेम प्लेट लगी देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल या फिर वाटिका के बारे में सुना है जहां पेड़ों पर आईएएस अधिकारियों के नाम की नेम प्लेट लगी हो? जी हां, बिहार के गया जिले में एक ऐसी ही बेहद अनोखी और खूबसूरत वाटिका विकसित की गई है जहां राज्य के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के नाम पर पेड़ लहरा रहा है। देखिए इस अनोखी मंथन वाटिका की कहानी।

0: सचिव पर्यटन विभाग, सचिव उद्योग विभाग, जिला दंडाधिकारी और अलग अलग जिलों के डीएम। चौंकिए मत, आप किसी सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों की नेम प्लेट या अधिकारियों के कमरों के बाहर लगे बोर्ड नहीं देख रहे, बल्कि ये वो नेम प्लेट्स हैं जो बंजर पड़े मैदान को हरा भरा करने के लिए लगाए गए पेड़ों के साथ लगी हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार के गया में मौजूद एक बेहद अनोखी और अद्भुत मंथन वाटिका की, जहाँ पेड़ों की पहचान उनके वनस्पति नामों से तो होती है, लेकिन उनके साथ देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों यानी आईएएस अफसरों के नाम की पहचान भी लिखी है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी की तलहटी में विपाड यानी बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी अनूठी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस वाटिका में करीब 200 पौधे लगाए गए हैं और हर पौधे के साथ बिहार के किसी न किसी रसूखदार अधिकारी का नाम जुड़ा हुआ है।
1: पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार के आईएएस अधिकारियों के द्वारा एक मंथन वाटिका का निर्माण किया गया है और इस वाटिका में बिहार के सभी आईएएस अधिकारियों के द्वारा एक पेड़ लगाया गया है और उस पेड़ के पास उनका नेम प्लेट भी लगाया गया है और विपाड के सहयोग से ब्रह्मयोनी पहाड़ के नीचे मंथन वाटिका बनाया गया, जहां पे बिहार के जितने भी आला अधिकारी और आईएएस अधिकारी हैं उन लोगों ने अपने अपने नाम का एक एक पेड़ लगाया और उसके साथ उनका नेम प्लेट लगाया गया ताकि लोग देख सके और पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके।
0: इस मंथन वाटिका को बनाने के पीछे एक बेहद खूबसूरत सोच भी है। पहले ये इलाका बंजर भूमि के रूप में जाना जाता था, लेकिन विपाड के प्रयासों और पौधारोपण अभियान के बाद अब ये क्षेत्र हरा भरा होने के कगार पर है। मंथन वाटिका की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। उस समय बिहार प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण संस्थान यानी विपाड ने 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार के सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हुए, जिसके समापन पर अधिकारियों ने इस ऐतिहासिक अवसर को स्थायी यादगार बनाने का फैसला लिया। तय हुआ कि सभी अधिकारी एक एक पौधा लगाएंगे और एक ऐसी वाटिका विकसित की जाएगी जो आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे। इसी सोच के साथ ब्रह्मयोनी पहाड़ की गोद में मंथन वाटिका अस्तित्व में आई।
2: बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे सभी आईएएस ऑफिसर्स को बुलाकर यहाँ पे मंथन किया गया था कि कैसे राज्य को और आगे ले जाना है। वहाँ उसी दौरान यहाँ पे पेड़ लगाए गए थे ब्रह्मयोनी पहाड़ के अंतर्गत और उसमें हर पदाधिकारी ने अपने नाम पे पेड़ लगाया था ताकि वो उनका देखभाल करें और वो एक अपनत्व पौधों के प्रति डेवलप होता है ताकि हम लोग जो विकास करें उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी हम लोग ध्यान दें।
0: यहाँ हर पौधे के पास उसके सामान्य नाम के साथ साथ उसका बोटैनिकल नाम भी लिखा गया है, जिसका मकसद लोगों खासकर बच्चों को अलग अलग पौधों और उनकी वैज्ञानिक पहचान की जानकारी देना है। यहाँ आने वाले परिवार प्रकृति के बीच समय बिताने के साथ साथ पौधों के बारे में भी सीख सकते हैं।
3: बहुत अच्छी बात है, जनजीवन हरियाली के माध्यम से यहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ जो है लगाए गए हैं। ठीक है, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए आने वाले समय में। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो हिली एरियाज है दिन प्रतिदिन सिकुड़ते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के संरक्षण के लिए ये जो काम किया गया है बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, अगर वृक्षारोपण जो है वो एक जीवन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी, अगर वो वृक्ष लगा रहे हैं सपोज, अगर ये आने वाले 10 साल में अगर ये बड़ा तैयार होता है तो लोगों को छाया भी मिलेगी, प्लस में उनका एक यहाँ पर कह सकते हैं कि एक मार्क भी उनका रह गया कि हाँ हमने जब एज अ ट्रेनिंग, जब हम लोग ट्रेनिंग के दौरान जब वहाँ पे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, ये उनके प्रोजेक्ट का भी हिस्सा भी हो सकता है।
0: इस वाटिका में बिहार के लगभग सभी आईएएस अधिकारियों का योगदान है। यहाँ गूलर, जामुन, अमरूद, पीपल, बरगद और नीम समेत कई दुर्लभ और औषधीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र की फेंसिंग भी कराई गई। प्रशासनिक रसूख और प्रकृति का ये अनोखा मेल अब लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है।
3: ये इससे बहुत अच्छा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले भी 500 पेड़ लगाया यहाँ पे, और ये आईएएस के थ्रू ये लगा, जो बहुत अच्छे की बात है। ये सरकार की यह मंथन थी, तो आईएएस अफसर खुद यहाँ पे पेड़ लगाए हैं, और इससे अच्छा है कि ये इनके थ्रू आम पब्लिक भी इस पे ये लगा सकते हैं पेड़, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है।
0: गया की ये मंथन वाटिका न सिर्फ बिहार के ब्यूरोक्रेसी की एक हरी भरी याद है, बल्कि दूसरों के लिए पर्यावरण बचाने की एक अनोखी मिसाल भी है। आज ये वाटिका केवल पौधों का ग्रुप नहीं, बल्कि पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक बन चुकी है। यहाँ आने वाले लोग हरियाली के बीच अधिकारियों के नाम देखकर प्रेरित होते हैं। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इज टुडे।
4: न्यूज पत्र आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
5: सोमवार यानी आज शेयर बाजार में तेजी लौटी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और यूएस ईरान बातचीत में कूटनीतिक प्रगति की उम्मीदों के बीच ग्लोबल संकेतों से सेंसेक्स उछल गया। आज सेंसेक्स 291.17 अंक बढ़कर 77,094.07 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89.80 अंक बढ़कर 24,102.90 पर बंद हुआ। आज राजधानी दिल्ली में कीमती धातुओं की कीमतों में सुधार देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में बढ़त और रुपए की कीमत में गिरावट के चलते सोने और चांदी की कीमत में उछाल आया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार पीली धातु ने लगातार चार दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए 1700

0: साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए गुड न्यूज है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। एक्टर यश ने खुद सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट दो बार टल चुकी है। अब लंबे वीकेंड के साथ फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा की ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम कामयाबी का एक कीर्तिमान आ गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम पर रख दिया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजल्स में पब्लिक हॉलिडे रखा जाएगा। लॉस एंजल्स द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया यह सबसे बड़ा सम्मान है। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। धुरंधर 2 पार्ट्स में रिलीज की गई थी और इन दोनों पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर ने दुनिया भर में 3,100 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई के बाद रणवीर को बड़े पर्दे के कलेक्शन के साथ डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के हिस्से के तौर पर 325 करोड़ रुपए मिले। इस कमाई के साथ रणवीर ने शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार्स की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि एक्टर या फिल्म मेकर्स की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई। पुष्पा और एनिमल जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हिट फिल्मों की लिस्ट में लेटेस्ट कॉकटेल 2 का नाम भी शामिल होने वाला है क्योंकि केवल 3 दिनों में दुनिया भर में फिल्म ने 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और 100 करोड़ की ओर बढ़ चुकी है। होमा अदजानिया के निर्देशन में बनी कॉकटेल 2 में रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर की तिकड़ी है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई हासिल की है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर की शादी का जश्न शुरू हो गया है। शादी से पहले की रस्मों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंशुला की आंटी महीप कपूर ने शादी से पहले के जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। शादी से पहले के जश्न के वीडियोज और तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया गया है कि शादी शुरू, जय माता दी। अंशुला एवं रोहन, उनकी इन तस्वीरों से सेरेमनी की एक झलक दिखी जो माता की चौकी लग रही है।
1: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगांव में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, LG मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किए दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कुनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या 32 हुई। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल

0: मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन ले लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। गाय बिल्कुल किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।

0: अब जरा इस वायरल बंदर को देखिए। ये बंदर बड़ी सावधानी से साइकिल के पहिए से ट्यूब निकाल रहा है। उसके हाव भाव और काम करने का तौर तरीका देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है। जानवरों के मजेदार और प्यारे से वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। देखिए कैसे ये छोटा हाथी पानी के टब में पूरी तरह मस्ती के मूड में है। कभी वो पानी में उछलता कूदता है तो कभी सिर के बल टब में गिर जाता है। उसकी शरारतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी शिमला में कचरा देख कैसे भावुक हुई विदेशी महिला। हिमाचल की राजधानी शिमला के पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी को लेकर एक विदेशी महिला टूरिस्ट ने चिंता जाहिर की। महिला ने लगभग 1.5 मिनट का वीडियो बनाकर लोकल लोगों और टूरिस्टों से भावुक अपील की। इसमें महिला टूरिस्ट कहती है कि हिमाचल प्रदेश को लोग देवभूमि कहते हैं, लेकिन यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थलों और जंगलों में कचरा देखकर उसे बेहद दुख हुआ। वीडियो में महिला कह रही है कि मुझे देखिए, मैं इस समय जंगल में हूँ, यहाँ का नजारा कितना अद्भुत है, मगर मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बोतलें और कचरा, चारों तरफ कचरा ही कचरा है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कृपया ऐसा करना बंद कर दीजिए। यहाँ यात्रा करते हुए मैंने एक बहुत दुखद चीज देखी जो मुझे हर जगह दिखाई दे रही। आप इस जगह को देवताओं की भूमि कहते हैं, मैं आपके देश का सम्मान करती हूँ, आपके भगवानों और आपकी संस्कृति का सम्मान करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कई बार आप लोगों से भी ज्यादा सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ घूम रही हूँ और मुझे हर जगह हजारों बोतलें और ढेर सारा कचरा दिखाई दे रहा है। पर्यावरण को बचाने और साफ सुथरा रखने की अपील करने वाली महिला किस देश की है, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन महिला का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विदेशी पर्यटक की ये अपील हिमाचल में बढ़ते कचरे और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। प्रदेश में हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की जिम्मेदारी भी अहम हो जाती है। यह जानने के लिए हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने शिमला में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: भी हमारे शिमला में हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ पहाड़ियों में लोग कूड़ा कचरा डालते हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकते हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, वहाँ हम कैमरे भी लगा रहे हैं ताकि लोगों को, उस आदमी को पकड़ा जा सके और उसको हम पब्लिक डोमेन में भी मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि सफाई एक ऐसा इशू है कि सबकी जिम्मेवारी है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको इसमें कॉपरेट भी करना चाहिए। नगर निगम अपने पार्ट से जो रूटीन का रोज़ का काम करता है, साथ के साथ हमारे साथ सामाजिक संस्थाएं भी बहुत जुड़ रही हैं जो हॉटस्पॉट्स को साफ सफाई करती हैं। विशेष तौर पर जितने भी हमारे शहर के अंदर के हॉटस्पॉट्स हैं, जितनी पहाड़ियाँ हैं, उसको हमारे लोग भी हैं, नगर निगम के कर्मचारी भी उसमें जाते हैं और हम गाड़ी भी प्रोवाइड करते हैं, ग्लव्स देते हैं, मास्क देते हैं उन लोगों को, और साथ के साथ वो पूरा दिन उसमें 2-3 घंटे जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं उनको सफाई करते हुए, और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं इसमें हमारे साथ जुड़ भी रही हैं।
3: परेशानी ऐसा जी, अब देखो एक तो बरसात आई, दुनिया भर के मच्छरों ने इधर कूड़ा कबाड़ इतना, अच्छा कूड़े वाले सबके घर में नहीं जा सकते, है ना, नहीं जा सकते। सुबह शाम निकल जाते लोग, कभी कोई जल्दी चले जाते, तो इससे अच्छा एक डैम पर रखो इधर, जैसे भाई नहीं आ सकते एक डैम पर रखो, उसमें कूड़ा चलो जैसे भी आते हो डालते रहे,
4: साफ सफाई तो
3: साफ सफाई सब बिल्कुल, तब लोगों को अब क्या बोले इन लोगों, है ना, अब कितनों को बोलेंगे, एक को बोलेंगे तो चलाने भी कितनों के करने,
4: है ना,
3: बिल्कुल सब सारे तो आपके सामने है सब कुछ।
5: देखिए कूड़े की समस्या तो हर जगह ही है और ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे प्रॉपर डस्टबिन नहीं बढ़े हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी बस स्टॉप पे हैं हम या किसी रास्ते से भी गुजर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी कूड़ा निकलता है या तो हम अपने जेब में डालें या फिर हम उसे डस्टबिन में डालें, पर डस्टबिन अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि लोग अपने घर का कूड़ा निकाल के भी सड़क में ही फेंक देते हैं या किसी जंगल में फेंक देते हैं, जहाँ उन्हें प्रॉपर दिखता है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, वहीं वो अपनी डंपिंग कर देते हैं, और उस वजह से हमारा नेचर खराब हो रहा है, हमारे जंगल खराब हो रहे हैं और जितना भी पानी वाले सोर्सेज हैं वो सारे खराब हो रहे हैं। मतलब आजकल बरसातें आएंगी, बरसातों में सारे नाले चौक हो जाते हैं। चौक होने की वजह यही है कि कूड़ा ही लोगों के घरों का कूड़ा या टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं वो हर कहीं खा रहे पी रहे अपने रैपर हर कहीं फेंक रहे हैं। कोई भी प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि डस्टबिन ही नहीं है। या तो डस्टबिन हो तो बंदा उसमें डाल दे कूड़ा, पर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि कोई नहीं देख रहा सड़क में छोड़ दो अपना कूड़ा, तो वो सबसे बड़ी समस्या है।
1: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात गाजियाबाद में रहने वाले बिहार के दो भाइयों की काबिलियत की करेंगे। दोनों चाहते तो किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करके लाखों कमा सकते थे, लेकिन तय किया कि कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे पैसे तो आए ही, साथ ही साथ वो समाज और एनवायरमेंट के लिए कुछ कर पाए। उनकी जिद और मुहिम ने वेस्ट टू वॉन्डर की मिसाल बना दी।

0: अगर आप हवाई अड्डे में जिस सुंदर सी आकर्षित करने वाली नई नवेली बेंच पर बैठे हैं और आपको पता चले कि ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कचरा हुआ करती थी, तो जाहिर है आप उसे ढूंढना चाहेंगे जिसने ये कारनामा किया है। दरअसल हाल ही में शुरू हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगे फर्नीचर्स में एक हैरान करने वाला राज छिपा है।
1: दो भाई दोनों तबाही, अक्सर इस टर्म का इस्तेमाल आजकल हम लोग क्रिकेट जगत में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बिहार के दो भाइयों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 5 साल में 300 टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को खूबसूरत प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। बड़ी बात यह भी कि अब इनके प्रोडक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबसूरती को भी बढ़ा रहे हैं।
0: इन दोनों भाइयों विकास और राहुल ने ई वेस्ट के प्लास्टिक को स्टाइलिश और टिकाऊ फर्नीचर में बदलकर देश की बढ़ती ई वेस्ट की समस्या से निपटने का एक नया तरीका खोज निकाला है। विकास ने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और राहुल निफ्ट दिल्ली से ग्रेजुएट हैं और दोनों माइनस डिग्री नाम से एक कंपनी चलाते हैं। विकास और राहुल ई वेस्ट से डेकोरेटिव और बैठने के लिए कई तरह के फर्नीचर और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनके रिसाइकल किए गए प्रोडक्ट्स अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाखों यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिकल और असरदार दोनों हो सकता है। अब तक उनके इनोवेशन ने 12 टन से

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: No.
2: Oh, no.
3: Welcome to Get Real.
1: I got something to say.
3: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
2: Oh, my God.
1: It's got to be deliciously desperate.
2: Why do these girls forgive him?
4: Well, she has a soft spot for troubled men.
1: Boo bloody.
3: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
2: Love runs deeper than we know.
3: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
5: जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: Good news today.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच.
12: सचिन तेंदुलकर के 37 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी. खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर.
13: श्रीलंका को अपने तूफान में उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़े हैं. 26 जून से भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का आगाज हो रहा है और पहले ही मैच में अगर वैभव को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो ये तारीख उनके करियर का सबसे खास दिन बन जाएगी, क्योंकि 26 जून को उनकी उम्र होगी सिर्फ 15 साल 91 दिन. और अगर वो मैदान पर उतरते हैं तो वो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. ऐसा हुआ तो वैभव लेजेंड सचिन तेंदुलकर के 37 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे. 1 जुलाई से इंग्लैंड दौरा शुरू होने जा रहा है. इस दौरे में इंग्लैंड और भारत के बीच 5 T20 मैच के साथ ही 3 वनडे मैच भी खेले जाने हैं, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान रविवार को किया जाएगा. वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं, जबकि उपकप्तान श्रेयस अय्यर हैं. इसके अलावा टीम में अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा की भी वापसी हुई है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद बुमराह पहली बार वनडे खेलते दिखेंगे. टीम में विराट कोहली भी लौटे हैं, लेकिन उनकी वापसी फिटनेस पर निर्भर करेगी. इसके अलावा रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन प्रसिद्ध अर्शदीप और गुरनार बरार को भी जगह मिली है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर दुनिया भर में फैंस में जबरदस्त उत्साह है. लोग अपने अपने अंदाज में फीफा वर्ल्ड कप का जश्न मना रहे हैं. फुटबॉल का ये जुनून हर देश, हर शहर और हर दिल में साफ दिखाई दे रहा है. न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हजारों फैंस विशाल स्क्रीन के सामने जमा हुए और जैसे ही गेंद गोल पोस्ट में पहुंची है पूरा इलाका तालियों, नारों और खुशी की चीखों से गूंज उठता है. टाइम्स स्क्वायर पर नॉर्वे के फैंस का जबरदस्त सेलिब्रेशन सुर्खियां बटोर रहा है. यहाँ नॉर्वे के फैंस ने चमकीले लाल रंग की नॉर्वे टी शर्ट पहन अपने खास अंदाज में वाइकिंग रो के साथ

0: शहर में धूम मचा दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फुटबॉल थीम पर खास बेकरी की डिमांड है। यहाँ सुनहरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, सॉकर बॉल और टीम के मैस्कॉट के आकार की कॉन्ट्रास्ट यानी खास ब्रेड का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट मैक्सिको की एक मीठी ब्रेड है जिसे अक्सर हॉट चॉकलेट या कॉफी के साथ खाया जाता है। लॉस एंजल्स में लाखों मैक्सिकन मूल के लोग रहते हैं, ऐसे में शहर में मैक्सिको टीम को जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
3: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
2: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
5: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: News Pack, Raah Sachai Ki, Raat 9 Baje.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना की, जिसने बंगाल की खाड़ी में हुंकार भरी है। नेवी की त्रिशक्ति की ललकार ने एक बार फिर से दुश्मनों को चेताया है कि वो समुद्र में अपनी हद में रहें। आज आपको कोलकाता में शामिल किए गए इंडियन नेवी के धुरंधर की ताकत दिखाएंगे, जो दूर समुद्र में कहीं भी दुश्मन युद्धपोत की धज्जियां उड़ा सकता है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे इंडियन नेवी के शिकारी की भी तस्वीरें, जो छिपकर आने वाली दुश्मन सबमरीन को हमारे तट तक नहीं आने देगा, पहले ही खोजकर उनकी जल समाधि बनाने में सक्षम है। आखिर में हम बात करेंगे समुद्र में अनजाने इलाकों में राह बताने वाले संशोधक की, जो रेस्क्यू में भी बहुत कारगर साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं INS दूनागिरी से, जो इंडियन नेवी में शामिल की गई त्रिशक्ति में सबसे ताकतवर है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर ये युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस है। यानी समुद्र में अगर दुश्मन ने हिमाकत की तो दूनागिरी उसकी धज्जियां उड़ा सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अत्याधुनिक तकनीक से पूरी तरीके से लैस है और स्वदेशी है, इसलिए इंडियन नेवी की जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए दूनागिरी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट।

बुलंद, बेजोड़, बवंडर, बंगाल की खाड़ी से ये नौसेना की ललकार है। दुश्मन को रोकने, घेरने, मारने के लिए त्रिशक्ति तैयार है।

0: समंदर में नौसेना के ये योद्धा जब चलेंगे तब दुश्मन पर काल बनकर टूटेंगे। दुश्मन जाहिर हो या छिपा हुआ, उसकी हर साजिश नाकाम होगी क्योंकि राह में त्रिशक्ति खड़ी होगी। पहली शक्ति जिसमें युद्धपोत को मार गिराने के लिए फायर पावर है, दूसरी शक्ति जो समंदर में शिकारी की तरह सबमरीन्स को खोजकर निशाना बनाएगी, और तीसरी शक्ति है समंदर में सर्वे करने वाली। भारतीय नौसेना के शौर्य से चकित दुश्मन इस त्रिशक्ति को देख और भी सहम गया है, जिसका नाम है INS दूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक। एडवांस वेपन सिस्टम से लैस समंदर के ये तीन योद्धा अब नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। इंडियन नेवी ने एक साथ तीन गेम चेंजर नेवल शिप्स को कमीशन किया। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिशक्ति राष्ट्र को समर्पित की, और इसके साथ ही समंदर में भारत की ताकत और बढ़ गई।
1: आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है, और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

0: ये त्रिशक्ति सिर्फ नेवल शिप्स नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक मुनादी है, जो समंदर में भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। और इनकी ताकत, इनकी खूबियाँ दुश्मन का होश उड़ाने वाली है। और इससे भी सबसे ज्यादा घातक है INS दूनागिरी, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार नीलगिरी श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसमें जमीन से जमीन पर मार करने वाली 8 ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हैं, साथ ही मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM सिस्टम है, मल्टीफंक्शन सर्विलेंस ट्रैक एंड गाइडेंस रेडार, एडवांस सोनार के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एंटी सबमरीन हथियार जैसे सेंसर्स भी शामिल हैं। INS दूनागिरी लंबी दूरी के समुद्री वारफेयर के साथ ही मिसाइल हमले और पनडुब्बियों के खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हुए हैं।
1: ये पुराना दूनागिरी का मैं चित्र दिखा रहा हूँ आपको, ये पुराना दूनागिरी जिसने अपनी सेवाएं दी और ये डीकमीशन हुआ। ये मेरा पहला शिप था जहां जब पायलट मैंने यहाँ से हेलीकॉप्टर फ्लाइंग किया, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा कदम दिखाता है और नौसेना की जो क्षमता है, ब्लू वाटर कैपेबिलिटी है, आउटरीच है और वेपन कैपेबिलिटी और क्रेडिबल डिटरेंस सदन, ये इंडियन ओशन में, ग्लोबल साउथ में भारत का बढ़ता रोल और उसके लिए एक क्रेडिबल डिटरेंस, ये जरूरी है कि भारतीय नौसेना को सुदृढ़ किया जाए। और जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, गल्फ की सिचुएशन और हम हुतीस का जो प्रॉब्लम हमने पहले देखा, अभी ईरान और इजराइल और अमेरिका का स्थिति जो बनी है, इसमें ऑयल और आर्थिक स्थिति का कितना पर कितना प्रभाव पड़ सकता है अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ना हो, तो इसको हमने देखा है। तो हम सब समझ सकते हैं कि इन शिप्स के नौसेना में शामिल होने से हमारा प्रभुत्व, हमारी डिटरेंस, हमारी क्षमता, हमारे रीजनल स्टेबिलिटी में इजाफा होने वाला है।
0: दूनागिरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 2/3 हथियार और उपकरण देसी हैं। करीब 7,000 टन का ये योद्धा 149 मीटर लंबा है और रफ्तार 52 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे बड़ी बात ये कि ये बगैर रिफ्यूलिंग के भारत से अफ्रीका तक जा सकता है। दुश्मन के रडार पर ये छोटी नाव जैसा दिखता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता।
2: It is the fifth ship in the sequence. So why do we call it a stealth frigate? We call it a stealth frigate because it has got reduced RCS, radar cross sectional area, and we have features that makes it very very silent. So in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced state of the art early warning radars in all three dimensions, capable of carrying all types of helicopters. And that provides that us the advantage of operating and meeting all missions.
0: BrahMos जैसी supersonic missiles, air defense system और anti-submarine क्षमताओं से लैस ये योद्धा हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में बढ़ती चुनौतियों के बीच नेवी की ताकत को बढ़ाने वाला है। असल में इसमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर सिस्टम है, जिसकी वजह से जहाज को घुमाने वाले पंखे का हर ब्लेड अलग तरीके से घूम सकता है। इससे जहाज की दिशा आसानी से बदली जा सकती है। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने चीन में बने हंगोर क्लास की सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया। इस तरह 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान को हद में रखने के लिए भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने योद्धाओं को बंगाल की खाड़ी में उतारकर उसे मैसेज दे दिया है। INS दूनागिरी की खूबी ये है कि ये तट से दूर ऑपरेशन करने में माहिर है, यानी जब भी जरूरत पड़ेगी ये दूर समंदर में मोर्चा संभालेगा और अगर दूनागिरी सामने होगा तो दुश्मन का टिके रहना नामुमकिन होगा। कोलकाता से श्रेयाशी डे और इंदिरा चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, इंडियन नेवी को त्रिशक्ति मिली है। दूनागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है, पर इसके साथ एंटी सबमरीन अग्रय को भी नौसेना में शामिल कर दिया गया है, जिसका रोल अलग है। ये एंटी सबमरीन जहाज दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल है। छिपकर आने वाली दुश्मन सबमरीन को यह हमारे तट तक नहीं आने देगा। इसके साथ ही INS संशोधक को कमीशन कर दिया गया है। समुद्र में राह बताने वाला यह जहाज रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो बहुत खास है, बहुत अहम है। क्या है इन योद्धाओं की खूबियां, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में।

0: और अग्रय में जो एकदम जो ऊपर जो दिखा रहा है जो रेड कलर का है वो है रॉकेट लॉन्चर, और एकदम नीचे जो है ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का, ये है एंटी सरफेस एयरगन।
1: ये समंदर का वो शिकारी है जिसकी रफ्तार और प्रहार से दुश्मन का बच पाना असंभव है। जब कभी दुश्मन की सबमरीन पानी में छिपकर तटीय इलाकों तक पहुंचने की कोशिश करेगी, ये एंटी सबमरीन शैलो वाटर वॉरशिप एक्टिव होगा और इन्हीं हथियारों से उनकी जल समाधि बन जाएगी। ये एंटी सबमरीन रॉकेट्स किसी भी सबमरीन की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। इसके अलावा लाइट वेट टॉर्पीडो है, हाई कैलिबर मशीन गन है, यानी भारतीय नौसेना का यह धुरंधर हर जरूरी हथियार और रफ्तार से लैस है। नाम है अग्रय। इससे पहले कि आपको अग्रय की पूरी ताकत बताएं, इसकी अहमियत जान लीजिए। दुश्मन देश पाकिस्तान को चीन से 8 सबमरीन मिलने वाली हैं और डील के तहत पहली सबमरीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इसीलिए इंडियन नेवी के लिए ऐसे एंटी सबमरीन जहाज बेहद जरूरी हैं, जो समुद्र के किनारे और उथले पानी में छिपे दुश्मन सबमरीन को खोजने और मारने में माहिर है। यानी अगर कोई सबमरीन भारत के तट के नजदीक आई तो इस जहाज को पता लग जाएगा, और वो न सिर्फ पता करेगा बल्कि समय रहते उन्हें तबाह भी करेगा, जिससे वो हमारे नेवल बेस या तट के नजदीक किसी मिलिट्री ठिकाने पर हमला नहीं कर पाएगी।
2: अग्रय में साइड स्कैनिंग सोनार लगे हैं, शैलो वाटर में सबमरीन को पकड़ना, पेट्रोलिंग करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, और इनके पास अंडर वाटर ऑटोनोमस बोट्स हैं जो पानी के अंदर अपने आप चल के और उसमें से रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स निकल के समुद्र की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पूरी तरह से जो हमारा रख रखाव जो हमारे सबमरीन के लिए जो बैठी हमको चाहिए, जो प्रेशर के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से जो डेप्थ में चेंजेज आती है, जो उनको सबका अध्ययन करते हुए जो हमारी सेना के लिए सबमरीन के ऑपरेशंस के लिए या मौसम विभाग के लिए ये सब जरूरी है।
1: मॉडर्न वॉर में और समुद्री लड़ाई में बड़ा खतरा सबमरीन को माना जाता है जो छिपकर घातक वार करती है, लेकिन इंडियन नेवी दुश्मन के इस हथियार का तोड़ तैयार करने में जुटी है। अब अग्रय की ताकत समझ लीजिए।
3: इसकी लंबाई 77 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 900 टन।
1: ये लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार तकनीक से लैस है, समुद्री माइंस बिछाने में माहिर और वॉरजेट तकनीक से लैस है। इसकी रेंज 1800 नॉटिकल माइल्स की है।
4: एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडरवाटर सेंसर्स लगे हैं, एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडर वाटर, उसी के उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज डिजाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन।
1: INS अग्रय न सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही डुबा देने की ताकत रखता है, और इसीलिए इंडियन नेवी के लिए यह बेजोड़ हथियार साबित होने वाला है।

0: दूनागिरी दुश्मन के युद्धपोत को मटिया मेट करेगा और अग्रह पनडुब्बियों को ढेर करेगा, पर संशोधक की भूमिका अलग है। ये एक बड़े साइज का सर्वे विसल है जो उथले और गहरे पानी में सर्वे, बोट मैपिंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आता है। यानी इसका काम मुख्य तौर पर समुद्र की गहराई, समुद्री तल की संरचना और नौसैनिक रास्तों का सर्वेक्षण करना है। इसकी लंबाई 110 मीटर है। समुद्र में 3400 टन डिस्प्लेसमेंट वाला ये जहाज इंडियन नेवी को समुद्र की उन गहराइयों से परिचित कराएगा जहां आम जहाज नहीं पहुंच पाते।
1: संशोधक का मतलब रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला। तो ये चौथा शिप है जो संधायक क्लास के शिप हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए नेविगेशनल चैनल में, कोस्टल वाटर में या ओपन सी में नेविगेशन के लिए हमें समुद्र की गहराई, वहां के जो मैपिंग है, समुद्र की सतह का अनुमान और हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर की जो चेंजेस है जो सतह के नीचे के पानी के सतह में होती है उनकी भी जानकारी जरूरी। इससे सबमरीन ऑपरेशन और दूसरे काम करने में अंडर वाटर मदद मिलती है। तो इन सब को करने के लिए ये हाइड्रोग्राफी शिप्स जरूरी है जो भारतीय नौसेना में लगातार इंडक्ट किए जा रहे हैं। पहले संधायक, उसके बाद निरूपक और उसके बाद इच्छक, और अब हम संशोधक को 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। ये शिप शांति के दौरान और युद्ध के दौरान दोनों में अपनी भूमिका निभा सकेगा और हॉस्पिटल शिप के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।

0: संशोधक किसी दुर्घटना की सूरत में सर्च एंड रेस्क्यू का काम भी करेगा। इसमें एक छोटी नाव है जो तेज और बहुत मजबूत है और ये तेज लहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन में कारगर है। सबसे खास बात यह है कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के हालात में INS संशोधक एक हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सर्वेशिप सो प्राइमरी रोल इज टू कंडक्ट ए हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड कलेक्ट मैरिटाइम डाटा। सो एज ए सेकेंडरी रोल दिस शिप कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन हॉस्पिटल शिप। सो वेरियस ऑनबोर्ड स्पेसेस दैट वी विल कन्वर्टेड इनटू वार्ड्स एंड द ऑपरेशन थिएटर। सो वी हैव मॉडर्न टेलीमेडिसिन फैसिलिटी व्हिच हेल्प इन रियल टाइम कंसल्टेशन विद द स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट एज वेल एज वी आर इक्विप्ड विद द लैब फैसिलिटी फॉर रूटीन ब्लड एंड यूरिन इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द अल्ट्रासाउंड मशीन। सो वी कैन ट्रीट द पेशेंट, वी विल स्टेबिलाइज हिम हियर ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी।
0: सर्च एंड रेस्क्यू के तो इंतजाम है ही, इसके अलावा संशोधक आधुनिक हथियारों से भी लैस है। इसमें ड्रोन, साइड स्कैन सोनार, हेलीपैड, हथियार के लिए CRN-71 नेवल गन मौजूद है। संशोधक की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर तक है। इस लिहाज से ये योद्धा इंडियन नेवी के लिए कई तरह से कारगर साबित होगा। इंडियन नेवी न सिर्फ समंदर में देश के दुश्मनों पर नजर रखती है बल्कि उस पर समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने में भी फ्रिगेट्स, एंटी सबमरीन जहाज और सर्वे वेसल्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। बड़ी बात यह भी है कि ये योद्धा स्वदेशी है, यानी इनकी ताकत और तकनीक को हम अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। कोलकाता से श्रेयाशी डे और इंदिरा चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, चुनौतियां बड़ी हैं, इसलिए भारतीय नौसेना खुद को नई तकनीक वाले नए योद्धाओं से लैस कर रही है। इसलिए 3 स्वदेशी युद्धपोत को शामिल करने के साथ 2 और मेड इन इंडिया लड़ाकू योद्धाओं को नेवी में शामिल करने की तैयारी में है। देखिए, जुलाई में स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को सेवा में शामिल किए जाने की उम्मीद है। महेंद्रगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम का 7वां और आखिरी युद्धपोत है। मुंबई के मजगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड में इस पोत को सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और तब से इसने बंदरगाह और समुद्र में कई परीक्षण पूरे अब कर लिए हैं। महेंद्रगिरी ब्रह्मोस और ताकतवर मिसाइलों के अलावा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और सेंसर से पूरी तरीके से लैस है। ये युद्धपोत पनडुब्बी रोधी युद्ध, निगरानी और समुद्री अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर्स का संचालन भी कर सकता है। देखिए, इसके साथ ही आपको बता दें, उथले पानी के जहाज मालवान को भी नेवी में शामिल कर दिया जाना है, जो नई पीढ़ी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है। तटीय इलाकों में ऑपरेशंस के लिए मालवान को एडवांस सोनार और पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणालियों से लैस किया गया है ताकि दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाया जा सके, उनका पीछा किया जा सके और उनसे मुकाबला किया जा सके। अब बात करेंगे INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी अग्रय और संशोधक के बाद महेंद्रगिरी और मालवान को नेवी में शामिल किए जाने से नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है। हिंद महासागर में चीन की महत्वाकांक्षा देखते हुए यह जरूरी कदम भी है, खासकर अगर हम देखें इसलिए भी क्योंकि देखिए, पाकिस्तान चीन में बने हैंगकोर श्रेणी के पनडुब्बियों को शामिल करके अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि महेंद्रगिरी को पूर्वी तट पर शामिल किए जाने की उम्मीद है, जबकि देखिए मालवान को पश्चिमी तट पर बेड़े में शामिल करने की संभावना है।

0: such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
1: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: जाए. No ticket, no line, just showtime. Qualo Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qualo Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
10: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट. अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा. गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा. गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, LG मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किए दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या 32.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
10: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का हुआ शुभारंभ, 26 जून तक चलेगा मेला. आज रात 9:08 पर बंद कर दिए गए हैं मंदिर के कपाट, मुख्य गर्भगृह 3 दिनों तक रहेगा बंद. 23, 24 और 25 जून को लगातार 3 दिन और 3 रात तक चलेगा महायज्ञ। मुख्य समारोह 26 जून को होगा। पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद 26 जून की सुबह शक्तिपीठ के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेले को लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। भक्तों के लिए कई जगहों पर शिविर और भोजन की व्यवस्थाएं। अंबुबाची मेले को लेकर प्रशासन सख्त। मंदिर तक का जाने वाले रास्ते सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, महापर्व के अवसर पर असम पधारने वाले दुनिया भर के श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हेमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, मां कामाख्या की कृपा दृष्टि से सभी का जीवन सुखमय बीते। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में व्यापक तैयारियां, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए कुलगाम में पुलिस ने जंगल के ऊंचे इलाकों में बड़े पैमाने पर चलाया तलाशी अभियान। 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र तीर्थ यात्रा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में करेंगे हनुमंत कथा। जकार्ता में 3 दिनों का कार्यक्रम। बाबा बागेश्वर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, जकार्ता में 26 से 28 जून तक करेंगे प्रभु का गुणगान। पुणे के स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन की अनूठी पहल, इमोशनल ऑब्जर्वन ध्यान कुटीर विकसित की गई। कुटीर बनाने में गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है। 10 मिनट की साधना और ध्वनि तरंगों से मिलेगी तनाव से मुक्ति। परियोजना में अरोमा मेडिटेशन और साउंड थेरेपी के जरिए तनाव से मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीता प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। कूनो नेशनल पार्क में 2 दिवसीय प्रवास के बाद वापस रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश में चीतों की संख्या 52 हो चली। गाजियाबाद प्रशासन ने डासना इलाके में 250 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। कर्नाटक के बल्लारी में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने खुद पहल की, 3 लाख जमा करके सड़क की मरम्मत कराई। बिहार में छपरा के शशांक गौरव ने 70वीं बैच की बीपीएससी परीक्षा में 2रा रैंक हासिल किया। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के किसान ने पत्नी के नाम पर घर के आंगन में मियाज़ाकी आम के 10 पेड़ लगाए। इस साल पेड़ों पर 30 मियाज़ाकी आम लगे हैं। किसान ने कहा कि पेड़ जो है पत्नी के नाम पर लगाए। गाजियाबाद के 2 भाइयों विकास और राहुल ने किया कमाल, ई वेस्ट के प्लास्टिक को स्टाइलिश और टिकाऊ फर्नीचर में तब्दील किया। विकास और राहुल ई वेस्ट के से डेकोरेटिव आइटम और फर्नीचर बनाते हैं। उनके बनाए प्रोडक्ट्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी लगाए गए। शेयर बाजार से आई गुड न्यूज, सेंसेक्स 291 अंकों की तेजी के साथ 77,094 पर बंद हुआ। निफ्टी 89 अंकों के साथ 24,102 पर बंद हुआ। पूर्व अग्निवीरों के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों के लिए सीधी भर्ती में 20% आरक्षण। साफ सफाई के मामले में 88 साल के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इंद्रजीत सिंह सिद्धू लोगों के लिए बने प्रेरणा, चंडीगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर कर रहे हैं सफाई। सार्वजनिक जगहों की सफाई में रोज 8 घंटे देते हैं इंद्रजीत सिंह सिद्धू, और नागरिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पण के लिए पद्मश्री मिल चुका है। भारतीय नौसेना के जहाज INS उदयगिरी और INS कवरत्ती वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंचे। अमेरिका से आई गुड न्यूज, भारतीय मूल की पहली बार चुनाव लड़ रही अपर्णा राज ने वॉशिंगटन DC काउंसिल सीट के लिए डेमोक्रेट प्राइमरी जीती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, हरि सेवा आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में शामिल हुए। मेरठ के संकेत ने पेश की मिसाल, 2 नंबर से JEE एडवांस में असफल होने के बाद सेल्फ स्टडी करके बने इसरो के साइंटिस्ट। एशियन रैली चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड, 100 मीटर रैली में चीन को हराया। जूनागढ़ के गिर सासन में जंगल के राजा एशियाई शेरों का वेकेशन हो गया शुरू, 23 जून से 15 अक्टूबर तक चलेगा। मानसून का समय शावकों के पालन पोषण के लिए होता है खास, वन्य जीवों को शांत और सुरक्षित वातावरण देने के लिए पहल। नौसेना की ओर ज्यादा बढ़ेगी ताकत, नौसेना में शामिल होंगे दो नए युद्धपोत INS महेंद्रगिरी और मालवान। जुलाई में महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में किया जाएगा कमीशन, मालवान को कोची में नौसेना में किया जाएगा शामिल। दुश्मन के रडार से छिपने और एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम। ओडिशा में पूर्वी घाट में पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया युद्धपोत का नाम आत्मनिर्भर भारत का पहल के तहत किया गया है निर्माण। भारतीय नौसेना को स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है INS मालवान। जम्मू कश्मीर में आस्था और परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का आज से हो गया शुभारंभ, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां रगन्या देवी की उतारी विशेष आरती, माता रानी की लगाए जयकारे। गांधरबल के खीर भवानी मंदिर पहुंचे LG मनोज सिन्हा, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। खीर भवानी मेले को लेकर गांधरबल में तैनात की गई है डॉक्टर्स की टीम। गांधरबल में खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, मंदिर के आसपास इलाकों में निगरानी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा में आस्था का मेला, गुजरात से पहुंचे 1200 से ज्यादा श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने महादेव की पूजा अर्चना की, देश की सुख समृद्धि की कामना की। पिछले 36 सालों में पहली बार बड़ी तादाद में पहुंचे सैलानी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। यात्रा राष्ट्र प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में मनाई जाती है। सिंधु दर्शन यात्रा जम्मू कश्मीर से होते हुए लेह लद्दाख तक जाएगी, 30 जून तक चलेगी यात्रा। 8.5 लाख की नौकरी छोड़कर मुजफ्फरपुर के विकास बने मैंगो मैन, उगा रहे हैं 92 किस्मों के आम। बगीचे में जापान से ऑस्ट्रेलिया तक की दुर्लभ वैरायटी के आम। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 658 करोड़ की 81 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। टीम इंडिया के गेंदबाज आकाशदीप की शादी की रस्में हो गई शुरू, धूमधाम से हुआ। आकाशदीप ने तलक समारोह में भोजपुरी गाने पर जमकर डांस किया, दोस्तों के साथ मस्ती। बलिया के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिला नया महंत, मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक। 11 साल के बालक का शाश्वत का अब नाम हो गया है श्याम नारायण दास। गया शहर के प्रमुख चौराहों पर दिखी धार्मिक सांस्कृतिक और विरासत की झलक, चौक पर लगाई गई है शानदार लाइट्स। बंगाल में राज्य कर्मचारियों का DA 20% बढ़ गया, विधायक फंड को 70 लाख से बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया गया। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। मानसून को लेकर अच्छी खबर, कई राज्यों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद। अगले 48 घंटों में मानसून के छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद। मानसून के लिए दिल्ली के लोगों को करना होगा अभी और इंतजार, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार। गुजरात के अमरेली में खूब बरसे बदरा, बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम। पिछले 2 दिनों से कई गांवों में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी, बुवाई का इंतजार कर रहे किसान खुश। गुजरात के वलसाड में भी अच्छी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में भर गया पानी। सूरत में भी झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। IMD के मुताबिक नीरों की वजह से गुजरात में अब तक मानसून की शुरुआत नहीं हो पाई है, अभी 3 से 5 दिन और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर गुजरात से सौराष्ट्र होते हुए पश्चिम मध्य अरब सागर तक कम दबाव का इस्तेमाल बना है। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंच गया प्री मानसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल गई, मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी अलीबाग पहुंचा है। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति, आवाजाही प्रभावित। मुंबई के बांद्रा में भी मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर जम गया पानी। पुणे में भी कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा, सिंगर के नाम पर रखा गया पब्लिक हॉलीडे। जनवरी 2027 का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा पब्लिक हॉलीडे। दोसांझ हुए इमोशनल। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी बनेंगी दुल्हनिया, अंशुला की हो रही है शादी। बॉक्स ऑफिस पर चला शाहिद कृति सेनन और रश्मिका मंदाना का जादू, फिल्म कॉकटेल 2 ने 3 दिनों में कमाए 75 करोड़। मां इंती बगारम पर हुई नोटों की बरसात, 3 दिनों में 41 करोड़ का आंकड़ा पार। साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए गुड न्यूज, टॉक्सिक 26 अगस्त को हो रही है वर्ल्ड वाइड रिलीज। फिल्म धुरंधर के सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। फिल्म के दोनों पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। डेनमार्क से आई पतंगबाजी की शानदार तस्वीरें, फैनो आइलैंड पर 26 देशों के पतंगबाज चोटे। इस साल फैनो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में करीब 5,000 पतंगबाज शामिल हुए। आसमान में उड़ी करीब 25,000 रंग बिरंगी पतंगे, सी ड्रैगन समुद्री जीव नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फुटबॉल थीम पर बेकरी में बनी खास मिठाई, बेकरी में बनी मिठाइयों की खूब डिमांड। फुटबॉल जर्सी के आकार की कुंचास बनिया है आकर्षण का मुख्य केंद्र। फुटबॉल थीम पर बेकरी में बनी खास मिठाई को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। वर्ल्ड कप थीम वाली 49 बना सोशल मीडिया पर चर्चा का मुख्य विषय, रंग बिरंगी और आकर्षक ब्रेड की तस्वीर। मैक्सिकन संस्कृति और फुटबॉल प्रेम का दिख रहा है जबरदस्त मेल, टीमों के रंग भी नजर आए। बुडापेस्ट में पहली बार पहुंची भगवान विट्ठल रुक्मणी की पवित्र पादुकाएं, भारतीय समुदाय में खुशी की लहर। विदेश में भारतीय संस्कृति और वारकारी परंपरा का दिखा अनूठा संगम, पादुका दर्शन भजन कीर्तन के साथ आयोजन किया गया। बुडापेस्ट के हीरोज स्क्वायर में पवित्र पादुकाओं की निकाली गई भव्य पालकी यात्रा। भारतीय बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में बिखेरे संस्कृति के जबरदस्त रंग, भजन भक्तिमय गायन। विदेश में भी जीवंत है पंढरपुर वारी की परंपरा, स्थानीय लोगों ने भी इस अनूठी परंपरा में भाग लिया। चीन की राजधानी बीजिंग में चौथे चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का शुभारंभ किया गया। एक्सपो में डिजिटल टेक्नोलॉजी के रंग देखने को मिले। डिजिटल टेक्नोलॉजी AI बना सबसे बड़ा आकर्षण, स्मार्ट सिटी नजर आई। चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में 85 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। एक्सपो में लो ऑल्टीट्यूड इकोनॉमी जोन में दिखी भविष्य की तकनीक। अर्जेंटीना के न्यूनवेन शहर में बीचों बीच लगाई गई है फुटबॉलर लियोनेल मेसी की विशाल प्रतिमा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: मंगल के राशि परिवर्तन से देश दुनिया में अशांति बढ़ेगी? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से किसी राशि के जीवन में दुर्घटना घट सकती है? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: फिफ्टी स्टेट्स, वन नेशनल मॉल, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the great American state fair. Be there.
12: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: Right field, and it will.
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान छू लिया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया। जी हाँ, लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है।
7: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है, उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। सात समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है, उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
8: In the city of LA, we're declaring a day after you. So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
9: My day?
8: Your own day in the city of Los Angeles.
9: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
7: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
9: थैंक यू सो मच। माय डे इन एलए हुण होया, तैनू गड्डी च बिठा के ले जावानी मैं एलए नू।
7: अब लॉस एंजलिस में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजलिस ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजलिस ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपनी ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत

0: स्टेट ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
1: जिन्ना मर्जी सानू रोक लो, जिन्नी मर्जी साड़ियां लत्तां खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे खिट्टियां नू चिंबड़ी चलो, पंजाबी आ।
0: लॉस एंजलिस में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थी। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजलिस में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय औरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाती है। 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states. Live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
8: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-on-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी।
1: नमस्कार।
0: तो आज गुड लक टुडे में जानेंगे मंगल की राशि के परिवर्तन के बारे में, आखिर इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज के गुड लक के बारे में।
1: अगर आपका संबंध आपके पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ बेहतर नहीं रहता है, तो हर मंगलवार घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक किसी भी तरफ जलाइएगा। अगर ऐसा हर मंगलवार को आप करना शुरू कर दें, तो आपके संबंध आपके नेबर्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ बेहतर हो जाएंगे।
0: और चलिए आप जान लेते हैं कि क्या है 23 जून मंगलवार का पंचांग।
1: दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:39 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 11:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और पंडित जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है, राशि परिवर्तन कब हो रहा है और इसका प्रभाव क्या रहेगा।
1: जी देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है हाल में ही, और ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है देश और दुनिया के लिए, आपके जीवन के लिए। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि इसकी पूरी स्थिति क्या है। देखिए, मंगल अभी तक मेष राशि में विद्यमान थे, अब मंगल 21 जून को मिडनाइट में वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल की ये स्थिति मध्यम मानी जाती है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और यहां मंगल का होना एवरेज परिणाम जीवन में देता है। अब मंगल ने जब राशि बदली तो मीन में शनि विद्यमान है। शनि की तीसरी दृष्टि सीधे मंगल पर पड़ने लगी, तो मंगल इस परिवर्तन में शनि के सीधे प्रभाव में आ गए हैं। और मंगल की ये स्थिति 4 अगस्त तक बनी रहेगी। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। इस परिवर्तन को आप बहुत बेहतर परिवर्तन नहीं कह सकते, कुल मिला जुला कर ये परिवर्तन एवरेज है।
0: और अब समय हो गया है राशिफल जानने का। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार में विवादों से बचाव करें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: पंडित जी, अब ये बताएं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या असर होगा, आने वाले समय में कैसी स्थितियां रहेंगी?
1: देखिए, जब किसी ग्रह का परिवर्तन होता है और खास तौर से मंगल का परिवर्तन होता है तो बड़ी तेजी से दुनिया भर में इसके बदलाव दिखाई देते हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगल के राशि परिवर्तन के समय सूर्य और बुध एक साथ हैं, चंद्रमा और केतु भी उसी समय एक साथ विद्यमान हैं, और सबसे नकारात्मक शनि और मंगल का आपसी संबंध बना हुआ है। तो ये जो 4 अगस्त तक का समय है, ये दुनिया भर में अशांति फैला सकता है। खास तौर से भयंकर दुर्घटना और विस्फोट जैसी स्थिति दुनिया में बन सकती है। अंतरिक्ष संचार के साधन और वायुयान दुर्घटना के योग बन सकते हैं। स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, और इसीलिए वृषभ में मंगल का प्रवेश भारत में आंतरिक अशांति फैला सकता है, और राजनैतिक रूप से बड़ी सारी उथल पुथल मिडिल ईस्ट में और भारत वर्ष के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में हो सकती है। जल की जो आपदाएं हैं, जलीय मुश्किलें या भूकंप जैसी आपदाएं इस समय एकदम से बढ़ सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक बात जरूर है कि जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, वहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ इस समय आ सकती है, लेकिन दुनिया भर में अभी भी शांति की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है।
0: और इसी विषय पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल और कितने प्रतिशत है भाग्य का मीटर।
1: कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब समय हो गया है दर्शकों का सवाल लेने का। पंडित जी, आप पहला सवाल किसका लेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न दिलबाग सिंह जी ने हमें लिखा है, सोनीपत हरियाणा से लिखते हैं। अपने पुत्र की कुंडली के हिसाब से अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 10 अक्टूबर 1986, 12:30 दोपहर में, सोनीपत हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लगभग दिवालिया होने की कगार पर मैं पहुंच चुका हूं। कब तक स्थितियां बेहतर होंगी और जीवन आगे कैसा चलेगा? दिलबाग जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और धनु राशि की। उनकी महादशा चल रही है राहु में शनि की। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के हिसाब से समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरा ये है कि कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े, जमीन मकान, इस तरह की संभावना भी इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन फरवरी 2027 के बाद आप मुश्किलों से निकल जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, और एक भगवान शिव की स्तुति है, दारिद्र दहन स्तोत्र। तो शनि मंत्र सुबह शाम और सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए, मुश्किलें कम हो जाएंगी।
0: अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अब कौन सा दर्शक का सवाल है?
1: जी, अगला प्रश्न सोनिया रानी ने हमें कुरुक्षेत्र से लिखा है। 28 फरवरी 1990 का जन्म है, 7 प्रातः किरमच, कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रही हैं कि पति के साथ 2021 से तलाक का मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा कब तक हल होगा? क्या मेरी दूसरी शादी हो सकेगी? सोनिया जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा बुध की चल रही है। साल 2027 के आरंभ तक आपसी सुलह समझौते से आपके मामले में डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आगे दूसरा विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसके भी सफल होने की उम्मीद नहीं है। आगे अपने बच्चे पर ध्यान दें, करियर बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
0: और चलिए दर्शकों के सवालों के बाद अब आते हैं अपने विषय पर। पंडित जी, मंगल की राशि परिवर्तन का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? कौन सी राशि को किन बातों का ध्यान रखना होगा?
1: अब ये समझते हैं कि जो कुल 12 राशियां हैं, उन राशियों में किसके लिए परिवर्तन अच्छा है, किसके लिए मध्यम है और किसके लिए नकारात्मक है, यानी राशियों पर इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से हम सबके जीवन में अपना प्रभाव दिखा सकता है। कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन अनुकूल है, शुभ है। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और तमाम कामों में इस समय इनको सफलता मिलेगी। लेकिन इन राशि के लोगों को भी आकस्मिक दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। करियर में समस्या हो सकती है, करियर में इस समय कोई भी जोखिम, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले सबसे ज्यादा सावधान रहेंगे, अपने पारिवारिक जीवन और अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। मिथुन, तुला और कुंभ वाले दुर्घटनाओं से बचें, शल्य चिकित्सा और मुकदमेबाजी की नौबत ना आए, इसका ध्यान रखेंगे।
0: और अब बात करते हैं आगे की राशियों की। क्या रहेगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का भाग्यफल?
1: तुला राशि, मानसिक चिंता आपको रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करें, चलिए ये भी जानते हैं पंडित जी से।
1: देखिए, कुल मिलाकर केवल 4 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन चारों के लिए अच्छा है, बाकी किसी के लिए भी मंगल का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। तो इसकी समस्याओं से बचेंगे कैसे? देखिए, ये राशि परिवर्तन जो मंगल का हुआ है ये मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ज्यादा प्रतिकूल है, ज्यादा निगेटिव है। इस समय आपको कहीं भी जरा सा जोखिम लगे यात्रा करने में, नौकरी करने में या गाड़ी चलाने में, दौड़ भाग में जरा सा भी रिस्क दिखाई दे तो इस समय कोई जोखिम मत उठाइएगा। इस समय अगले 1 महीने तक रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। आम तौर पे हनुमान चालीसा की पुस्तक में हनुमान चालीसा के बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक दिया रहता है। संभव हो तो जितना भी कर सकें इस 1 महीने में गुड़ का दान करें, लोगों को गुड़ खिलाएं, पानी पिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं। और जिनके लिए ये राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है ऐसे लोग लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करें, लाल रंग की चीजों का प्रयोग इस समय ना करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मंगल के राशि परिवर्तन की समस्या से बचे रहेंगे।
0: और अब बात करते हैं आखिर की 3 राशियों की। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहेगा राशिफल?
1: मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिख रही है, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: अब समय हो गया है दर्शकों के और सवाल लेने का। पंडित जी, आप कौन से दर्शक का सवाल लेंगे?
1: जी, अगला प्रश्न मुस्कान वाघमारे ने हमें लिखा है, बालाघाट मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 14 फरवरी सन 2000 का जन्म है। 1:52 मध्य रात्रि को बालाघाट मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मुस्कान, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है। बिल्कुल आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, SSC की तैयारी करें, मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें। प्रशासन में, टैक्सेशन में, रेवेन्यू में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है वर्ष 2027 में। और आप ऐसा करिए, मूंगा आपने पहना हुआ है वो पहने रहिए, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में एक माणिक्य पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे में लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, इसको पहना जाएगा रविवार को प्रातः। और रोज सुबह सूर्य देव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
0: अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, आप कौन से दर्शक का सवाल लेंगे?
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न वर्षा शर्मा ने हमें लिखा है, बुलंदशहर से लिखती हैं। 3 नवंबर 2001 का जन्म है। 11:20 रात को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा करियर कैसा होगा, क्या मैं मांगलिक हूं? वर्षा, कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें या प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आपका करियर बेहतर होना चाहिए। आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में मंगल बैठा है तो कुंडली आपकी मांगलिक है, इसलिए कुंडली मिला करके विवाह करिएगा। हालांकि कुंडली के हिसाब से साल 2029 में 2029 में आपका विवाह होगा। आप एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
0: और अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 23 जून को। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी से जानते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 23 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, करियर में बदलाव होगा और बदलाव के बाद सुधार होगा, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान गणेश की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
0: और चलिए आप जानते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा।
1: देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कम से कम भारतवर्ष में कि मोमबत्ती और दीपक मुंह से फूंक कर बुझाना नहीं चाहिए। क्या मोमबत्ती या दीपक मुंह से फूंक करके बुझाना अशुभ होता है? देखिए, मोमबत्ती या दीपक को मुंह से फूंकने पर आपके चेहरे पर आंच आ सकती है, आपके बाल जल सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मना किया गया है। पहली बात यही है। और हिंदू परंपरा में दीपक को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, इसीलिए सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि दीपक को या मोमबत्ती को मुंह से फूंक करके नहीं बुझाना चाहिए।
0: और अब समय हो गया है शुभ पहर के बारे में जानने का। क्या है शुभ पहर और शुभ पहर में कौन सा उपाय करने से होगा आपको लाभ?
1: दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 23 जून मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है आज की गुड लक राशि।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों की विशिष्टता क्या है। आज की गुड लक राशि है कर्क। ये भावनाओं की, इमोशंस की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। और देखिए, कर्क राशि वालों के जीवन में ज्यादातर समस्याएं या तो भावनात्मक होती हैं या तो मानसिक होती हैं।
0: और शो के आखिर में समय हो चला है महा उपाय के बारे में जानने का। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय?
1: जी, देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन में बुरे विचार आते हैं, निगेटिव विचार आने लगते हैं या खराब भावनाएं मन में आने लगती हैं, तो बड़ा गिल्ट भी होता है। क्या करना चाहिए? अगर पूजा उपासना करते समय मन में बुरे विचार आए, स्नान करके या अच्छी तरह से हाथ पैर धो करके ही पूजा करिएगा। और पूजा करने के पहले जिस भी देवी देवता की प्रभु की पूजा कर रहे हैं उनसे शुद्ध मन देने की प्रार्थना करिएगा और इसके बाद पूजा आरंभ करिएगा। आप मंत्र जप कर रहे हैं, मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आप मंत्र जप पर ज्यादा ध्यान फोकस करिएगा, धीरे धीरे ये विचार समाप्त होने शुरू हो जाएंगे।
0: तो आपने दर्शकों को जो तमाम जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
0: और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: अब आपको एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जो ना केवल उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को बयां कर रही है बल्कि उसमें नजर आ रही हरियाली के बीच पड़ रही बारिश की फुहारें भी आपको रोमांचित कर देती हैं। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा सा घास का मैदान, उस पर हजारों की संख्या में दौड़ते हुए घोड़े। ये तस्वीर जो है उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग की है और यहाँ पर उइगर ऑटोनोमस क्षेत्र के झाओसू काउंटी में हाल ही में हेवनली हॉर्स फेस्टिवल हुआ। दरअसल यहाँ ये खास आयोजन जो है घुड़सवारी, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय विरासत को समर्पित एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव इसको माना जाता है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और घुड़सवारी प्रेमी तमाम शामिल होते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इली नदी घाटी में स्थित झाओसू काउंटी को हेवनली हॉर्सेस की धरती के नाम से भी ये प्रख्यात है। ये क्षेत्र जो है सदियों पुरानी हॉर्स रिप्रोडक्शन परंपरा के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। तस्वीरें देखिए,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
4: Where did you see all this?
3: Online at APGE.com.
4: Watson, you're always so plugged in.
0: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, 4th दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-on-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बेहद दमदार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये पेशकश आप सबके नजर। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास का आईना बनकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक साथ 3 गेम चेंजर नौ सैनिक जहाजों का जलावतरण किया है। ये तीनों नेवल शिप अपने अपने क्षेत्र के मास्टर पीस हैं, जिनकी ताकत और क्षमता जानकर दुश्मन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इन तीनों नेवल शिप्स के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद हिंद महासागर में हिंदुस्तान की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ, इसीलिए इन्हें भारतीय नौसेना का गेम चेंजर माना जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि तीनों भारत में ही डिजाइन है और स्वदेशी तकनीक से लैस है। देखिए, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट।

आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है।

समंदर में भारत की स्वदेशी तकनीक और ताकत की नई नुमाइश को देखकर दुश्मन की नींद उड़ गई है। इंडियन नेवी ने रविवार को हिंद महासागर में अपनी तकनीक और ताकत का बवंडर उठाते हुए एक साथ 3 गेम चेंजर नेवल शिप्स को कमीशन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को अलग अलग खासियतों से लैस 3 नौसैनिक जहाजों को भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया। तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण बंगाल की खाड़ी में किया गया। गजब का इत्तेफाक ये है कि तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण उस दिन हुआ जब पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा था। काबिले गौर है कि 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन पीएम मोदी ने समंदर में भारत की शक्ति का शक्तिशाली मुजाहिरा भी कर दिया।

पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

0: कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर तीन महत्वपूर्ण नेवल शिप्स को राष्ट्र को समर्पित किया जाना कितना अहम और असरदार है ये समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने चीन निर्मित हंगोर क्लास की सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया था। जाहिर है 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में नौ सैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने तीन अलग अलग विशेषताओं वाले जहाज को उसी बंगाल की खाड़ी में उतार कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने तो चीन में निर्मित सबमरीन को अपनी नौसेना में शामिल किया, लेकिन भारत ने जिन तीनों नेवल शिप्स को कमीशन किया है वो पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है, और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: अब आपको बताते हैं कि ये तीनों नेवल शिप्स किस किस तरह के हैं और कैसे समंदर में इनकी मौजूदगी दुश्मन की नींद उड़ाने का काम करेगी। इनमें से पहला है INS दुनागिरी, जो कि एक फ्रिगेट यानी कॉम्बैट शिप है। दूसरा है INS अग्रय, जो एक एंटी सबमरीन शिप है। और तीसरा है INS संशोधक, जो कि एक सर्वे शिप है। ये तीनों सिर्फ नेवल शिप्स ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक मुनादी है, क्योंकि ये तीनों समंदर में भारत के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। जब आप इन तीनों जहाजों की ताकत और विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि तीन नौसैनिक जहाजों के जलावतरण से क्यों चीन और पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं INS दुनागिरी की विशेषताओं के बारे में। INS दुनागिरी जल तकनीक से बना अत्याधुनिक फ्रिगेट है, जो दुश्मन की नजरों में आए बगैर समंदर से लेकर आसमान तक की उनकी तबाही का पैगाम लिखने की क्षमता से लैस है। INS दुनागिरी नई पीढ़ी का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो रडार और दूसरे सेंसर्स को चकमा देने में माहिर है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस के अलावा MRSM वायु रक्षा प्रणाली, MF-STAR रडार तकनीक, अत्याधुनिक सोनार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस है। INS दुनागिरी लंबी दूरी के समुद्री वॉरफेयर के साथ ही मिसाइल हमले और पनडुब्बियों के खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हुए हैं।
2: इट इज द फिफ्थ शिप इन द सीक्वेंस। सो व्हाई डू वी कॉल इट अ स्टेल्थ फ्रिगेट? वी कॉल इट अ स्टेल्थ फ्रिगेट बिकॉज इट हैज गॉट रिड्यूस्ड RCS, रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड वी हैव फीचर्स दैट मेक्स इट वेरी वेरी साइलेंट। So, in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced, state-of-the-art early warning radars in all three dimensions, capable of carrying all types of helicopters, and that provides us the advantage of operating and meeting all missions.
0: INS दुनागिरी की जबरदस्त खासियतों को जानने के बाद अब बात करते हैं INS अग्रय की, जो कि एंटी सबमरीन शैलो वाटर शिप है। ये खास तौर पर उथले तटीय जल क्षेत्रों, बंदरगाहों और अहम समुद्री रास्तों की निगरानी करने में पूरी तरह से सक्षम है। INS अग्रय हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और हाईटेक सोनार सिस्टम से लैस है। इसे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही डुबा देने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।
3: इस शिप की स्पेशलिटी ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडर वाटर सेंसर्स लगे हैं, एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडर वाटर, उसी के उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज़ डिज़ाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन।
0: INS दूनागिरी और INS अग्रह की खासियत जानने के बाद अब जानते हैं तीसरे नेवल शिप INS संशोधक के बारे में। INS संशोधक सर्वे वेसल लार्ज यानी SLV श्रेणी का अत्याधुनिक हाईटेक पोत है। इसका काम मुख्य तौर पर समुद्र की गहराई, समुद्री तल की संरचना और नौसैनिक रास्तों का सर्वेक्षण करना है। ये नेवल शिप ऑटोनोमस अनमैंड व्हीकल, रिमोट ऑपरेटेड वाहन और मल्टी बेम इको साउंडर जैसे उन्नत वॉरफेयर से लैस है। सबसे खास बात यह कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के हालात में INS संशोधक एक हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
2: दिस इज बेसिकली सर्वे शिप, सो प्राइमरी रोल इज टू कंडक्ट ए हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड कलेक्ट मैरिटाइम डाटा। सो एज अ सेकेंडरी रोल दिस शिप कैन बी कन्वर्टेड इंटू ए हॉस्पिटल शिप, सो वेरियस ऑनबोर्ड स्पेसेस दैट वी विल कन्वर्टेड इंटू वार्ड्स एंड द ऑपरेशन थिएटर। सो we have modern telemedicine facility which help in real time consultation with the specialist and super specialist, as well as we are equipped with the lab facility for routine blood and urine investigation, and we are also having the ultrasound machine, so we can treat the patient, we will stabilize him here during any emergency.
0: kehne ki zarurat nahi ki ravivar ko bharat ne hind mahasagar mein jo teen naval ships utare wo tino hindustan ki aatmanirbharta ke sath बढ़ते आत्मविश्वास के भी प्रतीक हैं। सबसे अच्छी बात ये कि डिजाइन के साथ ही इनमें लगे 75% से ज्यादा उपकरण और साजो सामान पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इतना ही नहीं, इन्हें बनाने के लिए 200 से ज्यादा MSME सेवाएं ली गई हैं। इसका मतलब ये कि समंदर में हिंदुस्तान की निगेबानी और दुश्मन की परेशानी का सबब बनने के साथ ही इनमें भारी तादाद में रोजगार का भी सृजन हुआ है।

0: कोलकाता से शिरासी डे और इंदिरा चक्रवर्ती के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इन तीनों नौसैनिक जहाजों का हिंद महासागर में उतरना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वैश्विक मुनादी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, यहां तक कि हम रक्षा उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि भारत की सैन्य ताकत पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा हो चुकी है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि भारत न सिर्फ कन्वेंशनल हथियार बना रहा है बल्कि वक्त की नजाकत को देखते हुए टेक्निकल वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक को भी लगातार विकसित कर रहा है।

0: स्वदेशीकरण। सशक्तिकरण। आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास। आत्मगौरव। ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जय घोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का। ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: अब आपको एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जो ना केवल उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को बयां कर रही है बल्कि उसमें नजर आ रही हरियाली के बीच पड़ रही बारिश की फुहारें भी आपको रोमांचित कर देती हैं। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा सा घास का मैदान, उस पर हजारों की संख्या में दौड़ते हुए घोड़े। ये तस्वीर जो है उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग की है और यहाँ पर उइगर ऑटोनोमस क्षेत्र के झाओसू काउंटी में हाल ही में हेवनली हॉर्स फेस्टिवल हुआ। दरअसल यहाँ ये खास आयोजन जो है घुड़सवारी, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय विरासत को समर्पित एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव इसको माना जाता है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और घुड़सवारी प्रेमी तमाम शामिल होते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इली नदी घाटी में स्थित झाओसू काउंटी को हेवनली हॉर्सेस की धरती के नाम से भी ये प्रख्यात है। ये क्षेत्र जो है सदियों पुरानी हॉर्स रिप्रोडक्शन परंपरा के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। तस्वीरें देखिए, पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान छू लिया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया। जी हां, लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है।
2: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है। उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। सात समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
3: In the city of LA, we're declaring a day after you. So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
4: My day?
3: Your own day in the city of Los Angeles.
4: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
2: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
4: थैंक यू सो मच। माय डे इन एलए हुण होया, तैनू गड्डी च बिठा के ले जावानी मैं एलए नू।
2: अब लॉस एंजलिस में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजलिस ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजलिस ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपनी ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
5: जिन्ना मर्जी साडी रोक लो, जिन्नी मर्जी साडियां लत्तां खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे किट्टियां नूं चिंबड़ी चलो, पंजाबी आ गए।
2: लॉस एंजलिस में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 के क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थीं। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजलिस में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय औरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So, you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा 11 साल के बच्चे की भी हो रही है जो एक मठ का महंत बन गया है।
8: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में रविवार की शाम आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। यहाँ आसमान में बने इस विशालकाय और अनोखे नजारे को देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। आसमान में घुमावदार धूल और बादलों की एक बड़े खंभे जैसी आकृति दिखाई दे रही थी जो टोर्नेडो जैसी लग रही थी। हालांकि तेज हवा के झोंके ने कुछ जगहों पर नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये कोई डरावना टोर्नेडो नहीं था बल्कि बादलों के सिस्टम से जुड़ा एक बहुत शक्तिशाली और अनोखा थंडरस्टॉर्म अपड्राफ्ट था। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां सिर्फ 11 साल का एक मासूम बच्चा अब एक बड़े मठ का महंत बन गया है। बलिया के मझौवा मठ में रविवार की शाम अद्भुत नजारे की गवाह बनी क्योंकि 11 साल के बालक शाश्वत शौर्य तिवारी का पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक किया गया। सोशल मीडिया और इलाके में इस नन्हे महंत की चर्चा हर तरफ है। दिलचस्प बात यह है कि जब तिलक और अभिषेक की रस्में चल रही थी तो ये 11 साल का बच्चा वीडियो कॉलिंग पर अपने परिवार से बात करते हुए हंसता मुस्कुराता नजर आया। इस मौके पर मठ के तमाम भक्त तो मौजूद थे ही, आसपास के इलाकों के लोग भी इस अलौकिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। महंत बनने के बाद अब 11 साल के इस बच्चे को नया नाम मिला है, श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णोदास। अयोध्या में दूल्हा सरकार के दबाव को इस बार किसी आम फूलों और पत्तियों से नहीं बल्कि फलों के राजा आम और उसकी पत्तियों से सजाया गया है। गर्मी के सीजन में मंदिर को पूरी तरह से मैंगो थीम पर डेकोरेट किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चारों तरफ लटकते हुए हरे और रसीले आम और उनके बीच विराजे प्रभु। आस्था और मौसम उत्सव के इस अनोखे संगम को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई दूल्हा सरकार के इस मनमोहक रूप के दर्शन करने और इस अद्भुत सजावट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। आम के पत्तों और तरह तरह की वैरायटी के आमों से सजे इस दरबार की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मैदानी इलाकों में बढ़ते पारे के साथ ही पहाड़ी इलाकों में रौनक देखने लायक है। वीकेंड पर तो सैलानियों की तादाद 2 से 3 गुना हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखने को मिला, जहां सैलानी बड़ी तादाद में उमड़े। पहाड़ियों की चोटियों पर हसीन मौसम तो सैलानियों को भी भा रहा है, लेकिन कुल्लू की ब्यास नदी के किनारे भी सैलानियों का मेला लगा हुआ है। अलग अलग इलाकों से आए सैलानी नदी की ठंडी धारा में रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले रहे हैं। नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानियों के लिए राफ्टिंग रोमांच से भरपूर है। गर्मी से राहत की तलाश में यहां पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी बोनस जैसा है। जून महीने में सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते ब्यास नदी में राफ्टिंग की संख्या बढ़ रही है और सैलानियों के आने से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी इसका खूब फायदा मिल रहा है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ता तनाव और मानसिक दबाव लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल की है, इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटीर विकसित की है। आईआईटी मंडी में इस परियोजना का प्रोटोटाइप भी दिखाया जा चुका है। गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से इन कुटीरों को बनाया गया है। कुटीर में एक शख्स को लगभग 10 मिनटों का समय बिताना होता है। इस दौरान उसे अलग अलग प्राकृतिक ध्वनियां सुनाई जाती हैं, जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज, पानी की बौछारों की ध्वनि और घंटियों की आवाज शामिल है।
7: और अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भक्ति और आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के प्रथम जत्थे को झंडे दिखाकर रवाना किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं।

0: नाथुला में भारत चीन बॉर्डर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिक्किम के पर्यटन मंत्री शेरिंग थेंडुप भूटिया, भारतीय सेना आईटीबीपी और सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। सिक्किम के राज्यपाल ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, हर हर महादेव की गूंज पूरी फिजा में बिखर गई। नाथुला में श्रद्धालुओं के बीच भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता और उत्साह नजर आया। कई तीर्थयात्रियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने यात्रा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार हो रहा है। एक तीर्थयात्री ने कहा कि अब तक ये एक शानदार यात्रा रही है, प्रशासन ने हम सभी के लिए इसे बहुत आसान बना दिया है, अब भगवान शिव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है।
1: हमें दर्शन देंगे वहाँ जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, कैलाश पर्वत दर्शन होगी, इससे बढ़िया और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हम बहुत खुश हैं।
0: समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर रवाना हुए। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति, आस्था और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अनुपम अवसर भी है।
2: आज बाबा विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है, और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूं। और ये पिछले 5 सालों से जो बंद था, पिछले साल ही शुरू हुआ, और मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला है।
0: हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन कर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही है, क्योंकि सालों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार जो होने जा रहा है।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा से जो मेरा जो मानना है वो मैं क्या मांगूंगा, शायद कोई नहीं मांग रहा होगा, कि मैं चाहता हूं कि भगवान शिव जी भारत में आके हमको दर्शन दें।
0: सिक्किम के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते समय श्रद्धालुओं में बहुत जोश और उत्साह था, और उम्मीद है कि उनकी धर्म यात्रा बाबा बर्फानी की कृपा और आशीर्वाद से सफल होगी।
4: जितना भी यहाँ लोग भक्तजन श्रद्धालु सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट बैच कम से कम सिक्किम में मोटा मोटी 5 दिन पहले वहाँ लोग का उन लोग का आक्रमण हुआ था, और इसीलिए उन लोग का एकदम डिफरेंट जगह पे हम लोग उन लोग को एक्लमाटाइजेशन के लिए एकदम रखा गया था। और इसके लिए जितना भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख के सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जितना भी ऑफिशियल्स है वो सब दे के एकदम इतना अच्छा खातिरदारी करके, जब अभी हम लोग उन लोग के साथ जितना भी भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे प्रेजेंट था, जो अभी आर्मी के जो अभी वो ऊपर जो मेन हॉल में हम लोग का थोड़ा इंटरेक्शन हुआ था, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए हम लोग को ऐसा मतलब जानने में आए कि वो लोग एकदम खुश था, जो सिक्किम का जो हॉस्पिटैलिटी में जो हम लोग बहुत ही स्पेशल है बोल के उन लोग का मुंह से हम लोग को सुनने में आ रहा था, इसलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा हुआ,
5: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अलोंग विद आईटीबीपी, एसटीडीसी एंड दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल कुल 500 तीर्थयात्री नाथुला रास्ते से यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों को 50-50 लोगों के 10 समूहों में बांटा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से सिक्किम टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं तीर्थयात्रियों ने अलग अलग सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं की तारीफ की।
4: भगवान का कोई दर्शन करने के लिए आए हैं, तो एकदम वो लोग एकदम खुश था। सही ये यात्रा सफल रहेंगे और ये 10 दिन की यात्रा रहेंगे और कम से कम ये 30 तारीख को वो लोग सब यहाँ पे बॉर्डर फिर वापस आएंगे। इसी तरह मतलब इस साल का भी जो 10 बैच है वो लोग एकदम टर्न वाइज करते आएंगे और लास्ट बैच रहूँगा ये अगस्त महीना में जो लास्ट बैच हम लोग हैंडल करेंगे। शायद ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब मतलब जो हो रहा है, जो यात्रा शुरू हो रहा है, ये काफ़ी साल से, कम से कम 5 साल से बंद था। लास्ट ईयर ही ये मतलब यात्रा शुरू हुआ है। ये यात्रा शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिक्किम टूरिज्म में वैल्यू एडिशन देने का ही मतलब काम हो रहा है।
6: बहुत अच्छा है, सिक्किम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सभी स्टाफ बहुत अच्छे, हम लोगों का देखभाल किया।
0: बता दें कि इस यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। ये ग्रुप देश के अलग अलग हिस्सों से आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से पहले सभी श्रद्धालुओं का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और सभी यात्री पूरी तरह स्वस्थ पाए गए।
7: जैसा कि पता है कि ITUP कैलाश मानसरोवर यात्रा में शुरू से इन्वॉल्व है और दोनों तरफ से लिपु लेक और नाथुला की तरफ से हम यात्रा कराते हैं। हमारा काम यात्रियों को सिक्योरिटी प्रदान करना और साथ ही साथ मेडिकल कवर देना होता है। तो बाकी साल की तरह भी इस साल भी हम लोगों ने उसी ढंग का अरेंजमेंट किया है और फॉर्चुनेटली मेडिकल फाइनल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें सारे यात्री क्लियर हो गए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इनको सिक्योरिटी देना, मेडिकल कवर कराना और क्रॉस कराना हमारी जवाबदारी। इस बार भी यात्री करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से हैं, तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, नोएडा, पूरे इलाके के, पूरे हिंदुस्तान के यात्री हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 30 साल से लेकर 70 साल तक।
0: हालांकि ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई जरूर है, लिहाजा विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास ने यात्रियों को आगाह किया है कि तिब्बत का क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और सीमित सुविधाएं चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूरी तैयारी, चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक सावधानियों के साथ यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में अंतिम, सर्वोच्च और महातीर्थ माना गया है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदुओं, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर इंडोनेशिया में सुनाएंगे 3 दिनों तक हनुमंत कथा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में हनुमंत कथा की तैयारी कर रहे हैं। जकार्ता में वो 3 दिनों तक सनातन की अलख जलाएंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जकार्ता में 26 से 28 जून तक प्रभु का गुणगान करेंगे, जहां 3 दिनों तक भव्य हनुमंत कथा और दिव्य दरबार सजेगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडोनेशिया के कार्यक्रम की जानकारी शेयर की है। भारतीय उपभोक्ता अब सामानों से ज्यादा अनुभवों पर खर्च कर रहे हैं। CBRE की नई रिपोर्ट बता रही है कि 2030 तक अनुभवों पर होने वाला खर्च 10.3% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा, जो कि भौतिक वस्तुओं से आगे निकल जाएगा। इसमें होटल सेवाओं की ग्रोथ सबसे तेज यानी करीब 10.6% रहने का अनुमान है। CBRE की रिपोर्ट बता रही है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत जेन जी है। ये पीढ़ी तेजी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है और जैसे जैसे इनकी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके खर्च करने का तरीका भी बाजार की दिशा तय कर रहा है। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बदलने वाली है। इसके तहत अब सिर्फ लाइट लगाना ही नहीं बल्कि उसे चालू रखना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर किसी इलाके की स्ट्रीट लाइट खराब होती है और उसे समय पर ठीक नहीं किया जाता है तो ठेकेदार को भुगतान में कटौती झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। जितने घंटे लाइट खराब रहेगी उसी के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें स्मार्ट LED लाइट्स को एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा जो रियल टाइम में पूरे नेटवर्क पर नजर रखेगा। इससे अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अंधेरे वाले हिस्सों की पहचान जल्दी हो सकेगी। असम के ग्लोबल कम्युनिटी से जोड़ने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। EU के सदस्य देशों असम के लिए ट्रैवल एडवाइजरी हटा लेने के बाद अब एयर इंडिया 4 अगस्त से गुवाहाटी से दुबई और अबुधाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन नॉन स्टॉप सेवाओं के साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट अब 4 देशों UAE, थाईलैंड, सिंगापुर और भूटान से जुड़ गया है। CM हेमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद अगला लक्ष्य वियतनाम के लिए सीधी सेवाएं शुरू करना है। CM ने बताया कि गुवाहाटी को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक बड़े ट्रैवल और ट्रांजिट हब के तौर पर स्थापित करने की तैयारी हो रही है। सासनगीर और गिरनार जंगल में घूमने और एशियाई शेरों के दीदार करने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अहम खबर है। एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू हो रहा है। वन विभाग ने कल से सासनगीर और गिरनार जंगल सफारी को अगले 4 महीने के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए लायन सफारी भी बंद रहेगी।
8: सुपरस्टार यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट आ गई है तो वहीं अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा देखने को मिला। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
9: साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए गुड न्यूज है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। एक्टर यश ने खुद सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी है। अब लंबे वीकेंड के साथ फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम कामयाबी का एक कीर्तिमान आ गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम पर रख दिया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजल्स में पब्लिक हॉलिडे रखा जाएगा। लॉस एंजल्स द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया यह सबसे बड़ा सम्मान है। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। धुरंधर 2 पार्ट्स में रिलीज की गई थी और इन दोनों पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर ने दुनिया भर में 3,100 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई के बाद रणवीर को बड़े पर्दे के कलेक्शन के साथ डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के हिस्से के तौर पर 325 करोड़ रुपए मिले। इस कमाई के साथ रणवीर ने शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार्स की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि एक्टर या फिल्म मेकर्स की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई। पुष्पा और एनिमल जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हिट फिल्मों की लिस्ट में लेटेस्ट कॉकटेल 2 का नाम भी शामिल होने वाला है क्योंकि केवल 3 दिनों में दुनिया भर में फिल्म ने 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और 100 करोड़ की ओर बढ़ चुकी है। होमा अदजानिया के निर्देशन में बनी कॉकटेल 2 में रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर की तिकड़ी है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई हासिल की है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर की शादी का जश्न शुरू हो गया है। शादी से पहले की रस्मों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंशुला की आंटी महीप कपूर ने शादी से पहले के जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। शादी से पहले के जश्न के वीडियोस और तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया गया है कि शादी शुरू, जय माता दी। अंशुला एवं रोहन, उनकी इन तस्वीरों से सेरेमनी की एक झलक दिखी जो माता की चौकी लग रही है।
8: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात ये कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन ले, लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं

बॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी, लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।

0: आप जरा इस वायरल बंदर को देखिए। ये बंदर बड़ी सावधानी से साइकिल के पहिए से ट्यूब निकाल रहा है। उसके हाव भाव और काम करने का तौर तरीका देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है। जानवरों के मजेदार और प्यारे से वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। देखिए कैसे ये छोटा हाथी पानी के टब में पूरी तरह मस्ती के मूड में है। कभी वो पानी में उछलता कूदता है तो कभी सिर के बल टब में गिर जाता है। उसकी शरारतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं।
1: इंग्लैंड में धूमधाम से मना समर सॉल्स्टिस उत्सव। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: इक्कीस जून को इंग्लैंड के प्राचीन स्मारक स्टोन हेंज में समर सोल्स्टिस का उत्सव मनाया गया। इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सूरज की पहली किरणों के साथ इस विशेष खगोलीय घटना को एंजॉय किया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साल के सबसे लंबे दिन को बताने वाले इस सालाना आयोजन में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक इमारत स्टोनहेंज में बड़ी संख्या में लोग पूरी रात जागकर सूर्योदय का इंतजार करते रहे, और जैसे ही सनराइज हुआ इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने म्यूजिक के साथ डांस कर विशाल पत्थरों को छूकर इस पल का जश्न मनाया। डेनमार्क के फैनो द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े पतंग महोत्सव में 26 देशों के हजारों पतंगबाज जुटे। हर साल जून में आयोजित होने वाले फैनो इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स मीटिंग में इस बार करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आसमान में लगभग 25,000 रंग बिरंगी पतंगे उड़ी, जिनमें विशाल काय ड्रैगन, समुद्री जीव, कार्टून कैरेक्टर और अनोखे डिजाइन की पतंगे शामिल रही। डेनमार्क के उत्तरी सागर तट से सटे फैनो द्वीप को पतंग उड़ाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन स्थानों में गिना गया है। इसकी 14 किलोमीटर लंबी चौड़ी और समतल समुद्री रेत और लगातार चलने वाली तटीय हवाएं पतंगबाजों को आदर्श माहौल देती हैं। कलर्स और क्रिएटिविटी से सजे इस महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पतंग सिर्फ एक खिलौना भर नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ने वाली कला और संस्कृति का अनोखा माध्यम भी है। चीन की राजधानी बीजिंग में चौथे चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इस अनोखी एक्सपो में डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट व्हीकल का प्रदर्शन हुआ, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बनी AI। इस विशेष एक्सपो में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, इंटेलिजेंस ड्राइविंग, स्मार्ट फैक्ट्री और इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक जैसे AI बेस्ड आइटम्स को पेश किया गया। चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में 85 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चीन के ल्हासा में डुआनवू फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस मौके पर 3600 मीटर ऊंचाई वाले रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस हुई। इस याक लेदर बोट रेस में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान सबका ध्यान पारंपरिक नावों ने अपनी ओर खींच लिया। ल्हासा में डुआनवू फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस मौके पर 3600 मीटर ऊंचाई वाले रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस हुई। इस याक लेदर बोट रेस में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान सबका ध्यान पारंपरिक नावों ने अपनी

0: और खींच लिया। इस खास कार्यक्रम में स्थानीय संस्कृति की झलक तो देखने को मिली ही, विजिटर्स के लिए भी फोक कल्चर जोन बनाया गया था, लेकिन सबसे खास था इंटेंजिबल हेरिटेज जोन, जिसकी चर्चा हर तरफ थी। इस अनोखे आयोजन में स्थानीय पकवान भी मौजूद थे, लेकिन बांस के पत्तों में लिपटे चावल की डिश लोगों को खूब पसंद आई। हंगरी के बुडापेस्ट में भारतीय सांस्कृतिक और अध्यात्म की झलक देखने को मिली। ग्लोबल वारी 2026 के दौरान भगवान श्री विट्ठल रुक्मणी की पवित्र पादुकाएं पहली बार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंची। ये पवित्र यात्रा 6 जून को यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई थी और नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक होते हुए 21 जून को बुडापेस्ट पहुंची। यहां से ये यात्रा भारत में पंढरपुर की ओर बढ़ेगी। ग्लोबल वारी के जरिए भक्ति और वारकरी परंपरा अब भारत से बाहर यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
3: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
2: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
1: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-on-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बेहद दमदार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये पेशकश आप सबके नजर। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास का आईना बनकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक साथ 3 गेम चेंजर नौ सैनिक जहाजों का जलावतरण किया है। ये तीनों नेवल शिप अपने अपने क्षेत्र के मास्टर पीस हैं, जिनकी ताकत और क्षमता जानकर दुश्मन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इन तीनों नेवल शिप्स के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद हिंद महासागर में हिंदुस्तान की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ, इसलिए इन्हें भारतीय नौसेना का गेम चेंजर माना जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि तीनों भारत में ही डिजाइन है और स्वदेशी तकनीक से लैस है। देखिए देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट।

आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है।

0: समंदर में भारत की स्वदेशी तकनीक और ताकत की नई नुमाइश को देखकर दुश्मन की नींद उड़ गई है। इंडियन नेवी ने रविवार को हिंद महासागर में अपनी तकनीक और ताकत का बवंडर उठाते हुए एक साथ 3 गेम चेंजर नेवल शिप्स को कमीशन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को अलग अलग खासियतों से लैस 3 नौसैनिक जहाजों को भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया। तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण बंगाल की खाड़ी में किया गया। गजब का इत्तेफाक ये है कि तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण उस दिन हुआ जब पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा था। काबिले गौर है कि 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
1: और इसी दिन पीएम मोदी ने समंदर में भारत की शक्ति का शक्तिशाली मुजाहिरा भी कर दिया।

0: आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर 3 महत्वपूर्ण नेवल शिप्स को राष्ट्र को समर्पित किया जाना कितना अहम और असरदार है ये समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने चीन निर्मित हंगोर क्लास की सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया था। जाहिर है 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में नौ सैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 अलग अलग विशेषताओं वाले जहाज को उसी बंगाल की खाड़ी में उतार कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने तो चीन में निर्मित सबमरीन को अपनी नौसेना में शामिल किया, लेकिन भारत ने जिन तीनों नेवल शिप्स को कमीशन किया है वो पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: अब आपको बताते हैं कि ये तीनों नेवल शिप्स किस किस तरह के हैं और कैसे समंदर में इनकी मौजूदगी दुश्मन की नींद उड़ाने का काम करेगी। इनमें से पहला है INS दुनागिरी, जो कि एक फ्रिगेट यानी कॉम्बैक शिप है। दूसरा है INS अग्रय, जो एक एंटी सबमरीन शिप है। और तीसरा है INS संशोधक, जो कि एक सर्वे शिप है। ये तीनों सिर्फ नेवल शिप्स ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक मुनादी है, क्योंकि ये तीनों समंदर में भारत के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। जब आप इन तीनों जहाजों की ताकत और विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 3 नौसैनिक जहाजों के जलावतरण से क्यों चीन और पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं INS दुनागिरी की विशेषताओं के बारे में। INS दुनागिरी जल तकनीक से बना अत्याधुनिक फ्रिगेट है, जो दुश्मन की नजरों में आए बगैर समंदर से लेकर आसमान तक की उनकी तबाही का पैगाम लिखने की क्षमता से लैस है। INS दुनागिरी नई पीढ़ी का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो रडार और दूसरे सेंसर्स को चकमा देने में माहिर है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस के अलावा MRSM वायु रक्षा प्रणाली, MF स्टार रडार तकनीक, अत्याधुनिक सोनार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस है। INS दूनागिरी लंबी दूरी के समुद्री वॉरफेयर के साथ ही मिसाइल हमले और पनडुब्बियों के खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हुए हैं।
2: It is the fifth ship in the sequence. So why do we call it a stealth frigate? We call it a stealth frigate because it has got reduced RCS, radar cross sectional area, and we have features that makes it very very silent. So in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced state of the art early warning radars in all three dimensions. Capable of carrying all types of helicopters, and that provides us the advantage of operating and meeting all missions.
1: INS दूनागिरी की जबरदस्त खासियतों को जानने के बाद अब बात करते हैं INS अग्रह की, जो कि एंटी सबमरीन शैलो वाटर शिप है। ये खास तौर पर उथले तटीय जल क्षेत्रों, बंदरगाहों और अहम समुद्री रास्तों की निगरानी करने में पूरी तरह से सक्षम है। INS अग्रह हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और हाईटेक सोनार सिस्टम से लैस है। इसे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही डुबा देने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।
3: इस शिप की स्पेशलिटी ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडर वाटर सेंसर्स लगे हैं, एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडर वाटर, उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज डिजाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन।
1: INS दूनागिरी और INS अग्रह की खासियत जानने के बाद अब जानते हैं तीसरे नेवल शिप INS संशोधक के बारे में। INS संशोधक सर्वे वेसल लार्ज यानी SLV श्रेणी का अत्याधुनिक हाईटेक पोत है। इसका काम मुख्य तौर पर समुद्र की गहराई, समुद्री तल की संरचना और नौसैनिक रास्तों का सर्वेक्षण करना है। ये नेवल शिप ऑटोनोमस अनमैन्ड व्हीकल, रिमोट ऑपरेटेड वाहन और मल्टी बेम इको साउंडर जैसे उन्नत वॉरफेयर से लैस है। सबसे खास बात यह कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के हालात में INS संशोधक एक हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
2: This is basically a survey ship. So primary role is to conduct a hydrographic survey and collect maritime data. So as a secondary role, this ship can be converted into a hospital ship. So various onboard spaces that we will convert it into wards and the operation theater. So we have modern telemedicine facility which help in real-time consultation with the specialist and super specialist, as well as we are equipped with a lab facility for routine blood and urine investigation. And we are also having the ultrasound machine. So we can treat the patient. We will stabilize him here during any emergency.
1: कहने की जरूरत नहीं कि रविवार को भारत ने हिंद महासागर में जो तीन नेवल शिप्स उतारे, वो तीनों हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता के साथ ही बढ़ते आत्मविश्वास के भी प्रतीक हैं। सबसे अच्छी बात ये कि डिजाइन के साथ ही इनमें लगे 75% से ज्यादा उपकरण और साजो सामान पूरी तरह से स्वदेशी है। इतना ही नहीं, इन्हें बनाने के लिए 200 से ज्यादा MSME सेवाएं ली गई हैं। इसका मतलब यह कि समंदर में हिंदुस्तान की निगरानी और दुश्मन की परेशानी का सबब बनने के साथ ही इनमें भारी तादाद में रोजगार का भी सृजन हुआ है।

0: कोलकाता से शिराशी डे और इंदिरा चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: इन तीनों नौसैनिक जहाजों का हिंद महासागर में उतरना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वैश्विक मुनादी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, यहां तक कि हम रक्षा उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि भारत की सैन्य ताकत पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा हो चुकी है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि भारत न सिर्फ कन्वेंशनल हथियार बना रहा है बल्कि वक्त की नजाकत को देखते हुए टेक्निकल वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक को भी लगातार विकसित कर रहा है।

0: स्वदेशीकरण। सशक्तिकरण। आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास। आत्मगौरव। ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जय घोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का। ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: अब आपको एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जो ना केवल उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को बयां कर रही है बल्कि उसमें नजर आ रही हरियाली के बीच पड़ रही बारिश की फुहारें भी आपको रोमांचित कर देती हैं। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा सा घास का मैदान, उस पर हजारों की संख्या में दौड़ते हुए घोड़े। ये तस्वीर जो है उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग की है और यहाँ पर उइगर ऑटोनोमस क्षेत्र के झाओसू काउंटी में हाल ही में हेवनली हॉर्स फेस्टिवल हुआ। दरअसल यहाँ ये खास आयोजन जो है घुड़सवारी, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय विरासत को समर्पित एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव इसको माना जाता है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और घुड़सवारी प्रेमी तमाम शामिल होते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इली नदी घाटी में स्थित झाओसू काउंटी को हेवनली हॉर्सेस की धरती के नाम से भी ये प्रख्यात है। ये क्षेत्र जो है सदियों पुरानी हॉर्स रिप्रोडक्शन परंपरा के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। तस्वीरें देखिए, पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान छू लिया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया। जी हां, लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है।
2: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है, उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। चांद समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
3: In the city of LA, we're declaring a day after you. So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
4: My day?
3: Your own day in the city of Los Angeles.
4: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
2: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
4: थैंक यू सो मच। माय डे इन एलए हुण होया तैनू गड्डी च बिठा के ले जावानी मैं एलए नू।
2: अब लॉस एंजलिस में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजलिस ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजलिस ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपने ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
5: जिन्ना मर्जी सानू रोक लो, जिन्नी मर्जी साड़ियां लत्तां खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे गिट्टियां नू चिंबड़ी चलो, पंजाबी आ गए।
2: लॉस एंजलिस में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 के क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थीं। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजलिस में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय औरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
6: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा 11 साल के बच्चे की भी हो रही है जो एक मठ का महंत बन गया है।
1: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में रविवार की शाम आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। यहां आसमान में बने इस विशालकाय और अनोखे नजारे को देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। आसमान में घुमावदार धूल और बादलों की एक बड़े खंभे जैसी आकृति दिखाई दे रही थी जो टोर्नेडो जैसी लग रही थी। हालांकि तेज हवा के झोंके ने कुछ जगहों पर नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये कोई डरावना टोर्नेडो नहीं था बल्कि बादलों के सिस्टम से जुड़ा एक बहुत शक्तिशाली और अनोखा थंडरस्टॉर्म अपड्राफ्ट था। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां सिर्फ 11 साल का एक मासूम बच्चा अब एक बड़े मठ का महंत बन गया है। बलिया के मझौवा मठ में रविवार की शाम अद्भुत नजारे की गवाह बनी क्योंकि 11 साल के बालक शाश्वत शौर्य तिवारी का पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक किया गया। सोशल मीडिया और इलाके में इस नन्हे महंत की चर्चा हर तरफ है। दिलचस्प बात यह है कि जब तिलक और अभिषेक की रस्में चल रही थी तो ये 11 साल का बच्चा वीडियो कॉलिंग पर अपने परिवार से बात करते हुए हंसता मुस्कुराता नजर आया। इस मौके पर मठ के तमाम भक्त तो मौजूद थे ही, आसपास के इलाकों के लोग भी इस अलौकिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। महंत बनने के बाद अब 11 साल के इस बच्चे को नया नाम मिला है, श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णोदास। अयोध्या में दूल्हा सरकार के दबाव को इस बार किसी आम फूलों और पत्तियों से नहीं बल्कि फलों के राजा आम और उसकी पत्तियों से सजाया गया है। गर्मी के सीजन में मंदिर को पूरी तरह से मैंगो थीम पर डेकोरेट किया गया जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चारों तरफ लटकते हुए हरे और रसीले आम और उनके बीच विराजे प्रभु। आस्था और मौसम
7: उत्सव के इस अनोखे संगम को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई दूल्हा सरकार के इस मनमोहक रूप के दर्शन करने और इस अद्भुत सजावट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। आम के पत्तों और तरह तरह की वैरायटी के आमों से सजे इस दरबार की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मैदानी इलाकों में बढ़ते पारे के साथ ही पहाड़ी इलाकों में रौनक देखने लायक है। वीकेंड पर तो सैलानियों की तादाद 2 से 3 गुना हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखने को मिला, जहां सैलानी बड़ी तादाद में उमड़े। पहाड़ियों की चोटियों पर हसीन मौसम तो सैलानियों को भी भा रहा है, लेकिन कुल्लू की ब्यास नदी के किनारे भी सैलानियों का मेला लगा हुआ है। अलग अलग इलाकों से आए सैलानी नदी की ठंडी धारा में रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले रहे हैं। नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानियों के लिए राफ्टिंग रोमांच से भरपूर है। गर्मी से राहत की तलाश में यहां पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी बोनस जैसा है। जून महीने में सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते ब्यास नदी में राफ्टिंग की संख्या बढ़ रही है और सैलानियों के आने से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी इसका खूब फायदा मिल रहा है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ता तनाव और मानसिक दबाव लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल की है। इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटीर विकसित की है। आईआईटी मंडी में इस परियोजना का प्रोटोटाइप भी दिखाया जा चुका है। गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से इन कुटीरों को बनाया गया है। कुटीर में एक शख्स को लगभग 10 मिनटों का समय बिताना होता है। इस दौरान उसे अलग अलग प्राकृतिक ध्वनियां सुनाई जाती हैं, जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज, पानी की बौछारों की ध्वनि और घंटियों की आवाज शामिल है।
6: और अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भक्ति और आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के प्रथम जत्थे को झंडे दिखाकर रवाना किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं।

0: नाथुला में भारत चीन बॉर्डर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिक्किम के पर्यटन मंत्री शेरिंग थेंडुक भूटिया, भारतीय सेना, आईटीबीपी और सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। सिक्किम के राज्यपाल ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, हर हर महादेव की गूंज पूरी फिजा में बिखर गई। नाथुला में श्रद्धालुओं के बीच भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता और उत्साह नजर आया। कई तीर्थयात्रियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने यात्रा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार हो रहा है। एक तीर्थयात्री ने कहा कि अब तक ये एक शानदार यात्रा रही है, प्रशासन ने हम सभी के लिए इसे बहुत आसान बना दिया है, अब भगवान शिव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है।
1: हमें दर्शन देंगे वहाँ जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, कैलाश पर्वत दर्शन होगी, इससे बढ़िया और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हम बहुत खुश हैं।
0: समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर रवाना हुए। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति, आस्था और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अनुपम अवसर भी है।
2: आज बाबा विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इनका आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूं। और ये पिछले 5 सालों से जो बंद था, पिछले साल ही शुरू हुआ और मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला है।
0: हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन कर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही है, क्योंकि सालों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार जो होने जा रहा है।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा से जो मेरा जो मानना है वो मैं क्या मांगूंगा, शायद कोई नहीं मांग रहा होगा, कि मैं चाहता हूं कि भगवान शिव जी भारत में आके हमको दर्शन दें।
0: सिक्किम के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते समय श्रद्धालुओं में बहुत जोश और उत्साह था और उम्मीद है कि उनकी धर्म यात्रा बाबा बर्फानी की कृपा और आशीर्वाद से सफल होगी।
4: जितना भी यहाँ लोग भक्तजन श्रद्धालु सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट बैच कम से कम सिक्किम में मोटा मोटी 5 दिन पहले वहाँ लोग का उन लोग का आक्रमण हुआ था और इसलिए उन लोग को एकदम डिफरेंट जगह पे हम लोग उन लोग को एक्लमाटाइजेशन के लिए एकदम रखा गया था। और इसके लिए जितना भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख के सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जितना भी ऑफिशियल्स है वो सब उन लोग को एकदम देखभाल जो हॉस्पिटेलिटी जो सिक्किम का देना था वो सब दे के एकदम इतना अच्छा खातिरदारी करके जब अभी हम लोग उन लोग के साथ जितना भी भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे प्रेजेंट था जो अभी आर्मी के जो अभी वो ऊपर जो मेन हॉल में हम लोग का थोड़ा इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए हम लोग को ऐसा मतलब जानने में आए कि वो लोग एकदम खुश था जो सिक्किम का जो हॉस्पिटैलिटी में जो हम लोग बहुत ही स्पेशल है बोल के उन लोग का मुंह से हम लोग को सुनने में आ रहा था, इसलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा हुआ,
5: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अलोंग विद आईटीबीपी, एसटीडीसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल कुल 500 तीर्थयात्री नाथुला रास्ते से यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों को 50-50 लोगों के 10 समूहों में बांटा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से सिक्किम टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं तीर्थयात्रियों ने अलग अलग सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं की तारीफ की।
4: भगवान का कोई दर्शन करने के लिए आए हैं तब एकदम वो लोग एकदम खुश था, सहित ये यात्रा सफल रहेंगे और ये 10 दिन के यात्रा रहेंगे और कम से कम ये 30 तारीख को वो लोग सब यहाँ पे बॉर्डर फिर वापस आएंगे। इसी तरह मतलब इस साल का भी जो 10 बैच है वो लोग एकदम टर्न वाइज करते आएंगे और लास्ट बैच रहूँगा ये अगस्त महीना में जो लास्ट बैच हम लोग हैंडल करेंगे। सहित ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब मतलब जो हो रहा है, जो यात्रा शुरू हो रहा है, ये काफी साल से कम 5 साल से बंद था। लास्ट ईयर ही ये मतलब यात्रा शुरू हुआ है। ये यात्रा शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिक्किम टूरिज्म में वैल्यू एडिशन देने का एक मतलब काम हो रहा है।
6: बहुत अच्छा सिक्किम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सभी स्टाफ बहुत अच्छे, हम लोगों का देखभाल किया।
0: बता दें कि इस यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। ये ग्रुप देश के अलग अलग हिस्सों से आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से पहले सभी श्रद्धालुओं का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और सभी यात्री पूरी तरह स्वस्थ पाए गए।
7: जैसा कि पता है कि ITEP कैलाश मानसरोवर यात्रा में शुरू से इन्वॉल्व है और दोनों तरफ से लिपु लेक और नाथुला की तरफ से हम यात्रा कराते हैं। हमारा काम यात्रियों को सिक्योरिटी प्रदान करना और साथ ही साथ मेडिकल कवर देना होता है। तो बाकी साल की तरह भी इस साल भी हम लोगों ने उसी ढंग का अरेंजमेंट किया है और फॉर्चुनेटली मेडिकल फाइनल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें सारे यात्री क्लियर हो गए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इनको सिक्योरिटी देना, मेडिकल कवर कराना और क्रॉस कराना हमारी जवाबदारी है। इस बार भी यात्री करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से हैं, तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, नोएडा, पूरे इलाके के, पूरे हिंदुस्तान के यात्री हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 30 साल से लेकर 70 साल तक।
0: हालांकि ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई जरूर है, लिहाजा विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास ने यात्रियों को आगाह किया है कि तिब्बत का क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है जहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और सीमित सुविधाएं चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूरी तैयारी, चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक सावधानियों के साथ यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में अंतिम, सर्वोच्च और महातीर्थ माना गया है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदुओं, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर इंडोनेशिया में सुनाएंगे 3 दिनों तक हनुमंत कथा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में हनुमंत कथा की तैयारी कर रहे हैं। जकार्ता में वो 3 दिनों तक सनातन की अलख जलाएंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जकार्ता में 26 से 28 जून तक प्रभु का गुणगान करेंगे, जहां 3 दिनों तक भव्य हनुमंत कथा और दिव्य दरबार सजेगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडोनेशिया के कार्यक्रम की जानकारी शेयर की है। भारतीय उपभोक्ता अब सामानों से ज्यादा अनुभवों पर खर्च कर रहे हैं। CBRE की नई रिपोर्ट बता रही है कि 2030 तक अनुभवों पर होने वाला खर्च 10.3% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा, जो कि भौतिक वस्तुओं से आगे निकल जाएगा। इसमें होटल सेवाओं की ग्रोथ सबसे तेज यानी करीब 10.6% रहने का अनुमान है। CBRE की रिपोर्ट बता रही है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत जेन Z है। ये पीढ़ी तेजी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है और जैसे जैसे इनकी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके खर्च करने का तरीका भी बाजार की दिशा तय कर रहा है। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बदलने वाली है। इसके तहत अब सिर्फ लाइट लगाना ही नहीं बल्कि उसे चालू रखना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर किसी इलाके की स्ट्रीट लाइट खराब होती है और उसे समय पर ठीक नहीं किया जाता है तो ठेकेदार को भुगतान में कटौती झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। जितने घंटे लाइट खराब रहेगी उसी के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें स्मार्ट एलईडी लाइट्स को एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा जो रियल टाइम में पूरे नेटवर्क पर नजर रखेगा। इससे अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अंधेरे वाले हिस्सों की पहचान जल्दी हो सकेगी। असम की ग्लोबल कम्युनिटी से जोड़ने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। ईयू के सदस्य देशों असम के लिए ट्रेवल एडवाइजरी हटा लेने के बाद अब एयर इंडिया 4 अगस्त से गुवाहाटी से दुबई और अबुधाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन नॉनस्टॉप सेवाओं के साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट अब 4 देशों यूएई, थाईलैंड, सिंगापुर और भूटान से जुड़ गया है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद अगला लक्ष्य वियतनाम के लिए सीधी सेवाएं शुरू करना है। सीएम ने बताया कि गुवाहाटी को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक बड़े ट्रैवल और ट्रांजिट हब के तौर पर स्थापित करने की तैयारी हो रही है। सासनगीर और गिरनार जंगल में घूमने और एशियाई शेरों के दीदार करने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अहम खबर है। एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू हो रहा है। वन विभाग ने कल से सासनगीर और गिरनार जंगल सफारी को अगले 4 महीने के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए लायन सफारी भी बंद रहेगी।
8: सुपरस्टार यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट आ गई है तो वहीं अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा देखने को मिला। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
9: साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए गुड न्यूज है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। एक्टर यश ने खुद सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी है। अब लंबे वीकेंड के साथ फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम कामयाबी का एक कीर्तिमान आ गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम पर रख दिया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजल्स में पब्लिक हॉलिडे रखा जाएगा। लॉस एंजल्स द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया यह सबसे बड़ा सम्मान है। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। धुरंधर 2 पार्ट्स में रिलीज की गई थी और इन दोनों पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर ने दुनिया भर में 3,100 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई के बाद रणवीर को बड़े पर्दे के कलेक्शन के साथ डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के हिस्से के तौर पर 325 करोड़ रुपए मिले। इस कमाई के साथ रणवीर ने शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार्स की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि एक्टर या फिल्म मेकर्स की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई। पुष्पा और एनिमल जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हिट फिल्मों की लिस्ट में लेटेस्ट कॉकटेल 2 का नाम भी शामिल होने वाला है क्योंकि केवल 3 दिनों में दुनिया भर में फिल्म ने 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और 100 करोड़ की ओर बढ़ चुकी है। होमा अदजानिया के निर्देशन में बनी कॉकटेल 2 में रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर की तिकड़ी है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई हासिल की है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर की शादी का जश्न शुरू हो गया है। शादी से पहले की रस्मों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंशुला की आंटी महीप कपूर ने शादी से पहले के जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। शादी से पहले के जश्न के वीडियोस और तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया गया है कि शादी शुरू, जय माता दी। अंशुला एवं रोहन, उनकी इन तस्वीरों से सेरेमनी की एक झलक दिखी जो माता की चौकी लग रही है।
8: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात ये कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं।

0: आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी, लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख
1: इंग्लैंड में धूमधाम से मना समर सॉल्स्टिस उत्सव। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: इक्कीस जून को इंग्लैंड के प्राचीन स्मारक स्टोन हेंज में समर सोल्स्टिस का उत्सव मनाया गया। इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सूरज की पहली किरणों के साथ इस विशेष खगोलीय घटना को एंजॉय किया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साल के सबसे लंबे दिन को बताने वाले इस सालाना आयोजन में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक इमारत स्टोन हेंज में बड़ी संख्या में लोग पूरी रात जागकर सूर्योदय का इंतजार करते रहे और जैसे ही सनराइज हुआ, इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने म्यूजिक के साथ डांस कर विशाल पत्थरों को छूकर इस पल का जश्न मनाया। डेनमार्क के फैनो द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े पतंग महोत्सव में 26 देशों के हजारों पतंगबाज जुटे। हर साल जून में आयोजित होने वाले फैनो इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स मीटिंग में इस बार करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आसमान में लगभग 25,000 रंग बिरंगी पतंगे उड़ी, जिनमें विशाल काय ड्रैगन, समुद्री जीव, कार्टून कैरेक्टर और अनोखे डिजाइन की पतंगे शामिल रही। डेनमार्क के उत्तरी सागर तट से सटे फैनो द्वीप को पतंग उड़ाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन स्थानों में गिना गया है। इसकी 14 किलोमीटर लंबी चौड़ी और समतल समुद्री रेत और लगातार चलने वाली तटीय हवाएं पतंगबाजों को आदर्श माहौल देती हैं। कलर्स और क्रिएटिविटी से सजे इस महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पतंग सिर्फ एक खिलौना भर नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ने वाली कला और संस्कृति का अनोखा माध्यम भी है। चीन की राजधानी बीजिंग में चौथे चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इस अनोखी एक्सपो में डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट व्हीकल का प्रदर्शन हुआ, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बनी AI। इस विशेष एक्सपो में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, इंटेलिजेंस ड्राइविंग, स्मार्ट फैक्ट्री और इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक जैसे AI बेस्ड आइटम्स को पेश किया गया। चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में 85 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चीन के ल्हासा में डुआनवू फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस मौके पर 3600 मीटर ऊंचाई वाले रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस हुई। इस याक लेदर बोट रेस में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान सबका ध्यान पारंपरिक नावों ने अपनी ओर खींच लिया। इस खास कार्यक्रम में स्थानीय संस्कृति की झलक तो देखने को मिली ही, विजिटर्स के लिए भी फोक कल्चर जोन बनाया गया था, लेकिन सबसे खास था इंटेंजिबल हेरिटेज जोन, जिसकी चर्चा हर तरफ थी। इस अनोखे आयोजन में स्थानीय पकवान भी मौजूद थे, लेकिन बांस के पत्तों में लिपटे चावल की डिश लोगों को खूब पसंद आई। हंगरी के बुडापेस्ट में भारतीय सांस्कृतिक और अध्यात्म की झलक देखने को मिली। ग्लोबल वारी 2026 के दौरान भगवान श्री विट्ठल रुक्मणी की पवित्र पादुकाएं पहली बार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंची। ये पवित्र यात्रा 6 जून को यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई थी और नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक होते हुए 21 जून को बुडापेस्ट पहुंची। यहां से ये यात्रा भारत में पंढरपुर की ओर बढ़ेगी। ग्लोबल वारी के जरिए भक्ति और वारकरी परंपरा अब भारत से बाहर यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
3: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations.

0: and what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बेहद दमदार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये पेशकश आप सबके नजर। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास का आईना बनकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक साथ 3 गेम चेंजर नौ सैनिक जहाजों का जलावतरण किया है। ये तीनों नेवल शिप अपने अपने क्षेत्र के मास्टरपीस हैं, जिनकी ताकत और क्षमता जानकर दुश्मन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इन तीनों नेवल शिप्स के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद हिंद महासागर में हिंदुस्तान की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ, इसीलिए इन्हें भारतीय नौसेना का गेम चेंजर माना जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि तीनों भारत में ही डिजाइन है और स्वदेशी तकनीक से लैस है। देखिए देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हमारी यह खास रिपोर्ट।

आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है।

समंदर में भारत की स्वदेशी तकनीक और ताकत की नई नुमाइश को देखकर दुश्मन की नींद उड़ गई है। इंडियन नेवी ने रविवार को हिंद महासागर में अपनी तकनीक और ताकत का बवंडर उठाते हुए एक साथ 3 गेम चेंजर नेवल शिप्स को कमीशन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को अलग अलग खासियतों से लैस 3 नौसैनिक जहाजों को भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया। तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण बंगाल की खाड़ी में किया गया। गजब का इत्तेफाक ये है कि तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण उस दिन हुआ जब पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा था। काबिले गौर है कि 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन पीएम मोदी ने समंदर में भारत की शक्ति का शक्तिशाली मुजाहिरा भी कर दिया।

आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

0: कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर तीन महत्वपूर्ण नेवल शिप्स को राष्ट्र को समर्पित किया जाना कितना अहम और असरदार है ये समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने चीन निर्मित हंगोर क्लास की सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया था। जाहिर है 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में नौ सैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने तीन अलग अलग विशेषताओं वाले जहाज को उसी बंगाल की खाड़ी में उतार कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने तो चीन में निर्मित सबमरीन को अपनी नौसेना में शामिल किया, लेकिन भारत ने जिन तीनों नेवल शिप्स को कमीशन किया है वो पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है, और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: अब आपको बताते हैं कि ये तीनों नेवल शिप्स किस किस तरह के हैं और कैसे समंदर में इनकी मौजूदगी दुश्मन की नींद उड़ाने का काम करेगी। इनमें से पहला है INS दुनागिरी, जो कि एक फ्रिगेट यानी कॉम्बैट शिप है। दूसरा है INS अग्रय, जो एक एंटी सबमरीन शिप है। और तीसरा है INS संशोधक, जो कि एक सर्वे शिप है। ये तीनों सिर्फ नेवल शिप्स ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक मुनादी है, क्योंकि ये तीनों समंदर में भारत के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। जब आप इन तीनों जहाजों की ताकत और विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि तीन नौसैनिक जहाजों के जलावतरण से क्यों चीन और पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं INS दुनागिरी की विशेषताओं के बारे में। INS दुनागिरी जल तकनीक से बना अत्याधुनिक फ्रिगेट है, जो दुश्मन की नजरों में आए बगैर समंदर से लेकर आसमान तक की उनकी तबाही का पैगाम लिखने की क्षमता से लैस है। INS दुनागिरी नई पीढ़ी का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो रडार और दूसरे सेंसर्स को चकमा देने में माहिर है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस के अलावा MRSAM वायु रक्षा प्रणाली, MF-STAR रडार तकनीक, अत्याधुनिक सोनार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस है। INS दुनागिरी लंबी दूरी के समुद्री वॉरफेयर के साथ ही मिसाइल हमले और पनडुब्बियों के खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हुए हैं।
2: इट इज द फिफ्थ शिप इन द सीक्वेंस। सो व्हाई डू वी कॉल इट अ स्टेल्थ फ्रिगेट? वी कॉल इट अ स्टेल्थ फ्रिगेट बिकॉज इट हैज गॉट रिड्यूस्ड RCS, रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड वी हैव फीचर्स दैट मेक्स इट वेरी वेरी साइलेंट। So, in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced, state-of-the-art early warning radars in all three dimensions, capable of carrying all types of helicopters, and that provides us the advantage of operating and meeting all missions.
0: INS दुनागिरी की जबरदस्त खासियतों को जानने के बाद अब बात करते हैं INS अग्रय की, जो कि एंटी सबमरीन शेलो वाटर शिप है। ये खास तौर पर उथले तटीय जल क्षेत्रों, बंदरगाहों और अहम समुद्री रास्तों की निगरानी करने में पूरी तरह से सक्षम है। INS INS अग्रह हल्के टॉर्पीडो स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और हाईटेक सोनार सिस्टम से लैस है। इसे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही डुबा देने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।
3: इस शिप की स्पेशलिटी ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडरवाटर सेंसर्स लगे हैं, एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडरवाटर, उसी के उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज डिजाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन।
0: INS दूनागिरी और INS अग्रह की खासियत जानने के बाद अब जानते हैं तीसरे नेवल शिप INS संशोधक के बारे में। INS संशोधक सर्वे वेसल लार्ज यानी SLV श्रेणी का अत्याधुनिक हाईटेक पोत है। इसका काम मुख्य तौर पर समुद्र की गहराई, समुद्री तल की संरचना और नौसैनिक रास्तों का सर्वेक्षण करना है। ये नेवल शिप ऑटोनोमस अनमैन्ड व्हीकल, रिमोट ऑपरेटेड वाहन और मल्टी बेम इको साउंडर जैसे उन्नत वॉरफेयर से लैस है। सबसे खास बात यह कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के हालात में INS संशोधक एक हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
2: दिस इज बेसिकली सर्वे शिप, सो प्राइमरी रोल इज टू कंडक्ट ए हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड कलेक्ट मैरिटाइम डाटा। सो एज अ सेकेंडरी रोल दिस शिप कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन हॉस्पिटल शिप, सो वेरियस ऑनबोर्ड स्पेसेस दैट वी विल कन्वर्टेड इनटू वार्ड्स एंड द ऑपरेशन थिएटर। सो we have modern telemedicine facility which help in real time consultation with the specialist and super specialist, as well as we are equipped with the lab facility for routine blood and urine investigation, and we are also having the ultrasound machine, so we can treat the patient, we will stabilize him here during any emergency.
0: kehne ki zarurat nahi ki ravivar ko bharat ne hind mahasagar mein jo teen naval ships utare wo tino hindustan ki aatmanirbharta ke sath hi बढ़ते आत्मविश्वास के भी प्रतीक है। सबसे अच्छी बात ये कि डिजाइन के साथ ही इनमें लगे 75% से ज्यादा उपकरण और साजो सामान पूरी तरह से स्वदेशी हैं। जो तीन नेवल शिप्स उतारे वो तीनों हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता के साथ ही बढ़ते आत्मविश्वास के भी प्रतीक है। सबसे अच्छी बात ये कि डिजाइन के साथ ही इनमें लगे 75% से ज्यादा उपकरण और साजो सामान पूरी तरह से स्वदेशी है। इतना ही नहीं, इन्हें बनाने के लिए 200 से ज्यादा MSME सेवाएं ली गई हैं। इसका मतलब ये कि समंदर में हिंदुस्तान की निगरानी और दुश्मन की परेशानी का सबब बनने के साथ ही इनमें भारी तादाद में रोजगार का भी सृजन हुआ है।

0: कोलकाता से शिराशी डे और इंदिरा चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: इन तीनों नौसैनिक जहाजों का हिंद महासागर में उतरना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वैश्विक मुनादी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, यहां तक कि हम रक्षा उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि भारत की सैन्य ताकत पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा हो चुकी है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि भारत न सिर्फ कन्वेंशनल हथियार बना रहा है बल्कि वक्त की नजाकत को देखते हुए टेक्निकल वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक को भी लगातार विकसित कर रहा है।

0: स्वदेशीकरण, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है। राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की ये जय घोष है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है, वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई, जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई, जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अब आपको एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जो ना केवल उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को बयां कर रही है बल्कि उसमें नजर आ रही हरियाली के बीच पड़ रही बारिश की फुहारें भी आपको रोमांचित कर देती हैं। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा सा घास का मैदान, उस पर हजारों की संख्या में दौड़ते हुए घोड़े। ये तस्वीर जो है उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग की है और यहाँ पर उइगर ऑटोनोमस क्षेत्र के झाओसू काउंटी में हाल ही में हेवनली हॉर्स फेस्टिवल हुआ। दरअसल यहाँ ये खास आयोजन जो है घुड़सवारी, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय विरासत को समर्पित एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव इसको माना जाता है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और घुड़सवारी प्रेमी तमाम शामिल होते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इली नदी घाटी में स्थित झाओसू काउंटी को हेवनली हॉर्सेस की धरती के नाम से भी ये प्रख्यात है। ये क्षेत्र जो है सदियों पुरानी हॉर्स रिप्रोडक्शन परंपरा के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। तस्वीरें देखिए, पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान चू लिया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया। जी हां, लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है।
2: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है, उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। सात समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
3: In the city of LA, we're declaring a day after you. So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
4: My day?
3: Your own day in the city of Los Angeles.
4: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
2: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
4: थैंक यू सो मच। माय डे इन एलए हुण होया तैनू गड्डी च बिठा के ले जावां नी मैं एलए नू।
2: अब लॉस एंजलिस में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजलिस ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजलिस ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपने ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
5: जिन्ना मर्जी साडी रोक लो, जिन्निया मर्जी साडिया लद्दा खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे किट्टिया नू चिमड़ी चलो, पंजाबी आयो।
2: लॉस एंजलिस में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थी। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजलिस में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय ऑरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Take it easy with soft hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा 11 साल के बच्चे की भी हो रही है जो एक मठ का महंत बन गया है।
8: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में रविवार की शाम आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। यहाँ आसमान में बने इस विशालकाय और अनोखे नजारे को देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। आसमान में घुमावदार धूल और बादलों की एक बड़े खंभे जैसी आकृति दिखाई दे रही थी जो टॉर्नेडो जैसी लग रही थी। हालांकि तेज हवा के झोंके ने कुछ जगहों पर नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये कोई डरावना टोर्नेडो नहीं था बल्कि बादलों के सिस्टम से जुड़ा एक बहुत शक्तिशाली और अनोखा थंडर स्ट्रॉम अपड्राफ्ट था। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां सिर्फ 11 साल का एक मासूम बच्चा अब एक बड़े मठ का महंत बन गया है। बलिया के मझौवा मठ में रविवार की शाम अद्भुत नजारे की गवाह बनी क्योंकि 11 साल के बालक शाश्वत शौर्य तिवारी का पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक किया गया। सोशल मीडिया और इलाके में इस नन्हे महंत की चर्चा हर तरफ है। दिलचस्प बात यह है कि जब तिलक और अभिषेक की रस्में चल रही थी तो ये 11 साल का बच्चा वीडियो कॉलिंग पर अपने परिवार से बात करते हुए हंसता मुस्कुराता नजर आया। इस मौके पर मठ के तमाम भक्त तो मौजूद थे ही, आसपास के इलाकों के लोग भी इस अलौकिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। महंत बनने के बाद अब 11 साल के इस बच्चे को नया नाम मिला है, श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णोदास। अयोध्या में दूल्हा सरकार के दबाव को इस बार किसी आम फूलों और पत्तियों से नहीं बल्कि फलों के राजा आम और उसकी पत्तियों से सजाया गया है। गर्मी के सीजन में मंदिर को पूरी तरह से मैंगो थीम पर डेकोरेट किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चारों तरफ लटकते हुए हरे और रसीले आम और उनके बीच विराजे प्रभु। आस्था और मौसम उत्सव के इस अनोखे संगम को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई दूल्हा सरकार के इस मनमोहक रूप के दर्शन करने और इस अद्भुत सजावट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। आम के पत्तों और तरह तरह की वैरायटी के आमों से सजे इस दरबार की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मैदानी इलाकों में बढ़ते पारे के साथ ही पहाड़ी इलाकों में रौनक देखने लायक है। वीकेंड पर तो सैलानियों की तादाद 2 से 3 गुना हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखने को मिला, जहां सैलानी बड़ी तादाद में उमड़े। पहाड़ियों की चोटियों पर हसीन मौसम तो सैलानियों को भी भा रहा है, लेकिन कुल्लू की ब्यास नदी के किनारे भी सैलानियों का मेला लगा हुआ है। अलग अलग इलाकों से आए सैलानी नदी की ठंडी धारा में रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले रहे हैं। नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानियों के लिए राफ्टिंग रोमांच से भरपूर है। गर्मी से राहत की तलाश में यहां पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी बोनस जैसा है। जून महीने में सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते ब्यास नदी में राफ्टिंग की संख्या बढ़ रही है और सैलानियों के आने से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी इसका खूब फायदा मिल रहा है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ता तनाव और मानसिक दबाव लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल की है, इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटीर विकसित की है। आईआईटी मंडी में इस परियोजना का प्रोटोटाइप भी दिखाया जा चुका है। गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से इन कुटीरों को बनाया गया है। कुटीर में एक शख्स को लगभग 10 मिनटों का समय बिताना होता है। इस दौरान उसे अलग अलग प्राकृतिक ध्वनियां सुनाई जाती हैं, जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज, पानी की बौछारों की ध्वनि और घंटियों की आवाज शामिल है।
7: और अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भक्ति और आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के प्रथम जत्थे को झंडे दिखाकर रवाना किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं।

0: नाथुला में भारत चीन बॉर्डर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिक्किम के पर्यटन मंत्री शेरिंग थेंडुप भूटिया, भारतीय सेना आईटीबीपी और सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। सिक्किम के राज्यपाल ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, हर हर महादेव की गूंज पूरी फिजा में बिखर गई। नाथुला में श्रद्धालुओं के बीच भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता और उत्साह नजर आया। कई तीर्थयात्रियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने यात्रा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार हो रहा है। एक तीर्थयात्री ने कहा कि अब तक ये एक शानदार यात्रा रही है, प्रशासन ने हम सभी के लिए इसे बहुत आसान बना दिया है, अब भगवान शिव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है।
1: हमें दर्शन देंगे वहाँ जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, कैलाश पर्वत दर्शन होगी, इससे बढ़िया और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हम बहुत खुश हैं।
0: समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर रवाना हुए। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति, आस्था और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अनुपम अवसर भी है।
2: आज बाबा विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है, और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूं। और ये पिछले 5 सालों से जो बंद था, पिछले साल ही शुरू हुआ, और मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला है।
0: हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन कर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही है, क्योंकि सालों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार जो होने जा रहा है।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा से जो मेरा जो मानना है वो मैं क्या मांगूंगा, शायद कोई नहीं मांग रहा होगा, कि मैं चाहता हूं कि भगवान शिव जी भारत में आके हमको दर्शन दें।
0: सिक्किम के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते समय श्रद्धालुओं में बहुत जोश और उत्साह था, और उम्मीद है कि उनकी धर्म यात्रा बाबा बर्फानी की कृपा और आशीर्वाद से सफल होगी।
4: जितना भी यहाँ लोग भक्तजन श्रद्धालु सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट बैच कम से कम सिक्किम में मोटा मोटी 5 दिन पहले वहाँ लोग का उन लोग का आक्रमण हुआ था, और इसीलिए उन लोग का एकदम डिफरेंट जगह पे हम लोग उन लोग को एक्लमाटाइजेशन के लिए एकदम रखा गया था। और इसके लिए जितना भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख के सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जितना भी ऑफिशियल्स है वो सब उन लोग को एकदम देखभाल जो हॉस्पिटलिटी जो सिक्किम का देना था वो सब दे के एकदम इतना अच्छा खातिरदारी करके जब अभी हम लोग उन लोग के साथ जितना भी भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे प्रेजेंट था जो अभी आर्मी के जो अभी वो ऊपर जो मेन हॉल में हम लोग का थोड़ा इंट्रैक्शन हुआ था उनके साथ इंट्रैक्ट करते हुए हम लोग को ऐसा मतलब जानने में आए कि वो लोग एकदम खुश था जो सिक्किम का जो हॉस्पिटैलिटी में जो हम लोग बहुत ही स्पेशल है बोल के उन लोग का मुंह से हम लोग को सुनने में आ रहा था, इसलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा हुआ,
5: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अलोंग विद आईटीबीपी, एसटीडीसी एंड दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: पर्यटन मंत्री ने ये भी बताया कि इस साल कुल 500 तीर्थयात्री नाथुला रास्ते से यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों को 50-50 लोगों के 10 समूहों में बांटा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से सिक्किम टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं तीर्थयात्रियों ने अलग अलग सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं की तारीफ की।
4: भगवान का कोई दर्शन करने के लिए आए हैं तब एकदम वो लोग एकदम खुश था, सही ये यात्रा सफल रहेंगे और ये 10 दिन की यात्रा रहेंगे और कम से कम ये 30 तारीख को वो लोग सब यहाँ पे बॉर्डर फिर वापस आएंगे। इसी तरह मतलब इस साल का भी जो 10 बैच है वो लोग एकदम टर्न वाइज करते आएंगे और लास्ट बैच रहूँगा ये अगस्त महीना में जो लास्ट बैच हम लोग हैंडल करेंगे। शायद ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब मतलब जो हो रहा है, जो यात्रा शुरू हो रहा है, ये काफ़ी साल से कम 5 साल से बंद था। लास्ट ईयर ही ये मतलब यात्रा शुरू हुआ है। ये यात्रा शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिक्किम टूरिज्म में वैल्यू एडिशन देने का एक मतलब काम हो रहा है।
6: बहुत अच्छा सिक्किम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सभी स्टाफ बहुत अच्छे, हम लोगों का देखभाल किया।
0: बता दें कि इस यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। ये ग्रुप देश के अलग अलग हिस्सों से आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से पहले सभी श्रद्धालुओं का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और सभी यात्री पूरी तरह स्वस्थ पाए गए।
7: जैसा कि पता है कि ITUP कैलाश मानसरोवर यात्रा में शुरू से इन्वॉल्व है और दोनों तरफ से लिपु लेक और नाथुला की तरफ से हम यात्रा कराते हैं। हमारा काम यात्रियों को सिक्योरिटी प्रदान करना और साथ ही साथ मेडिकल कवर देना होता है। तो बाकी साल की तरह भी इस साल भी हम लोगों ने उसी ढंग का अरेंजमेंट किया है और फॉर्चुनेटली मेडिकल फाइनल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें सारे यात्री क्लियर हो गए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इनको सिक्योरिटी देना, मेडिकल कवर कराना और क्रॉस कराना हमारी जवाबदारी। इस बार भी यात्री करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से हैं, तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, नोएडा, पूरे इलाके के, पूरे हिंदुस्तान के यात्री हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 30 साल से लेकर 70 साल तक।
0: हालांकि ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई जरूर है, लिहाजा विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास ने यात्रियों को आगाह किया है कि तिब्बत का क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और सीमित सुविधाएं चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूरी तैयारी, चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक सावधानियों के साथ यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में अंतिम, सर्वोच्च और महातीर्थ माना गया है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदुओं, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डिस टुडे।
8: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर इंडोनेशिया में सुनाएंगे 3 दिनों तक हनुमंत कथा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में हनुमंत कथा की तैयारी कर रहे हैं। जकार्ता में वो 3 दिनों तक सनातन की अलख जलाएंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जकार्ता में 26 से 28 जून तक प्रभु का गुणगान करेंगे, जहां 3 दिनों तक भव्य हनुमंत कथा और दिव्य दरबार सजेगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडोनेशिया के कार्यक्रम की जानकारी शेयर की है। भारतीय उपभोक्ता अब सामानों से ज्यादा अनुभवों पर खर्च कर रहे हैं। CBRE की नई रिपोर्ट बता रही है कि 2030 तक अनुभवों पर होने वाला खर्च 10.3% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा, जो कि भौतिक वस्तुओं से आगे निकल जाएगा। इसमें होटल सेवाओं की ग्रोथ सबसे तेज यानी करीब 10.6% रहने का अनुमान है। CBRE की रिपोर्ट बता रही है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत जेंजी है। ये पीढ़ी तेजी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है और जैसे जैसे इनकी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके खर्च करने का तरीका भी बाजार की दिशा तय कर रहा है। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बदलने वाली है। इसके तहत अब सिर्फ लाइट लगाना ही नहीं बल्कि उसे चालू रखना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर किसी इलाके की स्ट्रीट लाइट खराब होती है और उसे समय पर ठीक नहीं किया जाता है तो ठेकेदार को भुगतान में कटौती झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। जितने घंटे लाइट खराब रहेगी उसी के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें स्मार्ट एलईडी लाइट्स को एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा जो रियल टाइम में पूरे नेटवर्क पर नजर रखेगा। इससे अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अंधेरे वाले हिस्सों की पहचान जल्दी हो सकेगी। असम के ग्लोबल कम्युनिटी से जोड़ने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। ईयू के सदस्य देशों असम के लिए ट्रेवल एडवाइजरी हटा लेने के बाद अब एयर इंडिया 4 अगस्त से गुवाहाटी से दुबई और अबुधाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन नॉन स्टॉप सेवाओं के साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट अब 4 देशों यूएई, थाईलैंड, सिंगापुर और भूटान से जुड़ गया है। सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद अगला लक्ष्य वियतनाम के लिए सीधी सेवाएं शुरू करना है। सीएम ने बताया कि गुवाहाटी को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक बड़े ट्रैवल और ट्रांजिट हब के तौर पर स्थापित करने की तैयारी हो रही है। सासनगीर और गिरनार जंगल में घूमने और एशियाई शेरों के दीदार करने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अहम खबर है। एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू हो रहा है। वन विभाग ने कल से सासनगीर और गिरनार जंगल सफारी को अगले 4 महीने के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए लायन सफारी भी बंद रहेगी।
8: सुपरस्टार यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट आ गई है, तो वहीं अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा देखने को मिला। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
9: साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए गुड न्यूज है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। एक्टर यश ने खुद सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी है। अब लंबे वीकेंड के साथ फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम कामयाबी का एक कीर्तिमान आ गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम पर रख दिया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजल्स में पब्लिक हॉलिडे रखा जाएगा। लॉस एंजल्स द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया यह सबसे बड़ा सम्मान है। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। धुरंधर 2 पार्ट्स में रिलीज की गई थी और इन दोनों पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर ने दुनिया भर में 3,100 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई के बाद रणवीर को बड़े पर्दे के कलेक्शन के साथ डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के हिस्से के तौर पर 325 करोड़ रुपए मिले। इस कमाई के साथ रणवीर ने शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार्स की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि एक्टर या फिल्म मेकर्स की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई। पुष्पा और एनिमल जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हिट फिल्मों की लिस्ट में लेटेस्ट कॉकटेल 2 का नाम भी शामिल होने वाला है क्योंकि केवल 3 दिनों में दुनिया भर में फिल्म ने 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और 100 करोड़ की ओर बढ़ चुकी है। होमा अज़ानिया के निर्देशन में बनी कॉकटेल 2 में रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर की तिकड़ी है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई हासिल की है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर की शादी का जश्न शुरू हो गया है। शादी से पहले की रस्मों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंशुला की आंटी महीप कपूर ने शादी से पहले के जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। शादी से पहले के जश्न के वीडियोज और तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया गया है कि शादी शुरू, जय माता दी। अंशुला एवं रोहन, उनकी इन तस्वीरों से सेरेमनी की एक झलक दिखी जो माता की चौकी लग रही है।
8: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन ले, लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। गाय बिल्कुल किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी, लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे

0: अब जरा इस वायरल बंदर को देखिए। ये बंदर बड़ी सावधानी से साइकिल के पहिए से ट्यूब निकाल रहा है। उसके हाव भाव और काम करने का तौर तरीका देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है। जानवरों के मजेदार और प्यारे से वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। देखिए कैसे ये छोटा हाथी पानी के टब में पूरी तरह मस्ती के मूड में है। कभी वो पानी में उछलता कूदता है तो कभी सिर के बल टब में गिर जाता है। उसकी शरारतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं।
1: इंग्लैंड में धूमधाम से मना समर सोल्स्टिस उत्सव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: इक्कीस जून को इंग्लैंड के प्राचीन स्मारक स्टोन हेंज में समर सोल्स्टिस का उत्सव मनाया गया। इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सूरज की पहली किरणों के साथ इस विशेष खगोलीय घटना को एंजॉय किया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साल के सबसे लंबे दिन को बताने वाले इस सालाना आयोजन में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक इमारत स्टोनहेंज में बड़ी संख्या में लोग पूरी रात जागकर सूर्योदय का इंतजार करते रहे, और जैसे ही सनराइज हुआ इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने म्यूजिक के साथ डांस कर विशाल पत्थरों को छूकर इस पल का जश्न मनाया। डेनमार्क के फैनो द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े पतंग महोत्सव में 26 देशों के हजारों पतंगबाज जुटे। हर साल जून में आयोजित होने वाले फैनो इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स मीटिंग में इस बार करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आसमान में लगभग 25,000 रंग बिरंगी पतंगे उड़ी, जिनमें विशाल काय ड्रैगन, समुद्री जीव, कार्टून कैरेक्टर और अनोखे डिजाइन की पतंगे शामिल रही। डेनमार्क के उत्तरी सागर तट से सटे फैनो द्वीप को पतंग उड़ाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन स्थानों में गिना गया है। इसकी 14 किलोमीटर लंबी चौड़ी और समतल समुद्री रेत और लगातार चलने वाली तटीय हवाएं पतंगबाजों को आदर्श माहौल देती हैं। कलर्स और क्रिएटिविटी से सजे इस महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पतंग सिर्फ एक खिलौना भर नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ने वाली कला और संस्कृति का अनोखा माध्यम भी है। चीन की राजधानी बीजिंग में चौथे चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इस अनोखी एक्सपो में डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट व्हीकल का प्रदर्शन हुआ, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बनी AI। इस विशेष एक्सपो में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, इंटेलिजेंस ड्राइविंग, स्मार्ट फैक्ट्री और इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक्स जैसे AI बेस्ड आइटम्स को पेश किया गया। चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में 85 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चीन के ल्हासा में डुआनवू फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस मौके पर 3600 मीटर ऊंचाई वाले रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस हुई। इस याक लेदर बोट रेस में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान सबका ध्यान पारंपरिक नावों ने अपनी ओर खींच लिया। इस खास कार्यक्रम में स्थानीय संस्कृति की झलक तो देखने को मिली ही, विजिटर्स के लिए भी फोक कल्चर जोन बनाया गया था, लेकिन सबसे खास था इंटेंजिबल हेरिटेज जोन, जिसकी चर्चा हर तरफ थी। इस अनोखे आयोजन में स्थानीय पकवान भी मौजूद थे, लेकिन बांस के पत्तों में लिपटे चावल की डिश लोगों को खूब पसंद आई। हंगरी के बुडापेस्ट में भारतीय सांस्कृतिक और अध्यात्म की झलक देखने को मिली। ग्लोबल वारी 2026 के दौरान भगवान श्री विट्ठल रुक्मणी की पवित्र पादुकाएं पहली बार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंची। ये पवित्र यात्रा 6 जून को यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई थी और नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक होते हुए 21 जून को बुडापेस्ट पहुंची। यहां से ये यात्रा भारत में पंढरपुर की ओर बढ़ेगी। ग्लोबल वारी के जरिए भक्ति और वारकरी परंपरा अब भारत से बाहर यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on

0: all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट।
6: कम लोगों को।
7: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बेहद दमदार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये पेशकश आप सबके नजर। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास का आईना बनकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक साथ 3 गेम चेंजर नौ सैनिक जहाजों का जलावतरण किया है। ये तीनों नेवल शिप अपने अपने क्षेत्र के मास्टर पीस हैं, जिनकी ताकत और क्षमता जानकर दुश्मन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इन तीनों नेवल शिप्स के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद हिंद महासागर में हिंदुस्तान की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ, इसलिए इन्हें भारतीय नौसेना का गेम चेंजर माना जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि तीनों भारत में ही डिजाइन है और स्वदेशी तकनीक से लैस है। देखिए देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट।

आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है।

समंदर में भारत की स्वदेशी तकनीक और ताकत की नई नुमाइश को देखकर दुश्मन की नींद उड़ गई है। इंडियन नेवी ने रविवार को हिंद महासागर में अपनी तकनीक और ताकत का बवंडर उठाते हुए एक साथ 3 गेम चेंजर नेवल शिप्स को कमीशन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को अलग अलग खासियतों से लैस 3 नौसैनिक जहाजों को भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया। तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण बंगाल की खाड़ी में किया गया। गजब का इत्तेफाक ये है कि तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण उस दिन हुआ जब पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा था। काबिले गौर है कि 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन पीएम मोदी ने समंदर में भारत की शक्ति का शक्तिशाली मुजाहिरा भी कर दिया।

0: पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर 3 महत्वपूर्ण नेवल शिप्स को राष्ट्र को समर्पित किया जाना कितना अहम और असरदार है ये समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने चीन निर्मित हंगोर क्लास की सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया था। जाहिर है 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में नौ सैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 अलग अलग विशेषताओं वाले जहाज को उसी बंगाल की खाड़ी में उतार कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने तो चीन में निर्मित सबमरीन को अपनी नौसेना में शामिल किया, लेकिन भारत ने जिन 3 नेवल शिप्स को कमीशन किया है वो पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये 3 पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: अब आपको बताते हैं कि ये 3 नेवल शिप्स किस किस तरह के हैं और कैसे समंदर में इनकी मौजूदगी दुश्मन की नींद उड़ाने का काम करेगी। इनमें से पहला है INS दुनागिरी, जो कि एक फ्रिगेट यानी कॉम्बैट शिप है। दूसरा है INS अग्रय, जो एक एंटी सबमरीन शिप है। और तीसरा है INS संशोधक, जो कि एक सर्वे शिप है। ये 3 सिर्फ नेवल शिप्स ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक मुनादी है, क्योंकि ये 3 समंदर में भारत के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। जब आप इन 3 जहाजों की ताकत और विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 3 नौसैनिक जहाजों के जलावतरण से क्यों चीन और पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं INS दुनागिरी की विशेषताओं के बारे में। INS दुनागिरी स्टेल्थ तकनीक से बना अत्याधुनिक फ्रिगेट है, जो दुश्मन की नजरों में आए बगैर समंदर से लेकर आसमान तक की उनकी तबाही का पैगाम लिखने की क्षमता से लैस है। INS दुनागिरी नई पीढ़ी का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो रडार और दूसरे सेंसर्स को चकमा देने में माहिर है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस के अलावा MRSM वायु रक्षा प्रणाली, MF स्टार रडार तकनीक, अत्याधुनिक सोनार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस है। INS दूनागिरी लंबी दूरी के समुद्री वॉरफेयर के साथ ही मिसाइल हमले और पनडुब्बियों के खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हुए हैं।
2: It is the fifth ship in the sequence. So why do we call it a stealth frigate? We call it a stealth frigate because it has got reduced RCS, radar cross sectional area, and we have features that makes it very silent. So in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced state-of-the-art early warning radars in all three dimensions, capable of carrying all types of helicopters, and that provides us the advantage of operating and meeting all missions.
1: INS दूनागिरी की जबरदस्त खासियतों को जानने के बाद अब बात करते हैं INS अग्रय की, जो कि एंटी सबमरीन शैलो वाटर शिप है। ये खास तौर पर उथले तटीय जल क्षेत्रों, बंदरगाहों और अहम समुद्री रास्तों की निगरानी करने में पूरी तरह से सक्षम है। INS अग्रय हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और हाईटेक सोनार सिस्टम से लैस है। इसे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही डुबा देने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।
3: इस शिप की स्पेशलिटी ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडर वाटर सेंसर्स लगे हैं, एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडर वाटर, उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज डिजाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन।
1: INS दूनागिरी और INS अग्रय की खासियत जानने के बाद अब जानते हैं तीसरे नेवल शिप INS संशोधक के बारे में। INS संशोधक सर्वे वेसल लार्ज यानी SLV श्रेणी का अत्याधुनिक हाईटेक पोत है। इसका काम मुख्य तौर पर समुद्र की गहराई, समुद्री तल की संरचना और नौसैनिक रास्तों का सर्वेक्षण करना है। ये नेवल शिप ऑटोनोमस अनमैन्ड व्हीकल, रिमोट ऑपरेटेड वाहन और मल्टी बेम इको साउंडर जैसे उन्नत वॉरफेयर से लैस है। सबसे खास बात ये कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के हालात में INS संशोधक एक हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
2: This is basically a survey ship. So, primary role is to conduct a hydrographic survey and collect maritime data. So, as a secondary role, this ship can be converted into a hospital ship. So, various onboard spaces that we will convert it into wards and the operation theater. So, we have modern telemedicine facility which help in real-time consultation with the specialist and super specialist, as well as we are equipped with a lab facility for routine blood and urine investigation. And we are also having the ultrasound machine, so we can treat the patient. We will stabilize him here during any emergency.
1: कहने की जरूरत नहीं कि रविवार को भारत ने हिंद महासागर में जो तीन नेवल शिप्स उतारे, वो तीनों हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता के साथ ही बढ़ते आत्मविश्वास के भी प्रतीक हैं। सबसे अच्छी बात ये कि डिजाइन के साथ ही इनमें लगे 75% से ज्यादा उपकरण और साजो सामान पूरी तरह से स्वदेशी है। इतना ही नहीं, इन्हें बनाने के लिए 200 से ज्यादा MSME सेवाएं ली गई हैं। इसका मतलब यह कि समंदर में हिंदुस्तान की निगरानी और दुश्मन की परेशानी का सबब बनने के साथ ही इनमें भारी तादाद में रोजगार का भी सृजन हुआ है।

0: कोलकाता से शिरासी डे और इंदिरा चक्रवर्ती के साथ विनर रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: इन तीनों नौसैनिक जहाजों का हिंद महासागर में उतरना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वैश्विक मुनादी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, यहां तक कि हम रक्षा उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि भारत की सैन्य ताकत पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा हो चुकी है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि भारत न सिर्फ कन्वेंशनल हथियार बना रहा है बल्कि वक्त की नजाकत को देखते हुए टेक्निकल वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक को भी लगातार विकसित कर रहा है।

0: स्वदेशीकरण सशक्तीकरण आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास आत्मगौरव ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है। राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की ये जय घोष है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब आपको एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जो ना केवल उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को बयां कर रही है बल्कि उसमें नजर आ रही हरियाली के बीच पड़ रही बारिश की फुहारें भी आपको रोमांचित कर देती हैं। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा सा घास का मैदान, उस पर हजारों की संख्या में दौड़ते हुए घोड़े। ये तस्वीर जो है उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग की है और यहाँ पर उइगर ऑटोनोमस क्षेत्र के झाओसू काउंटी में हाल ही में हेवनली हॉर्स फेस्टिवल हुआ। दरअसल यहाँ ये खास आयोजन जो है घुड़सवारी, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय विरासत को समर्पित एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव इसको माना जाता है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और घुड़सवारी प्रेमी तमाम शामिल होते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इली नदी घाटी में स्थित झाओसू काउंटी को हेवनली हॉर्सेस की धरती के नाम से भी ये प्रख्यात है। ये क्षेत्र जो है सदियों पुरानी हॉर्स रिप्रोडक्शन परंपरा के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। तस्वीरें देखिए, पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान चूलिया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया। जी हां, लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है।
2: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है, उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। सात समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
3: In the city of LA, we're declaring a day after you. So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
4: My day?
3: Your own day in the city of Los Angeles.
4: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
2: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
4: थैंक यू सो मच। माय डे इन एलए हुण होया, तैनू गड्डी च बिठा के ले जावानी मैं एलए नू।
2: अब लॉस एंजलिस में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजलिस ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजलिस ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपनी ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
5: जिन्ना मर्जी साडी रोक लो, जिन्नी मर्जी साडियां लत्तां खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे किट्टियां नूं चिंबड़ी चलो, पंजाबी आ।
2: लॉस एंजलिस में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक crypto.com अरेना 20,000 की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थी। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजलिस में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय और करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on Tune In.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा 11 साल के बच्चे की भी हो रही है जो एक मठ का महंत बन गया है।
8: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में रविवार की शाम आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। यहाँ आसमान में बने इस विशालकाय और अनोखे नजारे को देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। आसमान में घुमावदार धूल और बादलों की एक बड़े खंभे जैसी आकृति दिखाई दे रही थी जो टोर्नेडो जैसी लग रही थी। हालांकि तेज हवा के झोंके ने कुछ जगहों पर नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये कोई डरावना टोर्नेडो नहीं था बल्कि बादलों के सिस्टम से जुड़ा एक बहुत शक्तिशाली और अनोखा थंडरस्टॉर्म अपड्राफ्ट था। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां सिर्फ 11 साल का एक मासूम बच्चा अब एक बड़े मठ का महंत बन गया है। बलिया के मझौवा मठ में रविवार की शाम अद्भुत नजारे की गवाह बनी क्योंकि 11 साल के बालक शाश्वत शौर्य तिवारी का पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक किया गया। सोशल मीडिया और इलाके में इस नन्हे महंत की चर्चा हर तरफ है। दिलचस्प बात यह है कि जब तिलक और अभिषेक की रस्में चल रही थी तो ये 11 साल का बच्चा वीडियो कॉलिंग पर अपने परिवार से बात करते हुए हंसता मुस्कुराता नजर आया। इस मौके पर मठ के तमाम भक्त तो मौजूद थे ही, आसपास के इलाकों के लोग भी इस अलौकिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। महंत बनने के बाद अब 11 साल के इस बच्चे को नया नाम मिला है, श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णोदास। अयोध्या में दूल्हा सरकार के दबाव को इस बार किसी आम फूलों और पत्तियों से नहीं बल्कि फलों के राजा आम और उसकी पत्तियों से सजाया गया है। गर्मी के सीजन में मंदिर को पूरी तरह से मैंगो थीम पर डेकोरेट किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चारों तरफ लटकते हुए हरे और रसीले आम और उनके बीच विराजे प्रभु। आस्था और मौसम उत्सव के इस अनोखे संगम को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई दूल्हा सरकार के इस मनमोहक रूप के दर्शन करने और इस अद्भुत सजावट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। आम के पत्तों और तरह तरह की वैरायटी के आमों से सजे इस दरबार की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मैदानी इलाकों में बढ़ते पारे के साथ ही पहाड़ी इलाकों में रौनक देखने लायक है। वीकेंड पर तो सैलानियों की तादाद 2 से 3 गुना हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखने को मिला, जहां सैलानी बड़ी तादाद में उमड़े। पहाड़ियों की चोटियों पर हसीन मौसम तो सैलानियों को भी भा रहा है, लेकिन कुल्लू की ब्यास नदी के किनारे भी सैलानियों का मेला लगा हुआ है। अलग अलग इलाकों से आए सैलानी नदी की ठंडी धारा में रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले रहे हैं। नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानियों के लिए राफ्टिंग रोमांच से भरपूर है। गर्मी से राहत की तलाश में यहां पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी बोनस जैसा है। जून महीने में सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते ब्यास नदी में राफ्टिंग की संख्या बढ़ रही है और सैलानियों के आने से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी इसका खूब फायदा मिल रहा है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ता तनाव और मानसिक दबाव लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल की है, इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटीर विकसित की है। आईआईटी मंडी में इस परियोजना का प्रोटोटाइप भी दिखाया जा चुका है। गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से इन कुटीरों को बनाया गया है। कुटीर में एक शख्स को लगभग 10 मिनटों का समय बिताना होता है। इस दौरान उसे अलग अलग प्राकृतिक ध्वनियां सुनाई जाती हैं, जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज, पानी की बौछारों की ध्वनि और घंटियों की आवाज शामिल है।
7: और अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भक्ति और आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के प्रथम जत्थे को झंडे दिखाकर रवाना किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हुई।

0: नाथुला में भारत चीन बॉर्डर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिक्किम के पर्यटन मंत्री शेरिंग थेंडुप भूटिया, भारतीय सेना आईटीबीपी और सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। सिक्किम के राज्यपाल ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, हर हर महादेव की गूंज पूरी फिजा में बिखर गई। नाथुला में श्रद्धालुओं के बीच भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता और उत्साह नजर आया। कई तीर्थयात्रियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने यात्रा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार हो रहा है। एक तीर्थयात्री ने कहा कि अब तक ये एक शानदार यात्रा रही है, प्रशासन ने हम सभी के लिए इसे बहुत आसान बना दिया है, अब भगवान शिव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है।
1: हमें दर्शन देंगे वहाँ जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, कैलाश पर्वत दर्शन होंगे, इससे बढ़िया और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हम बहुत खुश हैं।
0: समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर रवाना हुए। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति, आस्था और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अनुपम अवसर भी है।
2: आज बाबा विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूं। और ये पिछले 5 सालों से जो बंद था, पिछले साल ही शुरू हुआ और मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला है।
0: हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन कर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही है, क्योंकि सालों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार जो होने जा रहा है।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा से जो मेरा जो मानना है वो मैं क्या मांगूंगा, शायद कोई नहीं मांग रहा होगा, कि मैं चाहता हूं कि भगवान शिव जी भारत में आके हमको दर्शन दें।
0: सिक्किम के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते समय श्रद्धालुओं में बहुत जोश और उत्साह था और उम्मीद है कि उनकी धर्म यात्रा बाबा बर्फानी की कृपा और आशीर्वाद से सफल होगी।
4: जितना भी यहाँ लोग भक्तजन श्रद्धालु सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट बैच कम से कम सिक्किम में मोटा मोटी 5 दिन पहले वहाँ लोग का उन लोग का आक्रमण हुआ था और इसलिए उन लोग को एकदम डिफरेंट जगह पे हम लोग उन लोग को एक्लमाटाइजेशन के लिए एकदम रखा गया था। और इसके लिए जितना भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख के सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जितना भी ऑफिशियल्स है वो सब उन लोग को एकदम देखभाल जो हॉस्पिटेलिटी जो सिक्किम का देना था वो सब दे के एकदम इतना अच्छा खातिरदारी करके जब अभी हम लोग उन लोग के साथ जितना भी भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे प्रेजेंट था जो अभी आर्मी के जो अभी वो ऊपर जो मेन हॉल में हम लोग का थोड़ा इंट्रैक्शन हुआ था उनके साथ इंट्रैक्ट करते हुए हम लोग को ऐसा मतलब जानने में आए कि वो लोग एकदम खुश था जो सिक्किम का जो हॉस्पिटैलिटी में जो हम लोग बहुत ही स्पेशल है बोल के उन लोग का मुंह से हम लोग को सुनने में आ रहा था, इसलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा हुआ,
5: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अलोंग विद आईटीबीपी, एसटीडीसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल कुल 500 तीर्थयात्री नाथुला रास्ते से यात्रा करेंगे। तीर्थ यात्रियों को 50-50 लोगों के 10 समूहों में बांटा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से सिक्किम टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं तीर्थ यात्रियों ने अलग अलग सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं की तारीफ की।
4: भगवान का कोई दर्शन करने के लिए आए हैं तब एकदम वो लोग एकदम खुश था, सही ये यात्रा सफल रहेंगे और ये 10 दिन की यात्रा रहेंगे और कम से कम ये 30 तारीख को वो लोग सब यहाँ पे बॉर्डर फिर वापस आएंगे। इसी तरह मतलब इस साल का भी जो 10 बैच है वो लोग एकदम टर्न वाइज करते आएंगे और लास्ट बैच रहूँगा ये अगस्त महीना में जो लास्ट बैच हम लोग हैंडल करेंगे। शायद ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब मतलब जो हो रहा है, जो यात्रा शुरू हो रहा है, ये काफी साल से कम 5 साल से बंद था। लास्ट ईयर ही ये मतलब यात्रा शुरू हुआ है। ये यात्रा शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिक्किम टूरिज्म में वैल्यू एडिशन देने का ही मतलब काम हो रहा है।
6: बहुत अच्छा, सिक्किम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सभी स्टाफ बहुत अच्छे, हम लोगों का देखभाल किया।
0: बता दें कि इस यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। ये ग्रुप देश के अलग अलग हिस्सों से आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से पहले सभी श्रद्धालुओं का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और सभी यात्री पूरी तरह स्वस्थ पाए गए।
7: जैसा कि पता है कि ITP कैलाश मानसरोवर यात्रा में शुरू से इन्वॉल्व है और दोनों तरफ से लिपु लेक और नाथुला की तरफ से हम यात्रा कराते हैं। हमारा काम यात्रियों को सिक्योरिटी प्रदान करना और साथ ही साथ मेडिकल कवर देना होता है। तो बाकी साल की तरह भी इस साल भी हम लोगों ने उसी ढंग का अरेंजमेंट किया है और फॉर्चुनेटली मेडिकल फाइनल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें सारे यात्री क्लियर हो गए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इनको सिक्योरिटी देना, मेडिकल कवर कराना और क्रॉस कराना हमारी जवाबदारी है। इस बार भी यात्री करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से हैं, तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, नोएडा, पूरे इलाके के, पूरे हिंदुस्तान के यात्री हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 30 साल से लेकर 70 साल तक।
0: हालांकि ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई जरूर है, लिहाजा विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास ने यात्रियों को आगाह किया है कि तिब्बत का क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और सीमित सुविधाएं चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूरी तैयारी, चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक सावधानियों के साथ यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में अंतिम, सर्वोच्च और महातीर्थ माना गया है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदुओं, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर इंडोनेशिया में सुनाएंगे 3 दिनों तक हनुमंत कथा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में हनुमंत कथा की तैयारी कर रहे हैं। जकार्ता में वो 3 दिनों तक सनातन की अलख जलाएंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जकार्ता में 26 से 28 जून तक प्रभु का गुणगान करेंगे, जहां 3 दिनों तक भव्य हनुमंत कथा और दिव्य दरबार सजेगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडोनेशिया के कार्यक्रम की जानकारी शेयर की है। भारतीय उपभोक्ता अब सामानों से ज्यादा अनुभवों पर खर्च कर रहे हैं। CBRE की नई रिपोर्ट बता रही है कि 2030 तक अनुभवों पर होने वाला खर्च 10.3% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा, जो कि भौतिक वस्तुओं से आगे निकल जाएगा। इसमें होटल सेवाओं की ग्रोथ सबसे तेज यानी करीब 10.6% रहने का अनुमान है। CBRE की रिपोर्ट बता रही है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत जेन जी है। ये पीढ़ी तेजी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है और जैसे जैसे इनकी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके खर्च करने का तरीका भी जिम्मेदारी होगी। खर्च करने का तरीका भी बाजार की दिशा तय कर रहा है। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बदलने वाली है। इसके तहत अब सिर्फ लाइट लगाना ही नहीं बल्कि उसे चालू रखना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर किसी इलाके की स्ट्रीट लाइट खराब होती है और उसे समय पर ठीक नहीं किया जाता है तो ठेकेदार को भुगतान में कटौती झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। जितने घंटे लाइट खराब रहेगी उसी के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें स्मार्ट LED लाइट्स को एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा जो रियल टाइम में पूरे नेटवर्क पर नजर रखेगा। इससे अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अंधेरे वाले हिस्सों की पहचान जल्दी हो सकेगी। असम के ग्लोबल कम्युनिटी से जोड़ने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। EU के सदस्य देशों असम के लिए ट्रेवल एडवाइजरी हटा लेने के बाद अब एयर इंडिया 4 अगस्त से गुवाहाटी से दुबई और अबुधाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन नॉनस्टॉप सेवाओं के साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट अब 4 देशों UAE, थाईलैंड, सिंगापुर और भूटान से जुड़ गया है। CM हेमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद अगला लक्ष्य वियतनाम के लिए सीधी सेवाएं शुरू करना है। CM ने बताया कि गुवाहाटी को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक बड़े ट्रैवल और ट्रांजिट हब के तौर पर स्थापित करने की तैयारी हो रही है। सासनगीर और गिरनार जंगल में घूमने और एशियाई शेरों के दीदार करने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अहम खबर है। एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू हो रहा है। वन विभाग ने कल से सासनगीर और गिरनार जंगल सफारी को अगले 4 महीने के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए लायन सफारी भी बंद रहेगी।
8: सुपरस्टार यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट आ गई है, तो वहीं अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा देखने को मिला। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
9: साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए गुड न्यूज है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। एक्टर यश ने खुद सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी है। अब लंबे वीकेंड के साथ फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम कामयाबी का एक कीर्तिमान आ गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम पर रख दिया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजल्स में पब्लिक हॉलिडे रखा जाएगा। लॉस एंजल्स द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया यह सबसे बड़ा सम्मान है। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। धुरंधर 2 पार्ट्स में रिलीज की गई थी और इन दोनों पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर ने दुनिया भर में 3,100 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई के बाद रणवीर को बड़े पर्दे के कलेक्शन के साथ डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के हिस्से के तौर पर 325 करोड़ रुपए मिले। इस कमाई के साथ रणवीर ने शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार्स की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि एक्टर या फिल्म मेकर्स की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई। पुष्पा और एनिमल जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हिट फिल्मों की लिस्ट में लेटेस्ट कॉकटेल 2 का नाम भी शामिल होने वाला है क्योंकि केवल 3 दिनों में दुनिया भर में फिल्म ने 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और 100 करोड़ की ओर बढ़ चुकी है। होमा अदजानिया के निर्देशन में बनी कॉकटेल 2 में रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर की तिकड़ी है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई हासिल की है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर की शादी का जश्न शुरू हो गया है। शादी से पहले की रस्मों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंशुला की आंटी महीप कपूर ने शादी से पहले के जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। शादी से पहले के जश्न के वीडियोस और तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया गया है कि शादी शुरू, जय माता दी। अंशुला एवं रोहन, उनकी इन तस्वीरों से सेरेमनी की एक झलक दिखी जो माता की चौकी लग रही है।
8: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन ले, लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। गाय बिल्कुल किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी, लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।

0: लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है। जानवरों के मजेदार और प्यारे से वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। देखिए कैसे ये छोटा हाथी पानी के टब में पूरी तरह मस्ती के मूड में है। कभी वो पानी में उछलता कूदता है तो कभी सिर के बल टब में गिर जाता है। उसकी शरारतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं।
1: इंग्लैंड में धूमधाम से मना समर सॉल्स्टिस उत्सव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: इक्कीस जून को इंग्लैंड के प्राचीन स्मारक स्टोन हेंज में समर सोल्स्टिस का उत्सव मनाया गया। इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सूरज की पहली किरणों के साथ इस विशेष खगोलीय घटना को एंजॉय किया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साल के सबसे लंबे दिन को बताने वाले इस सालाना आयोजन में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक इमारत स्टोनहेंज में बड़ी संख्या में लोग पूरी रात जागकर सूर्योदय का इंतजार करते रहे, और जैसे ही सनराइज हुआ, इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने म्यूजिक के साथ डांस कर विशाल पत्थरों को छूकर इस पल का जश्न मनाया। डेनमार्क के फैनो द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े पतंग महोत्सव में 26 देशों के हजारों पतंगबाज जुटे। हर साल जून में आयोजित होने वाले फैनो इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स मीटिंग में इस बार करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आसमान में लगभग 25,000 रंग बिरंगी पतंगे उड़ी, जिनमें विशाल काय ड्रैगन, समुद्री जीव, कार्टून कैरेक्टर और अनोखे डिजाइन की पतंगे शामिल रही। डेनमार्क के उत्तरी सागर तट से सटे फैनो द्वीप को पतंग उड़ाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन स्थानों में गिना गया है। इसकी 14 किलोमीटर लंबी चौड़ी और समतल समुद्री रेत और लगातार चलने वाली तटीय हवाएं पतंगबाजों को आदर्श माहौल देती हैं। कलर्स और क्रिएटिविटी से सजे इस महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पतंग सिर्फ एक खिलौना भर नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ने वाली कला और संस्कृति का अनोखा माध्यम भी है। चीन की राजधानी बीजिंग में चौथे चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इस अनोखी एक्सपो में डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट व्हीकल का प्रदर्शन हुआ, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बनी AI। इस विशेष एक्सपो में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, इंटेलिजेंस ड्राइविंग, स्मार्ट फैक्ट्री और इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक जैसे AI बेस्ड आइटम्स को पेश किया गया। चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में 85 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चीन के ल्हासा में डुआनवू फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस मौके पर 3600 मीटर ऊंचाई वाले रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अनोखी ड्रैगन बोट रेस हुई। इस याक लेदर बोट रेस में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान सबका ध्यान पारंपरिक नावों ने अपनी ओर खींच लिया। इस खास कार्यक्रम में स्थानीय संस्कृति की झलक तो देखने को मिली ही, विजिटर्स के लिए भी फोक कल्चर जोन बनाया गया था, लेकिन सबसे खास था इंटेंजिबल हेरिटेज जोन, जिसकी चर्चा हर तरफ थी। इस अनोखे आयोजन में स्थानीय पकवान भी मौजूद थे, लेकिन बांस के पत्तों में लिपटे चावल की डिश लोगों को खूब पसंद आई। हंगरी के बुडापेस्ट में भारतीय सांस्कृतिक और अध्यात्म की झलक देखने को मिली। ग्लोबल वारी 2026 के दौरान भगवान श्री विट्ठल रुक्मणी की पवित्र पादुकाएं पहली बार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंची। ये पवित्र यात्रा 6 जून को यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई थी और नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक होते हुए 21 जून को बुडापेस्ट पहुंची। यहां से ये यात्रा भारत में पंढरपुर की ओर बढ़ेगी। ग्लोबल वारी के जरिए भक्ति और वारकरी परंपरा अब भारत से बाहर यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: Hop on board and settle in for an easy going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates.

0: Loggins and Messina. Even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: अच्छी शुरुआत
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बेहद दमदार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये पेशकश आप सबके नजर। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास का आईना बनकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक साथ 3 गेम चेंजर नौ सैनिक जहाजों का जलावतरण किया है। ये तीनों नेवल शिप अपने अपने क्षेत्र के मास्टर पीस हैं, जिनकी ताकत और क्षमता जानकर दुश्मन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इन तीनों नेवल शिप्स के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद हिंद महासागर में हिंदुस्तान की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ, इसलिए इन्हें भारतीय नौसेना का गेम चेंजर माना जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि तीनों भारत में ही डिजाइन है और स्वदेशी तकनीक से लैस है। देखिए, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हमारी यह खास रिपोर्ट।

आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है।

समंदर में भारत की स्वदेशी तकनीक और ताकत की नई नुमाइश को देखकर दुश्मन की नींद उड़ गई है। इंडियन नेवी ने रविवार को हिंद महासागर में अपनी तकनीक और ताकत का बवंडर उठाते हुए एक साथ 3 गेम चेंजर नेवल शिप्स को कमीशन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को अलग अलग खासियतों से लैस 3 नौसैनिक जहाजों को भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया। तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण बंगाल की खाड़ी में किया गया। गजब का इत्तेफाक ये है कि तीनों नेवल शिप्स का जलावतरण उस दिन हुआ जब पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा था। काबिले गौर है कि 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन पीएम मोदी ने समंदर में भारत की शक्ति का शक्तिशाली मुजाहिरा भी कर दिया।

0: आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर तीन महत्वपूर्ण नेवल शिप्स को राष्ट्र को समर्पित किया जाना कितना अहम और असरदार है ये समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने चीन निर्मित हंगोर क्लास की सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया था। जाहिर है 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में नौ सैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने तीन अलग अलग विशेषताओं वाले जहाज को उसी बंगाल की खाड़ी में उतार कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने तो चीन में निर्मित सबमरीन को अपनी नौसेना में शामिल किया, लेकिन भारत ने जिन तीनों नेवल शिप्स को कमीशन किया है वो पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: अब आपको बताते हैं कि ये तीनों नेवल शिप्स किस किस तरह के हैं और कैसे समंदर में इनकी मौजूदगी दुश्मन की नींद उड़ाने का काम करेगी। इनमें से पहला है INS दुनागिरी, जो कि एक फ्रिगेट यानी कॉम्बैक शिप है। दूसरा है INS अग्रय, जो एक एंटी सबमरीन शिप है। और तीसरा है INS संशोधक, जो कि एक सर्वे शिप है। ये तीनों सिर्फ नेवल शिप्स ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक मुनादी है, क्योंकि ये तीनों समंदर में भारत के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। जब आप इन तीनों जहाजों की ताकत और विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि तीन नौसैनिक जहाजों के जलावतरण से क्यों चीन और पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं INS दुनागिरी की विशेषताओं के बारे में। INS दुनागिरी जल तकनीक से बना अत्याधुनिक फ्रिगेट है, जो दुश्मन की नजरों में आए बगैर समंदर से लेकर आसमान तक की उनकी तबाही का पैगाम लिखने की क्षमता से लैस है। INS दुनागिरी नई पीढ़ी का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो रडार और दूसरे सेंसर्स को चकमा देने में माहिर है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस के अलावा MRSAM वायु रक्षा प्रणाली, MF-STAR रडार तकनीक, अत्याधुनिक सोनार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस है। INS दूनागिरी लंबी दूरी के समुद्री वॉरफेयर के साथ ही मिसाइल हमले और पनडुब्बियों के खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही इसमें आधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हुए हैं।
2: It is the fifth ship in the sequence. So why do we call it a stealth frigate? We call it a stealth frigate because it has got reduced RCS, radar cross sectional area, and we have features that makes it very very silent. So in terms of weapon fitments and array, she is fitted with one of the most advanced state of the art early warning radars in all three dimensions, capable of carrying all types of helicopters, and that provides us the advantage of operating and meeting all missions.
3: इन तीनों नौसैनिक जहाजों का हिंद महासागर में उतरना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वैश्विक मुनादी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, यहां तक कि हम रक्षा उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि भारत की सैन्य ताकत पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा हो चुकी है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि भारत ना सिर्फ कन्वेंशनल हथियार बना रहा है बल्कि वक्त की नजाकत को देखते हुए टेक्निकल वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक को भी लगातार विकसित कर रहा है।

0: स्वदेशीकरण। सशक्तिकरण। आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास। आत्मगौरव। ये शब्द नहीं, ये मुकम्मल दास्तां है। राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की ये जय घोष है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का ये वो दौर है जब दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई देती है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार है। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वही लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। तभी तो अब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिसे देखकर दुनिया दंग है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो साल 2026 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 15.6% ही छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2020-21 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था। यानी साल 2020-21 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश में डिफेंस प्रोडक्शन में 125% से ज्यादा की बढ़त हासिल हुई। जबकि साल 2013-14 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुना यानी 400% से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
1: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वास्तव में ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में DPSUs यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs यानी दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन के 76% का योगदान दिया। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% रहा। इसे यूं समझिए कि 2025-26 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 42,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए का था, यानी पिछले साल की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहले साल की तुलना में 62.66% ज्यादा है। भारत दुनिया में पांचवा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद बना रहा है बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब आपको एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जो ना केवल उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को बयां कर रही है बल्कि उसमें नजर आ रही हरियाली के बीच पड़ रही बारिश की फुहारें भी आपको रोमांचित कर देती हैं। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा सा घास का मैदान, उस पर हजारों की संख्या में दौड़ते हुए घोड़े। ये तस्वीर जो है उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग की है और यहाँ पर उइगर ऑटोनॉमस क्षेत्र के झाओसू काउंटी में हाल ही में हेवनली हॉर्स फेस्टिवल हुआ। दरअसल यहाँ ये खास आयोजन जो है घुड़सवारी, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय विरासत को समर्पित एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव इसको माना जाता है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और घुड़सवारी प्रेमी तमाम शामिल होते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इली नदी घाटी में स्थित झाओसू काउंटी को हेवनली हॉर्सेस की धरती के नाम से भी ये प्रख्यात है। ये क्षेत्र जो है सदियों पुरानी हॉर्स रिप्रोडक्शन परंपरा के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। तस्वीरें देखिए, पंजाबी सिनेमा के सूरमा दिलजीत दोसांझ ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान छू लिया है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम रख दिया। जी हां, लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है।
2: सरहद की सीमाओं से परे संगीत की दुनिया में दिलजीत नाम का ये वो तूफान है जिसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को ही नहीं जीता है, उनके दिलों में घर भी बनाया है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी सूरमा की तोती बोलती है, उनके गानों पर दुनिया थिरकती है। सात समंदर पार दिलजीत की लोकप्रियता का आलम क्या है उसे समझना हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए।
3: So it's Diljit Dosanjh Day in the city of Los Angeles on your birthday.
4: My day?
3: Your own day in the city of Los Angeles.
4: I'm speechless. What should I say? I'm speechless actually. Wow.
2: अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत के सम्मान में दिलजीत दोसांझ डे का ऐलान किया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर दिलजीत दोसांझ डे मनाने की घोषणा की है।
4: Thank you so much. My day in LA. ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮੈਂ LA ਨੂੰ।
2: अब लॉस एंजलिस में 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे मनाया जाएगा, मतलब दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्हें लॉस एंजलिस ने ये सम्मान दिया है। अब से हर साल 6 जनवरी का दिन दिलजीत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन होगा, क्योंकि इसी दिन दिलजीत अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। दिलजीत को ये सम्मान लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल की प्रतिनिधि मोनिक रोड्रिग्स ने दिया। इस सम्मान को पाकर दिलजीत भाव विभोर नजर आए। दिलजीत को ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने और अमेरिकी मुख्यधारा में दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। अमेरिका के अन्य अलग अलग शहरों और राज्यों में दिलजीत से पहले कई दिग्गज भारतीय कलाकारों को ये नागरिक सम्मान मिल चुका है। दिलजीत से पहले उस्ताद अमजद अली खान, श्रेया घोषाल और पंडित सुमन घोष जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के नाम पर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विशेष दिन समर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन लॉस एंजलिस ने पहली बार किसी भारतीय कलाकार को ये सम्मान दिया है। दिलजीत पहले पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस के मशहूर कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के अमेरिकी युवाओं के बीच उनके ऑरा को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। दिलजीत ने इस साल 23 अप्रैल को कनाडा के वैंकूवर से अपनी ऑरा वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। 20 जून को सैन फ्रांसिस्को में उनके वर्ल्ड टूर का समापन हुआ। इस दौरान दिलजीत ने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग शहरों में 13 भव्य शो आयोजित किए।
5: जिन्ना मर्जी साडी रोक लो, जिन्नी मर्जी साडी लता खिंच लो, जिन्ना मर्जी साडे खिट्टियां नूं चिमड़ी चलो, पंजाबी आरे।
2: लॉस एंजलिस में दिलजीत की दीवानगी का आलम ऐसा था कि वहां के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े इंडोर स्टेडियमों में से एक Crypto.com अरेना 20,000 की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था। टिकटें पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई थीं। इस अरेना में आमतौर पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पॉप स्टार्स ही परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजलिस में दिलजीत के शो की सबसे खास बात ये रही कि उनकी दीवानगी सिर्फ दक्षिण एशियाई समुदाय तक सीमित नहीं थी। मैक्सिकन, कोरियन और अमेरिकी मूल के लोग भी दिलजीत के कॉन्सर्ट में उसी जोश और उत्साह के साथ भांगड़ा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। एरिना के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने उनके इस शो को अतुलनीय ऑरा करार दिया। दिलजीत की ये लोकप्रियता अब हॉलीवुड के गढ़ में दिलजीत दोसांझ डे के रूप में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
7: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
8: Keep it on smooth jazz.
9: This is Roots Reggae
10: exclusively on TuneIn.
11: This is classic hip hop
12: exclusively on TuneIn.
6: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, कुलगाम में जवानों ने बढ़ाई निगरानी, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। गांधरबल में माता खीर भवानी मेले का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने किया दर्शन पूजन, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कूनो नेशनल पार्क का दीदार, 1-to-1 बात कर चीता मित्रों के जज्बे को सराहा, भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 32।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
13: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा 11 साल के बच्चे की भी हो रही है जो एक मठ का महंत बन गया है।
14: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में रविवार की शाम आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। यहां आसमान में बने इस विशालकाय और अनोखे नजारे को देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। आसमान में घुमावदार धूल और बादलों की एक बड़े खंभे जैसी आकृति दिखाई दे रही थी जो टोर्नेडो जैसी लग रही थी। हालांकि तेज हवा के झोंके ने कुछ जगहों पर नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये कोई डरावना टोर्नेडो नहीं था बल्कि बादलों के सिस्टम से जुड़ा एक बहुत शक्तिशाली और अनोखा थंडरस्टॉर्म अपड्राफ्ट था।